फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो मुजरिम लोग थे। पर जब हमारे पास से हक उनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है। मूसा ने कहा, तुम हक को ये कहते हो जबकि वो तुम्हारे सामने आ गया, क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर फलाह नहीं पाया करते। उन्होंने जवाब में कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें उस तरीके से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, और जमीन में बड़ाई तुम दोनों की कायम हो जाए? तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं हैं। और फिरौन ने अपने आदमियों से कहा कि हर माहिर फन जादूगर को मेरे पास हाजिर करो। जब जादूगर आ गए तो मूसा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें फेंकना है फेंको। फिर जब उन्होंने अपने अंचर फेंक दिए तो मूसा ने कहा, ये जो कुछ तुमने फेंका है ये जादू है, अल्लाह अभी इसे बातिल किए देता है। मुफसिदों के काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता, और अल्लाह अपने फरमानों से हक को हक कर दिखाता है, खाह मुजरिमों को वो कितना ही नागवार हो। फिर देखो, मूसा को उसकी कौम में से चंद नौजवानों के सिवा किसी ने न माना। फिरौन के डर से और खुद अपनी कौम के सरबरावरदा लोगों के डर से, जिन्हें खौफ था कि फिरौन उनको आजाब में मुब्तला कर देगा, और वाकई ये है कि फिरौन जमीन में गलबा रखता था, और वो उन लोगों में से था जो किसी हद पर रुकते नहीं हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि लोगो, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस पर भरोसा करो अगर मुसलमान हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया, ऐ हमारे रब हमें जालिम लोगों के लिए फितना न बना, और अपनी रहमत से हमको काफिरों से नजात दे।

حتى إذا أدركه الغرق

अगर कभी हम इंसान को अपनी रहमत से नवाजने के बाद फिर उससे महरूम कर देते हैं तो वो मायूस होता है और नाशुक्री करने लगता है। और अगर उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम उसे नेमत का मजा चखाते हैं तो कहता है मेरे तो सारे दिल दरपार हो गए, फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। इस ऐब से पाक अगर कोई हैं तो बस वो लोग जो सब्र करने वाले और नेकोकार हैं, और वही हैं जिनके लिए दरगुजर भी है और बड़ा अज्र भी। तो ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन चीजों में से किसी चीज को बयान करने से छोड़ दो जो तुम्हारी तरफ वही की जा रही है, और इस बात पर दिल तंग हो कि वो कहेंगे इस शख्स पर कोई खजाना क्यों ना उतारा गया, या ये कि इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया। तुम तो महज खबरदार करने वाले हो, आगे हर चीज का हवालेदार अल्लाह है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने ये किताब खुद घड़ ली है? कहो अच्छा ये बात है तो इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें तुम बना लाओ, और अल्लाह के सिवा और जो जो तुम्हारे माबूद हैं उनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो, अगर तुम उन्हें माबूद समझने में सच्चे हो। अब अगर वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते तो जान लो कि ये अल्लाह के इल्म से नाजिल हुई है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। फिर क्या तुम इस अम्र हक के आगे सरे तस्लीम खम करते हो? जो लोग बस इस दुनिया की जिंदगी और इसकी खुशहालियों के तालिब होते हैं उनकी कारगुजारी का सारा फल हम यहीं उनको दे देते हैं, और इसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती, मगर आखिरत में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है। वहां मालूम हो जाएगा जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मिलिया में

0: आखिरकार उन लोगों ने कहा कि ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत कर लिया, अब तो बस वो आजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो अगर सच्चे हो। नूह ने जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि उसे रोक दो। अब अगर मैं तुम्हारी कुछ खैर खाही करना भी चाहूं तो मेरी खैर खाही तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकती, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें भटका देने का इरादा कर लिया हो। वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने ये सब कुछ खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने ये खुद घड़ा है तो मुझ पर अपने जुर्म की जिम्मेदारी है, और जो जुर्म तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूं। नूह पर वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके, बस वो ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है। उनके करतूतों पर गम खाना छोड़ो और हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनानी शुरू कर दो, और देखो जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हक में मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। नूह कश्ती बना रहा था और उसकी कौम के सरदारों में से जो कोई उसके पास से गुजरता था वो उसका मजाक उड़ाता था। उसने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं, अनकरीब तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि किस पर वो आजाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा, और किस पर वो बला टूट पड़ती है जो टाले न टलेगी। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो एफ़एम 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

بك أن نحجب

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने कराम प्रोग्राम में पर्ल्स ऑफ द कुरान में आप सबका खैर मकदम है। गुफ्तगू हो रही थी गुज़श्ता हलके में कुरान की खसूसियात के हवाले से। सामने कराम, कुरान की अहम खसूसियात में एक बात यह है कि कुरान हमें कीस देता है, यानी उसूल, बुनियादी उसूल, मीज़ान, कवायद, ऐसे मुख्तसर जुमले जो इंसान अपने घर, कारोबार, ताल्लुकात, इल्म, दावत और पूरी ज़िंदगी में साथ लेकर चल सकता है। मसलन कुरान कहता है, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, अगर तुम जमीन में मौजूद अक्सरियत की पैरवी करोगे तो वह तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका सकती है। तो ये आयत आपको एक जहनी रूल देती है कि भीड़ हक की दलील नहीं। इसका मतलब ये है कि किसी बात को सिर्फ इसलिए सही मत मानो कि बहुत लोग उसे सही कह रहे हैं। तो ये उसूल अखलाक में भी काम आएगा, फिक्री मबाहिस में भी, अपने खानदान में भी। आप सवाल कर सकते हैं कि दलील क्या है, मीज़ान क्या है। फिर कुरान कहता है कि फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अपनी इस्तताअत के मुताबिक अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। तो यहाँ पर भी एक बड़ा उसूल का जिक्र है कि कभी इंसान दीनदारी के नाम पर अपने आप से ऐसी चीज़ मांगने लगता है जो उसकी मौजूदा इस्तताअत से बाहर होती है, फिर वो टूट कर पीछे पड़ जाता है। कुरान कहता है कि जो तुम्हारे इख्तियार में है वहाँ अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करो, जो वाकई इख्तियार से बाहर है उसके बारे में अल्लाह तुम्हारी इस्तेताअत को जानता है। तो ये बात भी सही नहीं कि इस आयत में किसी सुस्ती का जवाज के हवाले से बताया गया। नहीं, आयत ये नहीं कहती कि जितना दिल चाहो उतना करो, कहती है

0: आपको सलाम कहते हैं और आपसे नसीहत चाहते हैं। तो उन्होंने फरमाया उनका सलाम कबूल करो और उनसे कहो कि कुरान को अपनी खजाइम दे दे। अरबी में खजाम उस हल्के के मफहूम में आता है जिसके जरिए ऊंट वगैरह को काबू में रखकर सिमत दी जाती थी। अब जरा इस तस्वीर को जहन में लाइए कि महार किसके हाथ में है। महार उस लकड़ी को कहते हैं जो ऊंट की नाक में डालकर उसमें रस्सी बांधी जाती है, तो यानी अरबी में इसको खिजाम कहते हैं। ये महार किसके हाथ में है? आपके नफ्स के, आपकी ख्वाहिश के, माशरे के, लोगों की राय के, या कुरान के? हाँ जी, तो अबू दर्दा रज़ी अल्लाहु अन्हु की बात का खुलासा यही बनता है कि उनसे कहो कि कुरान को अपनी खजाइम दे दे, अपनी जिंदगी की महार कुरान के सुपुर्द कर दीजिए। एक तरफ कुरान कहे वस्सुल्हु खैर, तो मेरी अना कहती है मैं क्यों झुकूं, मगर आपने कुरान के साथ ही चलना है। कुरान कहे वाशिरूहुन बिल मारूफ, हालांकि गुस्सा कुछ और कहता है, मगर आप मारूफ के साथ चलें, भलाई के साथ, नेकी के हुक्म के साथ। कुरान कहे वला तनाज़ऊ, तो नफ्स तो अपनी फितरत ही में लड़ाई चाहती है, मगर आप कुरान के सामने अपने नफ्स को रोक लें। ये है कुरान को जिंदगी की महार देना। अब कभी हमारा मसला ये होता है कि हम कुरान को महार नहीं देते हैं, हम कुरान को अपने पीछे चलाना चाहते हैं। जो आयत मेरी पसंद के मुताबिक हो, माशाल्लाह यही तो दीन है, और जो आयत मेरी ख्वाहिश को चैलेंज करे, अच्छा इस पर कभी बाद में बात कर लेंगे। एक हुक्म मेरी पर्सनालिटी के मुताबिक हो तो कबूल, दूसरा मेरी लाइफ स्टाइल को बदलने का मुतालबा करे तो दिल में मुजाहमत। कुरान इसी इंतखाबी रवैये पर सवाल उठाता है, अफतुमिनूना बिबाद अलकिताब वतकफुरूना बिबाद, क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और दूसरे को छोड़ देते हो। इस आयत का असल सियाक बनी इसराइल की एक मखसूस तर्ज अमल से मुतालिक है, और इसमें हमारे लिए एक तंबीही उसूल भी मौजूद है कि वही को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कबूल न करें। समझने के कुरान से हमारी जिंदगी में जो तब्दीली लानी है कुरान पर अमल करके या कुरान को अपनी महार सुपुर्द करके, उसका सवाल ये बनेगा कि मेरी मौजूदा सोच में क्या चीज कुरान के मुताबिक बदलने की जरूरत है, और यहीं से हकीकी तब्दीली शुरू होती है। इस कैफियत को एक आम मिसाल से समझिए। जो शख्स पहली मर्तबा तैराकी सीखता है, इंस्ट्रक्टर उसे बार बार कहता है कि जिस्म को ढीला छोड़ो, रिलैक्स, पानी के साथ गैर जरूरी कश्मकश मत करो। जितना वो घबरा कर जिस्म को अकड़ाएगा उतनी मुश्किल बढ़ेगी। ये मिसाल अपनी हदूद के साथ है, कुरान के साथ है, हमारे ताल्लुक को भी समझाती है। कुरान के सामने आने से पहले हम अपने जहन में कितनी चीजें लेकर आते हैं, खानदानी तासुबात, कबाइली और ग्रूही असबियतें, मुआशरती तसव्वुरात, अपनी ख्वाहिशात, अपने पसंदीदा मुफक्किर की बातें, सोशल मीडिया से उठाए हुए नजरियात, यानी दोस्तों के जुमले भी हो सकते हैं, और कभी इन सब को पहले हम फाइनल ट्रूथ बना लेते हैं, फिर कुरान खोल कर कहते हैं कि अब देखते हैं कुरान मेरी बात की तायद कहाँ करता है। इधर असल कुरान से हिदायत लेना नहीं, ये अपने ख्याल के लिए कुरान से दलील तलाश करनी है। कुरान के पास इस तरह आइए कि दिल कहे या अल्लाह जो मेरे अंदर गलत है उसे आपका कलाम दुरुस्त कर दे। यही वो मकाम है जहां मोमिन का एक अजीम जुमला सामने आता है, समिअना व अताना, हमने सुना और इताअत की। तो कुरान यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जब मेरे रब का हुक्म मेरे लिए साबित और वाज़ेह हो जाए तो मेरी इताअत उस शर्त पर मुअल्लक नहीं रहेगी कि पहले मेरी महदूद अक्ल उस हुक्म की हर हिकमत को मुकम्मल तौर पर समझ ले। हाँ जी, हम हिकमत तो तलाश कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, इल्म हासिल करें, अहल इल्म से समझ सकते हैं, लेकिन बंदगी का उसूल ये न बनाए कि जो मेरी अकल के मौजूदा मेयार में आ जाएगा सिर्फ वही मानूंगा, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं जानता हूँ कि मेरा इल्म महदूद है और मेरे रब का इल्म कामिल है, और यही समयाना व अताना का मिजाज है। और जब इंसान इस कैफियत से कुरान के पास आता है तो अजीब तब्दीली शुरू होती है। जो बात कल उसे रेस्ट्रिक्शन लगती थी आज प्रोटेक्शन महसूस होती है, जो हुक्म कल बोझ लगता था आज उसमें खैर दिखाई देने लगती है। तो फिर इंसान कहता है अरे मसला तो आयत का नहीं था, मसला मेरी निगाह का था। मैं कुरान के सामने खड़ा तो था मगर अपने ख्यालात को इतना मजबूत पकड़े हुए था कि कुरान को मेरे अंदर दाखिल होने की जगह ही नहीं मिल रही थी।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
0: मजीद खसूसियात के हवाले से जब गुफ्तगू हो रही है तो एक और खसूसियत का भी जिक्र कर दें जो कुरान के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये खसूसियत दरअसल इंसानी फितरत से बराह रास्त मुतालिक है, और वो ये कि कुरान मुख्त

0: मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, कल ही आसाई, ये मेरी लाठी है। अब यहाँ जवाब मुकम्मल हो सकता था, सवाल था हाथ में क्या है, जवाब लाठी बस। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम आगे कहते हैं, अतवक्कअ अलैहा वअहुशु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मआरिब उखरा, मैं उस पर टेक लगाता हूँ, उससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और उसमें मेरे और भी काम हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इजाफी तफसील क्यों है, अल्लाह ताला को तो मालूम था कि आसा क्या है। सवाल में यह भी नहीं पूछा गया था कि इस लाठी के फवायद की मुकम्मल फहरिस्त सुनाओ, फिर मूसा अलैहिस्सलाम क्यों तफसील बता रहे थे। यहाँ कुरान का ज़ौक रखने वाला कारी इस मंजर को महसूस कर सकता है कि एक बंदा अपने रब से हम कलाम हैबत भी होगी, हैरत भी, एक ऐसी कैफियत जिसका हम मुकम्मल तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह ताला एक सादा सवाल के जरिए गुफ्तगू का दरवाजा खोलता है, मूसा हाथ में क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हुए बात बढ़ाते चले जाते हैं कि ये मेरी लाठी है, उस पर टेक लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी काम है। गोया मुकालमे में उन्स पैदा हो रहा है, हैबत के साथ कुर्ब की एक कैफियत है, खौफ के साथ इत्मीनान भी। अब किस्से की ये तफसील मंजर की रूह बन जाती है और यही से एक इंसानी तरबियती नुक्ता भी हम समझ सकते हैं कि कभी आप किसी ऐसे शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं जो आपके मनसब, उम्र या अथॉरिटी की वजह से बहुत नर्वस हैं। अब अगला बंदा बैठा है, जुमले टूट रहे हैं, खौफ गालिब है, एक साहिब हिकमत इंसान क्या करता है, वो कभी फौरन असल मुश्किल सवाल पर नहीं जाता, पूछता है कि कैसे हैं, घर में सब खैरियत, पढ़ाई कैसी चल रही है। अब ये सवाल बजाते खुद शायद मीटिंग का असल मौजू ही ना हो, मगर इस सवाल का एक इंसानी मकसद है कि सामने वाले को महफूज महसूस कराना ताकि वो सुकून से बात कर सके, ताकि अथॉरिटी और इंसान के दरमियान ऐसा खौफ ना आ जाए जो गुफ्तगू ही को बंद कर दे। कुरान के इस मंजर से इंसानी मुकालमे के आदाब पर भी तदब्बुर का एक दरवाजा खुलता है। लेकिन याद रहे, अल्लाह ताला के फेल को इंसानी नफ्सियात पर कियास करके महदूद नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ इस कुरानी मंजर से एक तरबियती लतीफा या नुक्ता अख्ज कर रहे हैं। सामने कराम, यही दरअसल कुरान का कमाल का बयान है कि जहाँ इख्तिसार चाहिए वहाँ अल्फाज समंदर को कतरे में बंद कर देते हैं और जहाँ तफसील चाहिए वहाँ कुरान कतरे को खोल कर पूरा मंजर बना देता है। इसीलिए अरबी बलागत में ईजाज और इतनाब दोनों अपनी अपनी जगह हुसन रखते हैं कि असल कमाल तो मुख्तसर या तवील होने में नहीं, मकाम और तकाजे के मुताबिक होने में है। समय कराम, अब चलें इस पूरी गुफ्तगू को समेट लेते हैं। आज के इस हल्के का सवाल यह है कि कुरान इंसान को बदलने की इतनी गैर मामूली सलाहियत क्यों रखता है, और उसका जवाब भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और वो ये है कि कुरान आपके बड़े सवालों का जवाब देता है, आपकी डेफिनेशंस भी दुरुस्त करता है, आपको बताता है कि गलत फिक्र दिल और जहन में दाखिल कैसे होती है, और इसी तरह आपके हाथ में जिंदगी के जामे उसूल दे देता है। दरवाजा सबके लिए खुला है, मगर इस घर की गहराई हर शख्स के इल्म और तदब्बुर के साथ नई जिहतें दिखाती हैं। और इस तरह शायद आखिर में सबसे बड़ा सवाल कुरान के बारे में नहीं, हमारे बारे में है। कुरान में तो हिदायत है, मगर क्या मैं उसे अपनी सिमत मुतायन करने देता हूँ। कुरान में मीज़ान है, मगर क्या मैं अपने ख्यालात को उस मीज़ान पर रखता हूँ। कुरान में गहराई है, मगर क्या मैं सतह से नीचे उतरता हूँ। और सबसे बढ़कर कुरान की महार किसके हाथ में है, कुरान मेरे हाथ में है या मेरी ज़िंदगी की महार कुरान के हाथ में है। अगर कुरान सिर्फ मेरी मालूमात में रहेगा तो इल्म बढ़ सकता है, लेकिन जब कुरान मेरी तारीफें बदलने लगे, मेरी तरजीहात बदलने लगे, मेरी ख्वाहिश को रोकने लगे, मेरे दिल को नरम और मेरी अकल को रोशन करने लगे, तब कुरान मुझे बदल रहा है ये कहा जा सकता है। और यही वो मकाम है जहां मोमिन कुरान के सामने अपनी शर्तें रखना छोड़ देता है, अपनी ज़िंदगी की महार उसके सुपुर्द कर देता है और दिल से कहता है, समिअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। क्योंकि कुरान से हकीकी ताल्लुक ये नहीं कि हम सिर्फ ये पूछें कि कुरान ने मुझे क्या बताया, बल्कि कभी खामोशी से ये भी पूछें कि कुरान ने मेरे अंदर क्या बदल दिया है। प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
2: दिल से देसी। हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत

0: FM 107. Time check.
1: नहीं ये क्या ये तरीका है? टिफिन कहाँ है? टिफिन कहाँ है? रोना आंसू नहीं चाहिए मेरे को. टिफिन कहाँ है? ये टिफिन ही लाया बताइए. इसका टिफिन मैं चुरा के खाना था मेरे को. आप लाए कुछ? नहीं रोना नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरा उत्साह बड़ा खराब है. वीकेंड ऊपर से हाँ मैं साफ बता रहा हूँ. मैं हैप्पी वीकेंड कह दूंगा जोर से कान में.

हाँ जी 6:02, अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर, आपका एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। और मैं भाई क्यों नू कहन लग रहा हूँ, सबसे पहले तो भाई हैप्पी वीकेंड। ठीक है, हमारे भाई दिल के भीतर में बहुत सारी बातें चल रही हैं जोर से। आप बताओ क्या हाल है। सबसे पहले तो व्हाट्सएप 666-2107-666-2107। आज ऐसा भारी भरकम नाश्ता होकर के ना, एकदम भारी बेहोशी की नींद चाहिए भाई, ऐसी क्या दुनिया बुला दी जाए ऐसा हो गया, मतलब ओहो हो क्या बताऊं मैं। पर आपका मैसेज बड़ा जरूरी है दिन की शुरुआत में, 666-2107 नंबर है। कुछ मैसेज हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये हमारे जो हैं दिशान भाई इतने लिख के चले जाते हैं, हमें कहते हैं चलो इतना हो गया, सलाम कर दिया बॉय। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम जब्बार भाई, बनी हुई जब्बार भाई मैसेज करके चले जाएंगे अभी। तौफीक साहब वालेकुम अस्सलाम अलबकरा से, गुड मॉर्निंग, ये भी चले जाएंगे। अच्छा मोहसिन भाई आ चुके हैं, रूल नंबर 2 प्रेजेंट, हैप्पी वीकेंड, छुट्टी आ गई जी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई भाई, छुट्टी आ गई। पूरे हफ्ते कहानियाँ ढूंढ ढूंढ के भाई साहब मैं आप बता नहीं सकता आपको, इतनी पढ़ाई चल रही है, इतनी बच्चों की पढ़ाई चल रही होती है ना एग्जाम के करीब, मेरा ये समझ लो डेली का एग्जाम है भाई। अच्छा कहानी से आता है कि आज मेरे पास जो कहानी है, मैं पहले ही बोल दूं, ये आज की कहानी बड़ी ज़रूरी है तमाम ख़वातीन के लिए। तो ये जितने भी ऑल द फीमेल्स आउट देयर, जितनी भी फीमेल्स हैं हमारी बहनें हैं जो सुनेंगी आज उनके लिए बहुत ज़रूरी कहानी है, तो वो तो ज़रूर ज़रूर ट्यून इन करें, बाकी तो भाई भी सुनी लेंगे, एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट, लेकिन उनके लिए बड़ी ख़ास है कहानी, तो वो तो ज़रूर ज़रूर आए। 666-2107 नंबर है, आपको तो बताइए शुरुआत कैसे होगी। और आज वीकेंड की टैगलाइंस ज़रा हम डिस्कस करने वाले हैं, होता ना कि हर प्रोडक्ट की एक टैगलाइन होती है, आज आपकी टैगलाइन क्या है भाई ये ज़रा बताओ। जैसे हमारी टैगलाइन है दिल से देसी, वैसी आपकी आज की टैगलाइन क्या है, क्या है आपके दिल में, क्या चल रहा है आज। 666-2107 नंबर है। 6:04 ऑलरेडी हो चुके हैं, 10 मिनट 33 सेकंड के बाद होगी मुलाकात तलाबाई की आवाज़ में सुबह।

और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

0: और जीने दो, एग्जैक्टली व्हाट आई एम थिंकिंग. ये बहुत सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जी और जीने दो, पर जीने को नहीं देते भाई. दिलशाद भाई कह रहे हैं सुबह की शुरुआत चाय के साथ. एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग भाई. शारिक भाई, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं भाई? दुनिया चांद पे पहुंची और हम काम पे, तुम ऑन हम कौन, तुम ऑन हम कौन. आसिफ भाई क्या, और आसिफ भाई के पता, मैं ये एक और चीज बताऊँ, आसिफ भाई के मैसेजेस जो है मेरे साथ अलग हैं, बाकी शो में देखो. आप बहुत अच्छे होंगे तो बताइए आपका क्या सवाल है. अभी रेडियो ऑन किया मैंने, इनके फजील भाई को मैसेज पढ़े, ओहो इतने प्यारे आप आ, इतने, और मेरे साथ मैसेज क्या इनका, क्या शॉर्ट है पब्लिक. आई लाइक इट भाई, आई लाइक इट. ये तो चेंज है ना भाई, ये तो चेंज है, ये यही चाहिए मुझे, खुल के बात होनी चाहिए. और रासलफान से इन्होंने रोड का तस्वीर भेजी है मुझे नासिर भाई ने, एंड दुकान से सलाम वालेकुम अस्सलाम, ये भी दूर दराज से मैसेज कर रहे हैं. और एक मैसेज आया है अनवर भाई का, अनवर भाई घूम फिर के आए हैं, आई एम कमिंग बैक कतर, हाउ आर यू सर. मैं जी बढ़िया. ये पीछे पहाड़ी कौन सी जगह की है भाई, इंडिया को नहीं इलाके भाई, कौन सी जगह है? हैंडसम लग रहा हो भाई अनवर भाई, ये मेरा भाई एकदम पॉलिश वॉलिश हो गया भाई. एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आज मैं वही करने वाला हूँ आपके साथ हैं. एक्सक्यूज मी, व्हाट यू से, आई डोंट गेट. तो मैं कह रहा था आपकी टैगलाइन क्या है आज की. देखो हर दिन की ना एक टैगलाइन, एक तकिया कलाम होता है, जैसा दिन है वैसे ही आपको अपने आप को ढालना पड़ता है और आपके जहन में एक लाइन आती है. मैं भी सोच रहा हूँ अपने लिए, आई डोंट नो हाउ टू जस्ट से दिस. एक मैसेज है आसिफ भाई का SMS, तो इरफान भाई का नंबर वाली बात हो गई. मैं पता मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक सही बात बताता हूँ आसिफ भाई. मैं जो हूँ ना, लोगों के बाकी शोज में मैसेजेस पढ़ता हूँ, ऐसे अलग किरदार वाले होते हैं ना, फिर मैं अपने शो में देखता हूँ कैसे मैसेज आए और मुझे बड़ा मजा आता है कि एकदम खुल गई. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू एवरी डे. अम्मा हियर्स द लाइन, अम्मा स्कूल नहीं जाना बट शी नेवर लिसन्स. देखो अलीना बच्चे, मैं इसमें आपका साथ नहीं दे पाऊंगा. अलीना कह रही है मेरी डेली एक ही टैगलाइन होती है कि अम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, बट अम्मा नहीं सुनती. मैं ये अम्मा के लिए, मतलब हमारी सिद्रा बहन के लिए, यहाँ मैं आपके साथ हूँ बहना, ये बहुत बढ़िया है, मैं आपके साथ हूँ इसमें, टेंशन को नहीं. एक मैसेज, आज की पार्टी मेरी तरफ से, ये है आज की पार्टी मेरी. अच्छा वो हो, किधर पार्टी दे रहे हो भाई यासिर भाई, किधर? ये अनवर भाई ने जो फोटो भेजा भाई, नैनीताल का फोटो है यार, बढ़िया लग रहा है नैनीताल तो, साफ सुथरा, माशाल्लाह माशाल्लाह. आज भाई कह रहे हैं भाई, ये भी इरफान भाई का नंबर वाली बात हुई है गब्बू ब्रो, औरों के शो का SMS पढ़ना, ये तो देखो मैं करता हूँ, इतना तो मेरा बनता है भाई, है मैं गॉसिप तो कहीं से लेके आऊं. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, टैगलाइन है खाक हो जा बत्ती बुझा सो जा, ये मेरी भी टैगलाइन हो सकती है फॉर द वीकेंड, खाक हो जा बत्ती बुझा सो जा. मैं वैसे भी फर्नीचर की तरफ पड़ा रहूंगा एक कोने में, नोबडी विल कॉल मी, आई विल कॉल नोबडी, सो मेरा यही वीकेंड है भाई. एक मैसेज है, सांस लो चाय पियो. ये चाय कब आपने रखा, किधर है भाई? ये किसी फ्लोर पर रखा है, किधर रखा है, ये कौन सा पैड है समीर भाई? Where have you kept the cup? I really want to know. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आपको सुनता हूँ तो बहुत ज़्यादा दिन से, एक सेकंड मैंने गलत पढ़ लिया. अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको सुनता तो बहुत दिन से हूँ पर देखा नहीं था, कल गूगल पे सर्च करके देखा कबीर भाई को, भाई मेरे आवाज़ इतनी खतरनाक, सोचा नहीं था, गजब मेरे भाई, सुपर माइंड ब्लोइंग भाई. एक मुश्किल है मेरे लिए, कहानी हमेशा अधूरी सुनने के लिए मिलती है, इसलिए आप कहानी भेज दिया करो. कहीं मजबूरी ये है कि बच्चों को स्कूल छोड़ते टाइम मैडम भी साथ होती हैं, इसलिए रेडियो बंद करना पड़ता है. टैगलाइन बताइए उन्हें अपनी, जहां मेरा भाई खड़ा लाइन वहीं से शुरू होगी. मेरा भाई फिरोज भाई, फिरोज भाई, गैंग बनाएंगे हम फिरोजी. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वीकेंड बिलाल भाई, हैप्पी वीकेंड. और एक फोटो आया है मेरे पास फैजान भाई का. अरे अरे फैजान भाई, आज माशाल्लाह काफी फ्रेश लग रहे हैं फैजान भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह. और लिखा है इन्होंने, अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम सलाम, मेरी आज की टैगलाइन है, सुबह अच्छी अच्छी तो आज पक गई मच्छी. आई लाइक इट, यू डिजर्व इट ब्रो. मेरा भाई कह रहे हैं सुबह अच्छी तो आज पक गई मच्छी. अच्छा भाई, अच्छा है, अच्छी लाइन थी. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, वीकेंड मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, मिजाज भी ठंडा रहे तो क्या बात है, मिजाज तो नहीं रहेगा मुझे तो. ख्वाजा साहब आपको तो पता ही है, मुझसे कोई ना कोई लड़ने आ ही जाता है, तो मैं थोड़ा सा डरा डरा सा रहता हूँ उनके लिए. एक मैसेज है, दिल बनने वाले कॉफ़ी पे, गुड मॉर्निंग. ये असली कब भेजा है कि आपने स्टॉक फोटो निकाल के भेजी है? हैप्पी वीकेंड इज कमिंग, कबीर ब्रो इज ऑन गेमिंग. ये तो मेरी टैगलाइन होनी चाहिए भाई. और मेरे हक बनता है कहाँ से भाई, बहुत प्यार भाई को क्या, और कह रहे हैं गाड़ी में, अच्छा वो गाड़ी का फ्लोर लग रहा है मुझे तो समी भाई, कन्फ्यूजन हो गई, मैंने कहा कप किधर रखा भाई ने, एक मैसेज है कबीर भाई एक कप कॉफ़ी पियो और पूरा दिन जिंदगी जियो, अच्छी टैग लाइन है, मगर नासिर भाई मैं चाय वाला हूँ भाई, एक मैसेज है आज की टैग लाइन है सैलरी नहीं मिली अभी तक। उमर शहजाद भाई ने जो है टैग लाइन में मेहनत नहीं करी, वो कह रहे हैं साफ सीधी बात है पहले मुझे पैसे दो उसके बाद मैं कुछ कहूंगा। कह रहे सैलरी क्या होगा भाई, सैलरी तारीख क्या है आपकी सैलरी की, ये पूछ रहा हूं मैं। सुम्बुल बहन कह रही है टैग लाइन है सुनते रहो सुनाते रहो, ये तो आप पे लागू होता है, आप सुनती नहीं है आप सुनाती रहती है, अभी मुझे डर लग रहा है अभी कॉल करेंगे सुम्बुल बहन, क्या बोला रे क्या बोला रे, डर नहीं लगता तेरे को। एक मैसेज है 100% जेन्युइन, क्या 100%, ओ भाई साहब ये कौन सी जगह है जहाँ पे एकदम प्रॉपर दिल बना के दिया आपको कॉफ़ी पे भाई, बहुत मैंने जो कॉफ़ी पे दिल बनाते हैं ना इतना अच्छा नहीं बना पाते लोग, कुछ ही ऐसी यहाँ पे रेस्टोरेंट जो बहुत बढ़िया बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनाया भाई जिसने बनाया, मज़ा आ गया देखिए, प्रॉपर दिल है और ये पान वाला दिल लग रहा है बिल्कुल पान वाले शेप में। अच्छा मैं कह रहा था आपकी टैग लाइन क्या है आज सुबह की, ये आप बताएं। एक मैसेज है मियाँ की लाइन आज सुबह से चल रही है सरारा पी दी दी दी। ये मेरे भेजे में भी डाउनलोड कर दिया सदरा बहन। एक मैसेज है तबसुम बहन का लिखती है हफ्ते भर का है हैंगओवर सो जाओ क्या मतलब कौन किधर, अरे क्या बात है बहन यू डिजर्व इट, मैं भी नहीं सोचने वाला इस वीकेंड कौन किधर कहां, डजेंट मैटर, नो ग्रामर नो एग्जेक्टिव नथिंग ओनली इंजॉयमेंट, टैगलाइन बनी नहीं पर आप समझ गई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक मैसेज है ये क्या है रेसलर फन लाइफ, रेसलर फन लाइफ भाजी ये रेसलर दी कॉस्ट्यूम तो नहीं हैगी, ये आपकी ये जो आपने पहन रखा है ऐसा क्या काम करते हैं अगर आप बताना चाहें तो, मतलब मैं जानना चाहूँगा। एक मैसेज आ रहा है मेरे पास है ये राज भी खुल गया, कह रहे मैंने आपकी YouTube अच्छा कह रहे आपकी मैंने एक वीडियो देखी आप उसमें मधुमक्खी के छत्ते के साथ खेल रहे थे, भाई मैं खेल ओहो मैं खेल नहीं रहा था मैं मधुमक्खी के छत्ते के साथ क्यों खेलूंगा मेरे भाई, वो मैं एक वीडियो बनाने गया था वो भी कितने साल हो गए 6-7 साल हो गए भाई, वो एक यहाँ पे कतर में जगह है जहाँ पे वो लोग वो शहद वहद निकालते हैं ना बिल्कुल, तो वहाँ पे मैं वीडियो बनाने गया था और मैं बताना चाहूँगा आपको उनके पास ग्लव्स नहीं थे, उन्होंने मुझे पूरी ऊपर से नीचे तक कॉस्ट्यूम बना दी थी और बोले भाई ये आस्तीनों को आगे की तरफ खींच के अपने हाथों को अंदर रख लो, और उसमें हुआ ये कि मेरे हाथ में माइक था और हुआ ये कि एक मधुमक्खी जो थी वो मेरे हाथ में कैद हो गई, अच्छा मुझे पता नहीं लगा पहले तो ज़रा सी वो हो रही थी टिंगलिंग सी हो रही थी, फिर जब मैंने उस सूट को आगे जाके उतारा उसने जो डंक मारा भाई मैं छत पकड़ लेता लेकिन छत थी नहीं उस टाइम पर, लेकिन मैं कूदा बहुत बुरी तरह था, तो आपने जो वीडियो देखा है थैंक यू सो मच, इतना पुराना वीडियो क्यों देखा मेरा तो मेरे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे कर रहे थे ये क्या बात थी। तो बस मैंने मैसेज किया कबीर भाई वो बताइए फिर से सुम्बुल बहन ने जो बनाया क्या रे डर नहीं लगता तेरे को वही मैं कह रहा हूँ ना आज सुम्बुल बहन जो है ना वो जो टैगलाइंस दे रही हैं पर वो उन पर फिट नहीं हो रही, वो बना तो रही हैं बहुत डेंजर, वो क्या रही डर नहीं लगता तेरे को, करूँ अभी कॉल है मिलाऊँ एक मैसेज है मुबीन भाई वालेकुम अस्सलाम फवेरे आ गई कॉल, देखो मैंने बोला था देखा मैंने बोला था अस्सलाम वालेकुम मैंने तो बोला था भाई यहाँ पे डर का माहौल है सुम्बुल भाई डर का माहौल है
1: क्यों मैंने ऐसा क्या करा है
0: खौफ है आपका भाई ऐसी कैसी बात कर दी आपने
1: जबरदस्ती आपने मुझे जो है वो डेविल बना दिया
0: किसी बात के तो पैसे है तो सुम्बुल भाई कौन सी टैगलाइन है आपकी आज ये कौन सी वाले चूज करेंगे आप
1: मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है चूज कर लो
0: देखिए आपने दो भेजी है मुझे दूर रहो आपने दो भेजी है मुझे दूर रहो खुश रहो दूसरी भेजी सुनते रहो सुनाते रहो दोनों ही यहाँ पे लागू नहीं होती
1: तो आप लागू कर दो कोई आप मुझे दे दो टैगलाइन
0: ये मुझे सोचना पड़ेगा पर ये दूर रहो खुश रहो इज अ नाइस टैगलाइन ये अच्छी है फॉर अ वीकेंड अच्छी टैगलाइन है
1: हाँ इसके लिए ही मैंने बोला था
0: वेरी गुड तो आज क्या प्लान है आपका वीकेंड का मतलब आज तो नहीं कल क्या प्लान है आपका
1: प्लान नहीं बनाती मैं पहले से सारे प्लान कैंसिल हो जाते
0: ऑन द स्पॉट ये कौन कर रहा है कैंसिल
1: चलो
0: बस वो मासूम आदमी उठ के चल देता होगा, उनकी तो कोई गलती नहीं होगी, मैं समझ सकता हूँ।
1: ये जो टैगलाइन आप मासूम,
0: हाँ
1: आपने जो मर्दों के आगे लगाया ना, प्लीज रिमूव इट।
0: क्यों?
1: अच्छा नहीं लगता।
0: वी आर वेरी सिंपल स्पीशीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। इन अ वेरी सिंपल साइंटिफिक टर्म, वी आर वेरी सिंपल, लो मेंटेनेंस पीपल। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ और क्या, हाय क्या? अरे ये तो सच है,
1: मतलब आप जो है ना जानबूझ के मुझे पिंच करते हो ताकि मैं कुछ बोलूं और आपको मिर्च मसाला मिले।
0: अरे मैं कोई, ये तो फैक्ट बता रहा हूँ मैं।
1: हाँ
0: हाँ क्या,
1: ये मासूम मासूम प्लीज ना हटा दो मर्द हजरातों का।
0: चलिए मासूम हटा
1: दो वाले
0: आए, एक्सक्यूज मी, मैं वो हटा देता हूँ, मासूम हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। लो मेंटेनेंस तो है तो मानेंगी।
1: प्लान
0: बताऊँ,
1: आप मेरी बात
0: सुने, अच्छा अच्छा सुनाओ।
1: वीकेंड के प्लान मर्द हजरातों के क्या थे भाई? वो कद्दू बन जाते हैं,
0: कद्दू बन जाते,
1: कद्दू बन जाते प्लीज।
0: प्लीज इलेबोरेट टीचर जी, कद्दू से आपका क्या मतलब है?
1: इसका मतलब ये इनके मुंह।
0: हाँ हाँ आ रहा है, आ रहा आ रहा, शाबाश शाबाश, शाहिद भाई आएगा आएगा आएगा, शाबाश। आगे क्या?
1: इनके मुंह फूल जाते हैं और इनको खाने के लिए चाहिए, खाने खा के फूल के और पड़ जाते हैं सोफों पे।
0: कितनी सिंपल सी बात है, सोचिए कितनी सिंपल, कितनी आसान सी बात है। हाँ और क्या,
1: वेरी गुड। इन तभी इनके सामने मासूम नहीं होना चाहिए, इनके सामने होना चाहिए कद्दू मर्द हजरात
0: बेचारे। देखो हमको सिर्फ खाना ही तो चाहिए, क्या मतलब क्या मांग रहा है आदमी ये बताइए।
1: जिंदगी में सिर्फ खाने के लिए ही तो आए, और खाने के लिए,
0: और क्या, जीवन में टेंशन लेने का नहीं, खाने पीने का, सोने का, मौज करने का, पड़ जाने का, यही है फलसफा है।
1: हैं?
0: अरे
1: फिर?
0: अरे वो इसका खाने से क्या ताल्लुक है यार?
1: इसका खाने तो फिर क्यों अपनी जिंदगी में लेकर आते हो प्रॉब्लम्स को खुद?
0: ये गलत सीआईडी का एपिसोड लगा लिया है मैंने, सॉल्व नहीं हो रहा है केस। एसीपी प्रद्युमन मुझे बताइए दोनों बातों का क्या ताल्लुक है? अरे भाई
1: मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको खाना पीना सोना होता है
0: हाँ?
1: तो आप बैठना भी अच्छे हो प्लीज।
0: पर एक दिन तो आदमी मतलब रह सकता। आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं, चलो अपनी डिमांड बता दो, आप क्या चाहती हैं?
1: मैं यही चाहती हूँ जब इंसान 5 दिन काम करता है तो हफ्ते के 2 दिन अपनी बीवी की बातें भी सुनना चाहिए।
0: तो सुनते ही है ना, उसमें क्या है, वो तो सुनते ही होंगे, ऐसी बात थोड़ी है, गॉसिप तो आप बहुत देती होंगी, आई एम प्रीटी श्योर।
1: प्लीज आप मासूम ना होने लगा, बहुत बुरा लगा मुझे।
0: अरे तो अच्छा सही सही बताना, मतलब भाई साहब गॉसिप सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आप लोगों को आदत हो चुकी है ना गॉसिप सुनने की, सुनाती हैं आप गॉसिप, देती हैं स्कूल की?
1: बहुत है ना, हमारा भी बिल्कुल जरूर,
0: मजे से सुनते होंगे नहीं?
1: मजे से, और उनके ऑफिस की गॉसिप मैं सुनती हूं।
0: आप तो सलाह भी देते
1: हैं। और यकीन जानो इसका कंक्लूड क्या निकला है?
0: क्या निकला है?
1: कि मर्द हजरात ज्यादा इंटरेस्टेड है गॉसिप सुनने में।
0: हाँ मैं तो खुद कह रहा हूँ, क्या गलत है इसमें? अरे
1: अरे तो आप किसी खानदानी आपाओं से कम नहीं है?
0: अरे तो क्या हो गया, थोड़ी सी गॉसिप तो चाहिए जिंदगी में, मसाला तो चाहिए ना भाई, क्यों हम रूखी सूखी रोटी खाएं भाई, हमें भी चाहिए मसाला। लेटेस्ट मेरे को कुछ बताओ, मजा आ जाए, मतलब क्या है गॉसिप? अरे
1: अभी नहीं,
0: अच्छा ठीक है, मेरे को बताना कुछ गॉसिप देना है, संडे को मैं इंतजार करूंगा आपकी गॉसिप का।
1: कसम से आप किसी कबीरा नापा से कम नहीं हो।
0: कबीरा नापा ये ज़्यादा ये सही है, नहीं मैं सच बता रहा हूँ, गॉसिप तो देखो चाहिए होती है हर किसी को, रिगार्डलेस ऑफ मेल फीमेल, लेकिन एक चीज जो है, जो आज की कहानी है वो फीमेल्स के लिए, वो जरूर सुनिएगा, आप नहीं सुन पाएंगे कोई गाल नहीं, मैं भेज दूंगा जी, है ना
1: जी,
0: तो सुनिएगा जरूर।
1: हाँ जी देखिएगा,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और ये जो आपने बोला था ना स्टार्टिंग में, तेरे को डर नहीं लगता रे अभी कॉल करूं? ये आपके मुझे सुनने में मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा
0: है ना, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चलो आज ये तारीफ मिल गई ना, हो गया मेरा काम, सेट हो गया जी काम, थैंक यू। देखा कितने इजी होते हैं हमें कुछ करना, कोई बड़ी बात थोड़ी, थोड़ी सी तारीफ मामला सेट, देख रही हैं और क्या,
1: वीकेंड पे बस मिल जाए
0: और क्या, जिंदगी सेट है।
1: देखो एक्सेप्ट किया आपने कि हां बिरयानी बिठा लूं,
0: क्या क्या एक्सेप्ट किया,
1: आपने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला.
0: हाँ तो मैंने किसी ने भी नहीं सुना, बताइए क्या बोला आपने.
1: मैंने बोला आप खुश करने के लिए आलू वाली बिरयानी में मिल जाए तो भी आप खुश हो जाते हो.
0: जी नहीं. ठीक है. लो मेंटेनेंस का मतलब ये, देखिए स्कूल, देखो लो मेंटेनेंस गाड़ी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप उसमें तेल की जगह पानी डाल दें. प्लीज कॉल ही कट गई उनकी, बताइए. तो एक और कॉल आ रही है, उछाल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
2: अच्छा हो.
0: अच्छे हो. आज तो मतलब बहुत खुश हो गए क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड आ गया है. क्या प्लान है वीकेंड के?
2: वीकेंड का नहीं

0: बोला था
1: क्या
0: स्पेशल के बारे में?
1: किसके बारे में?
0: स्पेशल के बारे में जो
1: हाँ हाँ
0: स्पेशल क्या है?
1: स्पेशल क्या है
0: बोल
1: तुम बताओ क्या स्पेशल है?
0: स्पेशल है कि खेलने का पीरियड है आज।
1: अरे आज खेलने का पीरियड है, क्या बात है तुम्हारे लिए, आज ये बजेगा ये। तो क्या खेलना पसंद करते हो? क्या खेलना, क्या खेलते हो स्कूल में? क्या खेलना पसंद करते हो?
0: स्टेम भी है, बनाने का वो, क्राफ्टिंग वो है काफी।
1: अच्छा?
0: मैं फुटबॉल खेलता हूँ।
1: अरे फुटबॉल खेलते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी कोई खेल, क्रिकेट वगैरह कुछ?
0: क्रिकेट तो स्कूल में नहीं है, बास्केटबॉल तो मेरे को नहीं पसंद क्योंकि
1: अच्छा
0: मेरी हाइट हाइट तो बड़ी है, लेकिन मैं वो डाल नहीं सकता बास्केट के अंदर।
1: क्यों नहीं डाल सकते बास्केट में? क्या प्रॉब्लम, क्या है? हाइट वाइट है तो प्रॉब्लम क्या है?
0: हाइट है थोड़ी और बढ़नी चाहिए हाइट।
1: तो बनेगी, खेलो, थोड़ा खिंच जाओगे हो सकता है। नहीं पर ठीक है, आज गेम्स पीरियड मुबारक हो। मुझे पता नहीं बाकी स्कूलों में आज है कि नहीं, तुम्हारे स्कूल में। चलो मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टॉपिक ये है बेटा, टैगलाइन बतानी है आज की। आज आपकी टैगलाइन क्या, जैसे हमारी रेडियो की टैगलाइन है दिल से देसी, तो आपकी आज की टैगलाइन, आपका मूड कैसा है ये है, तो आप मुझे लगता नहीं इसमें। हाँ बेटा, तुम्हारी कॉल उठाना मुझे बंद करनी पड़ेगी, ये मैं समझ गया। आज तुमने मुझे एक सबक दे दिया कि गलती मेरी है। ठीक है चलो, इससे आगे मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज तुमने जो है सेट ये कर दिया कि आप मेरे ही कंपनी वाले बोलेंगे, इसकी कॉल मत उठाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
0: और आपको भी कॉपी कर सकता हूँ मैं तो।
2: कौन सा है?
1: नहीं नहीं, मुझे कॉपी मत करो, मुझ पे मेहरबानी करो, मुझ पे मेहरबानी करो। इनकी कॉल जो है आने पड़ी, एक और कॉल आ रही है, पर वो कॉल मैं उठाऊंगा नहीं। एक मैसेज आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खेल तो गया बच्चा, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, इसके खेलने की वजह से इसी ने मतलब वो कर लिया, अपने लिए मुसीबत पैदा कर ली। मेरे पास तुरंत माइक्रो सेकंड में मैसेज आ गया है कि आप बच्चा नहीं खेल पाएगा आगे। तो मेरा तो कुछ नहीं गया भाई, नहीं का गया। एक मैसेज है, प्रिंसिपल स्कूल से निकाल देंगे टीचर, स्कूल जाओ। आगे लिखते हैं, हटा सावन की घटा, वी आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग गॉसिप, है ना, एंड यस वी डू पॉलिटिक्स। इरफान भाई, मैं पॉलिटिक्स थोड़ी मेरे से कमी हो पाती है, लेकिन ये गॉसिप सुनने में तो मैं इंटरेस्टेड लेता हूँ। हाँ ये एक्चुअली में, हाँ ये बच्चे ने अपनी ही बात लगवा ली, बताइए। अच्छा खासा मैं इसकी अच्छी वाली कॉल उठा लेता था डेली, पर लाडले की अब कॉल नहीं उठा पाऊंगा। मेरी सेटिंग नहीं कर दी इन्होंने, अपनी सेटिंग खराब कर दी मेरी जान। मेरी सेटिंग तो ठीक है, ये इसकी सेटिंग खराब हो गई। अरे देखे, ज़्यादा समझदार भी नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो जाती है। ये आज आपको सबक मिला है। तो डेढ़ चाल या ढाई चाल चेस में अच्छी लगती है, ढाई कदम असल जिंदगी में नहीं चलना चाहिए, कभी कभार घोड़े की नाल जो है ना वो टूट भी जाती है, जैसे आज आपने देखी। तो साथियों, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अच्छा क्या मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, चाय पियो मस्त रहो। बिल्कुल भाई, एक मैसेज है, शमाल रोड से वीडियो भेजा इन्होंने। भाई ये इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, ये आपने मतलब ये AI वाई तो नहीं उसकी, अच्छा मौसम है। एक मैसेज है भाई, कतर में कौवा होता है, यस्टरडे मॉर्निंग की वीडियो है। कतर में कौवा होता है, ये डिस्कवरी है? ये मुझे नहीं पता। एक मैसेज है और टैगलाइन भेजिए भाई। आप भाई ने कह रहे हैं, चिल इट, स्लो डाउन, रिलैक्स, बी फिट, कीप फिट। ये मुझे खाजा भाई ने भेजिए। खाजा भाई क्या आप मतलब रनिंग वनिंग करते हैं क्या, ऐसा कुछ है आपके साथ सीन? तबसुम बहन लिखती हैं, उनको बताइए वो हमारी बहन संगठन की CEO हैं। बहन संगठन एग्जैक्टली पड़े रहते हैं सोफों पर कद्दू की तरह। अच्छा आपके साथ भी सीन है, मतलब बहन हमारी साइड कोई लेगा ही नहीं क्या, मैं जो आपसे तो उम्मीदें थी। एक मैसेज है भाई, हर लैंग्वेज तो आप बोलते हो, थोड़ा भोजपुरी में भी बोल दिया करो। जिंदगी, हाँ मैं वो बोल नहीं सकता हूँ, समझ रहे हैं, थोड़े आसान वाला बताइए तो बोल दूँ। ये बहन को क्या दुश्मनी है भाई, इनको क्या तकलीफ है भाई, ये वैसा वाला था। हमेशा हम लोगों का रेल बनाती हैं, टीचर कम क्या है, फाइटर का टैग देना पड़ेगा। सुमूल बहन से पंगा लें, पंगा नहीं भाई, वसीब भाई ने, मैं वसीब भाई मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, आप जानते ही हैं। अच्छा एक और मैसेज है, बच्चों को ड्रॉप कर लूँ देन कॉल यू, धमकी दे रहे हैं मेरे को। मुझे ऐसा लगा मैसेज में इनका, सलाम, बच्चों को ड्रॉप कर लूँ देन कॉल यू। ठीक है मालिक, इंतज़ार करूँगा मैं आपका, कीवाड़ खुला रहेगा। ठीक है, सुहेल भाई ने मैसेज किया, कबीर भाई इट्स नियर इंजीनियर सुहेल।

0: लाइन मैसेज क्या है, फॉगी हो रहा है वेदर. अच्छा ओके, हाउ आर यू कबीर भाई, मैं आती बड़ा चंगा. अजहर हुसैनी साहब, और एक मैसेज आया है इरफान भाई, क्या कह रहे हैं, उसका डैडी खूब क्लास ले रहा होगा, हम तो हंस हंस के पागल हो रहे हैं. पर इरफान भाई देखो, बच्चे ने दृढ़ शानी करके ना यार अपने लिए खराबी कर ली. अब मैं चाह कर भी इसकी कॉल नहीं उठा पाऊंगा, ये प्रॉब्लम है. जहरा जी ने मैसेज किया है, मैं लिखती हैं दिल साफ रखो, बाकी तो मिल ही जाएगा, बाकी सब इंटरनेट पे मिल जाएगा. मैं वो ब्रांड नहीं बोल सकता, लेकिन अच्छी टैगलाइन है. आई गिव यू दैट, दिल साफ रखो, बाकी तो इंटरनेट पे सब मिल ही जाएगा. आई एम ऑन इट. एक कॉल और आ रही है, उठा लेते हैं, एक सेकेंड भाई. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई.
0: प्रिंस भाई कैसे हैं, सवेरे सवेरे हमको याद किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार भाई को.
1: बहुत ही बढ़िया भाई
0: जी. भाई
1: किसी का पता कटता है तो मुझे बहुत बुरा अच्छा लगता है.
0: बहुत बुरा अच्छा लगता है. देखो यार मैं क्या कर सकता हूँ, आप समझ रहे ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं मुझे भी फॉलो करनी पड़ जाती
1: भाई,
0: है क्या
1: ये एक्चुअल समझना चाहिए.
0: अब मैं क्या करूँ,
1: जिन्होंने बात करवाई और जो खैर वो तो बच्चा है क्या ही.
0: हाँ, भाई, भाई, भाई.
1: जिन्होंने बात करवाई उनको समझना चाहिए.
0: हाँ, तो अब मैं क्या करूँ, मेरे शो से जो है वो एक बालिश कम हो गए.
1: इवन हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेते, कभी गलती से निकल जाता है, दैट थिंग इज डिफरेंट, बट कॉम्पिटिटर नॉट गुड.
0: हाँ वही ना. वही वही वही.
1: हाँ वही, समझ सकता हूँ.
0: आप प्रिंस भाई, आपकी कोई टैगलाइन है आज, आपका मूड कैसा है, उसके हिसाब से कोई टैगलाइन चल रही है आपके जहन में?
1: मेरा मूड तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है. और मेरी टैगलाइन बिल्कुल एकदम सिंपल सी टैगलाइन है भाई, क्या ही मेरी टैगलाइन होगी,
0: फिर भी
1: अचीव योर गोल, लिव लाइफ किंग साइज.
0: वो तो आप जीवी रहे माशाल्लाह. तो आज आपको भी सर्दी वाला मौसम लग रहा है, गाड़ी के अंदर बैठ के ऐसा लग नहीं रहा आपको आके, आज दिसंबर दिसंबर शुरू हो गया सुबह सुबह?
1: नहीं भाई.
0: अरे यार बिल्कुल नकार दिया आपने, जरा सा दिल रखने के लिए कह देते यार. कहे नहीं, बिल्कुल नहीं
1: लग रहा है, लेकिन नहीं है भाई,
0: लग रहा है लेकिन नहीं है. और आज आज इरफान या आज प्रिंस भाई कैसे, आज सुबह सुबह आज आपने कॉल करी, आज मुझे लग रहा है आज थोड़ा दिमाग फ्री है, आज क्या प्लान है वीकेंड का आपका?
1: भाई यूजुअली मैंने जो भी काम थे सारे रात में ही कंप्लीट कर लिए थे,
0: इसीलिए
1: सुबह में मुझे ये टेंशन नहीं थी क्या करना है, सिर्फ मुझे थोड़े से पेपर से जो सबमिट करने हैं,
0: बाकी सेट चल रहा है,
1: सब ठीक ठाक ही है.
0: चलो,
1: तो रास्ते में जाते वक्त रेडियो सुनते सुनते मुझे ये लगा हुआ रहता था कि अब जाके ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है.
0: कितने मिनटों का सफर होता है आपका, इफ यू डोंट माइंड मी टेलिंग, ऑफिस से निकल के, मतलब घर से निकल के?
1: अगर ट्रैफिक ना मिले तो 15 मिनट का.
0: ओके फेयर एंड.
1: और मिल जाए तो पता नहीं, कभी 30 मिनट भी हो जाता है, कभी उससे ज्यादा भी हो जाता है.
0: देखिए अगर मैं तो चाहूंगा कि आप ट्रैफिक में फंसे ताकि सुन पाए, तो मेरा तो अलग ही लालच है. बट आई गेट द पॉइंट. 15-20 मिनट तो अच्छा है.
1: बिल्कुल
0: वेरी नाइस. ओके
1: भाई, सबसे पहले तो हम 107 के शुक्रगुजार हैं
0: जी
1: कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म आपके जरिए से हमें दिया है कि बंदा अपने दिल की बात कह सके और लगे कि हाँ हम लोग ऐसे कहीं फैमिली टाइप कहीं बैठे हुए हैं फैमिली मीट में.
0: जी भाई
1: टोटली ऑसम.
0: थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच. मैं बस यही हमारी कोशिश भी
1: रही है, किसी और के पास में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है.
0: हाँ एग्जैक्टली
1: होता है, सबका अपना अपना होता है, अपने तरीके का होता है, लेकिन व्हेन देयर इज अ फील काइंड ऑफ फैमिली, दिस इज द ओनली वन.
0: भाई मैं आपकी बात पे एक और बात जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बात छेड़ी दी है. इनफैक्ट मैं लोगों से ये कहता हूँ कि भाई बाकी आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे किसी वीडियो में, क्योंकि मैं खुद 15 साल हो गए इस करियर में, आरजेस को मौका मिलता है 40 सेकंड 1 मिनट बोलने का, ठीक है, पर हमारे यहाँ ये अपॉर्चुनिटी है कि वी कैन हैव अ लॉन्गर कॉन्वर्सेशन, और ये बहुत बड़ी बात है भाई. हम इस बात से खुश है भाई, बात करने का मौका मिल रहा है, तो ये आपकी
1: इस चीज पे खुश है भाई.
0: हाँ
1: भी इस चीज पे खुश है, और ये जो आपने एक क्या कहते हैं हमारे इल्म में इजाफा किया है, इस चीज के बारे में इल्म नहीं था.
0: अच्छा ये रेडियो वाला जो मैंने आपको फैक्ट बताया वो उसकी बात कर रहे हैं
1: जी?
0: हाँ ओके यस, ये फैक्ट है भाई. इंडिया में एन आरजे कैन ओनली स्पीक फॉर 45 सेकंड्स, 1 मिनट का रूल होता है, उसके ऊपर अगर कॉल है जो कि रिकॉर्डेड जाएगी 1.5 मिनट, उससे ऊपर कोई नहीं बोल सकता, मतलब वो रेडियो में बिल्कुल माना जाता है गलत है वो. समझ रहे हैं?
1: कौन बनेगा रेडियो पति?
0: जी बिल्कुल. तो ये तो बहुत ये तो खुला मैदान है भाई, ये खुला मैदान है, ये तो इसलिए बहुत अच्छी बात है.
1: जो भी बात होती है बिल्कुल सभी सुन रहे हैं, जो लोग इस वक्त 107 पे ट्यून इन होंगे
0: जी,
1: तो सभी सुन रहे हैं
0: जी. तो इसलिए हम रियली रियली
1: इवन वो भी सुन रहे हैं जिन्होंने इन चीजों पे नजर रखी हुई है।
0: अरे सही है, सही जा रहे हैं आप, सही जा रहे हैं आप, सही दिशा में, सही दिशा में।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, आज की कहानी सुनेगा।
1: ऑन अ सीरियस नोट
0: जी
1: भाई, आप 107 की जितनी तारीफ करें
0: जी
1: उतनी कम है भाई। माशाल्लाह उन्होंने वाकई में बहुत बेहतरीन एक ऐसी जगह दी है कि बंदा खुल के बोल सकता है।
0: बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच।
1: लेकिन बेफालतू नहीं,
0: बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच। ये मींस अ लॉट टू
1: अस, लिसनर्स आर टू गुड।
0: सब तरह के कैरेक्टर है हमारे पास, हर रंग है हमारे पास।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: हमारे माज भाई हैं, तला भाई हैं।
0: हाँ नहीं, आप भी हैं भाई, आप भी हैं, अपने आपको भी इंक्लूड रखें।
1: चलिए मैं भी हूँ किसी कोने में।
0: कोने में नहीं है भाई, आप ऐसा नहीं है, आपको इंक्लूड किया है। हाँ, बिग बॉस की लिस्ट बन रही थी तो आप थे उसमें, लिस्ट में भाई साहब टॉप।
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: हाँ
1: तो महिला मुक्ति योजना भी है।
0: महिला मुक्ति योजना मंडल है भाई, वो मुक्ति तो आजादी हो गई।
1: मुक्ति तो है, उन्होंने हमारी हर बात काटनी तो है।
0: सोमुल भाई अगर सुन रही है, अस्सलाम वालेकुम अगेन।
1: बॉयज गैंग्स बना रखी है।
0: हाँ हर तरीके
1: पता नहीं, कुछ तो
0: नहीं, अच्छी बात है, छोटे छोटे ग्रुप्स बने में, आई लाइक इट, और लोग एक दूसरे से मिल भी लेते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
1: बेशक बेशक बेशक।
0: थैंक यू भाई, बहुत बहुत प्यार प्रिंस भाई आपको।
1: बिल्कुल, ये जैसे दूसरे सारे सोशल मीडिया के जैसे प्लेटफॉर्म है ना
0: जी जी,
1: उस टाइप से ये भी एक बिल्कुल एकदम बिंदास।
0: हाँ ये बिल्कुल वैसे ही प्लेटफॉर्म है ना, आई फील, पहले मुझे लगता था कि लोग कहीं ना बोले कि अरे गाने तो चला ही नहीं इसने, तो बातें ही कर रहा है, लेकिन अभी अच्छा लगता है कि ठीक है, दिस इज फाइन, अच्छी बात।
1: यूजुअली यही इस चीज की शो की पहचान ही यही है।
0: हाँ।
1: कि गाने अ पार्ट ऑफ द शो।
0: आपके लिए मैसेज आया प्रिंस भाई, प्रिंस भाई आपके लिए मैसेज आया, माज भाई कह रहे हैं मेरी जिंदगी धन्य हो गई, प्रिंस भाई ने मेरा नाम ले दिया।
1: अरे वाह। ये तो भाई मुझे कुछ हिंदी हिंदी वाले ऐसे कुछ ऐसे ऐसे वर्ड बताइए ना कि मैं माज भाई के लिए कह सकूं।
0: माज भाई को आप बोल दीजिए, माज भाई माज भाई मैं आपकी इस बात का आभारी हूँ, ये कह दीजिए आप।
1: माज भाई आपकी बहुत
0: माज भाई
1: वाली बात है,
0: भारी वाली बात है। आभारी हूँ, आभारी हूँ, ये बोल रहे हैं आपको,
1: आभारी भी हूँ और जाभारी भी हूँ।
0: ये बिल्कुल ठीक, अब ठीक है। ये पंजाबी का हो गया, खब्बे सज्जे। ठीक है।
1: <दन्वाजी।
0: laughs> अरे यार सही है, बहुत सही जा रहा है, थैंक यू सो मच प्रिंस भाई।
1: तो सभी मेरे भाई सुन रहे होंगे, तला भाई भी हैं और भी बहुत सारे भाई हैं
0: जी,
1: और हमारे जमाल लुधियानवी भी होंगे ही।
0: जमाल भाई ने मैसेज किया, वो कह रहे हैं कि प्रिंस भाई आज इतना जल्दी, ये आपके लिए मैसेज किया जमाल भाई ने।
1: अभी तो मैंने बताया
0: ना। तो नहीं वो पहले किया था उन्होंने, मैंने पढ़ा भी
1: कर रखा था।
0: आपको एक वर्ड सिखा रहे हैं, कह रहे हैं अति उत्तम। तो नहीं ट्राई करना, ट्राई नहीं करना।
1: अति उत्तम, पुरुषोत्तम और पता नहीं कौन सा तम।
0: सही जा रहे थे आप, सही जा रहे थे, सिखा देंगे आपको।
1: पुरुषोत्तम मेरा ड्राइवर है।
0: क्या उनका नाम है सच में?
1: हाँ पुरुषोत्तम उनका नाम है।
0: अरे वाह बेहतरीन, कहाँ से है वो?
1: वो यूपी से है।
0: अच्छा यूपी से है, माशाल्लाह ठीक है। वो सुनते हैं, मुझे नहीं सुनते वो,
1: कभी सुन लेते हैं कभी सुन नहीं पाते।
0: अरे यार पुरुषोत्तम भाई यूपी के हो गए, नहीं सुन
1: रहे। पता नहीं क्यों लगता है कि मैं सुनने नहीं दूंगा।
0: अरे
1: मैडम सुनने नहीं देंगी।
0: अरे रे रे रे रे रे,
1: जबकि हमने कहा है लिव योर लाइफ फ्रीली।
0: यार पुरुषोत्तम भाई
1: काम के वक्त काम करो, भले ही तुम्हारे कान में हेडफोन लगाओ या तुम रेडियो गाड़ी में लगा लो कुछ भी।
0: अच्छा नहीं ये तो पुरुषोत्तम भाई को बताइए, मैं मतलब ये तो सुनना चाहिए उनको, देसी आदमी को नहीं सुन रहे यार, वो यूपी का होके बंदा नहीं सुने कैसे चलेगा प्रिंस भाई, इनको थोड़ा प्रमोट।
1: उनसे पहले एक बंदे थे हैदराबाद से
0: जी जी जी,
1: उनकी परेशानी ये थी कि जब रेडियो यानी ऑन द वे यानी ऑन जर्नी, उनको रेडियो से ज्यादा अपनी फैमिली चिट चैट पसंद होती थी। वो बंदा गॉसिप सुनने में बहुत ही, क्या ही कहे उन्हें, आप उन कुछ भी सुना सकते हो आप उनको।
0: अच्छा
1: वो फालतू की बात भी सुनने बैठ जाएंगे।
0: नहीं पर ये जो वाले हैं
1: आपके, बोलने वाला चाहिए।
0: ये जो वाले हैं आपके करंटली जो आपके लिए ड्राइव कर रहे हैं, इनको प्लीज कहिएगा मौका लगे तो ये सुने, हमें आपकी इजाजत लेनी
1: है। पुरुषोत्तम भाई ये आपके लिए है।
0: हाँ पुरुषोत्तम भाई अगर आप सुन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या?
1: बोले अति उत्तम।
0: अति उत्तम क्या बात है, यहाँ तो फिट भी नहीं होता यार अति उत्तम।
1: पता नहीं उन्होंने बोला उन्होंने बता दिया आपको।
0: चलो सुबह सुबह माफ है माफ है माफ है, यूपी के आदमी
1: उनके लिए शौक था जब वो यहाँ पे आए थे ना मेरे पास में जॉब के लिए। वैसे तो मैं अक्सर मैं खुद ही इंटरव्यू लेता था तो उनका भी इंटरव्यू मैंने ही लिया था।
0: आप क्या पूछते हैं इंटरव्यू में वैसे? पूछते
1: कॉमन से सवाल पूछता हूँ भाई,
0: कॉमन कॉमन से क्या एक दो सवाल अगर आप बता सके तो, मतलब मैं क्यूरियस हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी।
1: अरबिक लैंग्वेज?
0: अच्छा अरबिक लैंग्वेज होनी चाहिए।
1: व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस?
0: व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस? अरबिक काफी नहीं है
1: अगर नहीं आती हो तो?
0: अच्छा नहीं आती हो तो, अच्छा ओके ओके ठीक,
1: नहीं आती हो तो व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस और आपका वर्क एक्सपीरियंस, हाउ मेनी एक्सीडेंट्स ऑन यू इन योर कंट्री?
0: पर इस बात की सच्चाई कैसे पता लगेगी? अगर उस भाई ने पुरुषोत्तम भाई ने यूपी में कती गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा दी हो, इधर उधर थोड़ी लग गई हो, तो आपको कैसे पता होगा?
1: Because I'm working in a department that I can.
0: अच्छा ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी हम जुड़े होते हैं भाई, सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
0: आपके चक्कर में मैं डर के मारे चलाऊंगा गाड़ी इंडिया में भी भाई, प्रिंस भाई तुम्हें देख रहे हैं।
1: अरे मैं दिल्ली गया हूँ।
0: अच्छा दिल्ली गए?
1: जा चुका हूँ दिल्ली।
0: नहीं भाई हमें छोड़ दीजिए, हमें चलाने दीजिए, हम तो मासूम आदमी है भाई, दिल्ली वाले हम तो बहुत शरीफ लोग।
1: मैंने दिल्ली में गाड़ी भी चलाई है।
0: अच्छा
1: मैं दिल्ली में मेरे एक दो बार हल्की फुल्की सी लोगों से झड़प होते होते रह गई,
0: हमारी तो पहचान।
1: मेरे बंदों ने मुझे नीचे उतरने ही नहीं दिया।
0: बंदों ने नीचे उतरने नहीं दिया? आप कहीं अंदर से हरियाणवी तो नहीं है जो छुपा के रखा है आपने? बंदों ने उतरने नहीं दिया यार, क्या हो रहा है? सही है भाई,
1: मुझे बहुत मजा आता है लैंग्वेजेस सीखने में। तो जब हमारे पुरुषोत्तम जी जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने सिंपली पूछा, सर वेयर इज दैट दैट पर्सन That person who interview my मैं बोला वाह, मतलब उसे तुमने भी वो मैं हूँ
0: वो मैं हूँ ठीक है।
1: मैंने सिंपली ऐसे बोला उनको, पुरुषोत्तम जी वो मैं हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी आंखें खोल दी कि आप लोग हिंदी समझते हो? समझते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, बहुत कुछ भी और समझते हैं, आप ना समझे सिर्फ हमें समझे वो काफी है।
0: नहीं ये राज को राज ही रहने दी जाए। अब अगर थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, अभी मुझे जिंगल का चलाने का वक्त होने वाला है
1: तो हाँ भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा टाइम
0: नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच लेकिन वक्त देने के लिए भाई, बहुत सारा प्यार आपको, कहानी सुनिए।
1: थैंक्स टू 107 एंड थैंक्स वेरी वेरी थैंक्स टू यू ब्रदर।
0: जज़ाकअल्लाह, बहुत प्यार, बहुत प्यार।
1: टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और प्रिंस भाई के साथ कुछ मैसेज पढ़ता हूँ। समीरा बहन लिखती है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर, गाने तो कहीं भी चल सकते हैं बट हम लोग 107 आपकी आवाज़ सुनने के लिए लगाते हैं। बहन थैंक यू सो मच, ये मैं अपने लिए बजा दूँ आपके लिए? ये एक मैसेज आया है इरफान भाई, मैं अभी कॉल लगाता हूँ आपको, गॉसिप करनी है अदुगी? एक मैसेज है प्रिंस भाई तो हमारा, प्रिंस भाई को हमारा बहुत प्यार। ये सुदीप तो सर कह रहे हैं हमें तो नहीं देते ऐसे प्यार सुदीप तो सर। अच्छा प्रिंस भाई को बहुत सारा प्यार। चला भाई फ्रॉम अलखोल लिखते हैं, प्रिंस भाई की कॉल सुन के मुझे डर लगने लगा, एक एम्बेसी की गाड़ी मैंने ठोक दी थी पाकिस्तान में। वहाँ के पाप यहाँ याद आ रहे हैं लोगों को, समझ रहे हैं आप? एंड माज भाई, यस भाई मुझे पता है भाई, आई कैन नॉट डिस्कस अबाउट इट माजू। एक मैसेज है, इनको सुन के सुरेश ओबराय की याद आ गई। हाँ पता नहीं क्यों ये बड़ा अच्छा पकड़ा आपने सादिक भाई, मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंस भाई के पास इट्स वेरी क्लोज टू दैट। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज कदों पे तू बात करनी है, क्या करनी है उस्मान भाई? अभी मैं करता हूँ। और एक मैसेज प्रिंस के लिए, तला भाई कह रहे हैं, प्रिंस भाई मैं किंग बना दिया, नाम से यहाँ नाम से चल रहा है मामला। और एक मैसेज है, प्रिंस भाई आप लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये इन्होंने मैसेज किया। एक मैसेज है, आई अग्री विद मिस्टर प्रिंस, दिस इज द ओनली पीपल ओरिएंटेड चैनल एंड कबीर यू आर द मोस्ट लाइक्ड आरजे। आई डोंट नो भाई, आई विश के कोई मोइन भाई वो होता, मीटर होता है नापने का कि कौन कितने नंबर पर है, बट इट्स ओके। जैस भाई वालेकुम अस्सलाम, बहुत प्यार भाई। तब उस समय लिखते हैं, बिग बॉस आउट हो गया बच्चा, मैंने सुना ही नहीं वो बच्चे ने क्या कहा, नहीं वो पहले ही आउट हो गया। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सलमान भाई कैसे हैं? और एक मैसेज है मौसम के बारे में, बहुत दिनों के बाद विदाउट सनग्लासेस ड्राइव किया आज, दिस एक्सप्लेन इटसेल्फ। मैं तो खाजा भाई डेली बिना सनग्लासेस टाइप कर रहा हूँ, जरूरत पड़ नहीं रही है, आप थोड़ा लेट निकल रहे होंगे मेरे ख्याल में। और एक अज्जू भाई ने मैसेज किया है, ब्रेक मारो आगे दूसरा वर्ड क्या अज्जू भाई? एक मैसेज है जावेद भाई का, जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दिल्ली वाले कबीर भाई। एक मैसेज, सलाम कॉन्फिडेंट और बदतमीज होने में फर्क होता है। हाँ वही, जब उस बच्चे ने उस दिन कहा कि हम, हाँ उस दिन आई सेट कि ये अगर कुछ गड़बड़ करेगा, सही पकड़ा था आपने, आज गड़बड़ कर दिया आपने, माँ बाप ने उसे कहा होगा, बट वो जब सीखता है तो सॉरी बोलता है। नेवर इनकरेज दिस टाइप ऑफ बच्चा, आई एम विद यू ऑन दिस भाई, आज हो गया जो आप सोच रहे थे।

0: और एक मैसेज है सैयद अली हैदर शाह साहब का, लिखते हैं ब्यूकिंग टू ऑल ऑफ यू, क्या टॉपिक है आज का? भाई मैं कह रहा था आपकी कोई टैगलाइन है आज की मूड के हिसाब से तो भाई बता दो। और कमाल भाई वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं मुझे तो घमंड है सिर्फ आपको ही शो सुनने का। मेरा भाई समी भाई को बहुत सारा प्यार किया, समी भाई वाईफाई कर रहा हूँ मैं प्यार को, क्या ले लो भाई। और मैं आरिफ भाई कॉल करूँगा आपको, इनसे पहले जो है एक भाई हैं इन्होंने मैसेज कर दिया है, तो मैंने भाई डिसाइड कर लिया, मैं ज़्यादा जो है ना टाइम पास कॉल लेने वाला हूँ नहीं, वही कॉल लूँगा जो अपने बंदे सेंस की बात करते। तो आज मुझे सबक मिल गया है इस बात का, ज़्यादा मैं जो कबड्डी खेलूँगा नहीं। इरफान भाई को लगाइए कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम कसीर भाई, क्या हाल है?
0: मैं तो बढ़िया हूँ इरफान भाई, आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आप भी बहुत बढ़िया है।
1: अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो थोड़ा हंसी भी आ रही है और पता नहीं, बस मेरे पेट में भी दुख रहा है बहुत
0: ज्यादा। नहीं नहीं, निकालो निकालो बाहर निकालो उसको, इरफान भाई दबा के नहीं रखना है बात को, कहो मेरी जान क्या कहना चाहता
1: है। हमारे लास्ट कॉलर ने अभी कहा ना कि वो बच्चे ने पिछले कॉल्स में एक वर्ड ऐसा यूज कर लिया था जो अप्रोप्रिएट नहीं था ऑन एयर, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज आज मेरे ख्याल से आज अगर ये बच्चा अगर गाड़ी में स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो दोनों मियां भी आपस में लड़ेंगे, कमबख्त तुमने बोला था कॉल करने को।
0: मैं सही बता रहा
1: हूं, और चढ़ाओ और तुम चढ़ाओ इसे एफएम 107 पे कॉल करने के लिए।
0: वो वही है पता, सिस्टम कई बार तो क्या हो जाता है ना कि कुछ वो लाइन मेरी मुझे भी कंट्रोल करनी पड़ती है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल में मैं आ जाता हूं भाई, तो मेरे साथ मसला हो जाएगा अब, ये इधर मैं उनकी कॉल नहीं उठा पाऊंगा। अब मेरी गलती नहीं है इसमें, समझ रहा
1: ये बात तो है, लेकिन मेरे जहन में इस गाड़ी में जो सिनेरियो चल रहा होगा ना स्कूल जाने तक,
0: वो तो अपने आप में गौसिप है भाई इरफान भाई, वो तो गौसिप है।
1: और आज बच्चा जितना शातिर था ना, आज क्लास में वो इतनी मिस्टेक्स करेगा, मेरे कहते टीचर्स के भी झापड़े खाएगा।
0: आज का दिन बहुत खास रहेगा गेम्स पीरियड, ये मैं श्योर हूं।
1: अरे ऐसी चीजों में ना सिनेरियो बनाने में, दिमाग में ना फिल्म चलाने में मुझे बड़ा मजा आता है। अब मैं तो फिर नमाज में सोच सोच के भी हफड़ा होगा।
0: अरे यार इरफान भाई मैं आप समझ रहा हूँ, आज मूड क्या?
1: आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। अभी गाड़ी में मेरा मेरा बड़ा बेटा था तो वो कह रहे थे बाबा आपके आपके दिमाग में फिल्म चल रही है ना, मैंने कहा यस।
0: आप मुझे लग रहा है ये गॉसिप पसंद आदमी है हमारी तरह, हाथ मिलाइए। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। कोई टैगलाइन है आपकी आज के दिन के लिए, मतलब आपके जहन में आ रही है कुछ बढ़िया एकदम?
1: आज के दिन के मुझे टैगलाइन का समझ में नहीं आ रहा, यानी कहना क्या है उसमें, यानी क्या
0: मतलब जैसे देखो नहीं नहीं, मैं एफएम 107 की टैगलाइन नहीं बोलनी है प्लीज, ये अभी रेडियो के नाम से दूरी रही है थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ जैसे लोगों ने बोला जियो और जीने दो, एक भाई ने बोला क्या कहते हैं नो टेंशन बिफोर पेंशन, ये आज मतलब लोग सोच सोच के अपनी सोच बता रहे हैं, तो उसमें एड ऑन कर रहे हैं। आपके जहन में कोई है टैगलाइन जो आपको पसंद हो सकता है?
1: मौज करो वीकेंड है,
0: मौज करो वीकेंड है। भाई ने साफ कह दिया, एक मैसेज आपके लिए आया है, ये इरफान भाई बोलेंगे ये कर्मा है नंबर प्लेट बदनाम कर देगा। ये मुझे पता है सबके साथ जो हो रहा है ना, ये इरफान भाई की वजह से है।
1: के लिए।
0: कोई तो लपेटा गया मेरे अलावा, कोई तो है।
1: अरे मुझे रहम भी आया और लेकिन यार ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो गया, बट ऑफ कोर्स केयर करनी चाहिए और जारी बात है इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन
0: I'm still thinking right now. I had a different line in the morning, लेकिन कुछ चीजों ने हालात बदल दिए, सब बदल दिया भाई, तो मैं सोच रहा हूँ अभी कोई नई टैग लाइन बना ली जाए। Definitely.
1: Okay. वैसे प्रिंस भाई सुबह सुबह जो और जो ये खातून जो सुबह में आई थी टीचर
0: जी,
1: मुझे तो उनकी हंसी सुन के भी हंसी आ रही थी बार बार, मुझे आई वॉज लिटरली लाफिंग के यार माशाल्लाह ये कि खवातीन भी पार्टिसिपेट करी मॉर्निंग में, ज्यादातर तो मर्द हजार आते हैं तो अब उनकी पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गई है, तो
0: नहीं, आपकी बहस करवा दें उनसे, बहस करेंगे आप रोटी बनेंगे आप?
1: बिल्कुल आप मैं और रो,
0: मैं नहीं भाई बीच में, मैं जानता ही नहीं मुझे क्यों लपेट रहो ना जी ना, आप अपना अपना देखो भाई। क्या
1: है वो टीचर है, बिल्कुल वो टीचर है, मेरी खुद की वाट लगा दी।
0: वैसे एक बात बताइए कि नंबर प्लेट का क्या करने का सोचा है आपने?
1: हेलो
0: हमारा है नेटवर्क।
1: देखिए नंबर प्लेट का सीन ऐसा है कि मैं अब मुझे उस नंबर प्लेट की आदत सी हो गई है, अब कोई चीज आप खराब ले आते हैं मिसाल के तौर पे, अब आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब उसकी आदत आपको हो जानी चाहिए। नंबर प्लेट भी वैसी
0: ना, वो कुछ ऐसा था ना कि अब दर्द सहने की इतनी आदत है कि जब दर्द नहीं मिलता तो बहुत दर्द होता है, ये वही सीन है। ठीक है इरफान भाई,
1: मुझे अपनी नंबर प्लेट देख के यकीन करें अभी बिल्कुल अफसोस भी नहीं होता अब तो, क्योंकि मैं दूसरों की भी तो नंबर प्लेट देख रहा हूँ ना, और भी टेढ़ी मेढ़ी नंबर प्लेट्स हैं मार्केट में।
0: नहीं, आपकी ज्यादा

0: ज्यादा खतरनाक है भाई, सॉरी।
1: अच्छा आपने पूरी दुनिया के नंबर प्लेट देख ली है?
0: डेली देख रहा हूँ मैं आपकी नंबर प्लेट, डेली मिलाने की कोशिश करता हूँ कि इससे बुरी मुझे कहीं दिख जाए, अभी तक नहीं दिख।
1: लेकिन सच्चाई तो कोई टाल नहीं सकता बाबू, ये बात तो है।
0: नहीं, आपको तो आदत हुई, हमें आदत हो जाएगी, एक साल के अंदर तो हो ही जाएगी आदत, फिर हम भी रुक जाएंगे इस बारे में बात।
1: मेरी नेक्स्ट इंस्पेक्शन है गाड़ी की ड्यू है ना, लाइक इन द मंथ ऑफ फरवरी। हाँ। तो अब मैं नंबर प्लेट देखूंगा तो मुझे फिर से आप लोगों की सभी बातें याद आ जाएंगी।
0: जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
1: अच्छा वैसे इसको कोई प्रोसीजर है चेंज करने का, जरा मुझे पर्सनली बताएगा तुझे?
0: थोड़ा महंगा प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूँ, हो जाएगा चेंज, करा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है।
1: कोई बात नहीं, प्रिंस भाई से कॉन्टेक्ट कर लूंगा मैं, अगर महंगा भी है तो क्या
0: है। डन है, ठीक है। बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
0: तो भाई घड़ी में हो रहे हैं 7:02 और आप भी हमारा 7:02। अब चलेगा जिंगल, बहुत सारी कॉल लाइंड अप है भाई आज तो, बहुत सारी करेंगे करके ही।

0: FM 107. Time check.
1: सात दो तो हो चुके, मैंने सात दो वाली बात भी बोल दी, सात तीन हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और मैं कह रहा था कि आपकी टैगलाइन क्या है आज की। बहुत सारी टैगलाइंस मेरे पास आई हैं, मोना बहन ने भी बहुत शानदार टैगलाइन भेजी है। मैं सबसे पहले उनकी टैगलाइन को मेंशन करना चाहूंगा बिकॉज पहले भेजी थी। तो उन्होंने लिखा है, राखी साहब ने सीखा इरिटेटिंग लोगों को बोलने का, आवाज पीछे 20 कदम पीछे। बहुत, और मेरे को तो ये लिखनी पड़ेगी, लिखा के छाती पे टी शर्ट पे लिखा के रखनी पड़ेगी मुझे, जिस हिसाब से मेरे साथ होता रहता ना। एक कॉल आ रही थी, कट गई। भाई मैं दोबारा कॉल कर लेता हूँ आपको, टेंशन को नहीं भाई, मैं मिला रहा हूँ, लेकिन लंबी कॉल नहीं लेंगे आज हम, छोटी छोटी कॉल्स लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत टाइम खींच लिया है। एक मैसेज सुदीप तो सर का लिखते हैं, कबीर भाई तुम तो दिलो दिमाग पे छा रही हो, तुम्हें प्यार देने की ज़रूरत कहाँ है। खेल गए भाई, सॉलिड खेल गए। आवाज नीचे नॉट पीछे, अरे बाद वाली लाइन पीछे है, 20 कदम पीछे। तेज दिमाग चला रहे हैं। एक मैसेज है, मोहम्मद इकरम साहब लिखते हैं, चाय बनती रहे सांस चलती रहे। अरे भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई ये अच्छा था भाई जान। आज की टैगलाइन है, यारी कबीर की मौज गरीब की। अरे वेरी नाइस वेरी नाइस। ये सैयद अली हैदर शाह ने मैसेज किया है, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गई। और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या है, हफ्ते में एक दिन मिलता है जीलो फैमिली के साथ। अच्छा, ये तो मोटो होना चाहिए ज़िंदगी का, दिस इज़ काइंड ऑफ मोटो। ख्वाजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़रा एक एक करके कॉल मिला लूँ भाई, इनके बाद किसका नंबर था भाई, अरे आसिफ भाई किधर का, आपका नंबर ही नहीं मिल रहा है मुझे। पर ठीक है, मैं एक भाई को कॉल कर लूँ क्योंकि इन्होंने अभी मुझे कॉल मिलाई थी, उनके कॉल में उठा नहीं पाया था।

0: अपने तो दिल में है आप।
1: अरे रे रे रे रे रे मेरा भाई।
0: अरे कबीर भाई, एक आप ही एक ऐसे चीज है जो है, जो आदमी अपने दिल का बात आपको कह सकता है। मैं भी कुछ चाहता हूँ कि आपसे कहूँ।
1: जी कह दीजिए ना।
0: मेरे साथ एक ऐसा मसला है कि ना तो मैं रो सकता हूँ, नहीं तो मैं हंस सकता हूँ।
1: क्या है क्या है?
0: मैं वही बोल रहा हूँ, 6 और 7 नंबर वाला, 8 और 7 वाला संसद
1: है क्या?
0: सर, आपका आपका कोई इंडिया में कोई सांसद नहीं जानने वाला, एक बिल पास करवा दो इंडिया में कि बीवी कम से कम मैट्रिक पास हो, चपरासी भी कम से कम मैट्रिक पास हो।
1: काश मेरी इतनी चलती भाई। इतनी नहीं चलती मेरी, 2-3 मैटर तो सॉल्व करवा सकता हूँ मैं, लेकिन सारे मैटर नहीं करवा।
0: अरे सर, ऐसे ऐसे कांड होते हैं। अभी मैं घर पे गया हुआ था, 2-3 बात मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बोलेंगे यार।
1: नहीं नहीं, अभी अभी अभी सुनो सुनो सुनो सुनो, मैं रोक देना चाहता हूँ आपको। रियली सॉरी, किस्से का टाइम नहीं है भाई, क्योंकि आज हम टैगलाइन की बात कर रहे हैं और बहुत सारी कॉल्स और भी लेनी है, तो मैं किस्सा आपसे बाद में सुन लूंगा। कोई टैगलाइन हो तो बता दो मेरी जान। कल सुना दे, मतलब संडे को सुना देना, कोई टेंशन नहीं है। और कुछ कहना चाहेंगे भाई?
0: नहीं नहीं, बस कबीर भाई आप हमारे साथ हैं, बस यही सब साथ साथ है।
1: डन है, डन है भाई। अभी अभी सुनना भाई, अभी किस्सा कुछ देर में आ रहा है। ठीक है भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार, अल्लाह हाफिज। और फैसल भाई ने मैसेज किया है, 4 दिन जिंदगी में सूरज को भी ढलते देखा है, तुम जमाने में तन्हा नहीं, हम लोगों को भी बदलते हुए देखा है। शेरो शायरी नहीं, टैगलाइन देनी थी फैसल। एक मैसेज है, भाई आज की सिचुएशन सुन के आपको टैगलाइन तो नहीं गाना याद आएगा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? ये मुझे नहीं, उस बच्चे को याद आ रहा होगा मोइन भाई, सिचुएशन ही ऐसी है, क्या किया जाए। एक और मैसेज है, सलाम भाई, माई टैगलाइन इज दिल गार्डन गार्डन हो रिया सबकी बातें सुन के। मजे कर रहे हैं आप, मजे कर रहे हैं, समझ रहा हूँ भाई। आई मिस्ड व्हाट किड सेड, इफ यू कैन रिपीट, नहीं आई कैन नॉट रिपीट, आई विल सेंड यू सेपरेटली। सबको चाहिए गॉसिप भाई। और क्या मैसेज है, एक कॉल भी आ रही, जरा उठा के देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, कैसे हैं
1: आप? मैं बढ़िया भाई, आप सुनाइए क्या हाल है भाई के?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
1: जी भाई,
2: जी अच्छा लग रहा है सुन के, काफी टाइम के बाद सुन रहे हैं आपको।
1: थैंक यू सो मच।
2: अनवर बोल रहा हूँ मैं।
1: अनवर भाई नैनीताल से, नैनीताल रिटर्न।
2: जी जी,
1: कैसा रहा नैनीताल का ट्रिप, कैसा रहा नैनीताल का ट्रिप?
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है कि पूछो मत।
1: अकेले गए थे, दुकेले गए थे?
2: नहीं, पूरी फैमिली गई थी साथ में।
1: अच्छा, पूरी फैमिली गई थी।
2: जी जी, बस ये था कि टैग लग के ऊपर हो रही है, बाकी कहानी बाद में सुनाएंगे। बस अब मेरे हमारे दिमाग में तो यही आता कि कतर माँ के एक ही चीज सीखी कि या सीख, तू अपना देख, मुझे अपना देख।
1: ये यहाँ जीने का मूल मंत्र है मेरे भाई, यहाँ सर्वाइवल का यही तरीका है, ऐ शेख अपना अपना देख। जी जी,
2: या अपना अपना
1: हाँ, बस यही करते चलते रहो, और बस बिना इंडिकेटर दिए मत मुड़ना, बस इंडिकेटर देते रहो मैं इधर जा रहा हूँ। बाकी जिंदगी चलती रहेगी, ना किसी चीज में गाड़ी दौड़ाओ, बस अपनी लेन में। वेरी गुड।
2: बात ये है कि हाँ, बच्चे के ऊपर इतना क्यों कसर हो रहा है, हो जाती है, मिस्टेक हो गई इस बच्चे से।
1: नहीं नहीं, कोई नहीं कसरा। अरे नहीं नहीं, आप देखिए, अरे अरे वकील साहब रुकिए 2 मिनट, कोई उस पर तंज नहीं कसरा मेरे भाई। देखो, एक एक दायरा होता है ना, वो तो सिखाना ही पड़ता है ना मेरे भाई, तो कोई तंज नहीं कसरा उस पर। और वो गलती कहीं और होती तो चल जाता, यहाँ पे नहीं चलता भाई।
2: राइट, राइट।
1: वेरी सिंपल ना, तो कुछ चीजें हम साइड नहीं कर सकते
2: दोबारा, क्योंकि वो तो बच्चा है, अब माँ बाप
1: वो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन भाई हमें भी उस पर काम करना पड़ता है ना भाई। मैं भी समझ रहे ना, आप हर चीज नहीं एक्सेप्ट किया सकती, तो कुछ गलतियों की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, समझ रहे हैं?
2: Right,
1: कुछ गलतियां खोपचे में होती हैं, कुछ गलतियां पब्लिक में होती हैं।
2: थोड़ा सा एक हिंट दे दें।
1: अरे मेरे ऊपर थोड़ी है, मेरा थोड़ी बच्चा है वो। वो उसकी माँ बाप की परेशानी है भाई। मैंने तो जो कर रहा था मैंने कर दिया, तो ये है सीन। तो वकील साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वेलकम बैक टू कतर मेरे भाई।
2: बाकी इंशाल्लाह कल तो नहीं, संडे को बात।
1: डन डन डन, ख्याल रखिए मेरा भाई, ओके अल्लाह हाफिज। एक मैसेज है माज भाई का, माज भाई कह रहे हैं, इफ यू नॉट डूइंग मीटअप ऑफ लिसनर्स, एट लीस्ट देयर शुड बी अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर लिसनर्स। ये माज भाई करना पड़ेगा, ये मैं प्लान करूंगा आपके साथ बैठ के। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना, ये भाई की टैग लाइन है, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना, बात खत्म। एक कॉल आ रही है जो मैं करने वाला, तो अच्छी बात है कॉल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। बस सलाम भाई, आप तो जानते ही भाई, आप मतलब क्या छुपा है आपसे आज तक?
3: मैंने मिस कर दिया बाय द वे।
1: नहीं मैंने तो बता दिया,
3: निकला ऑफिस,
1: बता ही दिया आपको तो भाई।
3: यार वो फील नहीं आई ना जो लाइव थी।
1: वो अरे ये मसाला तो गया भाई, आप आई एम हैप्पी कि आपको मसाला नहीं मिला।
3: एक इंद्राज मतलब क्या हुआ है सुबह सुबह यार मसाला मिस हो गया
1: पता है कैसा हुआ है कि आप थिएटर पिक्चर देख रहे हो पीछे से किसी ने बता दिया हो अगली सीन में होने वाला हीरो भी उधर

0: Tak.
1: तो
0: सस्पेंस खत्म हो गया भाई, आपका सस्पेंस खत्म हो गया। तो ये
1: चलो, चलो, चलो, चलो
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
1: चलो मसला नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ, हमारा काइंग खा।
0: नहीं, मैं आपको रीनेक्ट करके बाद में बता दूंगा तला भाई, डोंट वरी। वो अंदर की आपकी फुप्पो चैन चैन नहीं पाएगी, एक्टिंग करके बता दूंगा वापस।
1: मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ ना, चलो अच्छा हुआ जो हुआ, हमारा टाइम खा जाता था।
0: तो वैसे तला भाई आपकी क्या टैगलाइन है भाई, कोई टैगलाइन है आपकी?
1: भाई देखो, अगर अगर आज वीकेंड की बात कर रहा हूँ तो दो तीन तो है।
0: अच्छा, जैसे
1: तो बॉस की नजर करेंगे हम। इरशाद बोलो,
0: इरशाद इरशाद इरशाद, बिल्कुल।
1: भाई एक तो होनी चाहिए ना छेड़ मलंगा लो वीकेंड आज।
0: ना छेड़ मलंगा लो, हाँ
1: एक होनी चाहिए। बॉस अगर करीब आ रहा काम के लिए, उसको पहले ही बोल दो मेरे इतने करीब मत आओ, मैं बर्बाद कर दूंगा आज।
0: वीकेंड पे तो बॉस के लिए बाय बाय बाय, सही टैग लाइन है, बॉस से यही कहना पड़ेगा।
1: और एक आखिरी होनी चाहिए, और एक आखिरी होनी चाहिए, ज्यादा बोले ना तो बोले टॉक टू माय हैक,
0: टॉक टू। ये तो मैं ये खतरे वाली टैग लाइन है, बाकी तो ठीक है, ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया, समझ रहे हो? ये बिना इंडिकेटर जे गाड़ी खींचने वाली बात है, 100 की स्पीड पे हैंड ब्रेक खींच दिया आपने, समझ रहे हैं आप?
1: बच्चे
0: मुझे समझ में आ रहा है, ये रूह भटक रही है लोगों की यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं चला भाई, ये थोड़ा खतरे वाली बात, बाकी तो अच्छी है। ना छेड़ मलंगा नो शुड बी ऑन द टी शर्ट ऑफ एवरीबडी वीकेंड के दिन, ये तो बनता है।
1: भाई शॉर्ट करेंगे आज, क्योंकि बात करनी कम है। तो ये कि भाई प्रिंस को बहुत सारे प्यार, प्रिंस बंदा यकीन का हीरा है, प्रिंस हो गया, मास भाई हो गए, ये ना इरफान भाई हो गए अपने, आज तो इरफान भाई अलग ही क्लोन में थे भाई, उनको तो गमी नहीं आज, अपने नंबर प्लेट का गमी नहीं बन रहे हो आज ना।
0: अरे वो कह रहे हैं आदत हो गई है दर्द सहने की, भाई इरफान भाई ने खुद कहा है और आपको सलाम भी कह रहे हो, कह रहे आदत है मुझे, तो टेंशन नहीं है।
1: लेकिन इरफान भाई ने जो आज मजे आज बातों बातों में जो बात बोल दी ना भाभी के लिए, जो दर्द को लेके, तो वो बता रहा हूँ इरफान भाई, अगर घर पे ताले वाले लग जाए, दरवाजा बंद जाए, तो मेरा दरवाजा खुला आपके लिए भाई। आज एक रात तो मैं आपको सुला ही सकता हूँ, कहीं ना कहीं कोने कोने में
0: जुगाड़ तो हो ही जाएगा, टेंशन नहीं है, घर ही घर है, किवाड़ी किवाड़े भाई के पास, टेंशन नहीं।
1: बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए भाई, ये सारी जो है ना वो वाली बात है, थोड़ा आज जो ना बंदा शरीफ वाली बात कर ले, ये बागीचा आपका है, बीज आपके गले में, पानी आपका गला हुआ है, तो भाई कॉन्ग्रेट्स टू यू,
0: बहुत प्यार,
1: बड़ी बात है कि ये आप ही कामयाबी है,
0: बहुत प्यार भाई,
1: और अल्लाह ताला भाई आप ऐसे रखे, और जेन्युइन बंदे हो आप,
0: थैंक यू सो मच, आप भी जेन्युइन है भाई, सब आप एकदम
1: फिल्टर के बगैर है भाई, कबीर जो है ना मैं इससे मिला भी हूँ, और भाई है बिल्कुल,
0: बहुत प्यार
1: तो भाइयों की तरह भी नहीं, भाई है बिल्कुल, थोड़ा ये फिल्टर के बगैर है बंदा भाई।
0: अरे तला भाई आप भी प्योर देसी की मेरा भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार है तला भाई, बहुत दिल से
1: भाई। इरफान भाई के बकौल, इरफान भाई ने तो मुझे छपाकर छपरी बना दिया कसम से। मैं
0: अभी अभी इरफान भाई कांटेक्ट करने वाले हैं, इरफान भाई को नंबर दिया, वो कह रहे थे तलाक का नंबर चाहिए, बोले गए ठीक है तो बात कर लेना
1: भाई, मेरे मुंह से निकल गई, मैं आईना नहीं करूंगा।
0: नहीं पर अच्छी बात है, कम्युनिटी बनी रहनी चाहिए आपस में, और ये आप लोगों की वजह से है, सो उसके लिए मैं भी शुक्रगुजार हूँ भाई, बहुत
1: शुक्रिया। आज एक मीका पे मेरा भाई, एफएम के दो तीन लिसनर के आदमी मीका पे मेरा, आप क्या बात कर रहे हैं,
0: ये कब सेट हुआ?
1: ये कल सेट हुआ।
0: अरे यार ये तो अच्छा भाई, मुझे तो सेल्फी चाहिए भाई।
1: आज भाई मीका पे बेहतरीन वाला भाई, तीन चार बंदे हैं और एफएम के ही है, बनो तो तुम्हारी शो के।
0: अच्छा सेल्फी चाहिए भाई साहब मेरे को, तो ये तो मुझे पता ही नहीं पीठ पीछे क्या हो रहा है, ये
1: नहीं भेजूंगा।
0: अच्छा जरा सा आज का सुबह का एपिसोड मिस क्या हो गया, आप मुझे फोटो नहीं भेजेंगे, ये कौन सा बदला है भाई? नहीं नहीं मैं एक्टिंग करके बता दूंगा आपको, टेंशन नहीं है, अब मैं दोबारा करूंगा, मैं डन डन डन, ठीक है अगली जो कॉल करूंगा ना वो मैं जरा पहले मैसेज पढ़ लूँ, उसके बाद करूंगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। इकरा समीर जी तरफ से मैसेज है, नजर हटी दुर्घटना घटी, आई एम विद यू ऑन दिस, दिस इज सो ट्रू। एक मैसेज है, बच्चा क्या बोला था कबीर भाई, अब ये राज सबको बेचैन करके रखेगा। एक मैसेज है, एक दो तीन चार, कबीर भाई को हम

वीर भाई को हमको प्यार कोशिश एफर्ट के आपको मैं पूरे नंबर दूंगा एफर्ट के पूरे पूरे नंबर दूंगा एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ये मैसेज क्या है फिलजा खान की तरफ से आया मेरा मैसेज है तला भाई की बात पर भरोसा मत करना रूम में बुला कर लाइट कट करके चला जाएगा हाँ भाई बिजली विभाग वाले हैं भाई एक मैसेज भाई मीटअप का प्लान करो खुद बना लो यार सब मिल लेंगे कबीर भाई आज की टैग लाइन है जियो और जीने दो ये हमारे भाई ने मैसेज किया तला भाई ने फ्रॉम अलखोर दिस इज़ अ डिफरेंट तला और एक मैसेज है आज की टैग लाइन है सुधर जा या गुजर जा वजाद भाई बेहतरीन बेहतरीन भाई आई गिव यू दैट एक मैसेज है भाई स्टोरी शेयर स्टोरी अभी तो आएगी उसके बाद फिर एक और मैसेज है क्या कहाँ गया हाँ इश्तियाक उस्मानी भाई ने मैसेज किया है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई आज की टैगलाइन है आरजे कबीर की बातें और लिसनर्स की स्माइल दोनों का कोई तोड़ नहीं बात तो सही है आगे कहते हैं जिंदगी में टेंशन कम है जो हम सीरियस बातें करें इंजॉय वीकेंड मैं आपके साथ हूं भाई और कहते हैं भूल है? आगे लिखा है भूल जाते हैं सारे गम जब सुबह सुबह सुनते हैं हम रेडियो एफएम 107 घर हो या गाड़ी ऑफिस हो या यारी आप चलेगी सिर्फ देसी खुमारी रेडियो एफएम 107 दिल से देसी ये तो आपने पूरा रैप लिख के दे दिया है मुझे इश्तियाक उस्मानी भाई बहुत प्यारे एक मैसेज है दूसरे के शोल्डर पे सर रखकर दुख दर्द शेयर करेंगे तलहा और इरफान इनको कोई दुख नहीं है मेहर भाई रब दी मेहरा एक मैसेज है गुड मॉर्निंग कबीर भाई नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू द डे आफ्टर टुमारो पाजी मैं इस टैग नू प्रोसेस कर लूँ एक मैसेज कबीर भाई मैक्सिमम 5 मिनट सर्वाइव कर पाता किसी को जबरदस्त वाला अच्छा ये दूसरा वाला है एक मैसेज कबीर भाई गुड मॉर्निंग आई मिस द किड्स कॉन्वर्सेशन मैं नहीं बताऊंगा एक मैसेज क्या हाल है वालेकुम अस्सलाम कह रहे हिम्मत है तो क्रॉस कर वरना बर्दाश्त कर ये साउथ की पिक्चरें ज़्यादा देख रहे हैं नाना साहब आप बढ़िया है एक मैसेज है क्या सीन हुआ नहीं मैं नहीं बता सकता एक मैसेज है सबको जानना है सुबह क्या हुआ जल्दी उठा करो एक मैसेज है कोई मैसेज मिस तो नहीं हो मुझसे नो टेंशन बिफोर पेंशन ये ताहिर भाई ने मैसेज किया ताहिर भाई बहुत प्यार इशाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया जजाकल्ला एक गाने के बाद आपसे मुलाकात होगी बाकी टैगलाइन उसके बाद एक हमारी मोना बहन का मैसेज पढ़ दूं दो कचोरी एक समोसा इन बच्चों का क्या भरोसा दिस इज द टैगलाइन ऑफ द डे अभी से कह दे रहा हूँ इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता भाई थोड़ा सा हम जो है ना रिचार्ज कर देते हैं आपको वीकेंड का पूरा तो पता ही है क्या सीन रहता है हमारा तो एक काम करते हैं बैटरी चार्ज कर देते हैं दिस इज द रिचुअल दैट वी फॉलो एवरी वीकेंड आपको ओहो में साथ देना है मेरा ताकि आपकी भी एक्सरसाइज हो जाए इट फील्स लाइक कि मैं कोई जुम्बा शुम्बा करा रहा हूँ सुबह सुबह रेडियो पर बट कोई गाल नहीं ये बड़ा जरूरी है भाई सब गाना क्योंकि इसके बाद दो कॉल करनी है सब कह रहे हैं क्या हुआ बच्चे सबको बेचैनी रहेगी आज क्या हुआ हाँ जी रेडी हो जी वॉल्यूम बढ़ा के हाँ जी आ जाओ चलो जी मैं ताजा कर रहा तानू रेडी हो जी

0: हाँ जी, देखो सैड गाने पे भी नाचने के लिए कितने कितनी चीज़। एक एक बहुत अच्छी टैगलाइन है ये हमारी बहन समीरा ने भेजी और आई लव द टैगलाइन। उन्होंने बोला इन द वर्ल्ड फुल ऑफ ट्रेंड्स आई वांट टू रिमेन अ क्लासिक। ये मैं 10,000% अग्री करता हूँ। ये तो मतलब हूटर बजेगा ही बजेगा। लव द टैगलाइन, बेहतरीन टैगलाइन है ये। मैं फॉलो करता हूँ इसको बहन, मैं लिटरली अप्लाई करता हूँ। मैं दुनिया जा रही इस तरफ, मैं बिना इंडिकेटर दिए इस तरफ, ऐसा वाला सीन है। सो कम्प्लीटली एग्री। एक भाई को कॉल करनी थी, देखो जल्दी जल्दी आज कॉल करेंगे हम क्योंकि हमें फिर कहानी की तरफ जाना है। एंड आज की स्टोरी मेनली मैं चाहूँगा अगर जितनी फीमेल्स हैं हमारी बहनें सुन रही हैं उनके लिए तो ज़रूर है आज कहानी, तो वो ज़रूर ज़रूर ट्यून इन करें। आज बड़ा ज़रूरी है जी मामला बता रहा हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम, कैसे भाई?
0: भाई आज आपकी आवाज़ बड़ी दबी दबी सी लग रही है मेरे भाई की, क्या बात हो गई? किसी ने छेड़ दिया भाई को?
1: अभी ठीक है।
0: हाँ अभी ठीक, मैं कहूँ क्या हो गया आज? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। ऐसी बात हुई, दबी हुआ था है
1: यार। वो कद्दू पे बात कर रहे थे।
0: कद्दू पे? अच्छा अरे भाई भाई, वो तो हमारी टीचर साहिबा हैं, हमारी बहन को सब माफ है।
1: अच्छा टीचर साहिबा?
0: हाँ टीचर साहब है वो।
1: अच्छा ये उनको हटा के, अभी उनको हटा दीजिए, वो भी हमारी बहन ही है। वैसे ऑटो पे बात करता हूँ यार, मतलब हर महीने 1,000-2,000 पूरा बॉडी पे मुंह पे खर्चा करने के बाद अगर ये रिजल्ट आता है तो यार हम तो बहुत अच्छे हैं।
0: नहीं आपकी आपकी वैसे टैगलाइन क्या है भाई उस्मान भाई, ये बताएं आपकी टैगलाइन क्या है?
1: आप मुझे से ना हटाओ मुझे, आप सर मैं
0: मुद्दे से देखो हटाना पड़ेगा, मेरी बात को समझो, बहुत पेचीदा मामला है ये।
1: नहीं, थोड़ा सा चलो अपनी अपनी बात कर रहा था यार, मैं अपनी बीवी की बात कर रहा था।
0: अच्छा।
1: मतलब फोन कंफ्यूज हो जाता है कि असली वाली कौन सी है, वो फोन लॉक या अनलॉक होता है और मेकअप के बगैर दूसरा है वो भी, कहते हैं कौन सा असली, किसकी बात मानूं? और आपको पता है ना?
0: क्या पता है?
1: वो फेस में, मतलब फेस आप वो अनलॉक करते हो ना फेस से, तो मेकअप वाला फेस अलग है, उसके बगैर अलग है
0: भाई। क्या मेरे को तो दूरी रखो भाई इस बात से। कोई ना कोई आ जाएगा भाई, फिर मुझे जो है बहस करनी पड़ जाएगी, मेरा मन नहीं आज बहस।
1: मैं मेरे पास अभी है तो बहुत कुछ था, अभी छोड़ मैं आप नहीं सुन रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुना दो
1: एक एक एक जोक सुनाता
0: हूँ। सुनाओ।
1: एक एक एक एक बंदा होता ना अपनी बीवी के लिए जाता है जूते की दुकान में चप्पल लेने, तो उसको जब जूता लेने जाता है उसके लिए शूज, तो उसको बोलता है ये जूता मुझे दे दो, उसको पसंद करता है तो पूछता क्या साइज है, कहता है यार साइज तो पता नहीं है, तो फौरन पीछे से शर्ट उठाता है अपनी, बोलता है ये पीछे छपा होगा देख ले।
0: अच्छा ये क्रिएटिव था भाई, ये पहली बार था सुना मैंने, क्या बात है। अच्छा था, अच्छा था। नंबर नंबर

0: भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और उस्मान भाई क्या सीन है आज?
1: चलो सीन कुछ नहीं भाई, आपका जो टैगलाइन है, क्या टैगलाइन बताएं, हमारी सुनता ही कोई नहीं है टैगलाइन किसके बारे में, किसके लिए।
0: हाथ मिलाइए इसी बात पे, कोई बात नहीं भाई, चुप रहेंगे मजे करेंगे, यही टैगलाइन।
1: लेकिन लेकिन एक एक वो ये हमारा पंजाबियों का था एक पुरपाश।
0: हाँ इसका पुरपाश ये मैंने सुना है, क्या क्या मतलब था इसका?
1: पुरपाश मतलब जैसे कि क्या इसको कैसे समझाऊं आपको, मतलब आई एम डन।
0: अच्छा आई एम डन, ओके वेरी गुड, फुल स्टॉप।
1: अभी आपने मुझे रोक दिया यार, इतना मैं कब से सोच रहा था बात। चलो मैं आपको कल से जो कल थी ना एक, मैं कल जो आपको टॉपिक था, मुझे नमाज में इतना वो याद आया, बाद में मैंने कहा यार पढ़ते हुए मुझे हंसी आ रही थी।
0: ऐसा
1: आप पूछ रहे थे ना टैलेंट क्या था, हमारा एक दोस्त था, पुरानी बात है पाकिस्तान में स्कूल में ना, तो वो यूनिफॉर्म होता था शलवार कमीज, वो गवर्नमेंट स्कूल थे। तो भाई वो अभी पता नहीं बोलना चाहिए, वो ना जब जैसे शलवार कमीज पहनते आपने देखा बैठ के लोग उठते हैं तो वो कमीज फंस जाती बट में। तो भाई उसका चैलेंज था जो वो कमीज उसकी हाथ से खींच के निकालेगा वो उसको वो जीत जाएगा, शर्त लगाता था। कोई भाई निकाल नहीं पाया आज तक।
0: ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है?
1: वो कभी भाई कभी घर से कोई लंच का लाता ही नहीं था, वो शर्त जीता था, रोज लगाता था किसी ना किसी से, जो हारता था उसको उसको खाना पिलाना पड़ता था।
0: भाई आपने मेरा आपने मेरा पूरा वीकेंड जो ना इमेजिनेशन ऐसा खराब कर दिया ना, माफ नहीं करूंगा आपको।
1: आप इमेजिन करो अभी जेन में लेके आओ जरा वो सिचुएशन।
0: नहीं नहीं भाई मैं नहीं लेके आऊंगा उस्मान भाई, क्या यार उस्मान भाई।
1: यार मैंने वो दूसरा टॉपिक पकड़ा आपने वो भी नहीं
0: भाई, ये लेट कॉल करने के लिए आपने मुझे सजा दी ना भाई।
1: हाँ
0: इसकी माँ भी नहीं है भाई।
1: नहीं उसको लेट नहीं वो पहले तो मैं ही बिजी था, बच्चे थे वो नहीं उसके सामने नहीं होती कॉल। और एक दूसरी बात भाई, ये कोई सुनता तो नहीं बातें हमारी, ये जो मैं बातें करता हूँ मेरी बीवी ने सुन ली ना, तो ये आप पे आएगा सारा पेस का इंतजाम रखना।
0: मेरे पे क्यों आएगा भाई?
1: हाँ तो आपका ही शो है।
0: अच्छा अच्छा मेरे पे पाएंगे
1: आप? पुरानी पुरानी यादें वो निकाल देते हो, टॉपिक ऐसे छेड़ते हो, पूरा माइंड उधर चला जाता है, वो ही निकलती
0: है। सही है सही है।
1: ये मुझे ये जो जो मैं अपने दोस्त का किस्सा सुनाया ना, मुझे जेन में भी नहीं था, कल आपने वो सुबह बात हुई आपसे फोन पे, तो मेरे नमाज पढ़ते हुए मेरे जेन में आ रहा था यार ये भी बोलना चाहिए।
0: हाँ, हाँ, मेरी गलती है ना, आपको याद आया, क्यों मेरी गलती होगी? सही था। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई कॉल करने के लिए। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। और इनके बाद जो है क्या है, मैं ज़रा मैसेज पढ़ दूँ फिर बाकी कॉल्स की तरफ जाएंगे, लगा लो उसके बाद कॉल अभी देखते हैं। अमन भाई वालेकुम अस्सलाम, वही तो अमन भाई क्या करें। एक मैसेज कबीर भाई, जब पाकिस्तान जाता हूँ तो ट्रक्स बाइक्स और रिक्शे के पीछे जो टैगलाइन लिखी होती है मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है, उसमें से एक का दिखा था 6 दिन फारिग और छोटी, क्या क्या मतलब हुआ इसका? टैगलाइन तो अच्छी लग रही है पर इसका मतलब क्या है? सैयद अली हैदर शाह साहब ने मुझे मैसेज किया, मैसेज आज का फंडा क्या भाई, टैगलाइन क्या है आज की आपके मूड के हिसाब से? एक सब मैसेज आया इन्होंने मेरे पे मीम बनाया, समीर भाई कहते गुड मॉर्निंग, कहते बच्चा वाला सीन क्या है? अरे तड़पो थोड़ी देर में बताऊंगा। एक मैसेज पाजी चस करा दी, थैंक यू वीर जी, वीडियो बना के भेजा है भाई रिजवान भाई, बहुत सारा प्यार आपको। और प्रिंस भाई ने टैगलाइंस भेजी हैं, आज की टैगलाइन हो सकती है ना छेड़ो हमें हम सताए, मैं तो सताया हुआ हूँ भाई। और लिखते हैं लिसनर्स के लिए जिन्होंने जिन्हें गॉसिप चाहिए, जो जगह सुपाया जो सोया वो खोया, आज एक्चुअली में ऐसा ही हुआ है, जो जगे रहे उनको पता है आज क्या हुआ है। इरफान अली भाई सबको सब सुनो सबकी करो अपनी तला भाई, इरफान भाई आपका दुख डिस्कस करेंगे, हैव अ लवली वीकेंड छोटे इरफान। और फरहत भाई वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारा प्यार। And what all messages I'm getting? Good morning, please share the story. Sayyid Bukhari sir message kiya hai, zindagi na milegi dobara. Hakim bhai keh rahe hain. Baat to sahi hai aapki. Actually, main I am running a little late. Lekin sabko call kar liya na maine. Almost I'm there. Ek message hai, bahut bahut shukriya Kabir bhai. Allah pak aapko ajr azim se nawaze. Bahut bahut shukriya bhai. Bahut sara pyar. एंड एक और मैसेज आया था मेरे पास, मेरी तक ये है, अरे यार कहाँ फंस गया, नज़ारा आपके सामने है पर आपने फ़ोटो अच्छी खींची है उमर फारूक भाई, ये आई गिव यू दैट। एंड क्या कभी डू यू स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू, ये क्या है?

0: What is this? What is this behavior? भाई संडे को सब लोग 6 बजे ऑनलाइन आने वाले. हाँ भाई, जो जो नहीं उठे उनको नहीं पता सुबह के गॉसिप मिलेगी नहीं.
1: अब सब पूछ रहे हैं, अरे क्या हुआ बच्चे के साथ, मुझे पहले बताओ क्या करके गया वो, कोई बताएगा मुझे? दरवाजा पीट रहे, बताओ बताओ.
0: नहीं बताऊंगा. सुबह क्यों नहीं उठे, मेरी गलती थोड़ी है, ये फोन ना बच्चों को खराब करा. एक मैसेज, सॉरी जैस भाई, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू. जनाब खैरियत से हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाइए क्या हाल है?
2: बस अल्हम्दुलिल्लाह भाई बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है. दुआएं आप भाई की.
0: हाँ जी भाई साहब, तो क्या है आपकी टैगलाइन?
2: भाई टैगलाइन जो है ना हमारी, बड़ी सिंपल सी, बड़ी छोटी सी है.
0: बता दो.
2: बस सुनते जाओ मुस्कुराते जाओ.
0: अच्छा.
2: बस सुनते जाओ मुस्कुराते जाओ, आवाज़े कबीर भाई.
0: अच्छा, ये मेरे लिए है या आप पे तो लागू नहीं हो रही है? तो मेरी
2: आपके लिए, आपके लिए भाई, क्योंकि हम जो है ना सुबह सुबह जो उठते हैं आते हैं वो. हाँ. तो आपके आवाज के लिए.
0: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं तो अभी अभी आपको जमाल भाई से मिलता हूँ. जमाल शेख साहब सुन रहे हैं? एक अभी गाढ़ा उर्दू में ऐसा शेर फेंक के मारेंगे ना आप. होश उड़ जाएंगे आपके. आप ही रुक जाओ,
2: वो तो आज कहीं और छूटने वाले हैं भाई साहब. आज जो है ना आवाज 4 मीनार तक जाएगी.
0: आज तो बहुत दूर तलक तक जाएगा मामला, ये तो बात पक्की है.
2: आवाज जो है ना 4 मीनार तक. और कसम से भाई सीधे, इसलिए आज मैं सोच रहा था सुबह जब मैं उठा, जब मैंने आपको मैसेज करा था ना उससे पहले मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा कोई ना कोई कांड ना हो जाए.
0: देखो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप मेरे शो सुन रहे हैं ना तो ये हैव टू बी ऑन टाइम, क्योंकि मेरे शो में कुछ भी हो सकता है. इतने रंग है ना कि वो उस रंग से कुछ भी बना सकते हैं लोग. हमारे यहाँ ऑरेंज भी हो सकता है सूरज और येलो भी हो सकता है. क्या बात बोल दी मैंने यार.
2: आज लाल होगा, आज लाल होगा,
0: आज लाल था. ग्रहण लग गया. हाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए टाइम पे उठा करें इस शो में, ये सबसे बड़ा फायदा.
2: मैं तो टाइम पे उठ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेट हो जाता हूँ, चिपक जाता हूँ.
0: आपकी गलती है भाई. फिर हम आज तो मैंने बता दिया आपको, फिर भी गॉसिप आगे से नहीं दूंगा.
2: हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, बिल्कुल ऑन टाइम रहेंगे, टेंशन मत.
0: ठीक है जैसे भाई, तो फिर कहानी सुनिएगा आज की, बहुत जरूरी है. ओके
2: हाँ इंशाल्लाह.
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़.
2: ओके ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़.
0: और आज की गॉसिप देने के लिए इश्तियाक उस्मानी भाई ने तय कर दिया है प्राइस. कह रहे हैं मैं बता दूंगा सबको, लेकिन 500 का तरीका लूंगा पर पर्सन. अच्छा गॉसिप मेरी आप सही है, बिजनेस खोल लिया इन्होंने बीच में. एक मैसेज, भाई मैं पॉपकॉर्न लेके बैठा हूँ, स्टोरी शेयर कर दो. और हमजा भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग कबीर ब्रो, टैगलाइन बी लाइक दुनिया चलती रहेगी अपनी गाड़ी चलती रहेगी. हमजा भाई ये लोग जब जलेंगे तभी तो गाड़ी चलेगी. सही बात है. आज की टैगलाइन, बच्चा बनूं कॉल करूं 107 पर. कमाल भाई कह रहे हैं बच्चा बनूं कॉल करूं 107 पर. मुमताज भाई क्या कह रहे हैं? मुमताज भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग हैप्पी वीकेंड कबीर भाई, आप ये बोलो लो लो ये भी मेरी गलती है. आपके 2 लिसनर्स हो गए. फिर बोलो लो लो मेरी, बताओ मेरी गलती थोड़ी है, ये लोग हंस रहे हैं. एक मैसेज और है भाई, सवेरे सवेरे किसी बच्चे को बच्चे ने हमें चिढ़ दिया भाई, हमने किसी को नहीं चिढ़ा. एनी वे तो आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम. आसिफ भाई मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ चलेगा, क्योंकि मुझे कहानी सुनानी, एक मैसेज है एंड नॉट रिलेटेड बट रेस्ट इन पीस. या आई वुड हैव टू फाइंड अ वे टू फिगर आउट दिस स्टोरी सेपरेटली. एक मैसेज है, खुश तो बहुत हो गए आज अब्दुल रऊफ भाई. और अब्दुल रऊफ भाई तो बहुत खुश आज. सलाम वालेकुम अस्सलाम. और नाउ स्टोरी की बारी है. सो कमिंग बैक टू दिस, जितने भी आप फीमेल्स आज सुन रही हैं, जितनी हमारी बहनें आज ट्यून इन करने वाली हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा आज की स्टोरी के लिए. वो ज़रूर ट्यून इन करें, बिकॉज ये स्टोरी जो है हो सकता है उन्हें बहुत अच्छी लगे. दिस इज़ अ वेरी विमेन सेंट्रिक स्टोरी. इसके बाद बहुत सारे सवाल जवाब भी हो जाएंगे, पर मज़ा बहुत आएगा. एक वैसे आपका काम बनता ट्रैफिक में जाए जनता. अमन भाई एकदम ठीक. आज की टैगलाइन ऑफ द थर्सडे, बैटरी सेवर मोड ऑन. अजाज भाई आज तो लगा ही रहेगा भाई चार्जर के साथ. चलो जी, तो अगर आप लाइव सुन रहे हैं एंड स्पेशली अगर बहनें सुन रही हैं तो प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिएगा, बिकॉज आई वांट यू टू लिसन दिस स्टोरी. ये बहुत ख़ास स्टोरी है, ठीक है. और वीकेंड की वाइब तो हम जाने देंगे नहीं किधर भी, ऐसी वाइब बना के रखेंगे ना भाई. हाँ खब्बे सज्जे, इधर भी उधर भी, दोनों साइड से भाई साहब, और दोनों तीनों स्पीकर जितने लगे हुए हैं मौजना करा दी तो कहना. सुखविंदर भाजी और विशाल ददलानी. हाजी इस गाने के उस पर आज का किस्सा. नुसरत बहन वालेकुम अस्सलाम वेलकम, जरूर सुनिएगा अच्छी कहानी।

हाँ जी, तो अब तो जा रहे हैं आप एनर्जी थोड़ी, मैं सोच रहा था बैटरी चार्ज कर दी जाए ना, मतलब फील होनी चाहिए कि सुबह है, वीकेंड है। तो अब जस्ट डायरेक्टली टू द स्टोरी, सीधा मुद्दे की बात। जैसे मैंने कहा कि आज बड़ी ही फीमेल सेंट्रिक स्टोरी, एंड आई वांट ऑल द लेडीज, ऑल द फीमेल्स, मेरी बहनें सुने, तैयार हो जाएं। और कुछ मैसेज आ भी चुके हैं तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा, लेकिन फोकसिंग ऑन द स्टोरी। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है। FM107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड इसलिए ये बहुत हैरत अंगेज भी है। तो जरा वॉल्यूम बढ़ा के सुनिएगा। हाँ चलो, आई डोंट नो कि किन्होंने कितने उन्हें इनका नाम सुना होगा नहीं सुना होगा। अगर आप नाम सुने तो अभी फौरन सर्च करने मत चले जाइएगा, बाद में करिएगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू जस्ट ब्लेंड विद द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड इट कि क्या क्या है। तो आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए तो मुझे बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा, तो मैं आपको भी अपने साथ ले चलता हूं 1800s में। यह किस्सा है जो शुरू होता है, इसकी शुरुआत है 1864 से, और एक बहुत ही छोटी सी जगह से, कॉकरन करके एक जगह थी, और वहां पे एक लड़की का जन्म हुआ। बहुत सारे नाम थे और बहुत सारे नाम आगे जाके मिले भी, मगर जो पैदा होने के बाद नाम मिला था पहला, वो था एलिजाबेथ जेन कॉकरन। एलिजाबेथ जेन कॉकरन, इसके बाद बहुत सारे नाम मिले शुरुआत से ही, और क्योंकि जिस दौर में ये पैदा हुई थी, एक लड़की का पैदा होना और उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रूल्स लागू होना 1800s में बहुत आम बात थी, मगर ये कुछ अलग थी। शुरुआत से एलिजाबेथ फुल अटेंशन गेन करने वाली बच्ची थी शुरुआत से, और ये चीज माँ ने नोटिस करी थी, और उन्होंने अपनी बेटी पे कोई भी बंदिश, किसी भी किस्म की बंदिश नहीं लगाई। उन्होंने कहा, बेटी आई कैन क्लियरली सी इट कि कुछ तो अलग बात है, और कभी भी अपनी बेटी को ब्राइट कलर्स पहनने से नहीं रोका। देखिए, आपको अभी सुनने में लग रहा होगा ब्राइट कलर्स पहनने से रोकना कोई बड़ी बात थोड़ी है, मतलब ब्राइट कलर्स पहनना तो बहुत आम है, नहीं। 1800s में इट वॉज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, बहुत अलग बात थी। जिस जमाने में सारी की सारी औरतें, लड़कियां किसी भी एज की हों, स्पेशली कॉकरन पेंसिल्वेनिया में, औरतें मोनोक्रोन, एक ही सिंपल शेड्स ऑफ ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, वाइट पहन रही थी, क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती थी कि उन्हें यही पहनना है। ब्राइट कलर्स अलाउड नहीं थे उस दौर में। एलिजाबेथ को एक निकनेम मिला पिंक, ना सिर्फ एक निकनेम मिला बट उनकी मां ने उन्हें अलाउ किया, शी कैन वेयर पिंक, ब्लूज, ग्रीन्स, येलोज, व्हाटएवर शी लाइक। एलिजाबेथ जो थी उनके टोटल 13 भाई बहन थे, तो अलग लगने की आदत तो शुरुआत से थी, और वो अलग लगने की आदत ऐसी हुई कि माँ बाप ने भी कहा कि हाँ तुम अलग हो, तो भरोसा दिखाया। अब एक और चीज बता दूं आपको, एलिजाबेथ का नाम जो है एक और नाम था, नेली ब्लाय। इस कहानी में यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे कैरी करिएगा अपने दिमाग में। टाउन का नाम भी, पूरे टाउन का नाम उनके वालिद साहब के नाम पे था। कॉकरन पेंसिल्वेनिया का नाम ही पड़ा था माइकल कॉकरन के नाम से, और वो जज थे। मगर जब सिर्फ 6 साल की थी नेली ब्लाय, तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार नेली ब्लाय ये तो बहुत अमीर घराने से है, मतलब उनके बाप के नाम पे टाउन का नाम है, ये कितनी बड़ी बात है। मगर अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये 1800s वाला टाइम था। हालांकि शुरुआत में बहुत पैसा था, पर उनके गुजर जाने के बाद, क्योंकि कोई विल नहीं थी किसी किस्म की, वो पीछे कुछ छोड़ के नहीं गए थे, तो भले ही टाउन का नाम उनके बाप के नाम पर था, मगर उनके हिस्से में कुछ नहीं आया सिवाय गुर्बत के। बहुत बहुत मुश्किलें शुरू हो चुकी थी, क्योंकि घर में सिर्फ मां और पीछे 13 बच्चे इंक्लूडिंग ब्लाय। नेली ब्लाय की जो मां थी उन्होंने दूसरी शादी करी, उन्होंने सोचा कि जिंदगी को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन वो शादी टिकी नहीं, इनफैक्ट बर्बादी में तब्दील हो गई। जिनसे उन्होंने शादी करी वो काफी वायलेंट बंदा था, और फैसला ये हुआ कि अलग होना ही पड़ेगा।
और उनकी माँ ने फौरन सेपरेशन के लिए फाइल कर दिया। आप कोर्ट रूम का सिनारियो समझिएगा, 1800 सही है, जिस टाइम पे लड़कियों को मौका नहीं दिया जा रहा था पढ़ने का, ना अपने पसंद के कलरफुल ब्राइट कपड़े पहनने का, उस दौर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कोर्ट रूम में नेली ब्लाई की माँ खड़ी थी जो सेपरेशन के लिए फाइल डाल चुकी थी, और गवाही देने के लिए उस वक्त कोर्ट में मौजूद थी एक लड़की नेली ब्लाई, सिर्फ 14 साल की। और ये पहली बार था कोर्ट रूम में कि एक लड़की महज 14 साल की गवाही दे रही थी और बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल रही थी। शी वॉज ऑनेस्ट, शी वॉज विटी, एंड इस मुश्किल एकदम एंग्शियस वाले मोमेंट में भी उन्होंने इतनी अच्छी गवाही दी कि पूरे कोर्ट रूम ने तालियां भी बजाई, एंड इस सिचुएशन से उन्होंने अपनी मां को बाहर भी निकाला। मगर इस पूरे कोर्ट की सिचुएशन ने, कोर्ट कचहरी के मसले ने ब्लाई के दिल में और जिंदगी में कुछ चेंज कर दिया, कुछ ट्रिगर कर दिया, उनके दिमाग की वायरिंग और बदल दी। ऑलरेडी नेली ब्लाई कुछ ना कुछ अलग करना चाहती थी, बचपन से ही दिख रहा था कि कुछ इस बच्ची में अलग है, मगर फिर कुछ वायरिंग बदल गई। क्योंकि नेली ब्लाई जिस दौर में थी, आपको समझना पड़ेगा, औरतों के लिए उनका सपना, एम्बिशन, ये सब कुछ नहीं होता था। एक टारगेट होता था उनका, बस एक टारगेट, शादी। पर नेली ब्लाई ने अपनी मां की हालत को देखा और बचपन में वो ज्यादा समझ नहीं पाई, उन्हें मगर एक चीज क्लियर हो गई थी कि शादी हो के वो अच्छी चलेगी ही चलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। सो शी डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि हां, मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन पहले मैं अपने पैरों पे इस कदर खड़ी हो जाऊंगी, मैं इस कदर अपना नाम बना लूंगी कि कोई मुझे गिरा ना सके। नेली ब्लाई ने अपनी मां से जिद करी कि उन्हें स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, अपने करियर को टीचिंग के सेक्टर में बनाने की कोशिश करी। उस दौर में सिर्फ एक ही करियर था औरतों के लिए, और वो करियर था टीचिंग का, जो बहुत ही सेफ माना जाता था, बहुत ही, ना सिर्फ सेफ बल्कि यही एक था जो लंबे दौर तक चल सकता था, क्योंकि बाकी जगहों पर नौकरी मिलती नहीं थी, मिलती थी तो इतनी पगार नहीं होती थी, सैलरी नहीं दी जाती थी। बहरहाल नेली ब्लाई एक बहुत अच्छी राइटर थी, मगर अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। I know you're trying to make a sense out of it, लेकिन ये सच है, वो एक अच्छा लिखने वाली जरूर थी लेकिन attentive student नहीं थी। एक ही semester के बाद situation बड़ी खराब हो गई। Situation खराब ऐसी हुई कि उनकी माँ के पास अब ट्यूशन की फीस देने के पैसे नहीं थे, तो पढ़ाई ऑब्वियसली नामुमकिन हो गई। उन्होंने नेली से कहा, नेली देखो, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, तुम टीचर बनना चाहती हो, मगर तुम्हारी जरूरत है घर पे, पीछे 12 भाई बहन है, सबका ख्याल रखना है। नेली ब्लाई को घर वापस बुला लिया गया, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, और मां और बहनों के साथ वो शिफ्ट हो गई पिट्सबर्ग, जहां उन्होंने बोर्डिंग हाउस का एक सिस्टम शुरू किया, मेंटेनेंस शुरू किया कि थोड़ी बहुत इनकम आती रहे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और ये काफी खूबसूरत इत्तेफाक है उनकी जिंदगी का। एक दिन हुआ ये कि नेली ब्लाई, जिनके दिल में बहुत कुछ था, वो ऐसी घूम रही थी, टहल रही थी सुबह सुबह, एंड टहलते टहलते उनकी नजर पड़ी एक अखबार बेचने वाले पर। वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा हुआ था और अखबार बेचने के लिए बस निकल ही रहा था, बिकॉज इट वॉज अर्ली मॉर्निंग। एंड कभी भी जिंदगी में नेली ब्लाई ने न्यूज़पेपर को देख के ये नहीं कहा कि आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, शी नेवर केयर्ड अबाउट इट, कि लोग छाप रहे हैं छापने दो, मगर इस दिन कुछ तो ट्रिगर हुआ। उन्होंने कहा, एक सेकेंड, न्यूज़पेपर ही पढ़ लेती हूँ टाइम पास के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक्सक्यूज मी, वन न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर फौरन सुबह सुबह उन्होंने लिया। मगर एक और इत्तफाक हुआ, जब न्यूज़पेपर उन्होंने खोला तो न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन ने ब्लाई को गुस्से से भर दिया। उस पर लिखा हुआ था, व्हाट गर्ल्स आर गुड फॉर, लड़कियां क्या कर सकती हैं, उनकी हदों की एक लिस्ट लिखी हुई थी। और वो पढ़ के नेली ब्लाई का खून उबल गया। इतनी मुश्किल से वो शांत हुई थी, अपनी सिचुएशन को उन्होंने मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, एक किस्म की हार मान चुकी थी, लेकिन इस हेडलाइन ने कुछ छेड़ दिया, कोई तार छेड़ दिया। उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, उन्होंने हेडलाइन के नीचे पूरा कॉलम पढ़ा, औरतों को सिर्फ घर पे रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और वर्किंग वुमेन जो होती हैं, राइटर ने उनके बारे में लिखा कि दिस इज मॉन्स्ट्रोसिटी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गलत है। एंड ये सब पढ़ के शी वॉज सुप्रीमली एंग्री,
अब उनको हिम्मत आ गई, उन्होंने कहा मैं तो इसका रिप्लाई दूंगी। एंड रिप्लाई देने के लिए, क्योंकि उस दौर में लोग न्यूज़पेपर को अगर कुछ भेजना चाहें तो भेज सकते थे, तो रिप्लाई दिया इस कॉलम का नेली ब्लाई ने। उन्होंने नाम दूसरा चूज किया, नाम रखा लोनली ऑर्फन गर्ल। और इतना डेंजर रिस्पॉन्स भेजा न्यूज़पेपर वालों को कि अखबार का जो एडिटर था उनका नाम था जॉर्ज मेटन, उनकी नज़र पड़ी हजारों के रिस्पॉन्स में इस वाले रिप्लाई पे जो नेली ब्लाई ने भेजा था। और अब वो मिलना चाहते थे, ये लड़की कौन है, इतनी हिम्मत ये है कौन। पर क्योंकि नाम असली नहीं था तो कांटेक्ट निकालना बड़ा मुश्किल था, और दिस इज 1800, सो इंटरनेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे ढूंढेंगे। मगर वो इतने इंप्रेस हो चुके थे एज एन एडिटर कि उन्होंने अगले दिन अखबार में एड दिया, और एड में लिखा कि लोनली ऑर्फन गर्ल, तुम जो हो जहां हो कांटेक्ट करो, बात करनी है। और अगले दिन अखबार पढ़ने की जो आदत लग चुकी थी, अखबार वापस नेली ब्लाई ने लिया और उन्होंने देखा कि उनकी नजर उन पे नजर पड़ चुकी है इस एडिटर की। खैर वो मिली, और नेली ब्लाई ने जब कांटेक्ट किया तो उन्हें बाकायदा नौकरी दी गई अखबार में काम करने के लिए, एक कॉलम दिया गया, मगर उस पे एक शर्त रखी गई। ये जो जॉर्ज मेटन नाम का बंदा था अखबार का एडिटर, इसने कहा कि देखो तुम लड़कियों में फिर भी तुम्हें नौकरी दे रहा हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अच्छी सैलरी दूंगा पर क्या तुम एक असाइनमेंट कर पाओगी। एंड नेली ब्लाई तो पहले से ही उसे गलत साबित करना चाहती थी, वो तो चाहती थी प्रूव करना कि कोई ऐसा काम नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा यस टेल मी व्हाट आई नीड टू डू। तो न्यूज पेपर ने साफ कहा कि $5 हर हफ्ते मिलेंगे तुम्हें, मगर तुम्हें हमारे लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। जिस लड़की ने कभी जिंदगी में जर्नलिज्म पढ़ा नहीं था, जो जानती नहीं थी, सिर्फ ठीक ठाक लिख लेती थी, उसको अचानक से इतना बड़ा काम मिल जाना उस दौर में बहुत बहुत बड़ी बात थी। सबसे पहला मिशन उनका यह था कि अंडरकवर जर्नलिज्म करना था उन्हें। वो एक फैक्ट्री में गई उसके हालातों पे रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक रिपोर्टर बन के नहीं, वहां पे वो काम करने वाली बन के गई और एक महीने के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करके लौटी। उन्होंने वहां पे काम कर रही औरतों की कंडीशंस को पूरी उसकी रिपोर्टिंग करी और सब कुछ बताया, और ये अखबार में छापा। और जब ये अखबार में छपा, लोगों ने पढ़ा कि एक औरत ने रिपोर्टिंग करी है बाकी औरतों के हक में, तो ये बहुत बड़ी बात थी। इट वॉज अ ह्यूज थिंग। और चीजों को बदलने में देर नहीं लगी, हालात धीरे धीरे लोगों को डर से, नेली ब्लाई के डर से सुधारने पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नेली ब्लाई जो है सोसाइटी के लिए बहुत डेंजर बनती जा रही है। हो ये रहा था कि अखबार को डर था कि हमारे यहां एक लड़की रिपोर्टिंग कर रही है तो कहीं हम ही ना फंस जाएं, क्योंकि ऐड देने वाली जो कंपनी थी जो अखबार में ऐड देती थी वो अपने हाथ पीछे खींच रही थी। तो अखबार वालों को लगा भाई ये लड़की बेबाक तो है लेकिन हमें डुबवा ना दे। तो उन्होंने कहा कि हम आपके सेगमेंट चेंज कर रहे हैं, आप उसमें लिखो जिसमें लड़कियों को लिखना चाहिए, फैशन पे लिखो, सोसाइटी पेजेस पे लिखो। मगर ब्लाई वॉज नॉट हैप्पी कि नहीं ये सब नहीं करूंगी मैं। 1887 में जब वो सिर्फ और सिर्फ 23 साल की थी, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के फैसला किया कि वो अकेले ही न्यूयॉर्क की तरफ चली जाएंगी। और उनकी मां ने सवाल भी नहीं किया, उनकी मां देख सकती थी कि नेली ब्लाई की आंखों में कुछ एक चिंगारी नजर आ रही है और वो बस आग शोला बनने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने इजाजत दे दी और ये 23 साल की लड़की न्यूयॉर्क अकेले पहुंच गई। जस्ट इमेजिन 1800s में ही हो रहा था, 1800s में। जब वो पहुंची न्यूयॉर्क में तो थोड़ी बहुत सेविंग थी उनके पास, ज्यादा था भी नहीं, और महीनों तक वो नौकरी ढूंढती रही, महीनों तक। मगर वो जिद्दी दिमाग मान नहीं रहा था उनका कि वो वापस लौट जाए, और इस वजह से ऑफिस दर ऑफिस इंटरव्यू दे दे के उनकी तलाश तकरीबन 4 महीने के बाद पूरी हुई। एक अखबार था न्यूयॉर्क का, वर्ल्ड, न्यूयॉर्क वर्ल्ड के नाम से। इस अखबार ने भी असाइनमेंट तो दी लेकिन एक बहुत भारी शर्त रखी। इसके जो ओनर थे उनका नाम था जोसेफ पुलिट्ज़र, और यह अखबार कोई छोटा मोटा अखबार नहीं था, पिछले वाले अखबार के मुकाबले ये बहुत बड़ा अखबार था। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ नेशनल न्यूज़पेपर। और काम बहुत बड़ा था,
दरअसल 19th सेंचुरी के आखिर में आते आते जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स थे, जो पेशेंट्स थे, उनको लोग समझ नहीं पाते थे उस दौर में. अभी तो हर चीज़ का, हर मेंटल डिसऑर्डर का इलाज है या कुछ ना कुछ हम उसके करीब हैं, हम समझते हैं कि मेंटल स्टेट इंसान की क्या होती है. उस दौर में नहीं समझते थे. उस दौर में मेंटल डिसऑर्डर अगर कुछ है तो सोसाइटी समझती थी कि इनको बंद कर दो, दुनिया से दूर रखो, इन्हें कैद ही बना लो. और जब ऐसा होता था तो उस दौर में पेशेंट्स को भेजा जाता था, स्पेशली औरतों को, एक जगह पर. वो जगह थी विमेंस लूनेटिक असाइलम, ब्लैक वेल्स आइलैंड पर. अच्छा, ये जो असाइलम था इसकी कंडीशन के बारे में अखबार जानना चाहता था, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल रही थी, वो अंदर जा ही नहीं सकते. तो उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन हमेशा मना कर दिया गया. एडिटर ने कहा नेली ब्लाई से कि अगर तुम चाहती हो ना कि हमारे साथ काम करो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, मगर तुम्हें इस असाइलम में, मेंटल असाइलम में जाके रिपोर्ट करनी पड़ेगी. मैं नहीं जानता तुम कैसे करोगी, बट अगर तुम कर लेती हो तो जो तुम बोलो. अखबार वालों को लगा कि ये मना कर देगी, वो जानते नहीं थे नेली ब्लाई को. नेली ब्लाई ने कहा ऑफकोर्स नो प्रॉब्लम, मुझे 2 हफ्ते दीजिए. 2 हफ्ते का वक्त मांगकर नेली ब्लाई जो थी और कुछ एडवांस में कैश लेकर एक जगह पर ठहरी और वहां पे प्रैक्टिस करने लगी. प्रैक्टिस कर रही थी एक्टिंग की, फेशियल एक्सप्रेशंस, ताकि लोग उनको मेंटली इल माने. शी वॉज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट कि पूरी तरह से उनकी एक्टिंग पे लोग मान जाए. और महज 4-5 दिन एक्टिंग करने के बाद वो एक बोर्डिंग हाउस में गई. जानबूझ के उस बोर्डिंग हाउस में जाके वहां पे उन्होंने एक्टिंग करना शुरू करी. हर चीज से डरने की एक्टिंग कर रही थी. लोग समझ रहे क्या औरत आ गई, क्या कर रही है, इसको क्या हो गया है. और जानबूझ के दीवार के सामने घंटों घंटों खड़ी रहती थी. घंटों घंटों खड़ी हुई है तो खड़ी हुई है. लोग कह रहे हैं हेलो एक्सक्यूज मी मैडम मैडम, लेकिन वो हिल नहीं थी. एक्टिंग इतनी सॉलिड कि लोग सच में डर गए और लोगों को सच में लगा कि कहीं इसको कुछ मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है. एंड शी डिड हर बेस्ट, मतलब ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस. एंड गेस व्हाट, ये तरीका काम कर गया. जो हेड था उस बोर्डिंग हाउस का, उसने तुरंत पुलिस को बुलाया क्योंकि वो बहुत डर चुका था. और पुलिस वाले वहीं लेकर गए जहां पे नेली ब्लाई जाना चाहती थी. मगर उससे पहले बेलव्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एग्जामिन करना था. और यहां पर भी एक्टिंग करना बहुत जरूरी थी क्योंकि यहां पे डॉक्टर्स तो पकड़ लेंगे. लेकिन ब्लाई ने बोला डॉक्टर्स को, देखिए डॉक्टर साहब मुझे एमनीजिया है, मुझे कुछ याद नहीं है. आप लोग क्या बात कर रहे हैं, ये लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं, क्या हुआ है. और डॉक्टर्स को लगा कि अरे इसको तो 15 मिनट का भी याद नहीं है, इसे तो क्या ही बात करें, भेजो इसको आइलैंड. और ब्लाई, नली ब्लाई को मेंटल असाइलम में भेज दिया गया. एंट्री करते के साथ ही नली ब्लाई को समझ में आया कि पेशेंट्स की हालत यहां पे सच में खराब कर रखी है. और इनफैक्ट ये औरतें जो यहां पर भेजी गई हैं, ये तो लग भी नहीं रही किसी तरीके से मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही हैं. यहां आकर लेकिन ब्लाई ने कोई एक्टिंग नहीं करी कि वो बीमार हैं, उनको कुछ हो गया है. इसका फायदा हुआ क्योंकि उनका नॉर्मल रहना लोगों को लग रहा था कि पागलपन है. जस्ट इमेजिन, उन लगा रही है एक्टिंग कर रही है यहां से निकलने के लिए, है इसके अंदर प्रॉब्लम. तो ये चीज भी उनके हक में काम कर गई. इस मेंटल असाइलम में रहने का तो उन्होंने सोच लिया था, ये नहीं सोचा नेली ब्लाई ने कि वो निकलेंगी कैसे. आ तो गई है रिपोर्टिंग करने के लिए. और डेली लाइफ उन्होंने एज अ पेशेंट यहां पर बिताई. आइस कोल्ड बाथ मिल रहा है वहां पे, क्योंकि इलाज तो है नहीं, तो वो पेशेंट्स के सर पे बिल्कुल बर्फीला पानी डाल रहे हैं, फ्रीजिंग, दांत टपकपा रहे हैं, बकेट भर भर के आइस के पानी से नहलाया जा रहा है. उन्हें लग रहा है कि पता नहीं शायद दिमाग खुल जाएगा, कुछ हो जाएगा. पीने का पानी साफ नहीं है, रहने के हालात खराब हैं, ब्रेड एकदम ईंट जैसी, पत्थर जैसी हो चुकी है. पेशेंट्स के पास चूहे रेंग रहे हैं. और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो बेचारे बंधे हुए हैं. और कुछ को सोने के लिए हार्ड बेंचेस हैं. ये सारे हालात जो थी वो डेली रिपोर्ट कर रही थी, लिख रही थी अपने पास. और उन्होंने ये लिखा कि पेशेंट्स को बिगाड़ा जा रहा है, इनफैक्ट ये पेशेंट्स लग भी नहीं रही है. उन्होंने बाकायदा पेन और पेपर लेकर एक पूरा कॉलम लिखा. और उस कॉलम में लिखा कि जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा, कि एक लड़की ने यह कॉलम लिखा है, वो चाहे वो फिजिशियन क्यों ना हो, मैं उनको चैलेंज करती हूं कि एक सेहतमंद इंसान को इस मेंटल असाइलम में 1 महीने के लिए भेजिए और दूसरे महीने आपको मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट मिलेगा. ब्लाई वहां पे 10-12 दिन रही. लेकिन 10-12 दिन के बाद अखबार को लगा कि लड़की कुछ तो जादू कर रही है. अखबार वालों ने कॉल करके मेंटल असाइलम से जुगाड़ करके
उन्हें बाहर निकलवाया। 2 हफ्ते लगे सब कुछ पब्लिश होने में और काफी बड़ी रिपोर्ट तैयार की नेली ब्लाई ने। और जब ये रिपोर्ट छपी न्यूयॉर्क वर्ल्ड के अखबार में तो अटेंशन बहुत जबरदस्त मिली। इसकी वजह से कई सारे लोग गुस्से में थे क्योंकि लोगों को लगा अरे ये सब होता है मेंटल असाइलम में, तो नेली ब्लाई वॉज अ हीरो। मतलब ग्रैंड ज्यूरी सबको सब हैरान थे। न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी एंड करेक्शंस ने कहा ये औरत कौन है जिसने रिपोर्ट किया, उसको बुलाओ। और बुलाकर उनसे पूछा कि मैडम क्या क्या आपको चेंजेस चाहिए, आप हमें बताइए क्या क्या चेंजेस चाहिए। नेली ब्लाई के चक्कर में $1 मिलियन बजट बढ़ाया गया फैसिलिटी के लिए। एंड ये मैं अर्ली 1900s की बात कर रहा हूं। 1 मिलियन बजट बढ़ा देना, वो भी किसी औरत के कहने पे, वॉज समथिंग नोबडी हर्ड। ये बहुत बड़ी बात थी। उनकी वजह से असाइलम की कंडीशन सेफ और इंसानों के रहने लायक बनी। नेली ब्लाई एक नेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी थी, सोसाइटी के लिए तो वो बहुत बड़े हीरो थे। इसके बाद भी अंडरकवर जर्नलिज्म उनका जारी रहा। उन्होंने बहुत से पर्दाफाश किए। रिश्वत लेने वालों के लिए तो वो बिल्कुल जहर हो चुकी थी, सरकार से भी लड़ बैठी। नेली ब्लाई के पास लफ्जों की कोई कमी नहीं थी, टॉपिक की कोई कमी नहीं थी और ऊपर से बहादुरी की भी कोई कमी नहीं थी। 1888 में वो सिर्फ जब 24 साल की थी तो उनको एक आइडिया आया और ये आइडिया बहुत बहुत अलग किस्म का आइडिया था। वो दुनिया घूमना चाहती थी और आप जानते हैं दुनिया घूमने का आइडिया क्या कहां से आया, दिस इज इंटरेस्टिंग। उन्होंने जूल्स वार्न नाम के एक बंदे के बारे में पढ़ा जो कि फिक्शनल कैरेक्टर है, असली भी नहीं है, नकली कैरेक्टर है। उसके बारे में पढ़ा कि उसने दुनिया घूमी, वाह वाह वाह। और उसका राइटर फिलीस फॉग ने लिखा ये आदमी घर से निकला दुनिया घूमी। एक फिक्शनल कैरेक्टर को पढ़कर इन्होंने ठान लिया कि मैं दुनिया घूम के दिखाऊंगी। पर कैसे घूमेंगी, एडिटर्स के पास गई वो और उन्होंने अपने अखबार वालों को बोला कि आप जो है मुझे दुनिया घूमने के लिए भेजिए, मैं रिपोर्टिंग करके लाऊंगी और ये अखबार आपका हिट हो जाएगा। एडिटर्स डर गए कि अरे इस औरत की इतनी हिम्मत, ये कैसे सोच सकती है ऐसा, उनको हजम ही नहीं हो रहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं आइडिया अच्छा है, हम किसी आदमी को भेजते हैं, तुम मत जाओ। अब बोला आप महिला हैं, आप एक औरत हैं, आप कैसे जाएंगी, हम कैसे छोड़ दें आपको, आपको कोई प्रोटेक्टर लगेगा, आपके साथ कोई होना चाहिए, इतना सामान आप कैसे पैक करके ले जाएंगी, ये तो आदमी कर पाएगा, आप बैठिए बैठिए, आइडिया अच्छा है आपका। पर नेली ब्लाई रुकने का नाम नहीं लेनी थी। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप किसी आदमी को ही भेजिए, मैं दूसरे अखबार को ज्वाइन करती हूँ और वो मुझे भेजेंगे। एंड शी हैज़ द पावर, शी हैड द पावर टू से दिस, वो बोल सकती थी ऐसा। साल भर बीत गया, बहस करते करते एडिटर्स ने घुटने टेक दिए और नेली ब्लाई ने कन्विंस कर लिया। उस टाइम औरतें ये सब नहीं सोच सकती थी। 1899 में, नाउ लिसन टू दिस रियली केयरफुली, 1899 में नेली ब्लाई ने अकेले एक जहाज पर सवार होने का फैसला किया, ऑगस्टा विक्टोरिया। अकेले 2 छोटे-छोटे बैग पैक किए उन्होंने, ज्यादा नहीं, एक सूट पहना था, उसके ओवरकोट डाला और कुछ डॉलर्स थे उनके पास जो उनकी सेविंग थी, वो उन्होंने गले में एक डब्बे में लॉक कर लिए थे। आज तक अभी समुद्री जहाज पर चढ़ी नहीं थी, रास्ते में हुआ यह किसी से खो गई, खाना नहीं उतर रहा है गले से, मगर जो दिमाग है वो इतना ढीठ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शी वॉज ऑन टू इट कि मैं तो करके ही रहूंगी नो मैटर वॉट। उन्होंने समझ लिया कि एक ही तरीका है इस जहाज में सर्वाइव करने का कि बस मैं नींद पूरी करूं, मैं सो जाऊं, मुझे कुछ दिखेगा नहीं तो बीमार होंगी भी नहीं। इनफैक्ट वो इतना सोई इस समुद्री जहाज पे, इतना ज्यादा कि समुद्री जो जहाज के क्रू मेंबर्स थे उन्हें लगा कि शायद वो जिंदा ही नहीं है, कैबिन क्रू वाले डर गए। वो इंग्लैंड गई, इंग्लैंड से फ्रांस गई, वहां से वो इजिप्ट गई, हांगकांग गई, जापान गई, चाइना गई, बीच में उन्होंने सब कुछ लिया, जहाज, रिक्शा, ट्रेन, गाड़ी, और इंडिया में जाके उन्होंने घोड़ा भी चलाया खुद, घुड़सवारी तक करी क्रॉस करने के लिए, बहुत कुछ किया। और हर जगह की ट्रेवल अपडेट वो टेलीग्राफ के जरिए भेजती रही, अखबार वाले छापते रहे, उन पे नजर भी रखे हुए थे लोग, क्योंकि अब वो बहुत फेमस हो चुकी थी। एवरीबडी वांटेड कि ये औरत क्या कर रही है, किधर जा रही है, अरे अब कहाँ है, अब कहाँ है, एंड एवरीबडी वांटेड टू नो। सबकी नजरें थी उन पे, उस टाइम पे कैमरा तो नहीं था, लेकिन स्टिल नेली ब्लाई ने सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी थी कि हर कोई जानना चाहता था ये है कौन यार, है कौन ये।
न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क वर्ल्ड अखबार जो था वो जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। उनका अखबार एक ब्रांड बन गया और भी बड़ा हो गया नेली ब्लाय के घूमने की वजह से। उन्हें यह पता था कि औरत घूमने जा रही है, हादसा हुआ भी तो क्या हुआ, नाम तो होगा। अखबार वालों ने नेली ब्लाय के घूमने की वजह से कॉन्टेस्ट रखा कि जो भी शख्स न्यूयॉर्क में रहने वाला ये बता पाएगा कि नेली ब्लाय कब वापस लौटेंगी टाइम के साथ, उनको हम देंगे एक एक्सक्लूसिव यूरोप ट्रिप। लोगों ने गैस करना शुरू किया, अखबार को खत लिख रहे हैं कि इतने बजे आएंगी, इतने सेकंड पर पहुंचेंगी, इतने मिनट लगेंगे। सब इंटरेस्टेड थे, पूरा का पूरा न्यूयॉर्क लगा हुआ है, नेली ब्लाय का नाम जप रहे हैं सब। अब जो कंपटीशन वाला अखबार था उसकी तो रूह कांप गई, उसने कहा हमें भी किसी को भेजना पड़ेगा। तो कंपटीशन वाला जो अखबार था उन्होंने भी एक खातून को भेज दिया वर्ल्ड ट्रिप पे, इनका नाम था एलिजाबेथ बिसलैंड, और ये भी भेजी गई, ये थोड़े अलग रास्ते से भेजी गई, मगर ये चार दिन बाद पहुंची। तो बेसिकली नेली ब्लाय ने अपनी अपने सफर को पूरा किया, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन क्रॉस किया आरएमएस ओशनिंग पे सवार होके। नेली ब्लाय जब इस जहाज में थी तो सफर के आखिरी पड़ाव में तूफान आ चुका था, थोड़ा सा डिले हो गया मामला, मगर

उन लोगों से नफरत है जो कहते हैं कि बहुत लेट हो चुका है, अब नहीं हो पाएगा. वो कहती है जब मुझसे कोई कहता है ऐसा तब मुझे ज्यादा जोश आता है और मैं तब वो चीज और करना चाहती हूँ. उन्होंने अंग्रेजी में एक बात बोली, इफ यू वॉन्ट टू डू इट यू कैन डू इट. सवाल ये होता है कि डू यू वॉन्ट टू डू इट, मतलब आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर सवाल यही है क्या आप करना भी चाहते हैं. ब्लाई ने एक किताब लिखी अपने तमाम एडवेंचर्स पे. न्यूयॉर्क वर्ल्ड वाले बहुत खुश थे, मगर न्यूयॉर्क वर्ल्ड वाले जो अखबार वाले थे उनसे गलती हो गई. उन्होंने बोनस नहीं दिया ब्लाई को. लड़की है ना, बोनस नहीं दिया. बोले नहीं, क्या बड़ी बात है. नेली ब्लाइन ने फौरन रिजाइन थमा दिया. अब उनके पास जॉब तो नहीं थी, मगर जॉब की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि अब वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी थी. उनकी इमेज, उनका नाम मतलब डॉलर. अभी वो 30 साल की भी नहीं हुई थी. दिस इज बिफोर टर्निंग 30. न्यूयॉर्क वर्ल्ड अखबार वाले वापस घुटनों पे आए, बोला मैडम आप प्लीज वापस आ जाओ, बोनस भी ले लो, सैलरी भी बढ़ा देते हैं. वापस आई वो अखबार के साथ, उन्होंने कॉलम्स लिखे एंड 1893 में इन्वेस्टिगेटिंग असाइनमेंट्स भी लिखे, बार बार के लिखे. और उनका गोल था करप्शन और मिसट्रीटमेंट के खिलाफ लिखना. अब वही जो मकसद था अपने रुतबे को बढ़ाना वो पूरा हो रहा था. नेली ब्लाय ने कहां से शुरू किया, आपको याद है कहानी कहां से शुरू हुई है और अभी कहां पर है. जरा सोचिए, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल आर्क. और ये सब करने के बाद फाइनली नेली ब्लाय का एक शख्स से सामना हुआ जिनसे उन्होंने शादी करने का फैसला किया. जिनसे शादी करने का फैसला किया वो 73 ईयर ओल्ड थे, 73 साल के. एंड शी वॉज जस्ट 31 बाय द टाइम उनकी शादी हुई. हस्बैंड का नाम था रॉजर सीमन. वो एक कंपनी के मालिक थे, आयरन क्लैड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. अब आपके जहन में आएगा, हाँ देखा फाइनली इसने शादी इसलिए करी ताकि पैसा मिले, घर बैठ के खा सके. नो, इसलिए नहीं. उन्होंने शादी इसलिए करी कि वो कंपनी को और आगे बढ़ा सके. नेली ब्लाय को ये काम भी नहीं आता था, मगर वो कंपनी के डिजाइंस बनाती रही. कंपनी ने उस टाइम पे मिल्क कार्टन, जो मिल्क के कैन आ रहे थे, और गार्बेज कैन का डिजाइन बनाया जो नेली ब्लाय ने बना के दिया. 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क वर्ल्ड का जो अखबार था उसे अलविदा कह दिया और अपने हस्बैंड की कंपनी को संभाल लिया, आयरन क्लैड. उनके हस्बैंड 1904 में दुनिया से चल बसे एंड वो बनी इस कंपनी की प्रेसिडेंट. यहां पे मसला ये था कि वो एक बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट थी लेकिन उनके अंदर बिजनेस एक्यूमेंट नहीं था. नतीजा ये रहा कि 10 साल के बाद एक कंपनी संभल नहीं पाई. बहुत सारे लोगों की गलतियां और बहुत सारे लोगों का जज करना कि एक औरत प्रेसिडेंट कैसे हो सकती है. कंपनी को ये बात लेट डूबी है, बैंकक्रप्ट हो गई कंपनी. बट इट डिडंट रियली मैटर्ड क्योंकि नेली ब्लाय का एक हुनर था जर्नलिज्म. शी वेंट बैक टू इट एंड रिपोर्टिंग वापस शुरू करी. उन्होंने वुमेन सफरेज मूवमेंट चालू किया, मार्चिस पर लिखा एंड इन फैक्ट 1910 का जो लेटर हाफ था उस वक्त वर्ल्ड वॉर वन को भी कवर किया और ये ग्राउंड ब्रेकिंग टाइटल था. अब समझ रहे हैं, पहली फीमेल, जस्ट इमेजिन द टाइटल, हर जगह पहली फीमेल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स. 1919 में अपना पूरा अलग जर्नल उन्होंने लिखा न्यूयॉर्क जर्नल के लिए. 1922 में लेकिन एक चीज ने बस नेली ब्लाय की जिंदगी में फुल स्टॉप लगाया, वो था निमोनिया. कोई तो उन्हें रोक नहीं सकता था, किसी में दम नहीं था सिवाय निमोनिया के. वो सिर्फ 57 की थी उस टाइम पे. एंड जनवरी 22, 1922 में नेली ब्लाय ने दुनिया से रुखसती ले ली. सेंट मार्क्स हॉस्पिटल में न्यूयॉर्क में बहुत कोशिश की गई उन्हें बचाने की लेकिन नहीं बचा पाए क्योंकि उस दौर में निमोनिया का इलाज करना वॉज वेरी डिफरेंट सिनेरियो अभी के मुकाबले. अगले ही दिन अखबार में छापा गया द बेस्ट रिपोर्टर. आगे डाइड वाइट नहीं लिखा था, द बेस्ट रिपोर्टर फ्रंट पेज की खबर थी. मैं फिर से चाहूंगा आप सोचिए ये कहानी कहां से शुरू हुई है. एक अखबार से शुरू हुई है और एक अखबार पे जाके खत्म हुई है. नेली ब्लाय वॉज अ ट्रेल ब्रेजर, एक आग बिल्कुल. उनके आखिरी वर्ड्स जो उन्होंने अपने जर्नल में लिखे थे बड़े कमाल के, वो कहती हैं कि आई सेड आई कुड एंड आई वुड एंड आई डिड. मैंने कहा था मैं कर सकती हूं, मैं कर लूंगी और मैंने कर दिखाया. ये थी कहानी नेली ब्लाय की.
अब आपके

वाले हैं, 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। टू लेट मी नो, स्पेशली अगर किसी बहन ने हमारी सुना हुई कहानी, बिकॉज इट वॉज अ वेरी फीमेल सेंट्रिक स्टोरी, डू लेट मी नो, मुझे भी अच्छा लगेगा, बताइएगा। 666-22-107 पर स्टे ट्यून्ड।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी, 13 बाय द क्लॉक में दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे। एंड इस स्टोरी में आपको क्या कहना है प्लीज़ बताएगा, बिकॉज दिस बिकेम वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज, मुझे बहुत अच्छा लगा और वीकेंड पे अपॉर्चुनिटी मिली ये सुनाने के लिए, तो आई एम रियली हैप्पी। आई होप कि जितनी भी हमारी बहनें सुन रही होंगी, इट माइट हैव चेंज्ड समथिंग इन योर हेड। हो सकता है वायरिंग आपकी बहुत ज़बरदस्त पहले से तो थी माशाल्लाह, अभी और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी, बिकॉज डेफिनेटली इंस्पायरिंग कहानी है, बहुत बढ़िया इंस्पायरिंग कहानी है। एक मेरे पास कॉल है, मैं कॉल उठाने से डर रहा हूँ, मुझे अभी चाचा की कॉल नहीं चाहिए, अभी अलग माहौल है। एक मैसेज है, कहानी तो बहुत ज़बरदस्त थी भाई, मज़ा आ गया आपकी आवाज़ में सुन के। इस बहन को तो FBI ज्वाइन कर लेना चाहिए था, रिपोर्टर से ज़्यादा स्पाई वर्क किया उन्होंने, एंड शी वॉज डिफरेंट भाई, कम्प्लीटली डिफरेंट। एक मैसेज है, जैसे कि नैली हर हार नहीं मानती, वैसे ही अपना भाई कबीर FM अपनी तरफ खींच लेता है, बंदे को बिना सुने नहीं रहा जाता। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी इंप्रेसिव लिखते हैं, जज़ाकअल्लाह, बहुत प्यार। एक कॉल आ रही है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: जी भाई,
3: कैसे हैं भाई? खैरियत?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बताइए
3: भाई। किसी ने कहा था कि इरादा हो अगर अटल तो मौजज़ा ऐसा भी होता है। दिए को जिंदा रखती है हवा। दिए को जिंदा रखती है हवा, ऐसा भी होता है।
2: हाँ, ये मैं भूल गया, आपको कॉल कर लेता काश में पहले, तो इसके भी शेर मिल जाता भाई। वैसे कैसे लगी आपको
3: कहानी? आपको पता है, ये बात तो परफेक्ट है। ये तो खैर, मतलब मैंने अपने तारीख की किताबों से पढ़ा है कि औरतों ने सिर्फ और सिर्फ एक लकड़ी के छोटे से बंबू को भी एक मर्द जात यहूदी को मार मार के इतना मारा कि उसे खत्म कर दिया। औरत के बारे में एक रुझान, औरत के बारे में जो एक रुझान है कि वो घरेलू जिंदगी में भले वो एक गुलाब के पत्ते पर एक शबनम के मानिंद अपनी जिंदगी गुजारती।
2: अरे रे रे रे भाई साहब, कितनी गहरी बात है।
3: लेकिन जब वो सामाजिक और सियासी जिंदगी में कदम रखती है तो किसी तेज काटने वाले तलवार से उसका राय कम नहीं होता है और उसके बाजों का दम भी उससे कम नहीं होता।
2: यार आप लिखना शुरू करो, आपका खुद का कॉलम होना चाहिए भाई, क्या बोलते हो यार आप। मजा ही आ जाता है जमाल भाई, बहुत बढ़िया भाई, भाई खूब का खूब का। तो ये इनके बारे में कभी आपने सुना था, पढ़ा था कहीं गलती से, क्योंकि इन पे शायद एक दो?
3: नहीं भाई, मैंने पढ़ा तो नहीं था। अच्छा। हाँ, मैंने सुनिए, मैंने पढ़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ मैं जिस सिलसिले की कड़ी हूँ उसमें मैं आपको कुछ थोड़ी सी चीजें ये कितनी रोशनी डाल सकता हूँ कि इंसान को अपनी जिंदगी में कभी भी औरत को कमजोर, भले उन्हें सिंचन नाजुक का नाम दिया गया हो, औरत को सिंचन नाजुक कहा जाता है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो नजाकत का लफ्ज जो उनके जिंदगी में इस्तेमाल है वो बहुत महदूद चीजों के लिए है।
2: बेशक बेशक भाई, बेशक बेशक।
3: वरना आज के दौर में भी दुनिया इस चीज को मतलब बरमला इकरार करती है कि आसमानों के सातों आसमानों के तबक तक सैर करने वाली यह औरत मर्दों के साथ शाना बसाना कदम से कदम मिलाकर वो चलती है और किसी से कम नहीं।
2: बेशक बेशक भाई, यही। और ये मुझे भाई बहुत जबरदस्त कहानी लगी यार, मतलब मुझे लगता है कि उस दौर में जो उन्होंने किया
3: भाई, मैं तो कहता हूँ कि आप हफ्ते में इसी तरह की कहानियां एक दो लाया करें।
2: बिल्कुल भाई, एक दो तो मंगाने से
3: होगा कि उससे फायदा क्या होगा कि जो आपको ऑन ईयर सुन रही है शायद उनके जज्बे में कहीं ना कहीं पुख्तगी और एक सोच का जो दायरा है वो न सिर्फ वसी तर बल्कि रुझान बदल जाएगा।
2: नहीं, ये
3: हमारे जैसे लोग जो कहानियों को सेव करते हैं है ना, और सेव करके उसे कहीं बड़ी अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अवामी सतह पर फायदा हासिल होगा।
2: बेशक भाई, यही कोशिश है। और ये इत्तफाकन देखिए, खूबसूरत इत्तफाक था कि वीकेंड पे मुझे ऐसी कहानी मिली, मैं बड़ा खुश था, ये पता है, मैं बड़ा एक्साइटेड था कल से ये कहानी सुनाने के लिए, एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये पहुंचे लोगों तक।
3: नहीं, सच बता रहा हूं मैं कि इस कहानी के अंदर मतलब बैकवर्ड सारी चीजें मौजूद थी और बहुत ही

0: थोड़े से मतलब पसमांदगी की तरफ जा रहे थे, वो अचानक से सामने खुले और वो अक्स फिर से सामने आया, जिसमें हमने खौला बिनते अलजोर को भी पढ़ा है, जिन्होंने अपने भाई को है ना मुकम्मल एक 50 से ज्यादा ग्रुप से लड़कर और अपने भाई को बचा कर लेके आई थी पहाड़ी पे, है ना। तो वो सारी चीजें है ना थोड़ा कहीं ना कहीं एक बार फिर से तरोताजा होती है, न सिर्फ मुझमें, मुझे लगता है कि बाकी हमारे सारे वो भाई जो सुनते होंगे है ना, उन्हें ये सब कहानियां खास करके अपने बीवियों को तो भेज ही देना चाहिए, जहां तक मैं समझता।
1: बिल्कुल भाई, बिल्कुल हर किसी को भेजनी चाहिए। तो मैं बड़ा खुश हूँ भाई, थैंक यू
0: भाई। मैं तो भेजता हूँ, रियल में मैं भेजता हूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ गाए बगाए कि कुछ ऐसी चीजें बताई भी जाए जिसके अंदर ये पता चले कि अपने बच्चों को तलवार सिखाने का हुनर भी औरतों ने दिया है।
1: हाँ हाँ बेशक भाई, ये तो अरे वही ना, ये
0: मर्दों के लिए खास नहीं है।
1: करेक्ट करेक्ट, इसलिए आज की कहानी ना बस ये जितने दूर तक तो जानी चाहिए वहां तक पहुंचे। और जमाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए, और बाकियों के मैसेज देखते हैं अभी। जज़ाकअल्लाह भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार आपका।
0: नहीं नहीं भाई, बहुत सारा प्यार आपको कि आपने कहानी सुनाई, इतना मेहनत किया आपने,
1: थैंक यू भाई, बहुत
0: जज़ाकअल्लाह
1: भाई। ओके भाई, ख्याल रखिए अपना। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। और जमाल भाई के बाद एक दो मैसेज पढ़ देता हूँ मैं। शेख इरफान अल खासमी साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बेहतरीन थी एज ऑलवेज, स्पेशली फॉर गर्ल्स। आज तो सबका सेंस ऑफ ह्यूमर टॉप पर है, सबके जेब भरे होंगे, शायद प्राइवेट सेक्टर की सैलरी आ गई पता नहीं भाई। यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, लिखते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त कहानी। वैसे भी अभी लेडीज़ ये काम ईजिली कर रही हैं, बट उस ज़माने में यानी भाई 1800s में इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लिखते हैं, औरतों को ऐसा कुछ करने एक बड़ी बात थी, लेकिन ये लेडी ने बहुत कुछ कर दिखाया। हेड्स ऑफ टू हर, डेफिनेटली शी वाज ब्रिलियंट एंड स्ट्रॉन्ग। उस जमाने में इतने सारे अचीवमेंट्स इज नॉट मामूली थिंग। गुड वन, फुली वीकेंड वाली स्टोरी। थैंक यू कबीर, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत प्यार। एंड के बाद एक मैसेज आया है माजिद भाई का। माजिद भाई, अच्छा ये गज़ल अभी कुछ पढ़ता हूँ, पहले आपको मैसेज पढ़ दूँ मैं। लेते हैं, अमेजिंग वुमन, अमेजिंग स्टोरी, नॉट मच टू शेयर अबाउट हर पर्सनल फैमिली लाइफ, बट प्रोफेशनली एंड पब्लिकली इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट। डेफिनेटली भाई, बहुत आगे की चीज थी ये, बहुत आगे, समय से आगे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
1: बढ़िया भाई, आप सुनाइए कमल भाई।
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कहते हैं ना कि हार तो तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है।
1: अरे अरे अरे अरे अरे भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, बेहतरीन बात बोली आपने। ऐसे ही कुछ उन्होंने भी बोला था,
2: यही सर बनता था भाई।
1: हाँ ये बनता था भाई, बनता था डेफिनेटली
2: भाई। ये लेडीज राजकुमार है इंडिया में, देखो राजकुमार एक्टर
1: जानी, हमें कॉलम लिखने दिया जाए।
2: बाप के बेटे हैं जो कभी डरे नहीं
1: भाई, मुझे पर्सनली मैंने इनके बारे में कभी नहीं पढ़ा था, मुझे तो ऐसा लगता है इनके बारे में तो स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। ये तो भाई बहुत इंस्पिरेशन है, एंड 1800s में इनके इन्होंने जो किया वो ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात थी भाई। तो आज
2: भी यही तो है कि भाई देखिए, औरतों के हौसले नहीं, औरतों का आजादी दी
1: है। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली,
2: अगर वो उस टाइम पे अगर हौसला नहीं करती, हिम्मत नहीं करती, तो आज भी वो गुलामी की जिंदगी जीती और वही जो है उनके साथ में होता है।
1: इन्होंने
2: जो खुल के जी रहे,
1: इनके वजह से बहुत चेंजेस
2: इन्होंने नहीं, मतलब इन जैसे लोगों मतलब राइट, बहुत ऐसे लोग आए हैं।
1: नहीं पर इन्होंने स्पेसिफिकली
2: ऐसा नहीं दे रहा हूँ,
1: इनको क्रेडिट एक स्पेसिफिकली इनको जाता है, क्योंकि इन्होंने जर्नलिज्म में बहुत कुछ चेंज किया और उस टाइम पे यू नो औरतों को बहुत मौका मिला जर्नलिज्म में आने का बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि फॉर अ पीरियड ऑफ 50-60 ईयर्स इनके किए हुए कामों के वजह से बाकियों को मौका मिला। तो ऐसा कोई ना कोई आता है सदी में एक बारी जो कुछ करके दिखा देता है, तो उनमें से ये थी डेफिनेटली। थैंक यू भाई कमल भाई, बहुत प्यार भाई, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। इनका नसीम भाई लिखते हैं, एग्री विद जमाल भाई, लास्ट में मारी दिया भाई, मैं तो वक्त के साथ गई, मैंने थोड़ी निमोनिया दिया। एक मैसेज आया था उसमें इनका, वो लिखते हैं, ब्रिलियंट स्टोरी, वेरी मोटिवेटिंग, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शी हैड। एंड आगे लिखते हैं, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू अनलेस यू वांट, हाँ यू वांट टू, वही ना, मन करे तो फिर तो कुछ भी कम को नहीं है। एक और मैसेज आया है सऊदी अरब से, आया है हमें भैया, कहानी ज़बरदस्त, थैंक यू मेरा भाई। और एक समीरा बहन ने हमें मैसेज किया था, उनका मैसेज भी पढ़ना ज़रूरी है। वो लिखती हैं, अ वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन, अ ट्रू मोटिवेशन टू मैनी, डेफिनेटली शी वॉज, डेफिनेटली शी वॉज। एक भाई लिखते हैं, भाई मेरी कहानी भी ऑफिस से शुरू होती है, ऑफिस में ख़त्म होती है, आई कैन आई कुड एंड आई विल, पर बॉस सुनता ही नहीं है। ये मोहम्मद जुबैर भाई कह रहे हैं, जुबैर भाई नहीं कोई सुधार नहीं है आपकी कंडीशन का, मैं क्या ही कह सकता हूँ। और एक मैसेज आया है, कहती हैं ये मैं अपनी दोनों बेटियों को ज़रूर भेजूंगी, आई एब्सोल्युटली लव द स्टोरी। बहन आपने नाम नहीं बताया, अपना नाम बता दीजिएगा। और एक भाई कहते हैं

हैं, क्या कह रही हैं, नारी सशक्तिकरण सदैव पूजनीय. अरे भाई इतने टाइम बाद मैंने सुना ना. और नाइस स्टोरी अमन भाई ने लिखा है, और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी, ऑसम, उसकी हिम्मत को सलाम. और एक शेर भैया जमाल भाई ने लिखते हैं कि मांग लुट गई एक सुहागन की, कत्ल अखबार तक नहीं पहुंचे, हादसे रोज होते हैं अपने शहर में, शोर सरकार तक नहीं पहुंचे. जमाल भाई और बाकी वॉइस नोट से तो इंशाल्लाह भी शो में शामिल करेंगे, मगर आज का किस्सा आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत मैटर करता है. 666-22107 पर आई वुड लव टू नो कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे. एंड तो मैसेज कर दीजिएगा. एंड कुछ और मैसेज आ रहे हैं कहानी को लेकर, अगर आपने सुना है तो बताइएगा. एक भाई ने लिखा है कि ये स्टोरी मैंने कभी नहीं सुनी, ये तो स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों के लिए बहुत. हाँ मैं तो कह रहा हूँ ऐसी स्टोरीज तो पढ़ाई जानी चाहिए भाई, ये तो बहुत मैटर करता है, ऐसी कहानियाँ मिलनी चाहिए मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए. एनी वे ये मोटिवेशनल कहानी मुझे सुना के बहुत अच्छा लगा, मैं मजा आ गया भाई बिल्कुल. एक मैसेज, हेलो गुड मॉर्निंग, कहानी जरूर भेजे, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ आना है आपको कहानी के लिए. नाज जी 824

0: 8:27. Good morning. AP Tillo.
1: It's a record. Classic one. You hear me?
2: अरे एक बात तो बताना भूल गया मैं, आपको पता भी है, मैं सॉरी ये मैं बहुत लेट बता रहा हूँ आपको, बट बता देता हूँ, वेकेशन से पहले संडे को है लास्ट, सॉरी तो संडे आने वाला संडे भूलिएगा नहीं, उसके बाद हम छुट्टी पे जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, चिट्ठी ज़रूर लिखिएगा हमको तो संडे को एक और स्टोरी है, उसके बाद फिर छुट्टियाँ शुरू हैं आपके भाई की, तो प्लीज़ ये मैं थोड़ा लेट बता रहा हूँ बट बता रहा हूँ। मोहसिन भाई थैंक यू सो मच, कहते हैं आप हमारी आदत बन गए भाई, बहुत सारा प्यार आपको यार, बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। इश्तियाक उस्मानी भाई कह रहे हैं कबीर भाई मैं तो कहता हूँ कछुआ और खरगोश वाली कहानी को हटा करके इस कहानी को ऐड करना चाहिए स्कूल में, ये एक्चुअली में होना चाहिए। इश्तियाक उस्मानी भाई लिखते हैं ये मैंने बहुत ही कैजुअल बोला लेकिन ये बात सच है, नहीं आपने कैजुअली में बहुत भारी बात बोली है, मैं अग्री करता हूँ भाई, अब जानवरों वाली कहानी हटा के ये सारी स्टोरी एक्चुअली में सुनानी चाहिए। फरद भाई कह रहे हैं सच में भाई आज की स्टोरी बच्चों को सुनानी चाहिए मोटिवेशन के लिए, और आपका अंदाजे बयां चार चांद लगा देता है, बहुत प्यार भाई को, बहुत प्यार क्या। और ये शेख इरफान कासमी साहब लिखते हैं बस कर यार रुलाएगा कि, मैं सच्ची तो बता रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा भाई, संडे के बाद आपके भाई की छुट्टियाँ शुरू है भाई, तो ये ज़रा माइंड में रखिएगा, कह रहे मुझे तो बहुत याद करूँगा, बाकी मुझे याद है नहीं मंडे नहीं भाई, संडे को मंडे नहीं आएगा आपका भाई, छुट्टी पे निकल लेगा है ना, तो संडे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन इन केस यू फॉरगॉट।

0: वेकअप जी, वेकअप, उठ जाओ जो नहीं उठे हैं। बाकी एक भाई मुझे कॉल कर रहे हैं, हमारे आसिफ भाई। आसिफ भाई मैं कॉल लगा रहा हूँ तुम्हें एक कॉल के बाद फौरन। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई। उठ गए हम लोग।
0: उठ गए क्या भाई? ये सेकंड शिफ्ट वाले उठ गए, क्या सीन है भाई? इतना लेट क्यों, क्या चल रहा है?
1: नहीं नहीं, आपका प्रोग्राम सुन रहा था कबीर भाई। मैंने कॉल भी बहुत ट्राई की लेकिन लगी नहीं आज।
0: अच्छा,
1: सुबह में भी मैंने
0: तो किसकी गलती है कॉल लगी? आपने मैसेज सुनी क्या?
1: नहीं, मैसेज ऐसे है कबीर भाई, मैं आप जब कॉल करे खुदा ना खास्ता मैं न उठा पाऊँ ऐसी सिचुएशन।
0: ओहो, खेल है भाई। अच्छा बान है, कवर मट्टी पाओ।
1: मुझे अच्छा नहीं लगा कबीर भाई कॉल कर रहे हैं, मैंने मेरा भाई कॉल करता मैं उठा नहीं रहा।
0: ये मट्टी पाओ वाला जो खेल है ना, वेरी नाइस। तो कुछ तो सुन नहीं पाओगे भाई।
1: टॉपिक भी सुना आज का, टॉपिक पे था मेरे पास कुछ।
0: हाँ बता दो क्या है, क्या क्या टैगलाइन है आपके, बताइए।
1: मेरे से पूछते हैं भाई क्या हाल है मेरे दोस्त लोग, तो मेरा यही रहता है। मैं बोला कभी भाई चलती का नाम गाड़ी है और बढ़ती का नाम दाढ़ी है।
0: बात तो सही है, मैं एग्री करता हूँ।
1: जो समझ गए वो खिलाड़ी, जो नहीं समझे वो अनाड़ी।
0: आजकल पता है इसके मामले में थोड़ा उल्टा भी है भाई, जो नहीं समझे ना वही खिलाड़ी है। सब चीजें जानना जरूरी नहीं है भाई, मत जानो। हाँ हाँ सही बता रहा हूँ मैं।
1: जी जी।
0: और बताइए भाई क्या हुआ, क्या प्लान है वीकेंड का भाई का?
1: बस बढ़िया है, अभी सोचेंगे कल इंशाल्लाह सुबह में करते हैं, फिर देखते।
0: अच्छा,
1: हैं
0: अभी सोचा नहीं है। ऐसे लोग मुझे बड़े पसंद है, कल की कल सोचेंगे।
1: थर्सडे को डिसाइड करेंगे शाम को।
0: तो थर्सडे तो है, और कब डिसाइड करोगे? अच्छा शाम को।
1: नहीं शाम को, शाम को।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है फिर, ठीक है फिर, ठीक है ओके। तो बस भाई, बस कहानी तो नहीं सुन पाएंगे आप?
1: नहीं, कहानी मैंने सुनी थोड़ी एंड में सुनी।
0: नहीं नहीं नहीं, तो एंड का
1: फीमेल के लिए थी। अच्छा, रिकॉर्ड बनाया उसने और मैं बराबर सुना। कल वाली सुनी कबीर भाई, बहुत बढ़िया थी
0: कल वाली। हाँ हाँ, अच्छा ओके। ऐसे हाँ, ऐसे
1: जितना जरूरत उतना ही कमाने का वो सुन के कल इतना इल्म हासिल हुआ।
0: आपका भी सिस्टम है ना, उतना ही सोचने जितना सोचने का, एक्स्ट्रा नहीं सोचने का।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल सही हिसाब था उसका, करेक्ट हिसाब वही है। हाँ, जितनी जरूरत उतनी कमाई।
0: हाँ, ज्यादा नहीं दिमाग लगाने, हर चीज में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये शाबाश, चलो कुछ तो सीखे आप।
1: बहुत बढ़िया स्टोरी थी, वाकई में स्टोरी जबरदस्ती कर।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार भाई को। थैंक यू सो मच भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद जरा ये हमारे आसिफ भाई को कॉल कर लें, क्योंकि इनकी कॉल मुझसे दो तीन बार मिस हो चुकी है। आसिफ भाई कॉल कर रहा हूँ ढलना, और बाकी जो मैंने आपको जगह दी कहानी जहाँ पे अपलोड हो रही है तो उस पर देख लीजिए, कुछ देर में मिल जाओगी। बाकी ये हमने कॉल लगाई है भाई आसिफ को। भाई आसिफ, आसिफ आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आप कैसे हो?
0: बस परेशान हूँ मैं।
2: मैं खुद परेशान हूँ, आप हमसे मांग रहे हो टैगलाइन।
0: नहीं, अब कुछ
2: कर रहे हो
0: गई, वो दो तीन घंटे पहले कहानी खत्म हो गई, उसके बाद कहानी तो सुननी

0: पाएंगे आसिफ भाई अब या सुनी?
1: भाई मैंने कहानी तो थोड़ी सी सुन ली, मगर क्या करे कबीर भाई, कहते हैं ना कि वक्त का क्या बोलते उसको,
0: चला गया बस एक्टिंग फेल।
1: मैं कोशिश कर रहा, कल भी मैंने बहुत कोशिश किया कबीर भाई, ये मतलब मैं थोड़ी अपनी लैंग्वेज को सुधारू, ये हुआ भी थोड़ी बहुत, मगर फिर से बोलते ना भाई जिधर सा वहीं वापस पहुंच जा।
0: नहीं वहीं रहो, चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई, चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे ही रहने का भाई, समझेगा।
1: मेरे पास इतनी टैगलाइन है ना भाई तुमको देने के लिए, मगर मैं सोचता काई के लिए दूर छोड़ो ना भाई, मेहनत क्यों खर्चा करो अपनी।
0: वेरी गुड, तालियां, शाबाश शाबाश, यही उम्मीद है।
1: बस इतना बोलूंगा भाई, मस्त रहो मस्ती में, ना जाओ गैरों की बस्ती में, माँ की यहाँ गई थी बस्ती की, इज्जत ना हो हम जैसी हस्ती की।
0: ठीक है हस्ती साहब, चांद तक, थैंक यू सो मच, चलो आप भी चांद तक, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कि आप हमारे कॉल पर आए।
1: अरे भाई आज एक एक एक, एक वो सुबह वाला जो बच्चा है उसका साथ में बाद में होगा क्या
0: कुछ नहीं, मतलब,
1: क्या होगा तो?
0: नहीं बस वो बस मेरे शो में कॉल नहीं कर पाएगा, बाकी शो में पार्टिसिपेट कर सकता है वो, बट
1: भाई डायरेक्ट फ्लिप मार गया बंदा।
0: हाँ तो वही दिक्कत है ना, उसे फ्लिप नहीं मारना चाहिए, समझाना चाहिए उसको
1: किसी और का।
0: हाँ तो उसे फ्लिप नहीं मारना चाहिए, वो उसी के लिए नुकसान है, मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है। तो इट्स अप टू ना भाई, अरे मैं क्यों ग्रज रखूंगा बच्चे से, मेरे को क्या मतलब, मैं तो उसके लिए फिक्रमंद हूँ कि उसको उसकी कॉल नहीं उठा पाऊंगा, तो मैं इसको लेके सैड हूँ भाई, काश मैं उठा सकता उसकी और कॉल, बट आई कांट डू इट एनीमोर। थैंक यू मेरा भाई, ख्याल रखो भाई, अल्लाह हाफिज। तो इनके बाद जो एक मैसेज, भाई फजील भाई का बेबी होने वाला है, हमने सोचा अकीका खा के जाते, हो चुका भाई उनका बच्चा हो चुका है, छुट्टी पे जा रही है जी फरहत भाई, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, संडे मेरा शो होगा उसके बाद छुट्टी पे, कहते बच्चे के बाद नेक्स्ट नंबर आसिफ भाई का लग रहा है, मुझे भी है प्रिंस भाई, नेक्स्ट नंबर इन्हीं का लग रहा है। एक मैसेज, टैग लाइन मिट्टी पाओ, ये खुर्रम भाई कह रहे हैं, मिट्टी तो पाओ लेकिन ज़रा संभल के हैं, बहुत कुछ हो रहा है मार्केट में। बहुत कुछ हो रहा है मार्केट में, अब मुझे लग रहा है डर, बट एनी वे 666-22107 नंबर है, और आप जाएगा बताइएगा क्या प्लान है, क्या चल रहा है, माहौल क्या है 666-22107 पे, और हम जो है वीकेंड की वाइब को बिल्कुल जिंदा रखेंगे, आप भी मेरे साथ रहिए। वॉल्यूम बढ़वा दूं वॉल्यूम, जवान से गाना, हैप्पी वीकेंड, जिंदा बंदा।

0: wake up.
1: हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक चेक चेक, आज की कहानी तो सुना दी मैंने, उस पर रिस्पांस भी आ चुके हैं। हमारी एक बहन है जिन्होंने मैसेज किया था, उनका मैसेज मैं पढ़ देता हूँ कि इधर गया मैसेज। हाँ, तो ये मैसेज किया था हमें नाज बहन ने, वो लिखती हैं कि मेरी तो हर उस लड़की से रिक्वेस्ट है जो भी सुन रही है आपको, कि कोई भी ख्वाहिश है तो ना दबाए, चाहे कितना भी कोई आपको रोके, पर अगर आप चाहें तो कोई नहीं, अगर आप चाहें तो कोई नहीं रोक सकता और आप सब हासिल कर सकती हैं। अगर आप क्या सुखी है तो उसका रीजन भी सिर्फ आप ही हैं। डेफिनेटली काबिल तारीफ बात कही है भाई, हमारा हूटर का गया, इन पे तो हूटर बजाना पड़ेगा। वेरी नाइस थॉट्स बहन, ऑल द बेस्ट टू यू, इसलिए तो कहानी सुनाई थी मैंने। अच्छा, अब जरा मैं खबरों की तरफ बढ़ता हूँ। तो सबसे पहली खबर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंजेस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, उन्होंने हाथ मिलाया है। दे आर नाउ इन कॉपरेशन विद द एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखफिया, एंड मिलकर एक पूरी ड्राइव चलाई गई जिसके जरिए बहुत सारे कैंप्स जो कि लगे हुए थे इन वाइल्ड डेजर्ट एरियाज में, उन्हें शेड्यूल से पहले खाली किया गया है क्योंकि विंटर कैंपिंग सीजन शुरू हो रहा है, तो साफ सफाई जारी है एंड इलाका आपको बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। अभी तो सर्दियों की तैयारी करिए, तो 2026-27 की जो विंटर कैंपिंग सीजन आ रहा है उसके लिए जोश खरोश थे, तैयारियाँ चल रही हैं। इसके अलावा लुसेल का इंटरनेशनल सर्किट तैयार है होस्ट करने के लिए अ स्पेशल पिंक अक्टूबर एडिशन ऑफ इट्स मिक्स्ड ट्रेनिंग डे वेंसडे को, ब्रिंगिंग टुगेदर स्पोर्ट्स, फिटनेस, हेल्दी लिविंग, दिस इज इन सपोर्ट ऑफ कोर्स ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, और साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस फैलाने का मकसद है। और ये सर्किट जो होगा ये पूरी तरह से इल्यूमिनेट किया जाएगा, लाइटें लाइट लगेंगी भाई, सारी पिंक लाइटें, क्योंकि जो कम्युनिटी मेम्बर्स होंगे इसमें दे विल रन वॉक और साथ में साइकिलिंग भी होगी अलॉन्ग साइड अ रेंज ऑफ हेल्थ एंड अवेयरनेस फोकस्ड एक्टिविटीज। सो आई थिंक टू लुक फॉर, इसका वीडियो बहुत बढ़िया आएगा भाई, ये बात तो है। इसके अलावा दोहा मैराथन जो कि ओरिटो की तरफ से है, उसका जो हर साल होता है आप देखते ही हैं, इट एम्स टू स्ट्रेंथन कतर्स रनिंग कल्चर। तो अभी भी लोकल एथलीट्स और तैयारी हैं, बट दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग कतरी स्पोर्टिंग हीरोज जो इंस्पायर कर सकें, वाइडर पार्टिसिपेशन ला सकें। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो रनर्स हैं वो शामिल हैं, एंड ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन के जरिए जो वैल्यूज दी जाएं कि अगर कोई जिंदगी में कभी नहीं भागा है तो वो कोशिश कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही सांस में 40 किलोमीटर की मैराथन में भागें, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर शुरुआत तो करें कहीं ना कहीं से, तो ये इसका मकसद है। इसके अलावा एक कैंपेन और चल रहा है जो प्रमोट कर रहा है एथिकल वैल्यूज को और पॉजिटिव बिहेवियर को, और ये जैसे आज का केस हुआ बच्चे का, तो ये स्कूल के स्टूडेंट जो है उनके बिहेवियर को नर्चर करने के लिए बनाया जा रहा है कि कब कहाँ किधर कैसे रहना है। एंड साथ में स्कूलों में ये कैंपेन चलेगा अक्रॉस कतर, एंड कैंपेन इज बिंग हेल्ड बाय द कतर सोशल वर्क्स बिहेवियर हेल्थ सपोर्ट सेंटर जिसका नाम है दाम। दिस इज इन कॉर्पोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, और इसका एक स्लोगन भी है माई वैल्यूज शेप माई आइडेंटिटी। एंड इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने लॉन्च की एक नई वेबसाइट ऑफ द ऑफिशियल गजेट एंड अल मीजान लीगल पोर्टल, ये संडे को उन्होंने लॉन्च कर दिया था, अभी तक आप नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कंट्री का फर्स्ट AI

High-powered comprehensive national system with legal knowledge और भी ज़्यादा चीज़ें आसान कर दी जाएंगी. सारी languages हैं but mainly Arabic और English पर focus किया गया है और इसके ज़रिए जो categorized tools हैं वो आपको website पर मिल जाएंगे. Laws को understand करना, उनका कहाँ पर क्या काम है, सब कुछ कोई भी सीख सकता है. और इसके अलावा 12,000 से ज़्यादा लोगों ने, मतलब इससे भी ज़्यादा भी नंबर जा सकता है, आर एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर फॉर कतर्स 2027 हज सीज़न. ये रिपोर्ट जारी करी है मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट्स औकाफ एंड इस्लामिक आर्ट्स ने. उन्होंने एक बयान दिया कतर नेशनल एजेंसी को, न्यूज़ एजेंसी को, जिसमें जो मिनिस्ट्री डायरेक्टर हैं मिस्टर अली अल मिसरीफी, उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट अभी भी लोगों को इन्वाइट कर रहा है. रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं लगातार, सिग्निफिकेंटली ओपन हुए थे 20 सितंबर को और डेडलाइन है अक्टूबर की 20 तारीख की. तो ये थी कुछ खबरें, बाकी कुछ मैसेजेस हैं लेकिन हम कुछ देर पढ़ेंगे. एक मैसेज है, ट्रक वाली अच्छी है, फासला रखिए नहीं तो प्यार हो जाएगा. जैन भाई अभी भी टैगलाइन दे रहे हैं, फासला रखिए नहीं तो प्यार हो जाएगा. मुबीन बुखारी साहब ने क्या क्या भेज दिया, मुबीन बुखारी से भी क्या क्या भेज रहे हो भाई, क्या क्या भेज दिए हो, ये तो मुझे पढ़ना पड़ेगा पहले. ओके, एक गाना उसके बाद मिलेंगे. 666-22-107 नंबर है. एंड इन केस अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हमें, अब तो क्या ही ज्वाइन करेंगे. पर हाँ, वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड सब तो पहला जी. और इस गाने की उस पर हम मिल रहे हैं, जाना आपने कहीं आई बेस्ट जगह पर. आप दलजीत पाजी आ रहे हैं 8:45. Good morning.

8:47 गुड मॉर्निंग। वेकेशन से पहले के जो मेरे पे मैसेज आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फरद भाई कह रहे हैं इंशाल्लाह भाई इंतजार रहेगा आपका, बहुत बहुत याद आने वाले हैं आप। कबीर भाई अपना ख्याल रखें, दुआ की जान बसती है आप में, हम सबके भी। देखे ना बैकग्राउंड म्यूजिक चुना मैंने कितना बढ़िया। ए क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम मुबीन भाई, थैंक यू सो मच। कह रहे हैं कि बीवी को कॉल आ गई, बाय बाय भाई, सबसे पहले अटेंड करो। मुबीन भाई भागो। एक मैसेज है भाई, मैसेज फॉर नाज बहन। अफसोस की बात है कि गर्ल्स का अभी तक ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा है, मतलब ख्वाहिशें पूरे करने के लिए ऑलवेज हाई रखना चाहिए। हैंड्स हेड्स ऑफ टू ऑल। मैं समझा नहीं काश में साहब क्या कह गए, किसकी ख्वाहिश की बात हो रही है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई। भाई अभी ओपन करते ही दिल्ली में है। हाँ भाई मैं उधर ही की तरफ ही जा रहा हूँ अभी, चाय पी।

पीते पीते मैं सीधा इंटरनेट पे घूमूंगा, क्योंकि अभी मुझे सीधा जंतर मंतर पहुंचना है शाहनवाज भाई। थैंक यू सो मच फॉर रिवाइंडिंग मी एक्चुअली। मैं अच्छा मैं ज़रा बता दूं आपको कि आज कौन कौन से इंटरनेशनली दिन मार्क्ड किए गए हैं। तो इसमें है वर्ल्ड साइट डे, आज आँखों का दिन है। काश मुझे पहले देख लिया होता, मैं कुछ आँखों पर कुछ गाना चला देता, आँखों याद था मुझे। आज है वर्ल्ड ऑक्टोपस डे, इस पे पिक्चर तो नहीं है मगर अपेरेंटली दुआ की बारह हाथ ऑक्टोपस डे है आज। इसके अलावा आज हैरी पॉटर बुक डे है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं भाई, मेरी क्लास में थे वो, मतलब वो हैरत अंगेज, वो लोग किताबें पढ़ते थे हैरी पॉटर की भाई, सिर्फ पिक्चर नहीं किताबें उन्होंने पूरी पूरी रटी हैं और उन्हें याद है एक एक हर्फ, मतलब मैं क्या बोलूं, पढ़ना बहुत मुश्किल है अपने लिए, पिक्चरें फिर भी देख लेंगे। इसके अलावा आज है इंटरनेशनल न्यूज़पेपर कैरियर डे। अब इत्तेफाक देख रहे हैं, इसे कहते हैं खूबसूरत इत्तेफाक। आज जो खबर भी मैंने जो मैंने कहानी भी आपको सुनाई वो भी अखबार वाली थी, और आज इंटरनेशनल न्यूज़पेपर कैरियर डे भी है, क्या बात है। इसके अलावा आज है सीड गैदरिंग सीजन, मतलब आज नहीं है बेसिकली, आज से ये शुरू हो चुका था 21 सितंबर से और चला आ रहा है। और है आज बाकू जैज़ फेस्टिवल, आज बाकू में हो रहा है, बाकू हो रहा है जैज़ फेस्टिवल, जिससे हमें और तुम्हें कोई लेना देना नहीं है पर लेना देना तो इस बात से होगा आपको कि सोशल मीडिया हैंडल्स पर क्या चल रहा है। तो आ जाइएगा सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद है। एंड एज आई मेंशन डलिए, नॉट जस्ट अ वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड, मगर संडे को इंशाल्लाह वीकेंड, सॉरी मेरे छुट्टियों का टाइम शुरू होने से पहले का शो है, तो उस पर फोकस रखिएगा, क्योंकि उसके बाद जो है पे छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तो फिर हमारी मुलाकात थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगी। पर बीच में वेकेशन है, एक ये होता ना स्पीड ब्रेकर आता है, गाड़ी की थोड़ा ब्रेक लगते हैं, वैसा वाला टाइम है। तो संडे को ज़रूर ट्यून कीजिएगा, बिकॉज आफ्टर द संडे शो मेरी छुट्टी शुरू हो जाएगी। सुबह कौन आएगा करने के लिए शो, आई डू नॉट नो फॉर नाउ, पर एज सून एज वी कम टू नो वी विल लेट यू नो। होपफुली संडे तक मैं आपको जवाब दे पाऊंगा कि संडे को कौन आएगा, मतलब संडे के बाद कौन आएगा सुबह का शो करने के लिए। एक मैसेज आया है, क्या करें, इफ पॉसिबल गिव मी नंबर कुछ फ्रेंड्स के साथ नेक्स्ट वीक दिल्ली में। अरे क्या बात करें, अभी दिल्ली पहुँचना है क्या, पहुँचो वाली मकसद, पहुँचो दिल्ली पहुँचो। ओके वर्ड फॉर नाउ, एक और मैसेज है ईशाम साहब का, ईशाम साहब आपका मैसेज मैं पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन पढ़ नहीं सकता फॉर सम रीजंस मेरे भाई, आई होप यू नो। ओके तो अभी न्यूज़ बुलेटिन आप सुनेंगे 9 बजे, एंड उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब सीधा संडे को। एंड फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ वीकेंड कहते हुए। एक सेकेंड एक मैसेज पढ़ दूँ, गोलगप्पे की पार्टी किधर, गोलगप्पे की पार्टी दिल्ली में तो होगी भाई। अच्छा गोलगप्पे पार्टी करनी है आपको काजल, ये होगी कॉम्पिटिशन जरूर रखेंगे भाई। क्या आपकी कुर्सी कौन, अभी नहीं पता मुझे कि संडे के बाद कौन शो करेगा, लेकिन संडे को बता पाऊंगा मैं, संडे को तो मैं शो करूंगा, उसके बाद ही मैं छुट्टी बजाऊंगा मेरी जान, बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिए, संडे को मिलते हैं सवेरे फवेरे 6 बजे, याद रखिएगा कि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मां सलामा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम आज की दुआ में हम आज एक निहायत ही अहम दुआ पर गुफ्तगू करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तकलीफ और आजमाइश के वक्त सिखाई है। ये दुआ बंदे के दिल में अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल और रज़ा बिल क़ज़ा की कैफियत पैदा करती है। मतन दुआ यूं है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयात।

आज की स्पोर्ट्स कहानी बांग्लादेश क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी और लीडर की है जो बैट के साथ भी टीम की उम्मीद है और टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर भी बांग्लादेश को एक नए दौर की तरफ ले जा रहे हैं। नाम है नजमुल हुसैन शांतो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। लेफ्ट हैंड बैटर नजमुल हुसैन शांतो बांग्लादेश क्रिकेट के इंपॉर्टेंट मिडिल ऑर्डर खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक बल्लेबाज की नहीं बल्कि एक टेस्ट कप्तान की भी बन चुकी है। उन्होंने 2023 में पहली बार बांग्लादेश की टेस्ट कप्तानी संभाली थी। 2025 में यानी पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद उन्होंने कप्तानी से हटने का फैसला किया था। इट वॉज अ मेजर डिसीजन, लेकिन बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें दोबारा टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान उन्हें बना दिया। उनका करंट मैंडेट अगर देखा जाए तो 2025-2027 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के एंड तक है, विच मीन्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन पर थोड़ा ट्रस्ट किया एंड ट्रस्ट करने के साथ साथ उनको ये एहसास भी था कि नजमुल हुसैन जो है ना कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन एक दिमाग रखते हैं, एक सोच रखते हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा लॉन्ग एक्सटेंशन दिया गया है और ये हुआ है अंडर द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तमीम इकबाल, जिनका मानना यह है कि लॉन्ग टर्म सोच इम्पॉर्टेंट है ना कि शॉर्ट टर्म। परफॉर्मेंस खराब हो जाए और उनको निकाल दो, ये सोच तमीम इकबाल का नहीं, और इसी सोच के साथ बांग्लादेश क्रिकेट को कई ऐसे कामयाबी हासिल हुई। मैं बताऊंगा इसी चर्चे पे आपको आगे बता रहा हूं मैं कि कैसे नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश क्रिकेट को वो इंटरनेशनल एक फेम दिलाने में अहम रोल अदा किया है। कप्तानी करियर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर 2026 में सामने आया जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। ढाका में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी और इस मैच में नजमुल हुसैन शांतो ने खुद भी शानदार बल्लेबाजी की और पहली इनिंग्स में 101 रन जबकि दूसरी इनिंग्स में 87 रन बनाए। उनकी इस कारकर्दगी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इस सेंचुरी के साथ नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान के तौर पर अपनी 5वीं सेंचुरी कंप्लीट की और मुशफिकुर रहीम के 4 सेंचुरीज के जो रिकॉर्ड थे उसे पीछे छोड़ दिया और आईसीसी रैंकिंग में भी उनकी पोजीशन करियर बेस्ट 23 तक पहुंची, विच वॉज अ वंडरफुल यू नो अचीवमेंट बाई दिस वंडरफुल क्रिकेटर फ्रॉम बांग्लादेश। कप्तान के तौर पर शांतो की एक और खास बात यह है कि वो सिर्फ बल्लेबाजी पर डिपेंड नहीं करते बल्कि फील्ड पर बॉलिंग चेंजेस और मैच सिचुएशंस को भी क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं, मॉनिटर करते हैं। मई 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ फतेह के बाद वो बांग्लादेश के सबसे तेज 7 टेस्ट विक्ट्रीज हासिल करने वाले कप्तान बन गए, यानी फास्टेस्ट टू विन 7 टेस्ट मैचेस। उन्होंने सिर्फ 17 मैचेस में ये माइलस्टोन अचीव किया, बहुत ही बड़ी बात है। फिर आया ऑस्ट्रेलिया का दौर, बांग्लादेश के लिए एक तारीखी चैलेंज। डार्विन में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पहली टेस्ट विक्ट्री हासिल की, यानी ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर, ऑस्ट्रेलिया के ही घर पर ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। क्रिकेट में अगर देखा जाए आज के दौर में ऑस्ट्रेलिया इज डेफिनेटली वन ऑफ द लीडिंग टेस्ट प्लेइंग नेशन, स्ट्रॉन्ग नेशंस माना जाता है। और इस मैच में तंजीद हसन ने सेंचुरी बनाई और मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट हासिल किए। नजमुल हुसैन शांतो की लीडरशिप में बांग्लादेश ने एक ऐसी जीत हासिल की जो टीम के टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। इट वाज अ मेमोरेबल विक्ट्री, बिलीव मी, मेमोरेबल विक्ट्री। दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त कमबैक किया और बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया। इस नतीजे के बाद दो टेस्ट मैच सीरीज 1-1 से

ड्रॉ। मकई टेस्ट मैच में सिर्फ दो दिन में 18 विकेट्स गिर गए। मैच के बाद शांतो ने पिच कंडीशंस पर बात करते हुए कहा कि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर जब विकेट्स गिरती हैं तो बहुत डिस्कशन होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी कंडीशंस को इसी तरह एग्जामिन किया जाना चाहिए। दोस्तों, नाजमुल हुसैन शांतो की कहानी एक यंग बल्लेबाज से बांग्लादेश के टेस्ट लीडर तक के सफर की कहानी है। उनके सामने चैलेंज ये है कि बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंसी के साथ आगे ले जाया जाए और साथ ही खुद भी बल्ले के साथ टीम के लिए रन्स भी बनाए। नाजमुल हुसैन शांतो बांग्लादेश का टेस्ट कप्तान, लेफ्ट हैंडेड बैटर और एक ऐसा लीडर जिसके सामने बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट का अगला चैप्टर लिखने का मौका है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं दूहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड ऑफ कोर्स डायलॉग रेडियो आपको वेलकम टू टेक अपडेट। ये आगे बोलेगा कबीर, यही बोलेगा भाई, और क्या बोलूं मैं। बट देखो, काम की बात बता के जाऊंगा, वेबसाइट जो आपको बताऊंगा ये आपके काम जरूर आएंगी, या फिर काम ना आए तो आपका टाइम पास बहुत बढ़िया कराएंगी। तो दोनों में से एक भी चीज अगर आपके मतलब की है तो बढ़िया है, तीसरा तो मुझे समझ नहीं आता मकसद क्या हो सकता है। यही दो मकसद होते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, और आप जानते हैं तीन वेबसाइट्स आपको बताई जाएंगी, तो आप तैयार हैं लिखने के लिए, या कोई आपके साथ है जो याद कर सकता है, तो रेडी इन 3 2 1 लेट्स गो। पहली वेबसाइट का नाम है classcentral.com, classcentral. classcentral.com। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे, और ये बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी से हैं, हार्वर्ड की तरफ से भी इसमें भाई बहुत सारे कोर्सेज हैं। एंड आपको एक स्किल अगर सीखनी है तो इससे बढ़िया वेबसाइट तो नहीं होगी भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जगहों पर वीडियो सिखाया जाता तो वो वहीं जाओ, ये तो कुछ नहीं सिखाएंगे, नहीं। यहाँ पर जो आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगी वो बड़ी कमाल की है, मतलब वो ऐसा लगता है ना, हाँ भाई ये कुछ भारी पढ़ा है मैंने। और स्किल को ब्रशअप करने के लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी, सो इफ यू वांट टू लर्न सम स्किल ये आपके काम आ सकती है, classcentral.com। ठीक है जी, आगे बढ़ते भाई। देखिए, आप गाड़ियों की नॉलेज हर किसी को नहीं होती, लोग ये अज्यूम कर लेते हैं गाड़ी चला रहे हो क्या, 6 साल हो गए तुम्हें, ये नहीं पता गाड़ी के अंदर ही होता है। हाँ भाई, नहीं पता होता है किसी को। पर अगर आप गाड़ी के बारे में सीखना चाहते हैं या गाड़ी आप फिक्स करना चाहते हैं, कोई परेशानी हो गई है, मैं ठीक करूंगा, मुझे सीखना है, तो एक वेबसाइट है carcarekiosk.com। ये भी स्किल हो सकती है भाई गाड़ी सीखने की, ठीक करने की। सो कार केयर care फिर कायोस्क, जो भी कहना चाहें आप, kiosk.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, भाई आपकी कौन सी गाड़ी है, आप बताएंगे हाँ जी ये गाड़ी है, हाँ जी कब का मॉडल है, कौन सा मॉडल है, हाँ जी ये मॉडल है। उसके बाद बाकायदा वीडियो में आपको बताएगा कि अच्छा ये वाला पार्ट टिक करना है, अच्छा ये वाला टिक करना है, अच्छा ये वाला पार्ट दिखना है। आप वीडियो देखते देखते देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या मसला है, या मसला जो है वो कैसे सॉल्व हो सकता है, ये सब कुछ आपको वेबसाइट बताएगी। कितना ईजी कर दिया है भाई मामला। तो आपके अंदर क्या करें, एक मैकेनिक है ना जो बहुत दिलों से तड़प रहा है, छिटपटा रहा है कि मैं भी गाड़ी को जरा बोनट खोल के देखूं तो सही क्या है, तो ये आपके लिए सही समय है। बढ़ते हैं जरा आगे। ये जो लास्ट वेबसाइट है ये उनके लिए जो किताबें पढ़ते हैं, मैंने लास्ट में इसलिए बचा के रखी है बिकॉज ये बहुत ही बहुत लोगों के काम आएगी भाई, बहुत लोगों, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं किताबें पढ़ता भी नहीं हूँ यकीन जानिए, मगर इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं ना, ऐसी किताबें हैं लगता है अरे ये तो पढ़ लेते हैं यार। मैंने एक होमो सेपियंस एक स्पीशीज करके एक किताब है वो पढ़ी इसी पे, एंड पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट पढ़ी नहीं है पूरी, पढ़ रहा हूँ। शुरुआत किया था मैंने ऐसी चेक

0: करूं ऊपर, वो चेक करने के चक्कर में कहां पढ़ सकते हैं। तो फ्री फंड में आपको सारी किताबें मिलेंगी, फ्री फंड में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है किताबों की। और प्लीज ये जाके किसी ना किसी को जरूर बताएगा। वेबसाइट का नाम है welib.org भर भर की किताबें भाई फिर। प्लीज ये किसी तक तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा दीजिएगा। ऑलराइट, अब जरा बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए क्या है कि अभी सैमसंग ने भी अपना रोल आउट किया है न्यू जो UI है उनका 9। आपने रिसेंटली नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। साथ ही गूगल की तरफ से बयान आ चुका है कि उन्होंने कहा हमारी जो क्रोमबुक अपडेट्स है वो अभी तक नहीं है, वो 2034 तक है भाई। आगे की सोची हमने, 8 साल आगे के बाद अपडेट आएगी तो आएगी, अभी आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई नो कुछ लोग आईफोन पगलू हैं मगर थोड़ा सा मूव करने की जरूरत है। ट्राई एंड कंसिडर समथिंग गूगल, बिकॉज अभी गूगल ने अपने सारे जो मॉडल से मूव कर दिए गूगल बुक OS पे, और क्या क्लीन OS है यार, क्या क्लीन OS है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ना समथिंग न्यू, अगर आप एंड्रॉयड छोड़ के iOS छोड़ के कुछ करना चाहते हैं, एप्पल इज द वे आउट, मैं सच बता रहा हूँ। ट्राई दिस वन। ये थी अपडेट्स, मिलते हैं अगली वाली में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट। टेक
1: अपडेट। मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
2: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
1: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
3: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 RJ नाजिया और RJ सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं FM 107।
5: दिल से देसी।
6: स्कैम अलर्ट।
7: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर अगले 5 मिनट में आपको पता चलने वाले हैं नए जमाने में नए तरीके से होने वाले स्कैम के बारे में। और आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये बड़ा ही यूनिक स्कैम है। ये है पिक एंड ड्रॉप ट्रांजिट स्कैम। कैसे ये काम करता है स्कैम, सबसे पहले इस पर बात करेंगे, क्योंकि आजकल सभी पेरेंट्स का स्केड्यूल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया है, और बच्चों को सेफली स्कूल भेजना और वापस लाना एक बड़ी फिक्र की बात हो गई है। स्कैमर्स आजकल इसी चीज का फायदा उठाने लगे हैं दोस्तों। वो फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, लोकल फ्लायर्स या फिर इंस्टाग्राम पर एड्स पोस्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। वो दावा करते हैं कि वो बहुत ही कम दाम में, एकदम चीप प्राइसेस में बच्चों के लिए डेली पिक और ड्रॉप का सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं, और उनसे कई लोग जो है उनके साथ कई लोग जुड़े हैं और पेरेंट्स काफी खुश हैं। और जो पेरेंट्स टाइट बजट पर होते हैं या जल्दी में होते हैं वो इस सस्ते ऑफर के चक्कर में फंस जाते हैं। अच्छा, माँ और बाप दोनों बहुत ज्यादा बिजी हैं, और कई बार अगर थोड़ा महंगा भी लगता है तो लोगों को लगता है ये फायदे का सौदा है। जब आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो आपसे बच्चों की बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे कि घर का एड्रेस क्या है, बच्चों का स्कूल का स्केड्यूल क्या है, और एडवांस में डिपॉजिट भी मांगते हैं। इसके बाद दो चीजें होती हैं, या तो वो पैसे लेकर गायब हो जाते हैं, सर्विस कभी मिलती नहीं है, या फिर सबसे खतरनाक, आपके बच्चे की पर्सनल डिटेल्स और टाइमिंग्स किसी अनजान या कहें किसी क्रिमिनल के पास जो है वो चली जाती है, जो बच्चों की सेफ्टी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन किस तरह से आप इस तरह अगर आपके साथ हो रहा है या आपके सामने कोई फ्लायर आया है, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है और आप डायरेक्ट उस शख्स से बात कर रहे हैं जो फ्लायर में नंबर लिखा है, तो कैसे बच सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस सॉल्यूशन पर भी बात करना बहुत जरूरी है। देखिए सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, लेकिन हम 3 सॉल्यूशन के बारे में अभी फिलहाल बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है स्कूल से वेरीफाई करें। सबसे पहला जो नियम, जो रूल है, वो ये है कि किसी भी रैंडम एड पर भरोसा ना करें। हमेशा वही ट्रांसपोर्ट सर्विस चूज करें जो आपके बच्चे के स्कूल से ऑफिशियली रिकमेंडेड या रजिस्टर्ड हो। कई बार सोशल मीडिया पे आपके बच्चे का स्कूल जिस जगह पे है वहां पर और आपका घर जिस जगह पे है या फिर आपके घर के आसपास की लोकेशन वहां पे कोई भी शख्स जो है वो आता और जाता है और वो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करता है कि मैं फला जगह से फला जगह तक आता जाता हूँ ए से लेकर बी पॉइंट तक, और किसी को अगर सर्विस चाहिए तो बताएं। और आप भी ए और बी पॉइंट के नजदीक रहते हैं, आप ऐसे में उन पर भरोसा कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे होते हैं। ऐसा कभी भी बिल्कुल ना करें। उसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे, ड्राइवर या एजेंसी से उनका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस CDL या क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन रिपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस के पेपर्स जरूर मांगे। इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, आप उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर वो आनाकानी करें तो समझ जाइए ये कुछ गड़बड़ है, या फिर वो आपको जवाब ही ना दे तो बेहतर है कि ऐसे लोगों से पीछे हट जाएं, चीप यानी कि सस्ते ट्रांसपोर्ट के पीछे बिल्कुल ना भागें। उसके अलावा एडवांस देने से भी बचें, जब तक आप फिजिकली ड्राइवर से ना मिल लें और उनकी गाड़ी चेक ना कर लें तब तक कोई भी बड़ा एडवांस डिपॉजिट या अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल शेयर ना करें। बच्चों की सेफ्टी के मामले में एक्स्ट्रा अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये नए जमाने के नए स्कैम्स कुछ इस तरह से भी होते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हमारे फायदे की बात हो रही, लेकिन कुछ देर में हमें रियलाइज होता है, जब हमारे साथ स्कैम हो जाता है तब जाके हमें एहसास होता है कि ये एक्चुअली स्कैम था। जब आपको रिप्लाई मिलना बंद हो जाता है, जब आपकी जो डिटेल्स हैं वो किसी और के पास चली जाती हैं, आप किसी रजिस्टर्ड से भी ट्रांजिट करने लगते हैं या अपने बच्चों को उनके बसेस में आने जाने का मौका देते हैं, और फिर जब आप डिटेल्स किसी तीसरे से शेयर कर चुके होते हैं तब जाके आपको एहसास होता है जब आपके साथ सच में कोई स्कैम बाद में लेटर ऑन होता है। तो ऐसे में इस तरह के स्कैम से बचने की बेहद जरूरत है, और इसीलिए आपके लिए खास शो है जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। उम्मीद है इस शो के जरिए आपको कुछ पता चला होगा, आप अवेयर हुए होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
6: स्कैम अलर्ट।
8: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
9: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल फंड के बारे में। आज का स्टूडेंट, कल का अडल्ट और कल का एक प्रोफेशनल, उसके लिए आज ही से हमारी तैयारी। आज ये बात करना इसलिए भी जरूरी है कि

हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूव प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 Time Check. Time Check.
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरी आवाज़ म्यूज़िक से ज़्यादा तेज़ होते हुए और इस वक्त एफ एम 107 की घड़ी में बज रहे हैं 10:02 और सफ़ा और माविश हाज़िर हो गए हैं आपके साथ.
3: अस्सलाम वालेकुम.
2: शो का नाम है
3: यू मैटर
2: और हमारा साथ कितनी देर तक रहेगा?
3: 11 बजे तक.
2: 11 बजे तक.
3: मतलब मैं कोई मतलब तोता हूँ क्या? मतलब मुझसे सवाल किए जा रहे हो, बस जवाब दे रही हूँ. ये क्या चल रहा है? मैं मिठू हूँ क्या?
2: ताबे आया मेरे, कोई तो ताबे आया. मतलब चाहे एक सवाल के एक मतलब सवाल ही
3: आज मुझे अपना आप ना मिठू मिठू लग रहा है. क्या हो गया मुझे?
2: मिठू बेटा चुरी खाओगे? हाय क्या याद दिला दिया माविश. मैंने क्या तोते मिठू मिठू मैंने बहुत पाले.
3: हाँ हमारे घर भी मिठू बहुत पले.
2: मुझे मेरा दिल करता है
3: सबसे क्यूट होता है सबसे पिंजरे में
2: नहीं. हाँ. बहुत शरारती होते हैं भाई. हाँ, बहुत शरारती,
3: तो शरारती होते हैं तो क्यूट होते हैं ना. अभी मैंने देखा पता है कहीं पाकिस्तान में किसी एक भाई ने अपने घर पे ना दाना डालना शुरू किया छत पे. ठीक है, तो वो उन्होंने सब जानवरों के लिए डालना शुरू किया, चिड़ियां ये हरे तोते. हाँ, और सब, वो सब, सब, सब आने लगे. हाँ. और वो इतने आने लगे कि अब पूरा पता नहीं कहाँ कहाँ से हरे तोते आ रहे. हाँ. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ मतलब लोग अच्छा, इनको कैसे आजाद घूमने दे रहे हैं.
2: मजे की बात ये पाकिस्तान में ना बहुत बहुत वैरायटी है इन बर्ड्स की किस्मों की.
3: लेकिन हरे वाले तोते कहाँ रहने देते हैं?
2: नहीं रहने देते हैं, बहुत है पाकिस्तान में. मैंने देखे कदर में नजर आते वेदर की वजह से.
3: हाँ, वो तो वेदर
2: यहाँ पर नजर आते हैं.
3: लेकिन हमारे यहाँ भी होता है ना कि जहाँ देखते हैं तोता तोते को पकड़ने के लिए लग जाते हैं. ये नहीं करना चाहिए.
2: तोता ये सारे
3: तोते मतलब उड़ते हुए और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है.
2: यहाँ पे कबूतर बहुत है.
3: कबूतर हैं लेकिन तोते ओए होए.
2: मेरे साथ उल्टा है साथ. पता है क्या, मैं बिल्लियों को खाना डालती थी. बिल्लियों को तो डाला पर चला सुबह को दरवाजा. अब दो से तीन टाइम बिल्लियों को खाना डालती, तो मेरे पास तो बिल्लियों का मेला मवेशियां था अंदर भी घर में और बाहर भी.
3: यार ये बिल्लियां देख देख के तो मैं तंग आ गई हूँ तोते देखने.
2: अच्छा मजे की बात है क्या होता है यहाँ पर कतर में. अब मैंने डाला बिल्लियों को खाना. अब क्या देखूं थोड़ी देर बाद बिल्लियों ने तो खा लिया. जो हमारे तो ये है ना बर्ड्स हैं.
3: हाँ.
2: वो भी उसी प्लेट में से आ रहे खाने.
3: अच्छा
2: अरे भाई बिल्लियों का खाना खा रहे
3: मतलब इतनी.
2: मैंने कहा भाई तुम लोग को बाजरा डाल दो. कहते ना ना ना ना हमें यही खाना है.
3: यही खाना है
2: हमें, यही खाना है.
3: मैंने देखा था वो आई थिंक तुर्की की बात है. तुर्की में जो है ना वो डालते हैं बिल्लियों को खाना. हाँ. डालते हैं ना, तो उसके उन्होंने बकायदा उस तरह के जैसे हम लोग क्या कहते हैं यार मेरे दिमाग ना काम नहीं कर रहा होता किसी किसी वक्त. हम लोग कॉइन्स डाल के चिप्स वगैरह और सब कुछ लेते हैं.
2: वेंडिंग मशीन, वेंडिंग
3: मशीन, इस टाइप की वेंडिंग मशीन लगाई हुई उन्होंने. तो वहाँ क्या हो रहा है कि वो बिल्लियों के लिए है कि वो बिल्ली आके मियाऊ मियाऊ करती है और वो खुल जाता है. तो बर्ड्स ने मियाऊ मियाऊ करना शुरू कर दिया.
2: वो सीख लिया.
3: हाँ वहाँ पे आके वो मियाऊ मियाऊ करती हैं और वो वेंडिंग मशीन खुलती है और खाना भरा जाता है. वो बिल्लियों को खाना खा जाती है.
2: वाओ सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत देखो कैसे. yes. इंसान तो सीखता सीखता
3: है. हम कहाँ से कहाँ बह गए. हमने अच्छा. बात क्या करनी थी, हमने बाहर ये करनी थी कि हमारा टॉपिक है क्या भाई.
2: इज कंटेनमेंट द सीक्रेट टू हैप्पीनेस. देखिए मैंने इंग्लिश इतनी ज्यादा झाड़ दी है कि लोग कहेंगे सफाबाजी. देखो ये उर्दू चैनल है, हम आपको ये याद दिला दें.
3: बहुत ज्यादा झाड़ दी है आपने, अब ट्रांसलेट कर दें प्लीज.
2: ट्रांसलेट देखिए ये जो ट्रांसलेशन वाला काम है ना ये कुछ ऐसा नहीं. आज आज क्यों ना ये मस्ती की जाए
3: क्या
2: कि भाई जरा बताओ इसका मतलब क्या है.
3: तुम जानी लोग कॉल ना करें.
2: आज देखो आज थर्सडे मैं चाह रही हूँ लोग
3: चल गया
2: लोग जो है ना थर्सडे या अपना वीकेंड एंजॉय करने से पहले मैं कहूंगी कि जो है ना वो कर लें क्या थोड़ी सी दौड़ लगा लें.
3: दौड़ लगा लें.
2: दौड़ लगा लेंगे. लगवाऊं दौड़ के नहीं लगवाऊं?
3: नहीं नहीं बता देना चाहिए. बता देना चाहिए ताकि हमारे पास जल्दी से कॉल आए क्योंकि वैसे ही हमारे पास टाइम कम होता है. थर्सडे है, थर्सडे को हमें बहुत कुछ करना है. तो आप लोग हमें कॉल कीजिए और कॉल करके हमें कॉल करने के लिए नंबर क्या है पहले तो वो बता दें कि 443-443-77 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं. व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए नंबर है.
2: मैसेज करने का मतलब 666-22-107. अच्छा भाई जिन जिनको कंटेनमेंट का मतलब समझ आ रहा है मैं बता देती हूँ. मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं किसी को तंग नहीं कर रही थी. दिल का सुकून और अपनी मौजूदा जिंदगी और हालात से रजामंदी. वो हमारे कौन भाई थे जिनसे मैंने भी सीखा था अल्लाह की रजा में राजी.
3: करीम भाई.
2: अरे करीम भाई कहाँ चले गए?
3: करीम भाई आते हैं कभी कभी, बिल्कुल आखिर में कॉल करते हैं, उनसे बात ही नहीं हो पाती.
2: तो भाई हमारा आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये राजी होना ना, क्या ये वाकई में सीक्रेट टू हैप्पीनेस है? यूं कह ले, देखें मसला मामला सारा पता क्या है, हर कोई चाहे वो बड़े औहदे पर हो, हायरार्की होती है ना, वो एक ट्रायंगल होता है जिंदगी का, तो लाइफ का एक हायरार्की होता है, उसके ना चाहे ऊपर वाले को देख लो चाहे सबसे नीचे तरे वाले को देख लो, हर कोई एक चाबी ढूंढ रहा है।
3: कौन सी चाबी?
2: ताले का नाम है हैप्पीनेस।
3: ओके
2: और हर कोई उसकी चाबी ढूंढ,
3: उसकी चाबी ढूंढ रहा है। ओए होए,
2: तो भाई आपको क्या लगता
3: आपने
2: है,
3: आपने क्या गहरी बात की?
2: बस मैं क्या
3: कितनी आपने गहरी बात की है,
2: मेरी साथ मैं हैरान हूं। आप इंटेलिजेंट हो गई हैं,
3: अच्छा
2: समझ में लगी है जिंदगी को।

0: इसको कैद कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे अपने पास लाया जा सकता है?
1: खुशी को,
0: हाँ जी,
1: खुशी तो अल्लाह ताला की देन है, हर टाइम खुश रहना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात
0: है? अरे दुनिया ढूंढ रही,
2: लो
0: ये की मेकर बन गए।
1: खुशी तो हम देखो 11 बजे से उठा है, खुशी ढूंढ रहा है 11 बजे से, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी रहना चाहिए, खुशी तो बड़ा चीज है, खुश नहीं है तो मैं काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता?
0: तो ये बताएं जरा, हर चीज में राजी हो जाने पे खुशी मिलती है या हर चीज में चू चू चाचा करने पे मिलती है?
1: ओ हाँ, राजी करने में खुशी मिलती है
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: दिल को खुशी, खुशी बड़ी चीज है, अल्लाह का शुक्र करो, सुना ना, वो सब कुछ खुशी ही खुशी है,
0: सही
1: बच्चे हो बीबी हो सब कुछ है तो खुशी है मेरा, अरे और क्या चाहिए?
0: सही, चले फिर
1: कबीर भाई का उसको जवाब दिया, अभी आपको दे रहा हूँ, अभी जाको आधा घंटा से रेस्ट करूंगा 12 बजे, फिर उनको खाना दूंगा, फिर शाम को फिर सारा दिन खुशी खुशी है,
0: खुशी खुशी दादा।
1: आप आए ना चाने में, आए ना एक दफा,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे तो फिर आपको बता कर आएंगे।
1: यहाँ पे अभी देखो कैमल का रेस चालू है, बड़े बड़े टीवी लगे
0: हैं, वाह वाह जबरदस्त, इंशाल्लाह आएंगे,
1: पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री।
0: हाँ हाँ
2: चले जरूर आएंगे भाई, जरूर आएंगे,
1: चाय पीने का कोई टेंशन नहीं, कड़क चाय पीता
0: है। चले हम इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे।
2: चले जी खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, ओके जी, अल्लाह हाफिज। तो हमारे साथ भाई खालिद भाई, और उन्होंने तो कहा खुशी ही खुशी है, हर तरफ खुशी खुशी, इधर देखो इधर भी खुशी, उधर देखो उधर भी खुशी, ये सीन चल रहा है सफा, तुम्हें क्यों नहीं मिल रही खुशी?
0: मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम खुशी था, बिल्डिंग में रहती थी, वो मिल नहीं रही,
2: ओ
0: पता नहीं कहाँ चली गई,
2: कहाँ चली, बता के भी नहीं गई,
0: बता के भी नहीं गए। और भाई वो मेरी दोस्त ना बहुत खाते पीते घराने सी थी, तो मुझे उसके गुम होने का और ज्यादा दुख हो रहा है।
2: तो इसीलिए चली गई, इसीलिए बताकर नहीं गई,
0: इसीलिए बताकर नहीं गई। देखो ऐसे वाले दोस्त साले, सारे मेरे दोस्त गरीब। मुझे वाली मीम याद आ गई, सारे मेरे दोस्त गरीब। अच्छे अच्छे लोग सारे चले गए, बाकी जो गरीब गुरबा थे वो सारे अपनी जेब में। नहीं नहीं, मेरे दोस्त बेचारे सुन रहे होंगे तो उनको बुरा ना लग जाए,
2: उनको लगेगा कि आपने उनको ऑनियर गरीब कहा। मतलब वैसे तो चलो ठीक है,
0: वैसे तो चलो बेइज्जती करती रहती है,
2: लेकिन
0: ऑनियर आपने सफा कैसी बातें कर दी।
2: तो भाई वही आप लोगों ने कॉल करनी, क्या हुआ, मतलब अभी तक टॉपिक समझ में नहीं आया क्या?
0: नहीं आया
2: तो बता दिया, मुझे लग रहा है कि नहीं आया।
0: देखिए क्या अपनी जिंदगी में,
2: खालिद भाई को समझ में आया था,
0: क्या अपनी जिंदगी में जो कुछ हमारे पास है उससे मुतमईन और खुश रहना ही असल खुशी का राज होता है या नहीं, ये बताना है आपने मुझे। या कुछ लोगों को खुशी इसमें भी मिलती है कि वो जस्तजू में रहते हैं, आरजू में रहते हैं। कुछ लोग बड़े सैड होते हैं भाई, वो उनको वो कहते हैं वो जिंदगी जस्तजू और आरजू में ही गुजरती रहे।
2: ज्यादातर जो लोग जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप होते हैं ना, उनको तो भाई जिंदगी में यही मामला होता है उनका। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। मुद्दसर भाई आप कैसे हैं?
0: वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर भाई आप थे, कौन थे जिनकी तबीयत खराब थी? मुदस्सिर भाई की कुछ दिनों पहले, नहीं सही सही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
2: आसिफ भाई,
0: अच्छा मुदस्सिर भाई तबीयत वगैरह कैसी है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जी
2: जी जी।
3: मुझे एक बजे एक दोस्त का फोन आया, मैं मसाज की साइड करूँ लेकिन धूप बहुत ज्यादा लग रही है, पहले वायरस मेरे घर पे तो क्या करूँ, मैंने कहा तो कुछ भी नहीं मसाज का है तो ऐसा कर जाता पर मैं पे जा घर पे जाओ दरवाजा से टकाओ।
0: अच्छा मजे की बात बताए क्या है मुदस्सिर भाई, मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला हुआ होता है।
3: जाओ तब मैं घर में जाओ, बस कोई तरीका तो नहीं है, मैं तो फोन भी हूँ और तुम उधर है, तुम्हारे पास अभी वॉलेट नहीं है तो क्या करेगा तो
0: कोई मसला। अच्छा ये अल्लाह ताला जैसे मामलात हैं सबके मामलात दुरुस्त करे, जोक्स अपार्ट पता नहीं क्या तो बात है मामेश, पता नहीं क्या तो बात है, ये तो मजाकिया कह रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या तो बात है, ऐसे लोग में टकरा जाते हैं हमेशा।
3: हाँ लेकिन जो हम लोग जितना खाते हैं ना वो दूसरों को जवाब खिलाएंगे ना
0: उससे अल्लाह ताला हमें डबल देता है भाई,
2: बिल्कुल
0: डबल देता है,
2: बिल्कुल ऐसे
3: ही ना वो तुम सुन भी नहीं सकता है।
0: और अगर आप ये नियत रख

0: कर किसी की मदद करें ना, खास तौर पे अपना दस्तरखान आप किसी के से जो आप खाते हैं वही आप दूसरों को खिलाएं उसी नियत से, अच्छा जैसे जितना अच्छा आप खाते हैं उतना ही अच्छा अपने साथ वालों को भी खिलाएं, तो यकीन जाने पता नहीं कहां से गैब से वो अल्लाह ताला ने वादा किया ना रिस्क का, तो अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को भी खाली नहीं होने देता।
1: मेरा मामू को अल्लाह जन्नत से फिरदौस दे दे, वो पाकिस्तान में वो गंदम बहुत ज्यादा किसी बाड़ी करता था गंदम का,
0: सही
1: जब गंदम का कटाई ज्यादा था उसके साथ मजबूत 50-60 लोगों के साथ काम करते थे, वो हमारे इलाके में उसका इतना मशहूर हो गया था कि आप जिसके साथ भी काम करो गंदम के टाइम में जिसके साथ भी काम करो
0: सही
1: उसके हजर में दो टाइम का खाना और दो टाइम का खाना पीना सबको पूछेगा।
0: वाह,
1: बोलते जब ये मैं देता हूँ मुझे बहुत सुकून आता है और मेरी रिजक में और बरकत आती है।
0: हाँ हाँ, रिजक में और बरकत आती है इससे बांटने से। सही, तो भाई ये तो एक ऐसी बात है। मुदस्सिर भाई आपकी ना आवाज
2: बहुत कट कट के आ रही है,
0: कट कट के मुझे लगता है आप ब्लूटूथ जो है ना ब्लूटूथ पर है या स्पीकर पर है।
1: अभी सही है, अभी सही है।
0: हाँ अभी बेहतर है
1: जी।
0: तो भाई
1: कह रहा हूँ कि टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम सुना नहीं है क्या टॉपिक
0: भाई? टॉपिक यही है कि क्या अपनी जिंदगी में जो कुछ हमारे पास होता है उसमें मुतमईन रहने में, उसमें राजी रहने में हमें खुशी मिल जाती है? खुशी का राज यही है
1: जी। जी जब आपके पास जो भी चीज है ना, अल्लाह ने आपको जो भी दिया है ना उस पे आपको मुतमईन होना, अल्लाह से राजी होना, ये सबसे बड़ी बात है। जब आप अल्लाह से इस चीजों पे राजी होगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी बदल जाती है।
0: सही,
1: मतलब हम एक जॉब करता है ठीक है, वो चाहे टफ है जैसे भी है, हम उस पे राजी होंगे ना तो वो काम हमारे लिए इजी हो जाएगा। जब हम राजी नहीं होंगे, अल्लाह ने आपको ये दिया, हम राजी नहीं है तो वो दिन ब दिन हमारे लिए सख्त हो जाएगा, फिर बोले ये काम ऐसा हो गया, ये काम ऐसा हो गया, ये काम ऐसा हो गया, काम क्यों ऐसा हो गया। तो जो भी चीज है उस पे अल्लाह से राजी होना चाहिए, होना चाहिए जी।
0: अच्छा वैसे भाई एक बात बताएं, ये जो मुझे लोगों से पूछने का पता नहीं क्यों शौक है कि आपको क्या लगता है कि जब हम अल्लाह ताला से राजी होते हैं या हम शुक्र गुजारी करते हैं तो कुछ ऐसा होगा जो आपको मुख्तलिफ लगता होगा कि आप कहते होंगे मुझे जिंदगी में ना शुक्र गुजारी से ये सीखने को मिला?
1: बात तो असल यही है कि जब आप शुक्र गुजारी करोगे ना अल्लाह की, एक तो तुमको तुम्हारा जो दिल है ना वो बहुत सुकून में आता है।
0: हाँ, हाँ आता है।
1: तो टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब तुम मसलन तुमको कोई गिलास का पानी मिल जाए ना आप लस्सी के, तुम बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो आदत ऐसी बन जाएगी जो भी तुम काम करोगे हर चीज में तुम अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे बोलोगे, वो तुम्हारा जो ट्रस्ट होता है ना जो घर का जो काम का वो सब खत्म हो जाता है।
0: हाँ, ऐसा लगता है दिल को ना किसी ने पत्थर जो होता है पत्थर का वजन होता है ना वो हट जाता है।
1: जी जी जी, मसलन जो साइको होता है ना पेशेंट, वो जब नींद पूरा करता है ना फिर वो जब उठता है सुबह वो बोलते हैं ओहो मैं दिल फ्रेश हूँ, मेरा दिमाग हल्का हो गया, मेरा दिल हल्का हो गया, फिर तुमको वैसे ही फील होगा।
0: सही सही सही।
1: तो हर चीज में तो अल्हम्दुलिल्लाह करना है तो ये सबसे बड़ी बात है। एक तो सवाब भी तुमको मिलेगा क्योंकि दिन टाइप से यही रहना जो चीज मिलता है, और दूसरा बात यही है कि ये फाइन भी हो जाता है इस चीजों से।
0: सही चलें जी, मुदस्सिर भाई थैंक यू सो मच आपका।
1: आज वीकेंड है ना?
0: आज तो वीकेंड है भाई।
2: वीकेंड है।
1: जी जी, तो कल मैंने नाज़िम मैम से पूछा कि वीकेंड आता है आप किस क्या आपको खुशी लगता है, और मुझे बोलता है कि दो दिन की छुट्टी मिल जाता है ना सर मेरे से जान पड़ जाता है।
0: अरे भाई सर्वर
1: भाई जान छोड़ता है
0: नहीं भाई, हम तो उदास हो जाते, मुझे कोई डांटने वाला नहीं होता, मुझे कोई तंग करने वाला नहीं होता,
2: मतलब कितना मुझे बदनाम किया है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे मेरे कितना बदनाम किया है।
0: मैंने कहा मुझे मजा नहीं आता मावेश के बगैर।
1: नहीं बदनाम नहीं किया, मैं पूछ रहा हूँ कि आप दोनों का क्या सिचुएशन है?
0: मावेश शुक्र करती होगी?
2: नहीं ऐसा नहीं है,
0: कान खाने वाला
2: अच्छा ही लगता है, मजा ही आता है जब आप आते हैं काम करते हैं मिलके बातें करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है।
1: नहीं, नहीं? आप बोलोगे

0: हाँ मजा आता है, बहुत मजा आता
1: मैं
0: है।
1: मैं अपनी बिल्डिंग में मेरे जो भी बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा समझती हूँ, आते जाते उनको प्यार करना, हक करना।
0: ये मेरे साथ भी होता है। मेरे साथ पता है क्या होता है, वो जो बिल्डिंग वाले बच्चे ना, मैं जैसे एंटर होती हूँ ना, पता नहीं क्यों, अच्छा मजे की बात ही, जानते भी नहीं है, आएंगे चिपक जाएंगे, ऐसे चिपक जाएंगे वो, और वो कितने, वो दो दो तीन तीन साल के।
1: हाँ जी, ऐसे ही है। मेरी फ्लैट में सुडानीज हैं, इजिप्शियंस हैं, उन सबकी मैं फेवरेट हूँ। और मेरे बच्चे हैरान हो रहे होते हैं, कभी मुझे आके जूती पहना रहे होते हैं, कभी मेरी शू रैक के बाद जूती में पहनने लगूं तो पास आ जाएंगे, जूती बनाने लग जाएंगे, इतना प्यार है उनको। मैं शर्मिंदा हो रही होती हूँ कि भाई नहीं करो नहीं करो, तुम्हारा काम नहीं, मैं खुद पहन लूंगी, थैंक यू। वो कहते नहीं हमने करना, ऐसे खिदमत ही कर रहे होते हैं।
0: मेरे साथ तो बैठे गप्पे मारते हैं। अब वो तीन तीन चार चार साल के बच्चे, मैं एंटर हुई जैसे ही ऑफिस से आई तो मुझे कह रहे हैं टुडे यू लुक टायर्ड। मैंने कहा डू आई रियली लुक टायर्ड, या आई नो व्हाई यू लुक टायर्ड। मैंने कहा व्हाई, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी अलॉट। मैंने कहा ये देखो ये मेरा डायग्नोसिस कर रहे हैं। बच्चों बड़ी खुशी
1: मेरे साथ भी ऐसी, मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी मॉल में भी जाऊँ, किसी की गोद में भी बच्चों, मैं उसको हंसा के छोड़ूंगी, वो मेरा फेस देखेगा तो मैंने उसको हंसाना है, ये मेरा एक एम होता है। तो मुझे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, खुशियाँ बांटने से आपको खुशियाँ वापस भी मिलती है। यही आपको कोशिश करनी चाहिए लाइफ में, मतलब अच्छा करने की कोशिश करें डेली रूटीन में, जितना आप कर सकते हैं पूरे दिन में। और उसके अलावा हमारे यहाँ पर इतने सारे कैट्स, स्ट्री कैट्स हैं, उनको खाना जरूर डालें, उनके लिए पानी जरूर रखें, उससे भी आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है। तो मैं ये छोटे छोटे काम करके मैं खुशी हासिल करती हूँ।
2: जबरदस्त। और कुछ कहना चाहेंगी फाइका?
1: मेरे पास एक पेट भी है और मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जब कभी पेन में हूँ या कभी भी मतलब मेरी तबीयत खराब हो तो सबसे पहले वो मेरे पास कैसे आ जाती है मुझे समझ नहीं आता।
0: अगर कैट है ना आपके पास, कैट्स और डॉग्स के अंदर ये होता है, खासतौर पे डॉग्स और कैट्स जो है ना पेट्स में, दे कैन एक्चुअली सेंस योर सैडनेस।
1: और मैं उसके पास बैठ कर उसके साथ दिन भर की बातें भी करती हूँ, तो मुझे ऐसे देखती रहती है। मैंने कहा आपको
0: जैसे पता नहीं क्या, जैसे पता नहीं कैसे, हां मुझे अंदाजा है। हाँ। सही।
1: तो बस ये खुशियाँ बांटी हैं तो आपको खुशियाँ वापस मिलेंगी, और प्यार बांटे सबके साथ, मदद करें एक दूसरे की। कतर में भी बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर मदद करने चाहिए हमें, किसी को पानी दे देना, चाहे आप पेट्रोल पंप पे रुक रहे हैं कहीं पर भी। तो बस मेरा तो ये मोटिव है लाइफ का,
0: खुश रहो और खुश रहने दो।
2: चलें जबरदस्त फाइका, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा एक और कॉल हमारे पास शहजाद सलीम की है, फिर उसके बाद हम फौरन से ब्रेक पे चलेंगे। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
2: जी क्या हाल है भाई?
0: कैसे हैं भाई, कैसे हैं?
3: हाँ अपना सभा में बादा बा मुलायदा कहाँ गया?
0: ओ, आज वीकेंड है।
2: आदत हो गई है ऐसे, तो मतलब आप एंट्री ही नहीं लेंगे, अब तो रॉयल ही होगी।
0: जाओ मैं नहीं खेल रहा।
2: अब तो रॉयल ही आएंगे ये।
0: मैं ना अभी सोच रही हूँ आपके लिए ना एक अलग से म्यूजिक बना लेना चाहिए।
2: रेड कार्पेट बिछवा रहे हैं अभी हम थोड़ी देर में,
0: रेड दीवारें की ना, रेड कार्पेट बिछवाएंगे।
3: जी जी जी और मैम का इतना शानदार प्रोग्राम में यहाँ पर इंटर करते हैं तो उसकी तो बात ही और है प्रोग्राम।
0: वो मुझे वो क्या माविश, वो दरबार होता था ना बादशाहों का लगता था। हम दो मासूम जो है ना वो
2: दरबान है,
0: इनका दरबार बनाया जाए, उसके अंदर हम पेश होंगे कर्तव्य दिखाने के लिए। तो भाई बताएं आपको क्या लगता है कि ये जो कंटेंटमेंट है जिसे हम कहते हैं कि इसे कैसे कहा जाए कि दिल का सुकून जो होता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी अपना जो जवाब है ना, अपना जो अभी अपना हमारी जो सिस्टर गई, क्विंग सिस्टर गई ना, तो उनसे मिलता ही जुलता है। मैं सुबह निकलता हूँ लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ ना कराना साइड, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर जो फूड वगैरह है ना, अगर मेरे को इनफ हो गया ना, तो मैं उसको ना सेव करता हूँ। सेव करके ना जहाँ झाड़ वगैरह चिड़िया वगैरह रहती थी ना, डेरे लगे होते हैं, कबूतर ना बहुत उतरते होते, कबूतर ही कबूतर उतरते थे, तो मैं उधर डाल के थोड़ा खड़ा रहता हूँ, बड़ा मजा आता है जब वो
0: सुकून मिलता है
3: खाने पे। हाँ बड़ी वाह,
0: और उनकी आवाज होती है गुगु गुडुगु गुडुगु, और फिर आते हैं।
3: और उसमें क्या है कि जो जो फूड वगैरह जो है ना, एक किसी के पेट में गया और किसी को उसकी जरूरत थी। और इसके अलावा भी जो मेरा अपना भी ये रहा है ना, जो अपना जहाँ मेरी ड्यूटी रहती है, जो मेरे साथ के लोग है ना, तो मैं फूड है ना शेयरिंग करता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। कुछ भी मैंने मतलब खाने वगैरह के लिया ना, तो मैं डेफिनेटली ना वो उसको शेयर करूंगा और साथ में ना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, साथ में है ना, और बात

0: खाने में बड़ा मजा है और अपन थोड़ा खाओ, लेकिन वो जो खाते है ना लोग बड़े मतलब हाँ बड़े बड़े मजे से जो खाते हैं ना, हो सकता है जिसकी भूख लगी उस टाइम पे और उसको फिर हमने उसको ऑफर किया, क्योंकि कई दफा ना एक बार मैं कहाँ गया था, हाँ रवि रोड पे था मैं एक दफा, तो मेरे साथ एक बंदा हुआ था, तो हमने जोर पड़ा एक मस्जिद में टर्म की, तो खाने का टाइम मतलब जोर पड़ के खाना का हमने पार्सल लिया, पार्सल लेके ना मस्जिद में रखा था साइड में, एक बंदा ने बेचारा बैठा था, जैसे मैंने पार्सल उठाया ना उसने बड़ी मतलब हसरत भरी निगाह से देखा उसने, वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मैंने उसको है ना जज कर लिया, मैं बोला आओ खाना खाते, एक सेकंड में उठ के आ गया मेरे साथ वो, तो यकीन करे इतना मुझे मतलब दिली मतलब ये हुआ है ना यार, ये
1: मिलता है कि आप जो ना अल्लाह ताला ने आपको किसी का वसीला बना दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे इतनी मतलब खुशी हुई ना यार, अगर मैं काश अगर मैं इग्नोर करता या नहीं पूछ पाता तो बेचारा यार वो भूखा ही बैठ जाता है, इतना देर तक हो सकता है यार उसके कुछ मतलब परेशानी हो या कुछ माली हालत कमजोर हो, तो बहरहाल है ना जो खिलाना बांटना और ये मतलब खुशी का एक है ना, चरिंदे परिंदे और एनिमल्स ये वाकई में एक
1: अच्छा मजे की बात, ये शायद मजे की बात ये, आप जितना करते हो ना जितना आप करोगे ना, मैंने नोट किया है अल्लाह ताला उतना आपके दिल को सुकून देता जाता है और आपका हाथ ही ऐसा बनाता है जो हमेशा देने वाला,
2: क्योंकि इंसान दे नहीं सकता किसी को,
1: हाँ
2: मतलब अगर अल्लाह ताला चाहता है तो आप किसी को दे सकते हो, आप वसीला बन सकते हो, तो आपको इस ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी तो कोई औकात ही नहीं है, आपको चूज किया जा रहा है बेसिकली।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जो जो अपने पास है ना जितना भी अपने पास है ना अगर हम उसमें खुश और हम उसमें सुकून तलाश करेंगे ना उतनी आगे जिंदगी ना आसान होगी। ऐसा ही है बिल्कुल जी, और भी दूसरे को मौका मिले
2: नहीं, अभी तो हम गानों को मौका देते हैं। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, तो फिर हम चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, क्योंकि अब हमारा कुछ आधा घंटा कंप्लीट हो गया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, साथ ही 6622107 पे आप कर सकते हैं मैसेज, लेकिन उससे पहले
1: एक छोटा सा ब्रेक सुनते रहे।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, आजकल के डिजिटल दौर में वीडियो गेम्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन गेम्स का मुनासिब इंतखाब और उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के करीब रहिए, उन्हें गेम्स के इंतखाब में शामिल कीजिए, उन गेम्स का चुनाव कीजिए जो उनकी एज और ज़हनी तरक्की के मुताबिक हों। गेम्स के जरिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम और स्किल्स भी हासिल की जा सकती हैं, अगर सही इंतखाब किया जाए। आपकी रहनुमाई और तवज्जो उनकी डिजिटल दुनिया को महफूज और फायदेमंद बना सकती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी गेमिंग दुनिया को सेफ और प्रोडक्टिव बनाइए।

0: 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कदर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं यू मैटर
2: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
1: FM 107 पर, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं यू मैटर आरजे सफा और महविश के साथ।
4: और भाई वीकेंड आ गया, भाई महविश म्यूजिक चला गया, म्यूजिक
3: म्यूजिक है ना,
4: बहुत
3: हल्का है लेकिन है,
4: है।
3: मैंने थोड़ा सा जरा थोड़ा सा लो कर दिया था। अच्छा जी, मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। और मैसेजेस जो है मेरे पास, शहजादा सलीम कह रहे हैं खालिद भाई का नंबर भेजो। शहजादा सलीम, चले मैं आपको, मेरे पास है ही नहीं खालिद भाई का नंबर, कहाँ से भेजूं?
4: अरे हाँ, हमने नंबर थोड़ी लिखा खालिद भाई का,
3: नहीं पता उनका।
4: अच्छा, नेक्स्ट टाइम खालिद भाई फोन करते हैं ना,
3: हाँ,
4: तो खालिद भाई को ना फिर नंबर इनका पकड़ लेंगे।
3: तौफीक भाई के आ गए हैं पराठे और उसके साथ है चीज
4: ट्रायंगल वाली।
3: ये रोजाना यही खा रहे
4: तौफीक भाई, उम्र हो गई है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। गुड मॉर्निंग मावजी एंड सफा जी, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल। और आपने वेलकम भी कहा, इसके साथ ही कहा कि अल्लाह की हर नेमत पे खुश होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। और यही असल में खुशी है। जैसे ही एक लेडी लिस्टनर ने कहा ना कि बच्चों के साथ और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी खुशी हासिल होती है, तो वही मैं भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। और इसके बाद किसी ने कहा कि समझ में नहीं आया, अच्छा वो उस कॉल के दौरान ठीक है। और इसके साथ ही फाइका ने कॉल मी का कहा था, फिर खुद कॉल कर ली चले इन्होंने। और इसके मुबीन बुखारी के काफी सारे मैसेजेस हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
4: ये बताएं माविश, आपको जो है खुशी किस चीज़ से मिलती है? छोटी सी, कोई बिल्कुल छोटी सी बात, माइनर सी बात।
3: बच्चों से,
4: मुझे
3: बच्चों से मिलती है, बच्चों से मिलती है। या फिर आपको, अगर आप वैसे देखो तो मुझे मुझे चांद को देख के बहुत खुशी मिलती है।
4: ये भी खुशी है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है।
3: मैं मतलब जब भी मैं चांद देखूं, मुझे चांद थोड़ा अच्छा,
4: पूरा चांद, पूरा चांद,
3: पूरा चांद, जैसा भी चांद, मतलब चांद एकदम से आ जाए ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है।
4: मुझे
3: हवा अच्छी चल रहा है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है।
4: हवा, हवा, हवा। और वो फूलों के खिलने से बड़ी खुशी मिलती है।
3: मतलब जब हर दफा ना मुझे दिसंबर में कतर, मैं खुद खुश खुश होती हूँ, लहराती घूम रही होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज है। और बच्चे बच्चे तो मतलब कोई भी बच्चा हो, हाँ, यार कहीं पे भी हो, आपको वो अच्छा लगता है। खैर जी, कॉलर
4: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम, आपकी खुशियां हम भी महसूस कर रहे हैं।
4: चले भाई,
5: तो ये जो आप परिंदों वाली बातें हैं ना, तो ये जो भी सुनने वाले हैं, रिक्वेस्ट है खुदा के लिए, खास तौर पे तोते या इनको मत पकड़े हैं,
3: है
5: नेचर में। हमारे घर के पास अब उन्होंने वो फिल कर दिया है, जैसे ना एक खांचा सा बना हुआ था तो वहां रहते थे यार, इतना मजा आता था उनके जब बच्चे दिए तो वो दो उड़ के आए, उनको खाना खिलाए और जब आके ये एक्टिविटी करें, उनको देखने का बहुत मजा आता है।
4: अच्छा, मजे की बात ये कि वो ऐसा रट लेते हैं कि आपके पास से, या आपने जहाँ पे खाना रखा होता है, मेरी खिड़की के पास रखा होता था खाना, तो वो बाकायदा आकर फजर के टाइम टक टक टक टक, जब अगर मुझे देर हो जाती थी ना, तो वो खिड़की बजाते हैं आकर, उनको पता है कि यहाँ से खाना मिलना, वो आपको जगाते हैं।
3: तो ये परिंदे,
4: परिंदे, हाँ, हाँ, कबूतर,
3: हाँ,
4: आपके साथ ऐसा होता है?
3: वो मतलब उनको पता चल जाता है ना कि उनका ये घर है, बंधा हुआ है, तो वो लाजमी आएंगे वहाँ पे,
4: वो आके जगाते हैं कि खाना।
3: हाँ,
5: तो बाकी बिल्लियों को खाना डालने के, बिल्लियां बड़ी नखरे वाली हो गई हैं, कई दफा पुराना खाना ये इस तरह उनके लिए रखा है ना, वो आगे सुन के चली जाती हैं, असल में घर के करीब भी होटल रेस्टोरेंट है, फिर वहां घूमती हुई नजर आती
3: है।
4: अच्छा, ये ना, क्योंकि जब मैंने बिल्लियां पालना शुरू किया, किसी का शौक होता है ना, तो फिर मुझे बाद में जाके पता चला, मैं क्या करती हूँ, वो बड़ा वाला जो 10-20 केजी का बैग होता है ना, वो लेकर रखती हूँ, लेकिन उसको प्रिजर्व करने का एक तरीका है। बिल्लियों के खाने को आपको प्रॉपरली सील करके रखना पड़ता है, अगर वो आपने सील करके नहीं रखा ना, तो उसके अंदर से उनके खाने का पता नहीं क्या खुशबू निकल जाती है, क्या है, कुछ तो चला जाता है, फिर वो कहती है नहीं ये पुराना खाना है, हमें नहीं खाना, जाओ, उनको पता चल जाता है।
5: भाई खरीदा वरीदा कोई नहीं है, बिरयानी बची तो उसको तो खाना
4: वो भी होता है।
5: खाने की बात कर रहा हूँ।
4: अच्छा घर का खाना वो चावल वगैरह वो छोड़ देती हैं, वो कहती हैं हमें बोटी खानी, बोटी
5: तो वो वहाँ पर है एक वो

0: फास्ट फूड टाइप की है, लोकल बनाई है, तो उसके पास वो बड़ी मिलती है। लोग अक्सर खाना खाते हैं जी, कुछ पीस बच गया तो उसको जब वो खाने
1: उनको भी फ्राइड की हाथत लगी पली भी बिल्लियां है। हाँ। अच्छा कहता है कि माशाल्लाह बिल्लियां ना बड़ी खूबसूरत पली भी बिल्लियां है सारी।
0: हाँ,
1: सारी की सारी
0: मोटी।
1: हाँ जी काहिल मोटी लेकिन बड़ी खूबसूरत। अच्छा अब तो बिल्लियों की तादाद कम हो गई है। मैं
2: अच्छा मुझे ना वो जो होती है ना मोटी वाली बिल्लियां नहीं, वो जो मोटे वाले बिल्ले होते हैं जितने चेहरे बड़े होते हैं ना,
1: आप
2: मुझे
1: बात
2: वो क्यूट लगते हैं।
1: वो जो सैड फेस वाली होती है,
2: मतलब नहीं सैड फेस वाली नहीं, जिनके सर बड़े होते हैं वो बिल्ले ही होते हैं। मतलब मुझे हमेशा यही बताया गया है कि ये जो है ना ये बिल्ला है, हाँ बड़े सर वाला, वो मुझे अच्छी लगती है। मुझे बिल्लियां ना मतलब मुझे वो जो अभी शुरू में ज़ुल्करैन साहब ने कहा था नकचड़ी चिड़चिड़ी और मतलब बदमिजाज इस किस्म की लगती हैं, पता नहीं क्यों
1: औरत औरत की दुश्मन
2: एग्जैक्टली
0: नहीं
2: मुझे अच्छी नहीं लगती यार। मतलब ऐसा लगता है बिल्ला वजह का एटीट्यूड, मतलब तुम्हें कौन, मतलब जरा सी एक नजर डाल लो उसके बाद वैसे हीरोइन बन जाती है।
1: और ये हकीकत बात देख लिया हो आपने, ये एक हकीकत बात है। बिल्ले जो है ना बेचारे बड़े मासूम से,
2: मासूम क्यूटू प्यूटू बिल्कुल ऐसे बैठे हुए होते हैं, मासूम से हिलेंगे भी नहीं अपनी जगह से,
0: और जाते हुए धुआं कड़ा के भी मुंह चिढ़ाती हैं।
2: हाँ कसम से, मतलब मुझे तो भाई मैं तो डरती हूँ, मैं तो इतना प्यार व्यार करने भी नहीं वाली, गलती से नजर पड़ गई तो वो एटीट्यूड दिखाती हुई ऐश्वर्या राय बन के चली जाती है तो क्या है यार
0: आज जैसे माशाल्लाह मैं भी इतना बड़े नाटी मूड में है, सही
2: मैं वीकेंड मूड में
1: बिल्लियों की बुराइयां,
0: बिल्लियों की बुराइयां। लेकिन नेचर नेचर में जो भी है ना परिंदे, इसकी तो हमने भी देखा है हमारे मुल्क में भी जो लोगों ने उनके बच्चों को पकड़ना ये इस तरह, इवन बचपन में हम भी कई दफा शामिल थे तो मुझे बड़ी शर्म आती है,
1: नहीं, मैंने कभी नहीं,
0: नहीं करना चाहिए। वो बस गांव में गए उधर देखा, लोग छुट्टियों में गए तो उन्होंने देखा, उसको कहते हैं ना वहाँ उनका घोंसला है तो बच्चे लेके आएंगे पालेंगे। तोते का ये होता था बच्चा लेके आके पाले ना उसको तो बोलना सीख जाता है, लेकिन ये भी गलत है, माँ बाप के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर पाते।
1: मैं लोगों को देखती हूँ ना वो बड़े बड़े वाले वो मकाओ टाइप के होते हैं, वो बचपन से लेकर आते हैं उसको फीडिंग तक जो है ना वो नीडल से करा रहे होते हैं।
2: मेरे बेटे ने भी लिया था सना से, फिर वो गर्मी की वजह से वो मर गया। उसके बाद मैंने सख्ती से बोल दिया, मैंने कहा अब नहीं आएगा, अब बिल्कुल भी नहीं आएगा।
1: मेरे घर में तो ये साथ तोते खुले घूमते थे, इंटरनेट की वायर तक खा गए मेरी
2: लेकिन नहीं रखना चाहिए। मैंने भी बाय द टाइम ना ये रियलाइज किया कि आप ये चीजें अच्छी लगती हैं, हमें अच्छी लगती हैं, अपना दिल बहलाने के लिए रखते हैं
1: वक्ती तौर पर,
2: लेकिन नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए घर पे।
0: ये सलवा बॉर्डर के पास एक वाटर पार्क है, उसका अभी नाम जिन नहीं आया, वहाँ हम लोग कुछ अर्सा पहले गए थे तो वहाँ अच्छा। जो ग्रीन जोन है वहाँ तीतर और बटेर भागते देखे और आवाजें इतने प्यारे इतने लग रहे हैं कि हर चीज जो है ना आजाद और अपने माहौल में बहुत अच्छी लगती है। तो मकसद है किसी को प्यार का मकसद ये नहीं है, कैद ना करें उनको, यहाँ तो आप जैसे एक शाहनिया में किसी ने पर्सनल वो बनाया हुआ है चिड़ियाघर टाइप का, लेकिन बड़ी वसी हरी इस पे यानी उसकी खिदमत की जाती है।
1: मैं भी गई थी। अच्छा वो भी एक जगह ना जहाँ पे अब मुझे याद नहीं आ रहा नाम, मैं लूं के ना लूं नाम नहीं लेती, लेकिन वो जहाँ पे ना टिल्ट हुई मस्जिद बनी हुई है, एक टिल्ट थोड़ी सी मस्जिद है, वहां पर आपको मोर ऐसे खुले नजर आएंगे। मतलब उन्होंने बकायदा साइन लगाए हैं कि अपनी गाड़ियों की स्पीड कम रखें क्योंकि मोर एनी टाइम यहाँ से क्रॉस करेगा, और मैंने देखे वहां पे मोर।
2: अच्छा मैंने अभी तक नहीं देखे।
1: अरे और तो वो जानवर भी ना केयर मांगता है, वो खाना पीना उनका मैंने देखा जाकर अंदर, वो असल में ना वो एक फार्म हाउस का हिस्सा है।
2: गर्मी में कैसे सर्वाइव कर जाते हैं
1: पता नहीं, अल्लाह की कुदरत है।
0: मोर जरा अब अगर आप देखें इंडिया में राजस्थान या सिंध के एरिया में ये सर्वाइव कर लेते हैं तो यहाँ तो फिर भी इनको जरा एहतियात करते होंगे।
1: खाना वाना तो वो देते हैं सही से, पानी वानी, मतलब वो क्योंकि वो फार्म हाउस का ही हिस्सा था, लेकिन उन्होंने फार्म हाउस ऐसा रखा था कि ओपन बाहर वाली साइड ना जो मस्जिद वाली साइड है वो तो ओपन
0: है, वो लंबी उड़ान का परिंदा है, ये उड़ भी जाता है
1: और अच्छी खासी तादाद में रखी है उन्होंने, मतलब 20-25
0: फिर वो खा के मोटे हो गए होंगे
1: माशाल्लाह।
0: चलें जी आपकी बातें गपशप।
2: चलें जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुल्करैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। रीच तो अच्छा,
1: हम खुशी होती है छोटी छोटी चीज़ों में और छोटी छोटी चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर खुशी मिलती है।
2: बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फर्स्ट टाइम आप लोगों को सुन रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, और ये है रिजवान। रिजवान जो है वो हमें सुन रहे हैं, जब मुझे ऊपर इनकी ना वो नजर आई तस्वीरें चाहत अली खान की इन्होंने भेजी हुई है, तो आप उनके फैन चल रहे हैं। इसके साथ ही मोहम्मद यूसुफ खान ने कहा है, अब मैं पता नहीं नाम लूँ कि ना नाम लूँ, लेकिन उन्होंने वाटर पार्क का नाम लिया है। चले कर रहे नहीं देते नाम नहीं लेते वरना एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी।
1: yes.
2: अच्छा जी, इसके साथ ही असलामुअलैकुम माशाल्लाह, ये कहते हैं उज़ैर इकबाल।

0: मसला नहीं, बस अचानक खामोशी आ गई। पहले शायद इंसान शीशे से बाहर देखता, कोई ख्याल आता, अपने दिन के बारे में सोचता। अब अक्सर हाथ तकरीबन गैर इरादी तौर पर फोन की तरफ बढ़ने लगता है। क्यों? आखिर एक मिनट की खामोशी में ऐसा क्या खतरा था? कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे जहन को मुसलसल स्टिमुलेशन की एक ऐसी आदत पड़ गई है कि खामोशी अब सुकून से ज्यादा खला महसूस होने लगी है, और जैसे ही खला आया हमने उसे किसी कंटेंट से भर दिया। अब जरा एक तीसरे शख्स की हैसियत से इस मंजर को देखिए। एक इंसान है जो पूरा दिन इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, लोगों की जिंदगियां देख रहा है, दुनिया भर की खबरें जान रहा है, और दूसरों की ख्यालात भी वो सुन रहा है, मगर अपने अंदर उसका क्या चल रहा है उसके लिए उसके पास शायद 5 मिनट भी नहीं। क्या अजीब मंजर है कि हम दुनिया से पहले से ज्यादा कनेक्टेड तो हो गए, मगर हकीकत तो यह है कि हमारे अपने आप से कनेक्शन जो है ना, ये कमजोर पड़ने लग गए हैं। अब फोन मिस्कीन वो अकेला मुजरिम भी नहीं। ये मसला सिर्फ टेक्नोलॉजी को बुरा कहकर हल नहीं होगा। फोन एक आला है और उसमें बेशुमार फायदे भी हैं। असल बात यह है कि हमारी जिंदगी का मजमूई पैटर्न क्या बन गया है। काम जरूरी है, तालीम, रिज़्क, घर और खानदान के हुकूक जरूरी हैं, सब अपनी जगह सही है। मसला इन चीजों के वजूद में नहीं, मसला तब पैदा होता है जब ये सब मिलकर इंसान की जिंदगी में उतनी जगह ले लें कि अंदर की दुनिया के लिए कोई कमरा बाकी न बचे। यूं महसूस होता है जैसे जदीद जिंदगी ने हमारे पूरे दिन को छोटे छोटे हिस्सों में खरीद दिया हो। कुछ वक्त दफ्तर का, कुछ घर का, कुछ ट्रैफिक का, कुछ फोन का, कुछ सोशल मीडिया का, कुछ लोगों का, और दिन के आखिर में इंसान अपने हिस्से का वक्त मांगता है तो जवाब आता है आज कुछ बाकी नहीं बचा। यहां सामने कराम एक खामोश नुकसान शुरू होता है, और जाहिर है कि इंसान लाजमन एक दिन में नहीं टूटता। कोई अलार्म नहीं बजता कि खबरदार आपके बातिन की तवानाई 40% रह गई है। ऐसा कुछ तो नहीं होता ना, जिंदगी चलती रहती है, मगर अंदर की जमीन आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो सकती है, और यही चीज खतरनाक है क्योंकि अचानक आने वाली खराबी हमें फौरन दिखाई देती है, मगर जो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता होने वाला जवाल, ये अक्सर मामूल बन जाता है। हम इसी को जिंदगी समझने लगते हैं। हर वक्त थका रहना मामूल, हर खामोशी से भागना मामूल, अपने आप से बात न करना मामूल, ये ना सोचना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मामूल हो गया। और फिर किसी दिन कोई मुश्किल वाकया आता है, कोई नुकसान, कोई आजमाइश, कोई ताल्लुक टूटने लगे, कोई बड़ा खौफ सामने आए, तब जाकर इंसान को अंदाजा होता है कि जिस अंदरूनी कुव्वत को मैं महफूज समझ रहा था, मैंने बहुत अरसे से उसकी देखभाल ही नहीं की थी। और अब शायद सामने कराम हमारे सामने असल सवाल उभरने लगा है, और वो ये कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान इसी जमाने में रहे, टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करे, काम भी करे, तालीम भी हासिल करे, रिज़्क भी कमाए, मगर इस सब के दरमियान अपने दिल को मुसलसल इस्तेमाल होने वाली बैटरी न बनने दे। क्या जिंदगी के अंदर ऐसे वक्फे बनाए जा सकते हैं जहां इंसान कुछ देर कंज्यूमर बनने के बजाय वो अपने लिए कुछ वक्त निकाले, जहां वो दूसरों की आवाजें बंद करके अपने अंदर के सवाल सुन सके, जहां वो ये देख सके कि मैं जिस रफ्तार से दौड़ रहा हूँ क्या सिम्ट भी दुरुस्त है, जो चीजें मुझे दिन भर परेशान करती हैं क्या वाकई वो इतनी बड़ी हैं, मेरी तरजीहात वही हैं जो मैं जबान से कहता हूँ या मेरे वक्त की तकसीम कुछ और कहानी सुनाती है, मेरे दिल में कौन सी चीज बहुत बड़ी हो गई है जिसे छोटा होना चाहिए था, और कौन सी चीज जिसको मैं हकारत की नजर से देख रहा हूँ वो मेरी नजर में हेज है लेकिन वो दरअसल वो मौजू मेरे लिए बहुत बड़ा कीमती होना चाहिए था। ये सवाल दरअसल सामने कराम क्राउडेड माइंड में आसानी से पैदा नहीं होते, उनके लिए कुछ खामोशी या खामोश जगह चाहिए, और यहीं से खलवत का तस्वर हमारे सामने एक नए माना के साथ आता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि खलवत से मुराद ये नहीं कि इंसान जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार कर ले, खलवत से मुराद है कि अपने मसरूफ जिंदगी के अंदर शौरी तौर पर ऐसे वक्फे पैदा करना जिनमें शोर कम हो और बातिन को दोबारा सुनने का मौका मिले। कभी कुरान के साथ खामोश बैठना, कभी दुआ में जल्दी न करना, कभी रात के किसी हिस्से में चंद लम्हे ऐसे गुजारना जिन पर दुनिया का कोई दावा ना हो, कभी फोन एक तरफ रखकर अपने गुजरे हुए हफ्ते को देखना, कभी खुद से ये पूछना कि मैं अंदर से किस तरफ जा रहा हूँ। और शायद इसीलिए हमारी शरीयत में ऐसी मुतअद्दिद सूरतें दिखाई देती हैं जिनमें इंसान को हुजूम से निकलकर अपने रब के सामने, अपने ज़मीर के सामने और अपनी हकीकत के सामने खड़ा होने का मौका मिलता है।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
0: अब एक मरतबा फिर जिस उनवान पर हमने बात शुरू की थी,

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. Ek

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Your health matters.
2: Assalamu alaikum listeners. Aaj zara apne ird gird dekhiye. Mobile, television, computer, tablets hamari zindagi screen se hi bhar gayi hai. Isliye आज हम बात करेंगे आंखों की सेहत और डिजिटल आई स्ट्रेन पर. आंखें हमें क्या बताती हैं? ज्यादा देर स्क्रीन देखने के बाद बस अफराद को आंखों में थकन, हेडेक, बर्निंग, ड्राइनेस या फिर धुंधलापन महसूस हो सकता है. कुछ अफराद ये महसूस करते हैं कि ये सिर्फ मोबाइल की वजह से है, लेकिन स्क्रीन यूज के साथ हम अक्सर मुसलसल करीब या बहुत ही करीब देख रहे होते हैं और ब्लिंक भी बहुत कम करते हैं. ये आप जरूर नोट कीजिए, जिससे फिर जो डिस्कम्फर्ट है वो ज्यादा हो जाता है. एक आसान सी आदत है, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, 20-20-20 रूल. तकरीबन हर 20 मिनट के बाद तकरीबन 20 फीट दूर किसी चीज को तकरीबन 20 सेकेंड्स के लिए जरूर देखिए. इस दौरान आंखों को स्क्रीन से ब्रेक दे दीजिए और ब्लिंक करना बिल्कुल ना भूलिए. ब्लिंक करते हुए हम बाज़ुकात कम जो कंसंट्रेट करते हैं स्क्रीन पर या जानबूझकर ज़्यादा ब्लिंक करने की याद दहानी आँखों की ड्राइनेस को कम करने में मदद कर सकती है. अगर मुसलसल जो ड्राइनेस रहती है तो फिर आप जो आई स्पेशलिस्ट है, आई प्रोफेशनल है, उससे ज़रूर मशवरा कीजिए. स्क्रीन की ब्राइटनेस हो इस पर भी खास तवज्जो देनी है. स्ट्रेन अगर ना हो तो आंखों को गैर ज़रूरी डिम या इतनी रोशन या इतनी ज़्यादा जो स्क्रीन है की बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है वो हमारी आंखों को मुतासिर करती है. कमरे की रोशनी और स्क्रीन ब्राइटनेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इससे डिस्कम्फर्ट पैदा हो सकती है. ऐसा रखिए कि बार बार आँखें सुकेड़ कर पढ़ना ना पड़े. जो टेक्स्ट साइज है उस पर भी तवज्जो दीजिए और जो डिस्टेंस है उसको भी आप बहुत ही गौर से देखिए. और बच्चों के लिए तो बहुत ही अहम है, और बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के साथ साथ जो आउटडोर एक्टिविटी है और जो फिजिकल उनकी एक्टिविटी है बहुत अहम है. वालिदैन सिर्फ ये ना कहें कि मोबाइल छोड़ दो. तब हम कहते हैं अच्छा मोबाइल पर बहुत टाइम हो गया है, या टैबलेट्स पर, या आप गेम खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और अब छोड़ दें.

0: बल्कि उन्हें अल्टरनेटिव को एक्टिविटी आप दीजिए, खेल, किताब है, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं और आउटडोर जो टाइम है वो बच्चों की रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाइए। अगर आंखों में ख़ारिश हो तो बार बार आंखें रगड़ने से इरिटेशन और ज़्यादा हो सकती है। अगर उसमें दर्द हो, रेडनेस या डिस्चार्ज हो तो फिर फौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अब एक और बहुत अहम बात, वो ये कि आई चेकअप कब ज़रूरी है। अगर नज़र जो है धुंधली हो रही हो, बार बार आपको हेडेक हो, पढ़ने में मुश्किल हो, नज़र में तब्दीली महसूस हो या फिर ग्लासेस का जो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पुराना हो गया हो, तो फिर आप आई एग्जामिनेशन ज़रूर करवाइए। और अगर अचानक नज़र कम हो जाए, शदीद आई पेन हो, फ्लैशेस या बहुत ज़्यादा नए फ्लोटर्स महसूस हों, या आपकी नज़र में अचानक कोई गैर मामूली तब्दीली आए, तो फौरी मेडिकल असेसमेंट ज़रूरी हो सकती है। बाहर बहुत ज़्यादा धूप में जो मुनासिब प्रोटेक्शन यूवी वाली सनग्लासेस हैं वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो मददगार साबित हो सकती हैं। किसी काम के दौरान आंखों को इंजरी का ख़तरा हो तो अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव आई वियर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरह कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने वाले अफराद हाइजीन और लेंस केयर इंस्ट्रक्शंस पर ज़रूर अमल करें। लिसनर्स, हमारी आंखें हमारी दुनिया को देखने का ज़रिया हैं, इसलिए आज से चंद आसान जो हैबिट्स हैं वो हम अपना लेते हैं, जैसे कि आंखें हैं और जो ज़रूरत के मुताबिक आउटडोर टाइम है या ब्लिंकिंग है, लाइटनिंग जो है वो मुनासिब हो, स्क्रीन जो ब्रेक्स हैं वो हम गौर करें उन पर, और रेगुलर चेकअप्स जो हैं वो भी बहुत ही ज़रूरी हैं। मोबाइल और कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी आँखों की सेहत भी इतनी ही अहम है, बल्कि उनसे भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो लिसनर्स, इन सिग्नल्स की तरफ तवज्जो दीजिए, उनकी केयर कीजिए और जो ब्रेक्स दीजिए अपनी आँखों को इग्नोर मत कीजिए, और यही है योर हेल्थ मैटर।
1: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है, और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।
0: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में, हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं दूहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड ऑफ कोर्स डायलॉग रेडी होगा आपको, वेलकम टू टेक अपडेट। ये आगे बोलेगा कबीर, यही बोलेगा भाई, और क्या बोलूं मैं। बट देखो, काम की बात बता के जाऊंगा, वेबसाइट जो आपको बताऊंगा ये आपके काम जरूर आएंगी, या फिर काम ना आए तो आपका टाइम पास बहुत बढ़िया कराएंगी। तो दोनों में से एक भी चीज अगर आपके मतलब की है तो बढ़िया है, तीसरा तो मुझे समझ नहीं आता मकसद क्या हो सकता है। तो यही दो मकसद, तीन मकसद होते हैं, दो मकसद सॉरी।

0: इशारे लिखने के लिए या कोई आपके साथ है जो याद कर सकता है तो रेडी इन 3 2 1 लेट्स गो। पहली वेबसाइट का नाम है classcentral.com classcentral classcentral.com। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे, और ये बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटीज से हैं, हार्वर्ड की तरफ से भी इसमें भाई बहुत सारे कोर्सेज हैं। एंड आपको एक स्किल अगर सीखनी है तो इससे बढ़िया वेबसाइट तो नहीं होगी भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जगहों पे वीडियो सिखाया जाता तो वो वहीं जाओ ये तो कुछ नहीं सिखाएंगे, नहीं, यहाँ पे जो आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगी वो बड़ी कमाल की यार, मतलब वो ऐसा लगता है ना हाँ भाई ये कुछ भारी पढ़ा है मैंने। और स्किल को ब्रशअप करने के लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी, सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न सम स्किल ये आपके काम आ सकती है classcentral.com। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, आप गाड़ियों की नॉलेज हर किसी को नहीं होती, लोग ये अज्यूम कर लेते हैं गाड़ी चला रहे हो क्या 6 साल हो गए तुम्हें, ये नहीं पता गाड़ी के अंदर ही होता है। हाँ भाई नहीं पता, नहीं पता होता है किसी को। पर अगर आप गाड़ी के बारे में सीखना चाहते हैं या गाड़ी आप फिक्स करना चाहते हैं, कोई परेशानी हो गई मैं ठीक करूंगा या मुझे सीखना है, तो एक वेबसाइट है carcarekiosk.com। ये भी स्किल हो सकती है भाई गाड़ी सीखने की, ठीक करने की। सो कार केयर CARE फिर कायोस्क जो भी कहना चाहें KIOSK.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा भाई आपकी कौन सी गाड़ी है, आप बताएंगे हाँ जी ये गाड़ी है, हाँ जी कब का मॉडल है, कौन सा मॉडल है, हाँ जी ये मॉडल है। उसके बाद बाकायदा वीडियो में आपको बताएगा कि अच्छा ये वाला पार्ट टिक करना है, अच्छा ये वाला टिक करना है, अच्छा ये वाला पार्ट दिखना है। आप वीडियो देखते देखते देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या मसला है या मसला जो है वो कैसे सॉल्व हो सकता है, ये सब कुछ आपको वेबसाइट बताएगी। कितना ईजी कर दिया है भाई मामला। तो आपके अंदर क्या करें, एक मैकेनिक है ना जो बहुत दिलों से तड़प रहा है, छटपटा रहा है कि मैं भी गाड़ी को जरा बोनट खोल के देखूं तो सही क्या है, तो ये आपके लिए सही समय है। बढ़ते हैं जरा आगे। ये जो लास्ट वेबसाइट है ये उनके लिए जो किताबें पढ़ते हैं, मैंने लास्ट में इसलिए बचा के रखी है बिकॉज ये बहुत ही बहुत लोगों के काम आएगी भाई, बहुत लोगों, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं किताबें पढ़ता भी नहीं हूँ यकीन जानिए, मगर इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं ना, ऐसी किताबें लगता है अरे ये तो पढ़ लेते हैं यार। मैंने एक होमो सेपियंस एक स्पीशीज करके एक किताब वो पढ़ी इसी पे, एंड पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट पढ़ी नहीं है पूरी, पढ़ रहा हूँ। शुरुआत किया था मैंने ऐसी चेक तो करूं, पर वो चेक करने के चक्कर में हाँ पढ़ सकते हैं। तो फ्री फंड में आपको सारी किताबें मिलेंगी, फ्री फंड में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है किताबों की, और प्लीज ये जाके किसी ना किसी को जरूर बताएगा। वेबसाइट का नाम है welib.org भर भर की किताबें भाई फ्री, प्लीज ये किसी तक तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा दीजिएगा। ऑलराइट, अब जरा बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए क्या है कि अभी सैमसंग ने भी अपना रोल आउट किया है न्यू जो UI है उनका 9, आपने रिसेंटली नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। साथ ही गूगल की तरफ से बयान आ चुका है कि उन्होंने कहा हमारी जो क्रोमबुक अपडेट्स है वो अभी तक नहीं है, वो 2034 तक है भाई, आगे की सोची है हमने, 8 साल आगे के बाद अपडेट आएगी तो आएगी, अभी आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई नो कुछ लोग आईफोन पगलू हैं मगर थोड़ा सा मूव करने की जरूरत है, ट्राई एंड कंसिडर समथिंग गूगल, बिकॉज अभी गूगल ने अपने सारे जो मॉडल से मूव कर दिए गूगल बुक OS पे, और क्या क्लीन OS है यार, क्या क्लीन OS है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ना समथिंग न्यू, अगर आप एंड्रॉयड छोड़ के iOS छोड़ के कुछ करना चाहते हैं, एप्पल इज द वे आउट, मैं सच बता रहा हूँ, ट्राई दिस वन। ये थी अपडेट्स, मिलते हैं अगली वाली में, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Wake up. Hey, do hawala mein kabir.
1: Yehi kahunga. Subah subah.
0: Wake up. Har hafte Sunday to Thursday subah 6 baje se sirf FM 107 par. Dil se desi.
2: Aap sun rahe hain FM 107.
3: FM 107.
4: Dil se desi.
5: Scam alert.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर अगले 5 मिनट में आपको पता चलने वाले हैं नए जमाने में नए तरीके से होने वाले स्कैम के बारे में. और आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये बड़ा ही यूनिक स्कैम है. ये है पिक एंड ड्रॉप ट्रांजिट स्कैम. कैसे ये काम करता है स्कैम, सबसे पहले इस पर बात करेंगे, क्योंकि आजकल सभी पेरेंट्स का स्केड्यूल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया है, और बच्चों को सेफली स्कूल भेजना और वापस लाना एक बड़ी फिक्र की बात हो गई है. स्कैमर्स आजकल इसी चीज का फायदा उठाने लगे हैं दोस्तों. वो फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, लोकल फ्लायर्स या फिर इंस्टाग्राम पर एड्स पोस्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी कोई बात नहीं है. वो दावा करते हैं कि वो बहुत ही कम दाम में, एकदम चीप प्राइसेस में बच्चों के लिए डेली पिक और ड्रॉप का सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं, और उनसे कई लोग जो है उनके साथ कई लोग जुड़े हैं और पेरेंट्स काफी खुश हैं. और जो पेरेंट्स टाइट बजट पर होते हैं या जल्दी में होते हैं वो इस सस्ते ऑफर के चक्कर में फंस जाते हैं. अच्छा, माँ और बाप दोनों बहुत ज्यादा बिजी हैं, और कई बार अगर थोड़ा महंगा भी लगता है तो लोगों को लगता है ये फायदे का सौदा है. जब आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो आपसे बच्चों की बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे कि घर का एड्रेस क्या है, बच्चों का स्कूल का स्केड्यूल क्या है, और एडवांस में डिपॉजिट भी मांगते हैं. इसके बाद दो चीजें होती हैं, या तो वो पैसे लेकर गायब हो जाते हैं, सर्विस कभी मिलती ही नहीं है, या फिर सबसे खतरनाक, आपके बच्चे की पर्सनल डिटेल्स और टाइमिंग्स किसी अनजान या कहें किसी क्रिमिनल के पास जो है वो चली जाती है, जो बच्चों की सेफ्टी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है. लेकिन किस तरह से आप इस तरह अगर आपके साथ हो रहा है या आपके सामने कोई फ्लायर आया है, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है और आप डायरेक्ट उस शख्स से बात कर रहे हैं जो फ्लायर में नंबर लिखा है, तो कैसे बच सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस सॉल्यूशन पर भी बात करना बहुत जरूरी है. देखिए, सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, लेकिन हम 3 सॉल्यूशन के बारे में अभी फिलहाल बात करने वाले हैं. सबसे पहली चीज है स्कूल से वेरीफाई करें. सबसे पहला जो नियम, जो रूल है वो ये है कि किसी भी रैंडम एड पर भरोसा ना करें. हमेशा वही ट्रांसपोर्ट सर्विस चूज करें जो आपके बच्चे के स्कूल से ऑफिशियली रिकमेंडेड या रजिस्टर्ड हो. कई बार सोशल मीडिया पे आपके बच्चे का स्कूल जिस जगह पे है वहां पर, और आपका घर जिस जगह पे है, या फिर आपके घर के आसपास की लोकेशन, वहां पे कोई भी शख्स जो है वो आता और जाता है, और वो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करता है कि मैं फला जगह से फला जगह तक आता जाता हूँ, ए से लेकर बी पॉइंट तक, और किसी को अगर सर्विस चाहिए तो बताएं. और आप भी ए और बी पॉइंट के नजदीक रहते हैं, आप ऐसे में उन पर भरोसा कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे होते हैं. ऐसा कभी भी बिल्कुल ना करें. उसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे. ड्राइवर या एजेंसी से उनका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस CDL या क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन रिपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस के पेपर्स जरूर मांगे. इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, आप उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं. अगर वो आनाकानी करें तो समझ जाइए ये कुछ गड़बड़ है, या फिर वो आपको जवाब ही ना दे तो बेहतर है कि ऐसे लोगों से पीछे हट जाएं. चीप यानी कि सस्ते ट्रांसपोर्ट के पीछे बिल्कुल ना भागे. उसके अलावा एडवांस देने से भी बचें. जब तक आप फिजिकली ड्राइवर से ना मिल लें और उनकी गाड़ी चेक ना कर लें, तब तक कोई भी बड़ा एडवांस डिपॉजिट या अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल शेयर ना करें. बच्चों की सेफ्टी के मामले में एक्स्ट्रा अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये नए जमाने के नए स्कैम्स कुछ इस तरह से भी होते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हमारे फायदे की बात हो रही, लेकिन कुछ देर में हमें रियलाइज होता है जब हमारे साथ स्कैम हो

0: हो जाता है तब जाके हमें एहसास होता है कि ये एक्चुअली स्कैम था। जब आपको रिप्लाई मिलना बंद हो जाता है, जब आपकी जो डिटेल्स हैं वो किसी और के पास चली जाती हैं, आप किसी यू नो रजिस्टर्ड से भी यू नो ट्रांजिट करने लगते हैं या अपने बच्चों को उनके यू नो बसेस में आने जाने का मौका देते हैं, और फिर जब आप डिटेल्स किसी तीसरे से शेयर कर चुके होते हैं तब जाके आपको एहसास होता है जब आपके साथ सच में कोई स्कैम बाद में लेटर ऑन होता है। तो ऐसे में इस तरह के स्कैम से बचने की बेहद जरूरत है, और इसीलिए आपके लिए खास शो है जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। उम्मीद है इस शो के जरिए आपको कुछ पता चला होगा, आप अवेयर हुए होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107, दिल से देसी।

आज की स्पोर्ट्स कहानी बांग्लादेश क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी और लीडर की है जो बैट के साथ भी टीम की उम्मीद है और टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर भी बांग्लादेश को एक नए दौर की तरफ ले जा रहे हैं। नाम है नजमुल हुसैन शांतो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। लेफ्ट हैंड बैटर नजमुल हुसैन शांतो बांग्लादेश क्रिकेट के इम्पोर्टेंट मिडिल ऑर्डर खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक बल्लेबाज की नहीं बल्कि एक टेस्ट कप्तान की भी बन चुकी है। उन्होंने 2023 में पहली बार बांग्लादेश की टेस्ट कप्तानी संभाली थी। 2025 में यानी पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद उन्होंने कप्तानी से हटने का फैसला किया था।

इट वॉज अ मेजर डिसीजन. लेकिन बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें दोबारा टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान उन्हें बना दिया. उनका करंट मैंडेट अगर देखा जाए तो 2025-2027 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के एंड तक है. विच मीन्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन पर थोड़ा ट्रस्ट किया एंड ट्रस्ट करने के साथ साथ उनको ये एहसास भी था कि नजमुल हुसैन जो है ना कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन एक दिमाग रखते हैं, एक सोच रखते हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा लॉन्ग एक्सटेंशन दिया गया है. और ये हुआ है अंडर द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तमीम इकबाल, जिनका मानना यह है कि लॉन्ग टर्म सोच इम्पॉर्टेंट है ना कि शॉर्ट टर्म. परफॉर्मेंस खराब हो जाए और उनको निकाल दो, ये सोच तमीम इकबाल का नहीं. और इसी सोच के साथ बांग्लादेश क्रिकेट को कई ऐसे कामयाबी हासिल हुई. मैं बताऊंगा इसी चर्चे पे आपको आगे बता रहा हूं मैं कि कैसे नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश क्रिकेट को वो इंटरनेशनल एक फेम दिलाने में अहम रोल अदा किया है. कप्तानी करियर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर 2026 में सामने आया जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी. ढाका में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी और इस मैच में नजमुल हुसैन शांतो ने खुद भी शानदार बल्लेबाजी की और पहली इनिंग्स में 101 रन जबकि दूसरी इनिंग्स में 87 रन बनाए. उनकी इस कारकर्दगी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला. इस सेंचुरी के साथ नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान के तौर पर अपनी 5वीं सेंचुरी कंप्लीट की और मुशफिकुर रहीम के 4 सेंचुरीज के जो रिकॉर्ड थे उसे पीछे छोड़ दिया. और आईसीसी रैंकिंग में भी उनकी पोजीशन करियर बेस्ट 23 तक पहुंची, विच वॉज अ वंडरफुल यू नो अचीवमेंट बाई दिस वंडरफुल क्रिकेटर फ्रॉम बांग्लादेश. कप्तान के तौर पर शांतो की एक और खास बात यह है कि वो सिर्फ बल्लेबाजी पर डिपेंड नहीं करते बल्कि फील्ड पर बॉलिंग चेंजेस और मैच सिचुएशंस को भी क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं, मॉनिटर करते हैं. मई 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ फतेह के बाद वो बांग्लादेश के सबसे तेज 7 टेस्ट विक्ट्रीज हासिल करने वाले कप्तान बन गए, यानी फास्टेस्ट टू विन 7 टेस्ट मैचेस. उन्होंने सिर्फ 17 मैचेस में ये माइलस्टोन अचीव किया, बहुत ही बड़ी बात है. फिर आया ऑस्ट्रेलिया का दौर, बांग्लादेश के लिए एक तारीखी चैलेंज. डार्विन में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पहली टेस्ट विक्ट्री हासिल की, यानी ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर, ऑस्ट्रेलिया के ही घर पर ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों. क्रिकेट में अगर देखा जाए आज के दौर में ऑस्ट्रेलिया इज डेफिनेटली वन ऑफ द लीडिंग टेस्ट प्लेइंग नेशन, स्ट्रॉन्ग नेशंस माना जाता है. और इस मैच में तंजीद हसन ने सेंचुरी बनाई और मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट हासिल किए. नजमुल हुसैन शांतो की लीडरशिप में बांग्लादेश ने एक ऐसी जीत हासिल की जो टीम के टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी. इट वाज अ मेमोरेबल विक्ट्री, बिलीव मी, मेमोरेबल विक्ट्री. दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त कमबैक किया और बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया. इस नतीजे के बाद 2 टेस्ट मैच सीरीज 1-1 से ड्रॉ रहा. मकई टेस्ट मैच में सिर्फ 2 दिन में 18 विकेट गिर गए. मैच के बाद शांतो ने पिच कंडीशंस पर बात करते हुए कहा कि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर जब विकेट्स गिरती हैं तो बहुत डिस्कशन होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी कंडीशंस को इसी तरह एग्जामिन किया जाना चाहिए. दोस्तों नजमुल हुसैन शांतो की कहानी एक यंग बल्लेबाज से बांग्लादेश के टेस्ट लीडर तक के सफर की कहानी है. उनके सामने चैलेंज ये है कि बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंसी के साथ आगे ले जाया जाए और साथ ही खुद भी बल्ले के साथ टीम के लिए रन्स भी बनाए. नजमुल हुसैन शांतो बांग्लादेश का टेस्ट कप्तान, लेफ्ट हैंडेड बैटर और एक ऐसा लीडर जिसके सामने बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट का अगला चैप्टर लिखने का मौका है. उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा. अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहां हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो कतर की जमीन, तारीख और मेहमान नवाजी से गहरा ताल्लुक रखती है। ये है खजूर। कतर में खजूर सिर्फ एक मीठा फल नहीं बल्कि

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल शो विद मोहम्मद अमीज, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स अ गोल शो प्रोग्राम, आप सभी का इस्तकबाल है, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, और इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी पर 1:02, इट्स अ गोल शो स्पोर्ट्स शो, एंड इसमें काफ़ी कुछ है, स्पोर्ट्स का मतलब ही होता है सब कुछ हो आपके सामने, और क्रिकेट, फुटबॉल, ओलंपिक स्पोर्ट्स, और ना जाने और भी क्या क्या क्या क्या चल रहा है, और मौसम बहुत अच्छा होने जा रहा है, एंड उम्मीद है आप लोग उसी खूबसूरत मौसम के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, एंड इसी टाइम में होता है कि जब कतर में बहुत सा ढेरम ढेर स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटिशन शुरू होने जाते हैं। सो वी लेट्स वेट एंड

wait for the major competitions to start. Or sabse important competition jo aane wale time mein jo major jo competition hai wo hai football ka hi hai, FIFA under 17 world cup jo aapko pata hai. And chaliye प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़ा आप लोगों को क्विज का वो जो एक है ना कि आप लोगों को पकड़ दे देते हैं कि आप लोग उस पकड़ में बैठे रहिए और आप लोग जुड़ जाइए इस प्रोग्राम में. आप लोगों को थोड़ा सा मैं बिजी रखना चाहता हूं, इसीलिए आज का सवाल सुन लीजिए. एकदम यू नो वेरी इजी क्वेश्चन है एकदम आप लोगों के लिए, तो एकदम आई वुड से कि फिंगर टिप्स पर आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है. 1992 ओडीआई वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल, 1992 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल. आपको पता है कि पाकिस्तान बीट इंग्लैंड इन द फाइनल. आपको सिर्फ ये बताना है मैन ऑफ द मैच कौन हुआ था. 1992 ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल जो पाकिस्तान की फतेह और उसमें इंग्लैंड के खिलाफ ये जीत बहुत ही तारीखी जीत है पाकिस्तान क्रिकेट में. और आपको सिर्फ ये बताना है कि इस फाइनल में मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को मिला था. आप फटाफट 666-22-107 पर टेक्स्ट करिए मुझे और बताते रहिए आपका ये जवाब, और बाद में मैं बताऊंगा कि ये सही है या गलत. सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं विथ द टॉप जो इवेंट्स हैं. टॉप इवेंट्स यानी टॉप स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होने जा रहा है कतर में और दुनिया भर में आपको बता देता हूँ. फर्स्ट स्टार्ट विद उरीदू दोहा मैराथन. दोस्तों अगर मैराथन में आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मैराथन अगले साल 15 जनवरी को मुनक्किद होगा और इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं. और उनके वेबसाइट पर जाकर आप अपना एंट्री कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं. एंड दोहा मैराथन ऑर्गेनाइजर्स से जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसमें शिरकत करें तो अच्छी बात है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स फिटनेस है. और मैराथन जनवरी में होना दोहा में और बहुत ही सही लगता है, आपको अच्छा लगेगा. एंड नॉट ओनली सिर्फ बड़ों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए तो हैं अलग हैं, प्रोफेशनल्स के लिए अलग हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स के अलावा यहाँ पे एक फैमिली रन भी है, बच्चों का भी है, बच्चों का रेस भी है. एंड उसमें भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बताया उनके वेबसाइट पे जाइए एंड वहाँ पर आप दोहा मैराथन यू नो आप अपना सर्च डालिए एंड रजिस्टर करिए दोहा मैराथन 2027 और ये 15 जनवरी को मुनक्किद होगा. याद रखिएगा डेट, तारीख जो है 15 जनवरी. और इसमें तकरीबन 25,000 रेसर्स पार्टिसिपेंट्स की शिरकत मुतवक्के है. और ये ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि इस साल आई मीन अगले साल के जो ये है 15th एडिशन है दोहा मैराथन का, ये बहुत ही लाजवाब होने जा रहा है. सो वाई वेट एंड आप लोग अपना जो एंट्री है वो कर सकते हैं. अच्छा बता दूं कि इसमें क्या क्या है. फुल मैराथन है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ओनली प्रोफेशनल्स कैन डू. अगर आप प्रोफेशनल मैराथनर हैं, कतर में बेस्ड हैं, आप लोग एंट्री करवा सकते हैं. हाफ मैराथन में भी प्रोफेशनल्स होते हैं, उसमें एमेचर्स नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो फुल मैराथन, हाफ मैराथन ये बेसिकली जो है टॉप मैराथनर्स के लिए, जिसमें बाहर से बहुत सारे टॉप मैराथनर्स आएंगे. इसके अलावा 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है और इसके अलावा फैमिली रन, जैसे मैंने बताया फैमिली के लिए भी एक यू नो एक छोटा सा इवेंट रखा गया है. और वहाँ पर बच्चों का भी एक रेस है जहाँ पे बच्चे शिरकत कर सकते हैं. सो आई वुड रिकमेंड, आई वुड सजेस्ट कि दोहा मैराथन में आप लोग शिरकत करें एंड आप लोगों को अच्छा लगेगा. दोस्तों एक दोहा मैराथन के साथ साथ एक और आप लोगों को इवेंट जो मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की तैयारियाँ ऑलरेडी तैयारियाँ क्या, अब इन कतर के पास एवरीथिंग इज रेडी. और ये मैचेस जितने भी है वो एस्पायर एकेडमी होने जा रहा है. नवंबर से ये टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और बार बार इस प्रोग्राम में इनफैक्ट स्पोर्ट्स राउंड अप में भी मैं इस टूर्नामेंट के बारे में बताते आ रहा हूँ. हमारा काम है इस टूर्नामेंट को थोड़ा प्रमोट करना बिकॉज कतर इज होस्टिंग दिस मेगा इवेंट ऑफ अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें तमाम 48 टीमें और उनके साथ आने वाले जनरेशन के जो स्टार्स होंगे वो भी खिलाड़ी मौजूद होंगे. दोस्तों अंडर 17 वर्ल्ड कप जिसमें आप हल्के से मत लीजिएगा, अच्छे मैचेस होंगे और आप उसमें देख सकते हैं, जा सकते हैं. एस्पायर अकेडमी, मौसम भी सही हो जाएगा इंशाल्लाह. तो दिस इज अनदर इवेंट फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो कि अगले महीने से शुरू होने जा रहा है. और कतर का मैच जो फर्स्ट मैच होगा वो अगेंस्ट इजिप्ट के साथ होगा और वो 22 नवंबर को होगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर अंडर 17 वर्ल्ड कप, बी प्रिपेयर्ड फॉर दोहा मैराथन. और ये दोनों तो टॉप क्रीम इवेंट्स हैं. और परसों से कतर बास्केटबॉल लीग चालू होने जा रहा है एंड कतर बास्केटबॉल लीग में इसमें 9 क्लब्स दे विल टेक पार्ट. दोस्तों बताऊं कि बास्केटबॉल लीग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कतर के पास एक मेगा इवेंट होने जा रहा है एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप बास्केटबॉल, वर्ल्ड चैंपियनशिप FIBA.

बा वर्ल्ड चैंपियनशिप बास्केटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप वो अगले साल होने जा रहा है, इसीलिए ये लीग बहुत इंपॉर्टेंट है कतर के स्पोर्टिंग कैलेंडर में। सो कतर बास्केटबॉल फेडरेशन के 2026-2027 सीजन का कतर जनरल लीग में 9 टॉप क्लब्स विल टेक पार्ट, और जो कि 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, यानी परसों से ये शुरू होने जा रहा है। सो दीज आर द मेजर इवेंट्स फॉर कतर, फॉर कतारी athletes and for local athletes as well जो कि participate कर सकते हैं for as I said in the marathon। और अब थोड़ा सा बढ़ते हैं cricket के तरफ, लेकिन मैं आप लोगों को ये सवाल जो मेरा आज का सवाल है वो दोहरा देता हूँ। 1992 ODI World Cup ICC ODI World Cup final का man of the match कौन था? फोन उठाइए 666-2107 पर मुझे टेक्स्ट करिए। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, ब्रेक लूंगा यहाँ पे, और ब्रेक के आने से बाद आप लोगों को मजीद क्रिकेट के बारे में और फुटबॉल के बारे में और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जिसमें कतर इज इन्वॉल्व उसके बारे में भी बताऊंगा। सो लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर, कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो विद मोहम्मद अमीज ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: दोबारा इस्तकबाल है लिसनर्स, इट्स अ गोल्ड शो, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, कंप्लीट स्पोर्ट्स डाइट है, स्पोर्ट्स पैकेज है इसमें। और ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल पूछा था, 1992 ODI वर्ल्ड कप फाइनल सबको याद होगा, मुझे तो बिल्कुल याद है। और उस मैच में, फाइनल मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, एंड उस मैच का, फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला था, आपको ये बताना है 666-2107 पर। पाकिस्तान इन्वॉल्व है, क्रिकेट इन्वॉल्व है, तो आप क्यों चुप हैं? और आप लोगों के कुछ जवाब आ चुके हैं, एंड बाद में मैं इसको पढ़ूंगा। और आप लोगों का, आप लोगों ने जितने भी शेयर किया वो डिटेल्स भी, आई विल डेफिनेटली लव टू मेंशन ऑल दोज थिंग्स। मुबीन बगदादी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक तस्वीर जो है, एक फ़ोटो जो है, एक शेयर किया है, वो एक रेडियो का है या क्या है, मुझे समझ में नहीं, मुझे लग रहा है कि रेडियो है। आप कह रहे हैं कि 25 साल से आप इस रेडियो को सुनते आ रहे हैं, अगर ये रेडियो है तो बहुत अच्छी बात है। एंड ये इसके साथ साथ आप आज का जो सवाल है उसके जवाब भी आप दे देंगे, तो ये बहुत बहुत सही बैठेगा फिर रेडियो के साथ क्रिकेट का क्विज। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बात बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि कतर को लेकर एक डेवलपमेंट, एक न्यूज़, एंड ये ओलंपिक्स से रिलेटेड है दोस्तों। 2034 यानी 2034 ओलंपिक बिडर्स में कतर का नाम है। कतर के साथ 6 और ममालिक हैं और जिसमें इंडिया भी शामिल है। सो देयर इज़ टू वेज, जो इंडिया से हैं और इंडिया के लोग जो यहाँ पे मुकीम हैं उनके लिए ये तो एक यहाँ पे बहुत सालों से बहुत से इंडियंस बसे हुए हैं, तो उनके लिए एक देखा जाए कि इट्स अ टू वे बोनांजा। अगर कतर की जीत होती है, आई मीन इन द बिडिंग रेस में कतर की जीत हो जाती है, तो कतर विल होस्ट द 2024 ओलंपिक गेम्स इन दोहा। और जो इंडियंस यहाँ बैठे हैं, अगर मान लीजिए इंडिया को नहीं मिलता, ऑब्वियसली कतर को अगर मिलेगा तो ऑब्वियसली इंडिया क्या बाकी जितने भी बिडर्स हैं उनको नहीं मिलेगा। सो इंडियंस के लिए

बड़ा ही एक अच्छा मौका होगा टू स्टे आई मीन दोज हु आर बेस्ड इन कतर एंड दे आर एंजॉयिंग द ओलंपिक्स. तो दोस्तों कतर इज प्रिपेयर्ड एंड कतर को जो सबमिशन है बिड कमेटी को जो सबमिट किया जाता है ये पेपर्स वगैरह तो इसमें IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा है जो कंडीशंस हैं जिसके बलबूते पे आपको ये मिल सकता है टू होस्ट ओलंपिक गेम्स उसमें सबसे इम्पोर्टेंट को मीन जो कंडीशन है वो लिखा गया है कि आपके पास होस्ट कंट्री के पास इतना यू नो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडीमेड होनी चाहिए. यानी कतर के पास तो है, रेडीमेड से मुराद कि आप बना नहीं रहे होंगे, आपको तैयार होना है और आप उस तरह से तैयार हो कि आपको अगर हम कल कह दें कि यू आर द होस्ट यू कैन होस्ट इट. यानी कि आप बना रहे हैं स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं. कतर हैज शोन कतर के पास एशियन गेम्स है 2030 में, तो कतर इज रेडी. और इससे पहले अगर हम CV पे नजर डालें, कतर की CV यानी स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजिंग होस्टिंग एबिलिटी पे अगर नजर डालें तो 2022 वर्ल्ड कप सबसे ऊपर है और इसी बलबूते पे शायद अनशायद इंशाल्लाह कतर को ये वर्ल्ड कप्स के बाद अगर ओलंपिक्स मिल जाए तो सबसे बड़ी बात होगी. लेकिन ये डिसीजन जो है 2029 को ही मिलेगा एंड अभी रिव्यू पीरियड है एंड रिव्यू के बाद एवरीबडी वुड बी कॉल्ड और उनके सामने अनाउंस किया जाएगा कि 2034 ओलंपिक होस्ट कंट्री कौन है. कतर is definitely ahead of the rest mere hisab se. yahan ke infrastructure sports infrastructure dekhne ke baad main ye keh sakta hu ki Qatar can win this bid in 2034 inshallah. acha chalte hain cricket ke bare mein. cricket pakistan ki team kal utar rahi hai against sri lanka gharelu ye t20 and odi series hai aur kal ka match jo hone ja raha hai t20 ka aur isme tri series hai and isme pakistan team already they have announced Pakistan Cricket Board ne and aap logon ko pata bhi hai ki ab naya kaptan bana hai Sahibzada Farhan. ab unke sath sath bahut sare aise khiladi hain jo ki experience hain kuch naye hain and for example agar main dekhu wicket keeper hai Khwaja Nafe ye naya naam hai aur T20 squad mein Abdul Samad Abrar Ahmed Arafat Minhaz Fakhr Zaman Hasan Nawaz Maz Sadaqat Muhammad Salman Mirza Muhammad Imran Randhawa नसीम शाह. अरे वाह, नसीम शाह की वापसी है. रजाउल्लाह, अब देखना है कि रजाउल्लाह टेस्ट में तो उन्होंने धमाका मचा दिया था इंग्लैंड में, टेस्ट में खेलने के बाद इतने सक्सेसफुल होने के बाद उनको T20 में भी रखा गया है, ODI में भी रखा गया है. सईम अय्यूब, शादाब खान, सुफियान मुकीम, बहुत से लोग कह रहे थे कि शादाब खान को कप्तानी का जो जो ओहदा है वो मिलना था उनको, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह सोचा कि साहिबजादा फरहान एशियन गेम्स में उन्होंने ठीक ठाक टीम को लीड किया था तो ही दे वांटेड टू कंटिन्यू हिम विद द T20 स्क्वाड. अगर ODI स्क्वाड की बात करूं दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी एज यूजुअल विल बी द कैप्टन, उनके साथ अबरार अहमद है, अराफात मिन्हास, बाबर आजम है, फाहिम अशरफ, फखर जमान, हारिस रौफ, हसन नवाज, मोहम्मद गाजी गोरी ये विकेट कीपर हैं. नसीम शाह की वापसी हुई है भाई ODI में एंड बहुत अच्छा लगेगा. रजाउल्लाह भी जैसे कि मैंने बताया वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स राइट नाउ अमंग द यंग बॉलर्स. साद बेग विकेट कीपर हैं, सईम अय्यूब, सलमान अली आगा जो उनको हटाया गया है, शादाब खान, सुफियान मुकीम. सो पाकिस्तान विल प्ले श्रीलंका टुमारो इन रावलपिंडी में और रावलपिंडी में ये मैचेस तीनों मैचेस T20 सीरीज के मैचेस हैं ये रावलपिंडी में ही होने जा रहा है एंड वी होप दैट पाकिस्तान विल कम बैक स्ट्रांगली. तीनों मैचेस मैं बता दूं, कल एक है, 11 को एक है और 13 को आखिरी मैच है और T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान 7 मैच ODI सीरीज अलोंगसाइड इंग्लैंड और श्रीलंका. सो ये ट्राई सीरीज है दोस्तों, इसमें रावलपिंडी विल होस्ट द ओपनिंग 3 मैचेस बिफोर द टूर्नामेंट मूव्स टू लाहौर फॉर द रिमेनिंग लीग मैचेस एंड द फाइनल. 15 मेंबर का T20 स्क्वाड आप लोगों को बता चुका हूं और 16 मेंबर का ODI स्क्वाड मैं बता चुका हूं. सो बेस्ट होप लेट पाकिस्तान विल डू समथिंग इन दिस मैच. और वहीं अगर T20 सीरीज की बात करूं इंडिया में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के साथ, इंडिया इस 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से आगे है और ये कल जो मैच होने जा रहा है 4:30 दोहा टाइम में, इंडिया इज प्लेइंग वेस्ट इंडीज इन द सेकेंड मैच ऑफ द T20 सीरीज और ये रांची में खेला जाएगा. इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग टीम डेफिनेटली. ODI की बात करूं या T20 की बात करूं, इंडिया डेफिनेटली शॉर्टर फॉर्मेट में काफ़ी मजबूत हैं और पिछले मैच में भी हमें देखने को मिला था श्रेयस अय्यर ये जबरदस्त बल्लेबाजी ने इंडिया को मैच जिताने में काफ़ी मदद की दोस्तों.

So best of luck to all the teams, India, West Indies, Pakistan, Sri Lanka. Cricket ek junoon hai hamare desi logon ke liye, hamare country ke jitne bhi, you know, Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, ye sab junoon wale, aur cricket की बात हो और ये लोग एकदम यू नो, मुझे लगता है कि क्रिकेट जैसा गेम हो ही नहीं सकता. क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, फुटबॉल इज डेफिनेटली कतर का नंबर वन स्पोर्ट है और कतर भी दे आर आल्सो इक्वली डूइंग रियली वेल इन क्रिकेट. अब थोड़ा सा बढ़ते हैं कुछ और न्यूज़ पे जिस पे आप लोगों को बताता हूँ मैं कि यू नो, इंडियन टीम की जो इंडिया ए टीम, बल्कि इंडिया ए टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में एक अनऑफिशियल टेस्ट मैच के लिए तैयार हैं और इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, जो कि सीनियर टीम कुछ प्लेयर्स थे उनको इस टीम में रखा गया है. एंड पता नहीं क्यों रखा गया है, नोबडी नोज व्हाई इट इज़ सो, बट कुछ तो बात है कि उनको शायद कुछ मौका दिया जा रहा हो कि यू नो, यू ऑल्सो ट्राई टू परफॉर्म, बिकॉज भीड़ बहुत है दोस्तों. इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और यू नो, नेपाल में क्रिकेट इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे खिलाड़ी हैं कि बस आप किसको बैठाएंगे, किसको खिलाएंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इवन इफ यू आर इन द बेस्ट फॉर्म, वो फॉर्म को दूसरे लेवल तक ले जाना बड़ा ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया, केएल राहुल जो वाइस कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के, उनको इंडिया ए टीम में डाला गया है और 24 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड ए टीम के खिलाफ तीन अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस में ये खेलेंगे. उनके साथ साथ यशस्वी जायसवाल और नंबर थ्री बैटर जो है देवदत्त पाटिकल, इनको भी रखा गया है इस 15 मेंबर टीम में जो इंडिया ए विल प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड ए. सो दोस्तों, दिस इज समथिंग वी वुड लाइक टू वॉच एंड वी वुड लाइक टू सी, एंड देखते हैं कि आगे क्या होता है. अच्छा, टेनिस में कुछ न्यूज़ है, मैं बता दूँ. टेनिस में आज जो चीन ओपन, जो बेजिंग ओपन है, बेजिंग ओपन में कोको गॉफ बाहर हो चुकी हैं और कोको गॉफ अगर बाहर हो गई तो पोलैंड की ईगा स्वांतेक जो है वो क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. इसके अलावा एक कतर में आज एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, एक चैंपियनशिप है, वो इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप है, कतर इक्वेस्ट्रियन टूर EFEI जंपिंग नेशंस कप कतर जिसका नाम है, और ये दूसरा राउंड आज शुरू हो रहा है. और इसके साथ साथ एक और आपको बता दूं कि दोहा में अंडर 19 यानी कतर बास्केटबॉल लीग अंडर 19 इज ऑन, एंड इसमें असद क्लब दूसरे राउंड के बाद टॉप पोजीशन पर आ गई है. हाँ, QSL मैच आज से शुरू हो रहा है. फीफा का जो फ्रेंडली जो मैचेस हो रहे थे, फीफा ब्रेक जो था मैं कहूँगा, तो आज QSL के मैचेस हैं और QSL में आज ये मैच जो है, आज इम्पोर्टेंट मैच दोहेल के लिए है, आज शमाल के अगेंस्ट में दोहेल विल प्ले एट 5:45 PM. तो दोस्तों, दीज आर द अपडेट्स आप लोगों के सामने मैंने पेश किया. अब चलते हैं क्विज की तरफ. आज का जो सवाल जो मैंने पूछा था कि 1992 वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था, बहुत इजी सवाल था. आप लोग क्रिकेट में माहिर हैं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है, फिंगर टिप्स पर हैं. बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग नाम नहीं लिखते हैं, कुछ साहब जो है नाम नहीं लिखते हैं, एंड दिस इज़ अ रियल रियल इशू. मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग कौन है, बिकॉज इसमें नंबर्स आते हैं. अच्छा, शेख इरफान साहब आपने सही जवाब दिया है, एंड सही जवाब दिया मुमताज़ अहमद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़. अगेन यू हैव गिवन अ फुल्ली यू नो कम्प्लीट मैसेज, एंड मुकम्मल तौर पर आप लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है. हैप्पी वीकेंड आपको भी, एंड मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं. 1992 मैन ऑफ द मैच वासिम अकरम को मिला था, बिल्कुल सही है. वासिम अकरम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था. पाकिस्तान टीम 249 रन, 6 विकेट. इंग्लैंड 227 ऑल आउट. पाकिस्तान 1/22 रन. बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ इस कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. वासिम अकरम वॉज द मैन ऑफ द मैच. नसीम साहब भी लिखते हैं वासिम अकरम, बिल्कुल एकदम एकदम एकदम सही सही जवाब आप दे रहे हैं. आप लोग बहुत क्रिकेट के ज़बरदस्त फ़ैन हैं. आर मूज, ये नाम कुछ समझ में नहीं आया. वासिम अकरम का जवाब सही है. मुबीन बगदादी साहब कुछ टाइप कर रहे हैं. हाँ, ये वासिम अकरम क्या है, आपको समझ में नहीं आया मुझे. हाँ जी, वासिम अकरम वॉज द वासिम अकरम इज़ द मैन ऑफ द मैच. मुबीन बगदादी साहब लिख रहे हैं और कुछ रेडियो के बारे में बात हो रही है, एंड उन्होंने कुछ लिखा भी. एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन साहब आपके इस मैसेज का, और आप हमेशा हमारे रेगुलर लिसनर्स, स्पोर्ट्स लिसनर्स में से हैं. इसमें मुमताज़ भी हैं, इसमें और भी शेख इरफान भी हैं. बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब ये मैसेज करते हैं. स्पोर्ट्स के इस प्रोग्राम को चांद चांद लग जाता है दोस्तों, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड

आप लोगों के साथ जुड़ जाता हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं वो भी शेयर कर देता हूँ, एंड नॉट ओनली थ्रू दिस प्रोग्राम बल्कि सुबह की न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ और स्पोर्ट्स राउंड अप भी है जो हर मंगल के रोज़ मैं पेश करता हूँ, और इट्स अ गोल जो है इतवार और जो मैं रात को पेश करता हूँ। स्पोर्ट्स इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड स्पोर्ट्स हमेशा आप लोगों के साथ होनी चाहिए, बिकॉज ये फिटनेस का एक जरिया है, आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसी दुआ के साथ और इसी मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग जुड़ रहे हैं और स्पोर्ट्स फिटनेस की तरफ आप लोग अगर जाएं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, मेरे लिए बहुत अच्छा लग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप लोगों के इस मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, एंड इतवार को दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी।

आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाजत नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.com।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और लीजिए साहब, 1:31 हुए हमारी घड़ी में और यहाँ आ गए हम दोनों।
0: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर,
1: एनर्जी आर
0: आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी,
1: देसी।
4: राइट दोस्तों, सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, उम्मीद करें आप लोग खैरियत से होंगे। सर्वर और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं और आज एकदम वीकेंड वाली वाइब। तो आज हमने सोचा कि हम बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे। एंड दो वी हैव डिसाइडेड कि आज हम कोई भी टॉपिक नहीं रख रहे हैं, है ना सर्वर भाई? आज हमारा कोई टॉपिक नहीं है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: आज हम कोई भी टॉपिक नहीं रखेंगे।
3: कोई टॉपिक नहीं है आज, कोई गेम नहीं है नाजिया जी। आज सिर्फ हमारी, आपकी और हमारे लिसनर की बातें।
4: सर्वर भाई सिर्फ आपकी
3: नहीं, हमारे
4: मोस्ट ऑफ द टाइम
3: हमारे लिसनर की भी नाजिया जी। और जानेंगे भाई क्या है उनकी जो वीकेंड की वाइब्स वगैरह हैं, उनके हवाले से भी इंशाल्लाह ताला बातचीत होगी। बाकी गाने छाने इंशाल्लाह ताला चलाने की कोशिश करेंगे पूरे तरीके से। और यहाँ पर हमें कॉल भी आना शुरू हो गई है, तो क्या कहती है नाजिया जी, शुरुआत कर दीजिए?
4: जी जी सर्वर भाई, शुरुआत कीजिए।
3: पहले कॉलर को करते हैं कनेक्ट और देखते हैं कि क्या है इनका कहना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
5: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज कहीं से भी शुरू हो जाओ यार।
3: रईस भाई है क्या? अरे भैया,
5: जमाने के बाद आए हो।
3: हम जमाने के बाद आए?
5: नहीं नहीं, हम आए हैं जमाने के बाद।
3: नहीं नहीं,
4: अभी मुझे याद पड़ता है आप आए थे लास्ट वीक हमारे साथ जुड़े थे।
5: हमारे हाजिर खिदमत रहते हैं माशाल्लाह आप तो।
3: बिल्कुल सर, ऑलवेज रईस भाई, ऑलवेज।
5: यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।
3: तो
5: और सुनाए सर भाई, और आज आज तो भाई के बाद में आप तो दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। चलो भाई, दो दिन तो कभी मुर्ग मुसल्लम खाएंगे, खिलाएंगे,
3: नजर ना लगे। पता चला कि हम आपके साथ मौजूद हैं फ्राइडे सैटरडे भी, ऐसा कहिला हो जाए।
5: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, इंशाल्लाह हम इंतजार कर मतलब ना करके किसी दिन आपको भी हम सोच रहे इनवाइट करें जरूर।
3: अच्छा, खाली मुझे नाजिया जी को नहीं?
4: नहीं नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ।
5: नाजिया अरे भैया, ये बाबा रामदेव की चेला है।
4: नहीं नहीं, आप अकेले इनको इनवाइट कीजिए, अकेले भारी हैं ये सब।
5: अरे वेजिटेरियन करके सारा महफिल लूट लिया।
3: अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह आपकी खुशी ऐसी कायम धायम रहे भाई रईस भाई।
4: आमीन।
3: और पता चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिन अभी तक का तो अच्छा ही गुजरा है, आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा गुजरे इंशाल्लाह ताला। तो अभी कहाँ हैं रईस भाई?
5: अभी जस्ट हम ड्यूटी से फारागत ले लिए हैं माशाल्लाह से।
3: अच्छा वाह, आज हाफ डे होता है क्या आपका?
5: नहीं नहीं, बस हमारा काम कैसा है बस सरोवर भाई, कुछ हम लोग का काम जैसे ज्यादा है ट्रिप सिस्टम होता है, काम तो ज्यादा है, काम तो मतलब करो, ट्रिप मारो, ओवर टाइम भी मिल जाता है, और किसी दिन काम कमती होता है तो थोड़ा जल्दी

0: स्वागत हो जाता है, बस यही है।
1: चलिए अच्छा है, अच्छा है, कम से कम जुमे की तैयारी पहले से ही करना शुरू कर देंगे और अच्छा अच्छा गुजर जाए फ्राइडे आपका, यही हमारी दुआ है।
0: मैं अपने लोकेशन पे पहुंचा, बोला हम भाई से बिना बात कर लिए के बाद ही लंच करेंगे।
1: अरे भाई नहीं तो लंच के साथ भी बात कर सकते थे ना।
0: नहीं मतलब अब गाड़ी में होते हैं, रेडियो ऑन होता है, फिर मैं बोला अब जब हमारे भाई लोग नंबर लगा देंगे तो फिर हो सकता है जल्दी नंबर है। उस दिन 42 बार लगाया था, कौन सा लगा। हमारे भाई लाइन में खड़े रहते हैं और हमारे भाई लोगों का भी यही करना। आप लोगों को मौका भी कैसे मिलेगा, हम मैसेज करें कि आप हमें को भाई आपको जब मौका मिलेगा तो कॉल करेंगे ना।
1: बस वही वही आप समझ गए और आपने दूसरों को भी अच्छी बात और मैसेज दे दिया। रईस भाई बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं कि अच्छा रहे वीकेंड आपका।
0: जी घंटे का टाइम होता है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और तमाम हमारे
2: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी।
0: मैं चलता हूँ रूम में, मैं अपना रेडियो मतलब मोबाइल।
1: हाँ बिल्कुल कनेक्टेड रहिएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
0: ऑन करता हूँ और हमारे भाई लोगों का इंतजार है।
1: क्या बात है, ओके ओके रईस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और आप लोगों को हैप्पी वीकेंड,
1: हैप्पी वीकेंड आपको भी हैप्पी वीकेंड भाई, हैप्पी वीकेंड। तो ये देखिए ये आ रही है वीकेंड की वाइब्स और पता चल गया कि पहले ही कॉलर हमारे इतने जबरदस्त और हंसते हंसते माशाल्लाह से दिन गुजार के आए अभी, जबकि ड्यूटी पूरी हो गई है उनकी। और यही हम उम्मीद करते हैं कि भाई आपकी भी जो ड्यूटी है वो इसी तरह हंसते हंसते अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाए और कोई परेशानी ना हो, ना काम में ना कोई ज़ाती मामलात में। दुआ तो यही है और हम सब यही ऐसा ही चाहते हैं। बहरहाल हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर हमारे हैं आपको पता ही है, जो पुराने नंबर हैं 443-443-77 और वहीं आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 666-22-107 पे। नादिया जी कॉलर कनेक्टेड हैं हमारे साथ एक और।
3: अस्सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
3: सरवर भाई कौन है?
1: सरवर भाई कौन है? सरवर भाई तो सरवर है,
3: सरवर है। अच्छा भाई किधर है?
1: अरे भाई तो हमेशा भाई है यार, भाई तो हमेशा भाई है।
3: अच्छा
1: हाँ
2: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से? आप खैरियत से?
3: चलो आप दोनों को खुश रखिए, इसलिए आप दोनों जब खुश होंगे ठीक होंगे तो हम ही मतलब हमारा दिन अच्छा होगा ना, हम खुश होंगे।
1: अल्लाह ताला खुश रखे
3: आप दोनों का, आप दोनों का जो मतलब सर भाई, जब आप दोनों का जो सेहत है, जो मिजाज है वो ठीक होंगे, वो अच्छे होंगे तो तब हमारी जिंदगी, हमारी दिन अच्छी बनती है।
1: भाई देखिए अब मैं ही अपनी तरफ से मिजाज जो है, क्योंकि मैं जूनियर हूँ ना और मैडम तो मैडम है, तो अपनी तरफ से आप समझ रहे मेरे कहने का मतलब, जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ।
2: आप भूलने कहा देते हैं सरवर भाई किसी को, बात काट काट के भूलने ही नहीं देते तो आप नहीं।
1: तो नादिया मैडम आप बताइए, मैं
2: सरवर भाई कितना भी मैं सीनियर हूँ उम्र में तो आप बड़े भाई हैं मेरे, तो इसलिए आप बोलिए, जारी रखिए अपनी बातचीत।
1: मदसर भाई कहाँ हैं अभी?
3: जी सर भाई फिलहाल तो अभी मैं ड्यूटी पर हूँ और
1: अच्छा अभी ड्यूटी चल रही है आप?
3: शमाल रोड की, जी जी शमाल रोड की करीब।
1: ओके ओके, शमाल में क्या हाल चाल है इस वक्त? आज तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है।
3: बस थोड़ी बहुत है ह्यूमिडिटी बिल्कुल, बाकी मौसम अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा होता रहता है इंशाल्लाह, दिन ब दिन मौसम अच्छा रहता है। बस
1: दिन ब दिन मौसम अच्छा हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी गर्मी जा नहीं रही है।
3: नहीं गर्मी तो खैर दिन के वक्त मेरे ख्याल में थोड़ा होता है लेकिन गुजारा होता है, पहले जैसा गर्मी था वैसा नहीं है, गुजारा होता है मेरे यहाँ पे। क्योंकि आप लोग हमारा जो सरो भाई आप लोग तो बिल्कुल एसी के अंदर हो बल्कि नीचे बैठे हो, हम लोग बाहर काम करते हैं, हमको पता चलता है कि अभी जो मौसम है वो बेहतर है।
1: यार आपने बात ही ऐसी कह दी, अब मैं आगे क्या ही बोलूं, हम भी बाहर आते जाते हैं, ऐसी बात नहीं है नादिया जी।
2: बिल्कुल बिल्कुल सरवर भाई हम लोग भी आते जाते हैं, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं मौसम बेहतर हो गया, काफी अच्छा हो गया इनफैक्ट।
3: जी जी सर भाई, लेकिन सर भाई आप मेरे ख्याल में जब मौसम अच्छा हो जाए, गर्मी थोड़ा कम हो जाए फिर आप निकलते हैं, हमारी तरह 11-12 बजे नहीं निकलते हैं ना?
1: अरे नहीं ऐसा नहीं है यार, हम तो आते जाते रहते हैं और काम हमारा भी होता है बाहर का, हम सभी का और आना जाना होता है, ऐसी बात नहीं है भाई, पूरा एहसास होता है गर्मी का और कुछ नहीं है, तो घर आने जाने के वक्त तो पता चलता ही चलता है कैसे भी करके। मतलब सर भाई उस वक्त तो हम भारी होते हैं।

0: बिल्कुल बिल्कुल, हमें परिसर भाई ऐसा है, कोई बात नहीं। अभी हमारी तरह इंसान नहीं है कि हम हमको गर्मी लगती है आपको नहीं लगती, अभी इंसान है, कोई बात नहीं है।
1: मैंने कहा शायद यही कह रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए मुदस्सिर साहब जी, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस
0: हैं हमारी बात खत्म हो गई, इतनी सकती बस, अगर बिरयानी की बात हम ना करें, खाने की बात हम ना करें।
1: नहीं आज खाली आज
2: आज आपको पूरे दिन बिरयानी ही की बात करनी है, घंटा।
1: जुमेरात में हम लोग असल में कोई टॉपिक नहीं रखते हैं और अब गेम वगैरह भी नहीं रखा आज, ताकि बस आप लोगों की खैरियत ले लें, कुछ गाने वगैरह हो जाएं और मूड फ्रेश हो जाए, तो उस हिसाब से
0: सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल हमें पता है। बहुत शुक्रिया, जब दुआ सलाम हो जाए हमारे लिए बहुत, मतलब हमारे लिए ये बहुत काफी है, दुआ सलाम भी हो जाए, आप लोग मुझसे बात हो जाए ये भी काफी है, बाकी पूरा प्रोग्राम हम सुनते हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे दोनों को, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भाई देखिए इस तरीके की कुछ आज जुमेरात के हवाले से बातचीत हो रही है, और एक और कॉल ले लेते हैं ब्रेक पे जाने से पहले पहले। हेलो सलाम अलैकुम।
3: वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है तुम्हारा?
1: हम लोग बिल्कुल ठीक
2: हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग खैरियत से, आप कैसे हैं?
3: बढ़िया। नादिया जी, कल का जो आपका प्रोग्राम था ना,
1: मतलब एनर्जी आर की बात कर रहे हैं या कोई दूसरे प्रोग्राम की? ना दिया
3: वाला भाई, जो कल का था सरवर भाई, कल का तो वो सुन के ना एक राज से पर्दा जरूर उठ गया कल।
1: अच्छा, वो क्या था?
3: पहले मैं क्या समझता था भी सरवर भाई को अकेली बॉलीवुड की ही नॉलेज है।
1: अच्छा।
3: और जब वो कल का शो सुना ना तो मेरे को यकीन हो गया, इनको साउथ की, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की नॉलेज तो है ही है, साथ में मूवीज के करेक्टर और उनके फेमस सीन ये अभी तक इनके माइंड में, देख लीजिए मेमोरी में।
1: मैं बॉलीवुड के सीन वगैरह और हॉलीवुड के मैं ही तो लिखता हूँ, मुझे मुझसे लिखवाने आते हैं भाई।
2: अरे ये
1: अब देखिए नादी जी इसमें रोशनी डालेंगी,
2: आप बोल नहीं कहा देंगे सर,
1: नहीं जी रोशनी डालिए, मैं लिख के देता हूँ स्क्रिप्ट या नहीं लिख के देता हूँ?
2: नहीं नहीं, जाहिर है आपसे सारे अप्रूवल्स तो आपसे ही हो गए। ये शुरू से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मूवीज देखी है लाइफ में,
1: कुछ किया लाइफ ही मूवी है नादिया जी, क्या करें आप, अपनी तो लाइफ ही मूवी।
2: सरवर भाई जो है कोई भी मूवी ऐसी हो ही नहीं सकती जो सरवर भाई ने ना देखी हो।
1: नादिया जी ऐसा नहीं,
3: करेक्टर
1: हाँ, मतलब ज्यादातर कोशिश तो यही रहती है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मूवी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, इवन वो ड्रामा ही क्यों ना हो, मतलब जो डेली सोप्स वगैरह होते हैं तो उनसे भी आपको काफ़ी चीज़ें समझने के लिए मिलती हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप दूसरी तरफ भी आपका दिमाग घूम जाता है। अब नादिया जी को देख लीजिए,
3: बिल्कुल घूम,
1: नादिया एक भी ड्रामा नहीं छोड़ती, सारे के सारे ड्रामे जो हैं नादिया पूरे करती हैं। तो अब
3: अच्छा सरवर भाई, तो आपने नादिया जी की बात की है यार, आज सरवर भाई थोड़ी सी तारीफ तो बनती है, जेन्युइन तारीफ
1: नादिया जी की,
3: दोनों की कर देता हूँ।
1: अच्छा, नहीं, नहीं, अरे आप
2: आज हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, आपने तारीफ का टॉपिक ले लिया
1: आज, आप कहें, मैं समझा आप मुझसे कह रहे हैं, मैं तो माशाल्लाह सुबह दोपहर शाम इनकी तारीफ कर सकता हूँ, करता रहता हूँ, मगर आप भी कीजिए बिल्कुल भाई, व्हाई नॉट।
3: सर्वर भाई
2: आप नहीं करते, काबा जी करते हैं ये।
3: सर्वर भाई एक बात और है, आपने बात छेड़ी है ना, आप रूल के बहुत पक्के हो, पूछो कैसे
1: कैसे,
3: जब भी पहली कॉल आती है ना, कॉल लेने से पहले आप नाजिया जी से जरूर पूछते हैं क्या कहती हैं, नाजिया कॉल ले लीजिए।
1: हाँ, देख ली, इजाजत लेता हूँ मैं बकायदा, देखिए ये भाई बात सच्ची कह रहा है अपना आदमी।
2: आज पहली बार हो रहा है गाबा जी ऐसा, कॉल तो मैं लेती हूँ हमेशा।
3: बस वही है, ये वो बंदूक है ना जो दूसरे के कंधे पे रख के चलाई जाती है।
1: नहीं भाई ऐसा, बस ये तो आपका बड़प्पन है गाबा भाई, जो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वैसे आज कुछ खास है
3: वीकेंड के बारे? देखिए आपने बात छेड़ी है ना, मेरे भी दिमाग में एक बात आ गई, देखिए जो बंदा आपका प्रोग्राम रेगुलर सुनता है ना
1: जी भाई,
3: जिस हिसाब से आपके पंच होते हैं आपके या नाजिया जी के
1: जी,
3: तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है अभी कौन सा बंदा इन दोनों में से ज्यादा टैलेंटेड है।
1: अरे मैं तो
3: मेरे ना दिमाग में,
1: मैं अभी बता दे रहा हूँ ये बात, नाजिया जी मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड बिल्कुल भी नहीं है।
2: टैलेंटेड तो है मगर ये मानते कभी भी नहीं है, ये बात अलग है।
1: अरे नहीं नादिया जी, मैं तो मतलब सबके सामने इस बात को कह चुका हूँ कई बार माशाल्लाह, और इसमें तो बताने कहने की जरूरत भी नहीं है।
3: सर्वर भाई आप किसी भी टॉपिक पे, मेंटल हेल्थ पे, डेली रूटीन,
1: मेंटल हेल्थ आपने बहुत अच्छा कहा,
3: भी हो ट्रैवल का
1: यहाँ से।

0: शुरुआत है।
1: हाँ चलिए यहाँ से शुरुआत है, मगर आप जब भी नाजिया जी से बात करोगे ना तो जरूर आपको सरवर भाई कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा उस टॉपिक पे।
0: बिल्कुल सही ऐसा।
1: और ये जो सरवर भाई इनका ये जो तरीका है ना बात अपनी डिलीवर करने का डिसेंट एनर्जी के साथ, ये हर बंदे की पकड़ में आ जाती है इजीली।
2: थैंक यू सो मच गाबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा ही तारीफ करते हैं हम लोग की, सो थैंक यू। इससे एक चीज समझ में आती है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं।
0: वाह,
2: सो हमेशा ऐसे ही रहिए,
0: आपकी शख्सियत बहुत
1: शुक्रिया नाजिया जी। और दूसरी बात ये है, अगर मैंने आप दोनों की तुलना करनी हो ना, कभी कभी मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ।
0: क्या कह रहे हैं गौर से जी
1: भाई, मैं कभी कभी खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं किसको कहूँ भी आप ज्यादा टैलेंटेड हो। चलो वो तो आप दोनों ही हो नाजिया जी, तो मेरे दिमाग में ना एक चीज आती है नाजिया जी, अपने इंडिया में ना एक कैंडी टाइप चीज मिलती है जिसको बोलते हैं गुरु चेला।
0: मैं चेला हूँ?
1: नहीं नहीं नहीं नाजिया जी, जब आप उसका रैपर देखोगे ना।
0: अच्छा हम दोनों दिख रहे हैं,
1: मैं बता रहा हूँ सरवर भाई। आप जब उसका रैपर देखोगे ना सीधा करके, तो आपको दिखेगा भी गुरु की जो फोटो है ना वो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की हुई है।
0: वाह।
1: और जैसे ही मैडम आप उसको उल्टा करोगे, उस चेले की फोटो गुरु से भी ज्यादा अच्छी लगती है देखने में।
0: वाह, मतलब अच्छा एक ही फोटो को अपसाइड डाउन करके जब आप देखते हैं तो वो बदल जाती है। वाह वाह वाह वाह,
1: बहुत फेमस है सरवर भाई, वो आपने नहीं खाई यार गुरु चेला बोलते हैं।
0: हाँ नहीं, मुझे वाकई नहीं याद आ रही, हो सकता कभी खाई हो, बट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ यार गावा भाई।
1: अभी गूगल है ना आपके पास?
0: हाँ मैं करूंगा, मैं देखूंगा तो जरूर। अब जब आपने याद दिलाया
1: भाई, बात यही है अभी आप दोनों एक सिक्के के दो पहलू हो सरवर भाई, आप दोनों के बिना गुजारा नहीं है शो में,
0: हेड और टेल की बात हो रही है।
2: थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: ओके जी, थैंक
0: यू। ओके भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड।
2: हैप्पी वीकेंड।
0: तो भाई ये थे गावा भाई यहाँ पर हमारे साथ, और वीकेंड की वाइब्स जो हैं वो चल पड़ी हैं, और यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। नादिया जी नए मैसेज की तरफ बढ़ जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए।
2: हाँ जी, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लिसनर्स जुड़ चुके हैं, सलाम कहते हैं। रेहान, वालेकुम अस्सलाम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप, सॉरी गुड आफ्टरनून आपको। और इसके साथ हमारे साथ है मुबीन बुखारी जी का मैसेज, सभी को गुड आफ्टरनून कहते हैं। और दिन तो जा चुका आई थिंक, और आज कुछ गर्मी कम है। That's true, उतनी गर्मी तो खैर नहीं है। अच्छा सलाम कहते हैं, और मैं क्या सुन रहा हूँ, कबीर भाई सरवर भाई के जुल्म से तंग आकर कतर छोड़कर जा रहे हैं, और सुनकर बड़ा दुख हुआ, बेचारा फूट फूट के रो के जा रहा है। ये कौन है भाई? भाई ये शेख इरफान अल काजमी जी हैं, और आपको क्या लगता है कि कितने लोग रूट राट के जा सकते हैं भाई? अच्छा यहाँ पे एक और प्यारा सा मैसेज है मोहम्मद यूसुफ जी का, हम दोनों को सलाम कहते हैं, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल एंड वेलकम टू एनर्जी आर, और हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून, और गेम खिलाइए प्लीज।
0: अरे
2: कहना है चाहे कोई भी टाइम का गेम क्यों ना हो, थर्सडे है, वीकेंड है, सभी लोग इंजॉय करते हैं। मुझे पता है सम लिसनर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले, बट सम आर वेरी इंटरेस्टेड, जो खेलें खुशी से उन्हें खिलाइए, और जो ना खेले उनसे बात कर लीजिए। तो ये कहना जी बात गाबा भाई ने कही, आई सेकेंड हिम, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि यू आर जोड़ी नंबर वन ऑफ द रेडियो। थैंक यू सो मच यूसुफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप कितने प्यारे मैसेज का। यहाँ पर हमें सलाम भेजा है हिशाम ने, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यहाँ पर मुमताज जी का मैसेज है, सलाम कहते हैं हम दोनों को, अ वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड, और सरवर भाई वीकेंड वाला बैकग्राउंड लगाओ।
0: ये वही तो है ना?
2: हाँ शायद यही वही है।
0: आप भी शायद कहती हो कहेंगे कि हम ऐसे ही कह रहा हूँ।
2: नहीं नहीं ठीक कह रहे हैं। अच्छा कमाल जी हमारे साथ, हम दोनों को सलाम कहते हैं, कमाल उद्दीन जी।
0: कमाल उद्दीन,
2: वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पर हैप्पी वाला वीकेंड कहा है शहजादा सलीम जी ने, सो हैप्पी वीकेंड आपको भी। तो ये थे मैसेजेस, एंड आर वी गेटिंग सम मोर कॉल्स?
0: हाँ कॉल ले लेते हैं।
2: हाँ जी
0: फिर ब्रेक की तरफ चलेंगे। अच्छा नहीं है ये वाला भाई।
2: हेलो,
0: गिर गया फोन।
2: हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो नसीम जी हमारे साथ?
3: वैसा मैं कुछ नहीं
2: बोलेंगे आज, क्यों?
3: सरवर भाई से नाराज है।
2: अच्छा आपसे नाराज है?
0: अच्छा क्यों? मैं जान सकता हूँ क्यों?
3: हाँ बिल्कुल, मैं अभी बता रहा हूँ
0: जी।

0: तेरे सावत का असर ऐसा पड़ा, नहीं तेरे संगत का असर कुछ ऐसा पड़ा मुझ पे, तेरे संगत का असर कुछ ऐसा पड़ा मुझ पे, दीवाने भी अब मुझे दीवाने खाते।
1: आए, आए, आए, आए, आए, आए,
2: आए।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, इतने ज्यादा आप दिमागी तवाज़ुन जो है खो दिया मोहब्बत में, मतलब हमारी कहने में शेर का खुलासा कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में नसीम भाई ऐसे ही है,
0: दीवाने भी दीवाने कहते हैं।
1: आपकी आवाज एकदम रुक जाती है, मुझे लगता है कि कॉल कट गई है, क्या हुई? तो नसीम भाई कहाँ आते हैं अभी?
0: मी
1: समीर माइधर में है। ओके ओके ओके ओके, क्या हाल चाल है, ट्रैफिक वगैरह का ऑल गुड, ऑल ओके ओके, रिपोर्ट?
0: हाँ मैसर में तो एकदम अभी ठीक ठाक है।
1: गर्मी क्या कह रही है?
0: गर्मी तो भाई मौसम है, गर्मी तो रहेगी,
1: गर्मी
0: अब यहाँ तो आइसलैंड बना नहीं सकते।
1: वाह वाह वाह, क्या शेर बनाया दूसरा आपने भाई, बहुत अच्छे, और बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, वीकेंड आ रहा है, उसको एंजॉय कीजिए, और इंशाल्लाह ताला आपसे संडे में दोबारा मुलाकात और बात,
0: इंशाल्लाह।
1: ओके सर, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो भाई अब लेते हैं एक ब्रेक, चलते हैं गाने की जानिब। आई लव यू, एश किंग कह रहे हैं फिरोजो के साथ, एंजॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल गाना, और भाई वीकेंड की जो वाइब है ना उसको जरा और ज्यादा स्मूथ बनाते हुए इस गाने के साथ। एनर्जी आर सुन रहे हैं आप, सरवर और नादिया आपके साथ, ओनली ऑन FM 107।
2: दिल से तेजी।

0: ऐश किंग की बात ही कुछ और है यार. हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड कतर,
1: हैप्पी वीकेंड. और हम दोनों वापस आ चुके हैं, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर, हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पे कनेक्ट हो गए.
0: एंड हाय,
2: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम. सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी कौन है हमारे साथ? पावर टू.
1: नाइस, ओके.
0: कैसे हैं मुतसर भाई, खैरियत से?
2: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. माँ बाप को नहीं पहचानते हम, तो हमारा आपका बड़ा फैन है.
1: ओहो, थैंक यू सो मच सर. वाकई में आपको पहचान नहीं पाई, क्या आपके नेबर
2: हैं? उस दिन तो सरवर भाई से हमने बचाया था आपको.
0: क्या रेफरेंस
1: भाई, आपको तो फिर ऑफिस में होना चाहिए.
0: क्या साथ रेफरेंस दिया भाई, क्या
1: हमारे साथ होना चाहिए.
0: क्या याद दहानी कराई है?
1: मैंने कहा आपको तो हमारे साथ ऑफिस में रहना चाहिए फुल टाइम.
0: मुझे
1: नहीं, मतलब कोई एक ऐसा हो जो यू नो प्रोटेक्ट कर सके, डिफेंड कर सके, बात कर सके. सो कैसे आओ, पर अभी तक आपका दिन कैसा रहा?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, पर दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है.
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, इसी तरीके से आगे भी गुजर जाए दिन आपके और आज का दिन भी. खासम खास कहाँ पे हैं अभी मुदस्सिर भाई?
2: मैं अब हमूर में हूँ.
0: अबू हमूर में क्या हाल चाल है, ट्रैफिक वगैरह के?
2: इधर ट्रैफिक नॉर्मल है, मैं पहले शुमाल रोड से आ रहा था लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा था.
0: ट्रैफिक वहाँ पर ज्यादा था शुमाल रोड पे?
2: वो एक हादसा हो गया था उसकी वजह से जाम हो गया था.
0: खैर अफियत का मामला करे तो भाई उस वक्त आप लोग सुन रहे हैं कि शुमाल रोड की तरफ थोड़ा ट्रैफिक है, मुदस्सिर भाई भी उसी तरफ से.
2: लेकिन वो ट्रैफिक होगा, वो ये कतर का पुलिस है, वो ट्रैफिक जल्दी जल्दी काम लेता है.
0: बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक.
2: काम जो बहुत फास्ट है ना यहाँ पे,
0: सही. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
2: वो दो मिनट में सब कुछ वही सही नॉर्मली हो जाएगा.
0: अल्लाह ताला और उनकी सेहत में, तंदुरुस्ती में, ताकत में इजाफा करे.
2: हादसे का शिकार इससे हुआ जाता है ना, जो शमोल रोड में ही है या सबल अहमद कॉरिडोर है, वहाँ पे हम लोग मोबाइल यूज करता है.
1: ये सब बहुत ही अच्छी बात की आपने, ये बहुत सारे लोग बताते हैं और आई थिंक ये बहुत बड़ा एक वजह बनती है कि कितना मना करने के बावजूद भी हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो
2: मैं आपको फोन लगा रहा था तो मैं गाड़ी पार्किंग पे किया, फिर इसके बाद मैं आपको फोन लगाया.
0: बहुत अच्छी बात.
2: इस तरह लोगों को फोन आता है या मैसेज आता है, वो लोग रोड के ऊपर मोबाइल को यूज करते हैं, वो माइंड चेंज हो जाता है, इसकी वजह से हादसे का शिकार बन जाते हैं.
0: अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे. और बहुत अच्छा मैसेज आपने शेयर किया है. इस वक्त सभी लोगों से दरखास्त भी है, और दरखास्त क्या करनी भाई, ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है. बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है. वजारत दाखिला हर वक्त हमें ये इस बात को बताती है पॉइंट पॉइंट पे, बार बार कह के कि भाई जितनी भी चीज़ें ड्राइविंग से मुतालिक हैं उनमें बहुत ज़्यादा एहतियात करा करें, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा, हमारी फैमिली के लिए अच्छा है. एक्चुअली
2: हमारी फैमिली के लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है.
0: बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बहुत बहुत शुक्रिया भाई मुदस्सिर भाई, ख्याल रखिए, इंशाल्लाह इतवार में आपसे बात होगी. बहुत बहुत शुक्रिया मिलने करने के लिए. ऑलराइट देन, तो अब एक छोटी सी अपडेट इस वक्त नाजिया जी हमारे साथ शेयर करने वाली हैं, और उसके बाद हम कॉल और मैसेजेस का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे.
1: हाँ जी, तो चलिए एक छोटी सी अपडेट हम आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि वजारत सेहत आमा ने नेशनल सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कैंपेन जो है वो शुरू कर दी है. और आपको बताएं कि ये मार्च 2027 तक जारी रहेगी. ये कैंपेन बेसिकली HMC, PHCC और मुल्क भर के सरकारी और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज के तावन से चलाई जा रही है.

0: फ्लू वैक्सीन जो है वो पीएचसीसी सेंटर्स एचएमसी हेल्थ फैसिलिटीज और 50 से ज्यादा प्राइवेट क्लिनिक्स में बिल्कुल फ्री है। आपको बताएं कि पीएचसीसी सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं है और ये वैक्सीन खास तौर पर 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के अफराद 6 माह से 5 साल तक के बच्चे प्रेग्नेंट वुमेन हेल्थ केयर वर्कर्स डायबिटीज या अस्थमा जैसे क्रॉनिक डिजीजेस में मुब्तला अफराद के लिए खास है। जी हां, यहां पर डायरेक्टर हेल्थ प्रोटेक्शन एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस कंट्रोल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर ने कहा है कि फ्लू वैक्सीन जो है वो सीजनल इन्फ्लुएंजा से बच्चों के लिए एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव तरीका है। उन्होंने मशवरा दिया है कि अक्टूबर या फिर नवंबर में वैक्सीन लगवाना बेहतरीन रहता है क्योंकि वैक्सीनेशन के जो तकरीबन 2 हफ्ते बाद जिसमें मुकम्मल प्रोटेक्शन तैयार होती है। सो बस ये सभी के लिए है और ख़ास करके वो लोग जो किसी ना किसी क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार हैं या हाई रिस्क पर जो हैं, जिनका मैंने भी मेंशन किया, एल्डरली पीपल हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उन्हें ख़ास तौर से कहा जा रहा है, उन्हें हिदायत दी जा रही है कि आप जो हैं वो ये वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाइए और जैसा मैंने मेंशन किया कि पहले से आपको अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सो फैंटास्टिक इनिशिएटिव बाय कतर गवर्नमेंट एज ऑलवेज एंड वी ऑलवेज अप्रिशिएट एंड एडुलेट। तो आज भी ये कमाल की न्यूज़ जो हमने आपके साथ शेयर की
1: भाई,
0: मुझे लगा आप सदमे में चले गए।
1: थैंक यू मिस नाजिया, अच्छा। इतनी अच्छी अपडेट के लिए हमारे साथ शेयर करने के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक हमें मैंडेटरी लेना है, वो लेते हैं, बस यूं गए और यूं वापस आए। हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं भी मत जाइए, कहीं भी बिल्कुल नहीं जाना, थोड़ा सा भी नहीं जाना, इन्नू सा भी, ठीक है।

0: रवि, इन्होंने बताया मुझे नाम भी, मोहम्मद भाई ने, तो रवि तेजा है उसके अंदर और बहुत ही अच्छी फिल्म है। इसके अलावा भी इस वक्त दृश्यम जो है भाई वो जारी है और मैंने अभी तक नहीं देखी है। नादिया, दृश्यम देखने का कोई मूड? आपने 1-2 देखी थी?
1: हाँ, मैंने 1-2 मैंने घर पे ही देख पाती हूँ मैं, अगर कभी
0: मतलब चलिए आगे देख लेंगी। अच्छी बात ये है, मजे की बात ये है यहाँ पर, क्योंकि ये सिलसिला एकदम मूवीज का आ गया तो मैंने कहा ये भी जिक्र करता चले।
1: हाँ।
0: जेलर 2 भी आ गई है भाई, तो अन्ना का जितना भी दीवाना जेलर 2 आ गया इस वक्त जाके देखने का भाई। जेलर 2, जेलर 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप पहले देखिए, उसके बाद मैं कहूंगा जेलर 2 जाके देखिए भाई। साउथ ने तो इस वक्त कमाल कर रखा है। क्या कहता है साउथ, टॉलीवुड, इज इट टॉलीवुड? ओए, मगर वो बॉलीवुड में आके फिल्में इस वक्त जो बन रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ वान लगी हुई है या विवान लगी हुई है, तो इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं जो देख पा रहा हूँ इस वक्त तो ये आपके करीबी सिनेमा घरों में इस वक्त चल रही है। इसमें तमन्ना भाटिया है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है और श्वेता तिवारी है, तो कास्ट तो अच्छी लग रही है भाई। बाकी दूसरी तरफ अन्ना का मूवी तो मैंने बताया, जेलर 2 लगा हुआ है, और इधर दृश्यम में तो आप सबको पता ही है भाई कि अजय देवगन है और श्रिया सरन है, तबू है, रजत कपूर है और प्रकाश राज की इसके अंदर हुई है एंट्री भाई, जो देखने वाला किरदार है, और बाकी जयदीप भी इन लोग का साथ निभा रहे हैं। तो अच्छा हुआ यार मोहम्मद भाई आपने मूवीज के हवाले से यहाँ पर बात करी, तो मैंने कहा मैं भी शेयर करता चलूं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, और कहते हैं आज मैं बहुत उदास हूँ। यस मैं एक्चुअली ये शेयर करना वाला था मगर मैं बाद में करता, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि जरा सा भावुक हो जाएं सबके सब। अरबाज भाई ने इस वक्त नाना पाटेकर की जो न्यूज है वो शेयर करी है।
1: बिल्कुल,
0: हाँ, अफसोस की बात है।
1: सुबह सुबह एकदम
0: बड़ा कलाकार,
1: हाँ, हाँ, और एक बहुत ही अच्छा कलाकार,
0: और खाली कलाकार ही नहीं कहेंगे, बड़े अच्छे इंसान भी नादिया।
1: ट्रू,
0: और हर एक लाइन
1: ट्रॉफिक वर्क में उन्होंने
0: exactly.
1: किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन है जो बहुत ही कमेंडेबल है। बहुत कम ऐसा होता है कि आप एक्ट्रेस को या एक्ट्रेसेस को देखते हैं और यू नो
0: मजे की बात ये है नादिया जी कि अभी पिछले शाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है उनका, मैं नाम भूल गया इस प्रोग्राम का, जिसमें वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं और वो अनिल कपूर के साथ है, तो दोनों की जोड़ी तो हमें पता ही है, मजनू की और उनकी, तो उसमें बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी बातें हुई हैं। और आज सुबह 5:30 5:20 AM उनका इंतकाल हो गया। तो बहरहाल यही दुनिया है भाई, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और हम उनके लिए अच्छा ही सोच सकते हैं। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे करते हैं बात, फिर मैसेज की तरफ रुख करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं बोल रहे।
1: हेलो,
0: हाय एंड व्हाई, कनेक्टेड तो हैं आप हमारे साथ। हाय, हेलो, मेरे ख्याल में आपका होल्ड का बटन जो है वो तो नहीं टैप हो गया। एनी हाउ, तो भाई ये कुछ इस वक्त सिलसिला जारी है, तो एक ब्रेक लेते हैं और आपको एक गाना सुनाते हैं। थोड़े से मैसेजेस और हैं, चलिए वो भी अदा कर देता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले। पहले कहते हैं भाई एक्टर का नाम रवि तेजा है। ओ यस, थैंक यू सो मच जैस भाई, हमारे साथ जसीम भाई कहते हैं रवि तेजा एक्टर का नाम सभी लोग करेक्ट करने लगे, सलमान है हमारे साथ। चलो इस बारे ही सही, आप लोगों ने मेरी खैरियत तो पूछी। अस्सलामुअलैकुम सरोज भाई, नादिया जी।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, मोहम्मद हुसैन है हमारे साथ, क्या बात है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सरवर, नादिया कैसे हैं आप लोग, और जब तक नाक नोक झोंक नहीं होती इनको मजा नहीं आता। नादिया एक काम करिए कि अब मैं पहले तो कुछ ऐसा करूं जो आपको गुस्सा है मेरे ऊपर वैसे वो तो नादिया को हर वक्त मेरे ऊपर आता रहता है।
1: नहीं, इसमें नहीं, मुझे नहीं आता है। अच्छा, बिल्कुल नहीं, भी नहीं
0: आता है। देखिए नादिया,
1: गुस्सा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं।
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: अस्सलाम। हाय हाय, क्या बात है भाई, देखिए कहाँ कड़ी जुड़ी है जाके। मेरे ख्याल में 1976 में रिलीज हुई होगी मुगले आजम। पिछले दिनों मैं जिक्र कर रहा था शहजादा साहब, जो आपको इनविटेशन तो नहीं, ऑफर आया था एक्चुअली कि मुगले आजम में आप लीड किरदार अदा करें अगेंस्ट दिलीप कुमार साहब, और फिर किस तरीके से आपने उनको इजाजत दी, ये पिछले दिनों मैं और नाजिया याद कर रहे थे। बड़प्पन है आपका, आपने उनको मौका दिया भाई फिल्म करने का।
1: माशाल्लाह
0: शहजादा साहब,
2: बिल्कुल, वो जब भी करते हैं ना, जब भी करते हैं

0: अरे डिजर्व तो आप करते थे भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं, डिजर्व तो आप करते थे, ये तो आपने बड़प्पन दिखाया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस जमाने में है ना, और जो शुरुआत जो अपना बुनियाद डाली थी ना, तो अभी तक

0: और बिल्कुल फ्रेश।
1: तो मतलब ये ताजा और ताजी दोनों कहने की जरूरत क्या थी, हम समझ गए थे खुद ही कि ताजा भी वही और ताजी भी वही है, आपको इस वक्त ये बताने की क्या जरूरत थी दोनों चीजों को अलग अलग करके। कैसे हैं शहजादा साहब और कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका?
0: बिल्कुल बेहतरीन गुजरा। मैं अभी रसल फार्म से ही निकला था तो उस टाइम पे
1: रसल फार्म से
0: रसल फार्म से गावावाल के बाद हो गई थी।
1: अरे तो कौन से फार्म से, ये तो बताइए कौन से फार्म से निकल लो, मुझे भी तो पता चले कदर में ऐसी कौन सी जगह।
0: रसल फार्म
1: अच्छा, मैंने कहा रसल फार्म ये कौन सी जगह आ गई।
0: जी रसल फार्म, फिर मैं बोला तो मेरा तो कॉल खैर मुश्किल ही लगना, लेकिन फिर भी रस्ते में ट्राई करूंगा। तो इतने बेहतरीन हाईवे मिलता है जो एकदम सुकून, और एक साइड में गाड़ी पार्क करके और 107 और मैं मेरी गाड़ी और सरवर भाई।
1: तो गाड़ी पार्क करने के लिए हाईवे क्यों जा रहे हैं आप, कहीं भी पार्क कर लिया करें?
0: क्योंकि मैं हाईवे पे हूँ ना।
1: अच्छा ऐसा, इन औकात में आप हाईवे पे होते हैं और वहाँ हमें सुनने के लिए गाड़ी पार्क करते हैं, फिर हमसे कहने हाउ स्वीट ऑफ यू मिस्टर शहजादा।
0: बड़ा बड़ा सन्नाटा, बड़ा सुकून और बड़ा पीसफुल माहौल है।
2: अच्छा,
0: मैं सरवर भाई है, नाजिया मैम है, और फिर क्या कहने रेडियो के,
1: क्या बात है। तो गाड़ी के अंदर क्या कर रहे हैं फिर, तो आपको बाहर बैठना चाहिए जब इतना अच्छा माहौल और मौसम है।
0: मैंने डबल पार्किंग डाला हुआ है और अकेले तन्हा, और मैं और 107 साथ में है, और दो आरजे हमारे साथ है, सरवर भाई और नाजिया मैम। ये हमारा एक ग्रुप है ना, एक दूसरे को कनेक्ट होके इस हाईवे के लुफ्त उठा रहे हैं।
1: क्या बात है यार, क्या बात है भाई, क्या सीन खींचा है आपने। और यकीन जानिए मैं फारिग होता तो आपकी दावत पे आ जाता वहां तक, दावत आपने दी नहीं जबकि, मगर जिस तरीके का आपने माहौल बताया इस वक्त देखने वाला हो रहा है। आपको नहीं है मौसम की बात कर रहा हूँ।
0: रईस भाई की कॉल लगी, मैं इतने इत्मीनान से सुन रहा था, रईस भाई इनविटेशन दे रहे, कहा नाजिया मैम आपने वेजिटेरियन बीच में डाल दिया, ये वेजिटेरियन का क्या मसला है।
2: नहीं मैंने तो डाला ही नहीं, वो तो सरवर भाई को दे रहे थे, मैंने तो बोला, सरवर भाई ने बोल दिया इनफैक्ट कि भाई नाजिया मैम को आप नहीं बुला रहे, मैंने कहा मैं तो वेजिटेरियन हूँ इसलिए, वो तो आपको बिरयानी पे बुला रहे है ना, तो मैंने तो क्लियर किया।
0: मैं कहूंगा ना आप पे ना थोड़ा भी सूट नहीं करता है वेजिटेरियन।
1: आए हाय यार, क्या शेर सुनाया है यार शहजादा सलीम भाई, वाह वाह वाह वाह।
2: क्यों मुझ पे सब्जियां नहीं सूट करती क्या?
1: नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब देख के तो नहीं कर रही, वो देखने से मुशाबत कर रहे हैं, वो देख रहे हैं बैगन से मिल रही है आप नहीं मिल रही, मूली से आप मिल रही नहीं मिल रही
2: ऐसे।
1: अरे सुन तो
2: आप खुद इतना माशाल्लाह।
1: अरे सुन तो,
2: अरे
1: नादिया जी सुन तो लीजिए, अच्छी बात है कि आप सब्जियों से नहीं मिल रही, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।
2: मैं तो तारीफ करके ये बता, आप कितना
1: वो कह रहे हैं जी, मैं रुका रहूँ ये चला जाओ। हाँ कुछ कह रहे हैं
0: स्वामी कबाब टिक्के और ग्रिल वाले वो कबाब।
1: अंगीठी में आपको मेरी ही शक्ल दिखती है चाहता तो साहब है कल से एक काम करिए, फोटो रख लिया करिए दस्तरखान पे मेरी, उसके बाद जो भी आपको गेम करना है वहाँ पे खाने के साथ वो कर दिया करें, ठीक है?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो एक बड़ी जो थोड़ी सी अफसोस वाली, थोड़ी सी क्या, एक लीजेंड कलाकार हमारे मीर है,
2: बिल्कुल
0: एक ब्रिलियंट, एक मतलब नेचुरल जो एक होता है ना उनका एक अपना टैलेंट, अपना किसी की भी कॉपी पेस्ट नहीं,
2: कुछ
0: तो
2: नहीं।
0: वो है ना उनका अपना एक नेचुरल, एक अपना एक मतलब जो टैलेंट था ना, वो बहुत मुश्किल है बॉलीवुड में ऐसा सितारा ढूंढना, बहुत जबरदस्त। हाँ अप्रिशिएट,
2: बहुत सही कहा आपने, नो डाउट। और सबसे अच्छी बात है कि वो वैसे भी देखिए ना एक बहुत अच्छे शख्स, बहुत अच्छे इंसान, बहुत लोगों की मदद करना, ख्याल करना, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक और बहुत सारे चैरिटेबल वर्क में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं। सो वो बहुत ही मैं कहूँगी रियल लाइफ हीरो, रियल लाइफ तो हीरो थे ही बट रियल लाइफ हीरो भी विद नो डाउट।
0: और तो आम मरा की जिंदगी में जो नेचुरल जो आम मरा की जिंदगी में जो होता है जो भी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन, और उनका जो भी कैरेक्टर उसमें उनको डाला जाए ना, बाखूबी क्या निभाते थे, कैसा भी कैरेक्टर हो किसी भी तरीके, चाहे पुलिस वाला ले लो या कुछ मवाली या कुछ और ले लो, वाकई में बहुत जबरदस्त, बहुत ग्रेट ग्रेट कलाकार।
2: बिल्कुल बिल्कुल ट्रू।

0: ट्रू, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी वीकेंड आपको, थैंक यू जी।
1: ऑलराइट देन, चलिए साहब अब कुछ मैसेजेस और उसके बाद एक नगमा और फिर आपकी कॉल। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर एंड नाजिया, कैसे हैं आप? और यहाँ पर एक स्टिकर भी भेजा है हमें, ओके बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मुबीन भाई ने भी एक अच्छा सा स्टिकर भेजा है, क्या बात है भाई, देखिए वीकेंड मनाया जा रहा है। अब ये हमारे हवाले से भेजा, ये बात अलग है बट अच्छा तो है। कहते हैं कौन सी मूवी कहाँ लगी है वो भी बता दीजिए प्लीज, वो प्रमोशन हो जाएगा मेरा भाई। और वैसे आप मुझे कॉल पर्सनली कर लीजिए तो देख ही आएंगे दोनों भाई साथ में मिलकर, उसमें करना क्या है, मैं बता के क्या करना है, चलेंगे
0: टिकट ले लीजिए आप
1: हुसैन भाई और क्या, साथ में चले चलेंगे दोनों भाई, मसला ही क्या है ऐसा। कहते सर जी सब्जियां तो अच्छा ठीक है, शेर तो ओके ठीक है, वेजिटेबल भी कोई ओके ठीक है, अरबाज भाई बीप बीप बीप,
0: इतनी सारी तारीफ की हुई है मेरी,
1: बीप बीप बीप बीप, नहीं आपकी नहीं आपकी नहीं।
0: अच्छा।
1: मतलब वो अच्छी बात कर रहे हैं सब्जियों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, हमारा फेवरेट हीरो नाना साहब चले गए, बहुत अच्छे एक्टर थे, हमारे पेशावर में लोग बहुत पसंद करता था उनको,
0: करते होंगे बिल्कुल।
1: उसका जो शेर था कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो, क्या जबरदस्त, हाँ ओके राइट राइट, आपने अच्छा दे रहा। मैं नाम भूल गया उस मूवी का, और वो मूवी भी बड़ी अच्छी थी। रहमान है हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: गुलाम मुस्तफा?
1: नो नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो, गुलाम मुस्तफा का नहीं था वो, एक बड़ी अच्छी सी उनकी एक मूवी आई थी भालर। तो नादिया कॉल ले लें या एक गाना
0: आप, अगर नहीं आप जैसा चाहे मैं अपने भर के बोलूं।
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम, नहीं हो पा रहे कनेक्ट, क्या हो रहा है ये
2: कनेक्ट, हेलो
0: हो गए कनेक्ट, हेलो
2: जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह
0: वबरकातुहू। मुबीन बुखारी जी आज तो बहुत जमाने के बाद,
1: अरे मुन्ना भाई
0: क्या बात है भाई,
1: अरे MBBS क्या कहने,
0: कैसे आप?
2: मैंने सोचा कॉलिंग नंबर यही है।
0: नाइस, और इतने टाइम के बाद फाइनली आज आपसे बात हो रही है, मैसेज तो आप इतने प्यारे प्यारे लिखते हैं।
2: ये टाइम ऐसा है सोने का, आप लोग टाइम ऐसे टाइम पे आता, आदमी लुढ़कता रहता नींद के मारे,
1: तो कभी सोना छोड़ दिए, चांदी पे पीतल पे भी आइए मोदी साहब, कितना सोना था
2: मैं समझता था मैं खराब हूँ, मेरी नवासी मेरे से भी खराब है, खाना है तो खाना है, पीना है तो पीना है, सोना है तो सोना है।
1: अच्छा, वो भी काम कर रही है आप जैसे,
2: एक अच्छी बात है सर, लगाव एक ऐसा रिश्ता है,
1: कौन सा
2: जो खून से नहीं दिल से जुड़ता है जी, लगाव एक ऐसा रिश्ता है,
1: अच्छा
2: जो खून से नहीं दिल से जुड़ता है,
1: नहीं ये बात तो मैं आई सेकंड यू मुबीन बुखारी।
2: कुछ लोग जिंदगी में आकर इतने अपने बन जाते हैं कि उनके बिना सब कुछ अधूरा लगता है,
1: ये आपने खुद लिखा,
2: बातें कम इतने का इतने, मतलब कुछ लोग जिंदगी में आकर इतने अपने बन जाते हैं कि उनके बिना सब कुछ अधूरा लगता है।
1: मैं फिर आप
2: बातें कम हो जाए, जी हाँ बातें कम हो जाए तो मुलाकातें कम हो जाए, बातें कम हो जाए मुलाकातें कम हो जाए, पर ख्याल में वो हमेशा रहते हैं।
1: वाह,
2: दूरियां मजबूरी बन सकती हैं पर सच्चा लगाव कभी मजबूरी नहीं बनता,
1: क्या बात,
2: अजीब सा लगाव है तुमसे मुझे,
1: ये हमारे लिए
2: ना छोड़ने की वजह निकलती है ना मिलने की वजह।
1: अरे यार ये तो आपने मेरी वाली बात कह दी, फकत जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ, मगर बड़ी अच्छी बात थी और बड़ी अच्छी शायरी, बड़ी अच्छी
0: माशाल्लाह माशाल्लाह
1: गजल,
2: फिर भी दिल तुम्हारा है।
0: क्या बात है,
2: जैसे कुछ रिश्ते मुलाकात से मुलाकात नहीं होती है,
1: अच्छा आगे भी है इसमें,
2: फिर भी जिंदगी भर साथ रहते हैं।
1: वाह,
0: ये
1: हो गई पूरी, तो अब हम तारीफ करें इसकी या फिर बीच में,
2: नहीं नहीं अगर आप चाहें तो, नहीं अगर आप चाहें तो पिटारे बहुत है मेरे पास, शिकायतों का हिसाब रखना छोड़ दीजिए,
1: अच्छा
2: हर बात का जवाब देना छोड़ दीजिए।
1: नादिया सुनिए,
2: नादिया नहीं, नादिया मम्मी आप सुनिए, मोहल्ले वाले, नहीं मोहल्ले वाले, नहीं ये मोहल्ले वालों के लिए है, तो शिकायतों का हिसाब रखना छोड़ दीजिए, हर बात का जवाब देना छोड़ दीजिए, जो साथ चले चले किसी को रोकना छोड़ दीजिए, दिल साफ रखिए मगर, दिल साफ रखिए मगर किसी को अपना

0: कहना छोड़ दीजिए।
1: ये तो वाकई मेरे
0: कुछ रिश्ते, कुछ रिश्ते खामोशी में अच्छे लगते हैं, हर एहसास को कहना छोड़ दीजिए।
1: वाह वाह वाह,
0: फिक्र कीजिए मगर इतनी वक्त, फिक्र कीजिए मगर इतनी कि खुद को भूलना पड़े, खुद को भूलना पड़ जाए तो आपकी कदर नहीं करें। अच्छा जी,
1: ये नहीं मिल पाया, आखिरी वाला रहे।
0: नहीं, मिला देता हूँ।
1: अच्छा, आप क्या अभी लिख रहे हैं क्या? बिल्कुल, हाथ के हाथ, एआई इसीलिए तो आया हमारी जिंदगी में। वो एआई जहां रुक जाता, मैं खुद एहसास करना छोड़ दीजिए लाइफ में प्रॉब्लम।
0: नहीं, नहीं,
1: अच्छा किसी और,
0: हर एक एहसास को कहना छोड़ दीजिए, फिक्र कीजिए मगर,
1: अरे फिर से
0: नहीं, हाँ फिक्र कीजिए मगर इतनी नहीं कि खुद को भूलना पड़ जाए।
1: अभी भी नहीं मिल पाया,
0: कदर नहीं करते हैं, उनके पीछे चलना छोड़ दीजिए।
1: अच्छा,
0: सुकून चाहिए अगर जिंदगी में, सुकून चाहिए अगर जिंदगी में, हर किसी से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए।
1: अरे ये गजल पूरी क्यों नहीं हो रही? आप एक काम करिए, पढ़ना छोड़ दीजिए मुबीन बुखारी साहब।
0: ये बात गलत है, देखिए इतनी मुश्किल से पढ़ा।
1: अरे मेरा भाई कैसा, अरे मुबीन भाई क्या बात कर रहे हैं,
2: बहुत अच्छी,
1: अरे बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी, मजा आ गया सुन के, और बड़ी अच्छी,
2: बहुत ही अच्छी, जबरदस्त,
1: बहुत ही अच्छी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया
2: मुबीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: इसी तरह आ जाए करिए कभी कभार, हमारी खैरियत ले लिया करें।
2: नहीं आप लेते तो हैं, मैसेज पे कॉल
0: प्रोग्राम बहुत अच्छा था, ये टाइम सोने का होता है, मुश्किल है जागना।
2: अच्छा चलिए जी,
1: ठीक है एमबीबी, थैंक यू सो मच,
2: ओके, अल्लाह हाफिज़।
1: नाज़िया कॉल ही लेते हैं, गाने का टाइम है नहीं, गाने किसी और तरीके से सुन लिए जाएंगे। हेलो, सलाम अलैकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कॉल क्यों नहीं लेते हैं भाई, अभी तो टाइम है।
1: हाँ बिल्कुल, रिलीज देखिए, और क्या इस वक्त हम गायबाना बात कर रहे हैं क्या?
3: मुझे लगा नहीं करोगे।
1: अच्छा,
3: थोड़ा सा खुश हुआ, चलो ठीक है, कम से कम मेरा टाइम तो है बात करने का।
1: वाह, हमारे साथ शुएब भाई हैं,
2: अलग ही रहे,
3: रोज भूल जाते हैं आप, जबकि मैं रोज कॉल करता हूँ।
1: यार भूल जाते तो मैंने ये कैसे कहा कि शुएब भाई हैं,
3: मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गले के अंदर कोई वॉइस चेंज रह गया, मतलब एवरीडे कुछ नया हो रहा है।
1: हाँ, नहीं, कुछ नया तो हो ही रहा है लाइफ में, खैर ऐसी बात तो नहीं है शुभ भाई, ये बात तो आप सही कह रहे हैं।
3: हाँ बिल्कुल, और होना भी चाहिए, मैं भी यही चाहता हूँ कुछ ना कुछ नया होता है, चेंजेस बहुत जरूरी है,
1: बोर नहीं रहना चाहता मेरा भाई, क्या कह रहे हैं
2: लाइफ में बिल्कुल चेंजेस तो होने ही चाहिए कुछ ना कुछ।
1: तो कहाँ है अभी
3: फिलहाल? तो हम अल्फाज हूँ।
1: कहाँ पे हूँ?
3: अल्फाज।
1: अल्साद में है, ओके। क्या हाल चाल है, ट्रैफिक वगैरह का?
3: नॉर्मल ट्रैफिक, जैसे कि हम दिल्ली वाले के लिए क्या ट्रैफिक सर, थोड़ा बहुत होता है।
1: नहीं आपके लिए नहीं है, दूसरे जो सुन रहे हैं, मैंने कहा कि उनको भी बता दूं कि उनके लिए है या नहीं, तो नॉर्मल
3: नॉर्मल वही अपना ट्रैफिक लाइट पे जो होता है, हल्का फुल्का वो।
1: बहुत सही भाई, तो क्या इरादे हैं वीकेंड के शिव भाई, कैसे गुजरने वाला है ये वीकेंड?
3: सर जी मेरा तो अभी फिलहाल वीकेंड ही चल रहा है 16 अक्टूबर तक।
1: ओके, आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है?
3: नहीं,
1: 16 से ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह ताला, यार बेस्ट विशेस, ढेरों मुबारकबाद, शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई कॉल करने के लिए, अपना ख्याल रखिए, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड,
2: हैप्पी वीकेंड।
3: आप क्या कर रहे हैं जनाब वीकेंड पर? मैं एक सेकंड,
1: मतलब उनसे कह रहे हैं एक सेकंड या मुझसे कह रहे हैं एक सेकंड?
3: नहीं आपसे, आपसे दोनों से कह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, आपके क्या प्लान
1: है? मैं आप जैसा कहेंगे पहना लूंगा, आप बताइए।
3: चलो फिशिंग पर।
1: फिशिंग, ओहो यार ये भारी पड़ जाएगा, आपका ऑफर बड़ा अच्छा है जो कि मैं चाहता भी हूँ करना, मगर इतना लंबा इंतजार इस मौसम में नहीं हो पाएगा शुभ भाई, थोड़ा मौसम अच्छा
3: भाई
1: हो जाए।
3: दिन में, मेरे भाई दिन में कोई नहीं जाता है फिशिंग करने, और रात को मौसम ठंड लगती है भाई अच्छी खासी, अभी सी लाइन बीच पे आप जाओगे तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है।
1: नहीं माशाल्लाह अच्छा तो हो रहा है, मगर उतना अच्छा नहीं हो रहा, मैं तो कल रात में भी मुझे पसीने आ रहे थे अच्छे खासे, और मेरे ख्याल में तो ह्यूमिड काफी था ना दिया कल रात में,
2: कल था।
1: खैर भरा,
3: मैं लास्ट वीक में गया, मैं काफी देर तक मैंने स्विमिंग की, उसके बाद मैं बाहर आया, यकीन मानो आप एकदम से कपकपाने वाली हल्की सी ठंड सी हो रही थी।
1: नहीं तो कमजोरी हो गई है, थोड़ा सा खाना पड़ेगा कुछ काढ़ा वगैरह, कुछ यखनी वखनी लेनी पड़ेगी इसको, तो ये तो मसला हो रहा है भाई।

0: दोस्त के बिना या फिली के बिना कार के एक दिन भी नहीं निकलता भाई मेरा, अल्लाह का शुक्र है।
1: फिर क्यों ठंड लग रही
0: है? हवा चल रही है बहुत अच्छी।
1: आई नो मैं सता रहा हूँ यार आपको, और इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं, और यकीन जानिए कि मैं जरूर चलूंगा एक दिन आपके साथ ये फिशिंग करने, मछली पकड़ने मैं जरूर चलूंगा।
2: आप पकड़ते अच्छी मछली अच्छी पकड़ने
0: है? कि मैं आपको बताऊं बाद में, फिर मैं बिजी हो जाऊंगा और आपको फिर कभी मिल भी नहीं पाऊंगा।
1: अरे यार ये तो इस बात पे तो मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द बिजी कर दे खैर के साथ, और इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती।
2: नहीं आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सरवर भाई आपको कभी भी नहीं मिलने वाले। मछली अच्छी अच्छे से पकड़ते हैं, पकड़े ना पकड़े जाल अच्छा जाल अच्छा बिछा लेते हैं।
1: बहुत शुक्रिया दादी,
0: बहुत
1: जाली आपने दिल खुश कर दिया। कम से कम आपने ये एतराफ कर लिया कि आपको पता है कि मैं जाल फेंकता हूँ, ये बात अच्छी है। तो काम अपनी जगह सही चल रहा है। शिव भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, हो गया वक्त एक्चुअली इजाजत लेने का, तो फिलहाल आपसे भी इजाजत ले लें। इंशाल्लाह ताला संडे आपसे मुलाकात होगी। हैप्पी वीकेंड, फिर भी कहेंगे हम आपको क्योंकि भाभी का तो होगा ही होगा मेरे ख्याल में वीकेंड।
2: हाँ जी
1: है ना,
0: इनका कल था।
1: अच्छा कल था, ओके चलिए चलिए सब ख्याल
0: रखिए।
1: कुछ मैसेजेस और वक्त हो चला कि अब मुझे नहीं लगता हम कॉल ले पाएंगे। यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं जल्दी से वो हम शेयर कर लेते हैं। और क्या कह रहे हैं ये भाई, वेलकम मूवी तुम मेरे लिए क्या हो।
2: अच्छा वेलकम मूवी से था, नाना जी का डायलॉग।
1: अच्छा ओके, पहुंचने में टाइम लग गया मुझे, मैंने कहा ये शायद मुझसे बात कर रहे हैं, और मैं भी ढूंढने लग गया कि मैं इनके लिए हूँ क्या आखिर। इसमें मैं खामोश हो गया, चौहा आपने याद दिला दिया। मैं तो कहीं और चला गया था, कह रहे हैं हा हा हा, इनको सुन के हंसी आई है कोई ना कोई बात तो। ओके मोहम्मद भाई थे हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बोथ ऑफ यू डूइंग ग्रेट जॉब, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू
2: आपको भी, थैंक यू सो मच।
1: के एम खान साहब हमारे साथ, ओके अस्सलाम वालेकुम नाजिया एंड सरवर, हैप्पी वीकेंड टू बोथ ऑफ यू, और
2: थैंक यू आपको भी, हैप्पी वीकेंड।
1: कहां होंगे आप लोग ये बताइए जरा,
2: ये तो दावतों में होंगे।
1: कौन है हमारे
2: सरवर भाई, तो दावतों में होंगे।
1: आमिना है हमारे साथ, ओके
2: आमिना मैं तो घर पे होंगे, ये दावतों में होंगे इंशाल्लाह।
1: अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई,
2: हो सकता है देख में भी झांक के देखिए वहां
1: बैठो। नाजिया मैडम आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड बेस्ट काम कर रहे हैं, एंड अल्लाह आपकी सारी टीम से खिदमत ले रहा है माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह आप लोग को हमेशा सलामत और खुश रखे, फ्राइडे एंड सैटरडे मिस करते हैं आपको हम सब। अबरार है हमारे साथ, बड़ा ही अच्छा मैसेज।
2: थैंक यू सो मच।
1: और आखिरी मैसेज जो मैं अली मकसूद साहब का, बस वो हसन है, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अब मुझे नहीं लगता।
2: बिल्कुल, और इसी बात के साथ अब आप सबसे इजाजत, हैप्पी वाला वीकेंड, इंशाल्लाह आपकी हमारी मुलाकात होगी संडे 1:30 पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107
1: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents

अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड आपको डायलॉग रेडी होगा, आपको वेलकम टू टेक अपडेट, यही आगे बोलेगा कबीर, यही बोलेगा भाई, और क्या बोलूं मैं। बट देखो, काम की बात बता के जाऊंगा, वेबसाइट जो आपको बताऊंगा ये आपके काम जरूर आएंगी, या फिर काम ना आए तो आपका टाइम पास बहुत बढ़िया कराएंगी, तो दोनों में से एक भी चीज अगर आपके मतलब की है तो बढ़िया है। तीसरा तो मुझे समझ नहीं आता मकसद क्या हो सकता है। यही दो मकसद होते हैं। अब जरा आगे बढ़ते, और आप जानते हैं तीन वेबसाइट्स आपको बताई जाएंगी, तो आप तैयार हैं लिखने के लिए, या कोई आपके साथ है जो याद कर सकता है, तो रेडी इन 3 2 1 लेट्स गो। पहली वेबसाइट का नाम है classcentral.com, classcentral. classcentral.com। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे, और ये बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटीज से हैं, हार्वर्ड की तरफ से भी इसमें भाई बहुत सारे कोर्सेज हैं। एंड आपको एक स्किल अगर सीखनी है तो इससे बढ़िया वेबसाइट तो नहीं होगी भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जगहों पे वीडियो सिखाया जाता तो वो वहीं जाओ, ये तो कुछ नहीं सिखाएंगे, नहीं, यहाँ पे जो आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगी वो बड़ी कमाल की यार, मतलब वो ऐसा लगता है ना, हाँ भाई ये कुछ भारी पढ़ा है मैंने। और स्किल को ब्रशअप करने के लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी, सो इफ यू वांट टू लर्न सम स्किल ये आपके काम आ सकती है, classcentral.com। ठीक है जी, आगे बढ़ते भाई। देखिए, आप गाड़ियों की नॉलेज हर किसी को नहीं होती, लोग ये अज्यूम कर लेते हैं गाड़ी चला रहे हो क्या, 6 साल हो गए तुम्हें, ये नहीं पता गाड़ी के अंदर ही होता है। हाँ भाई, नहीं बता होता है किसी को। पर अगर आप गाड़ी के बारे में सीखना चाहते हैं, या गाड़ी आप फिक्स करना चाहते हैं, कोई परेशानी हो गई, मैं ठीक करूंगा, मुझे सीखना है, तो एक वेबसाइट है carcarekiosk.com, ये भी स्किल हो सकती है भाई गाड़ी सीखने की, ठीक करने की। सो कार केयर, CARE, फिर कायोस्क, जो भी कहना चाहें, KIOSK.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, भाई आपकी कौन सी गाड़ी है, आप बताएंगे हाँ जी ये गाड़ी है, हाँ जी कब का मॉडल है, कौन सा मॉडल है, हाँ जी ये मॉडल है। उसके बाद बाकायदा वीडियो में आपको बताएगा कि अच्छा ये वाला पार्ट टिक करना है, अच्छा ये वाला टिक करना है, अच्छा ये वाला पार्ट दिखना है। आप वीडियो देखते देखते देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या मसला है, या मसला जो है वो कैसे सॉल्व हो सकता है, ये सब कुछ आपको वेबसाइट बताएगी। कितना ईजी कर दिया है भाई मामला, तो आपके अंदर क्या करें, एक मैकेनिक है ना जो बहुत दिलों से तड़प रहा है, छटपटा रहा है कि मैं भी गाड़ी को जरा बोनट खोल के देखूं तो सही क्या है, तो ये आपके लिए सही समय है। बढ़ते हैं जरा आगे। ये जो लास्ट वेबसाइट है, ये उनके लिए जो किताबें पढ़ते हैं, मैंने लास्ट में इसलिए बचा के रखी है बिकॉज ये बहुत ही बहुत लोगों के काम आएगी भाई, बहुत लोगों, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं किताबें पढ़ता भी नहीं यकीन जानिए, मगर इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं ना, ऐसी किताबें लगता है ये तो पढ़ लेते हैं यार। मैंने एक होमो सेपियंस एक स्पीशीज करके एक किताब पढ़ी इसी पे, एंड पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट पढ़ी नहीं है पूरी, पढ़ रहा हूँ। शुरुआत किया था मैंने ऐसी, चेक तो करूं, पर वो चेक करने के चक्कर में हाँ पढ़ सकते हैं, तो फ्री फंड में आपको सारी किताबें मिलेंगी, फ्री फंड में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है किताबों की, और प्लीज ये जाके किसी ना किसी को जरूर बताएगा। वेबसाइट का नाम है welib.org, भर भर की किताबें भाई, फिर प्लीज ये किसी तक तो इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा दीजिएगा। ऑलराइट, अब जरा बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए क्या है कि अभी सैमसंग ने भी अपना रोल आउट किया है न्यू जो UI है उनका 9, आपने रिसेंटली नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। साथ ही गूगल की तरफ से बयान आ चुका है कि उन्होंने कहा हमारी जो क्रोमबुक अपडेट्स है वो अभी तक नहीं है, वो 2034 तक है भाई, आगे की सोची है हमने, 8 साल आगे के बाद अपडेट आएगी तो आएगी, अभी आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आई नो कुछ लोग आईफोन पगलू हैं मगर थोड़ा सा मूव करने की जरूरत है, ट्राई एंड कंसिडर समथिंग गूगल, बिकॉज अभी गूगल ने अपने सारे जो मॉडल से मूव कर दिए गूगल बुक OS पे, और क्या क्लीन OS है यार, क्या क्लीन OS है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ना समथिंग न्यू, अगर आप एंड्रॉयड छोड़ के iOS छोड़ के कुछ करना चाहते हैं, एप्पल इज द वे आउट, मैं सच बता रहा हूँ, ट्राई दिस वन। ये थी अपडेट्स, मिलते हैं।

0: हैं अगली वाली में. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट. टेक अपडेट.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

आज की स्पोर्ट्स कहानी बांग्लादेश क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी और लीडर की है जो बैट के साथ भी टीम की उम्मीद है और टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर भी बांग्लादेश को एक नए दौर की तरफ ले जा रहे हैं। नाम है नजमुल हुसैन शांतो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। लेफ्ट हैंड बैटर नजमुल हुसैन शांतो बांग्लादेश क्रिकेट के इम्पोर्टेंट मिडिल ऑर्डर खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक बल्लेबाज की नहीं बल्कि एक टेस्ट कप्तान की भी बन चुकी है। उन्होंने 2023 में पहली बार बांग्लादेश की टेस्ट कप्तानी संभाली थी। 2025 में यानी पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद उन्होंने कप्तानी से हटने का फैसला किया था। इट वॉज अ मेजर डिसीजन, लेकिन बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें दोबारा टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान उन्हें बना दिया। उनका करंट मैंडेट अगर देखा जाए तो 2025-2027 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के एंड तक है, विच मीन्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन पर थोड़ा ट्रस्ट किया एंड ट्रस्ट करने के साथ साथ उनको ये एहसास भी था कि नजमुल हुसैन जो है ना कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन एक दिमाग रखते हैं, एक सोच रखते हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा लॉन्ग एक्सटेंशन दिया गया है और ये हुआ है अंडर द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तमीम इकबाल, जिनका मानना यह है कि लॉन्ग टर्म सोच इम्पॉर्टेंट है ना कि शॉर्ट टर्म। परफॉर्मेंस खराब हो जाए और उनको निकाल दो, ये सोच तमीम इकबाल का नहीं, और इसी सोच के साथ बांग्लादेश क्रिकेट को कई ऐसे कामयाबी हासिल हुई। मैं बताऊंगा इसी चर्चे पे आपको आगे बता रहा हूं मैं कि कैसे नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश क्रिकेट को वो इंटरनेशनल एक फेम दिलाने में अहम रोल अदा किया है। कप्तानी करियर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर 2026 में सामने आया जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। ढाका में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी और इस मैच में नजमुल हुसैन शांतो ने खुद भी शानदार बल्लेबाजी की और पहली इनिंग्स में 101 रन जबकि दूसरी इनिंग्स में 87 रन बनाए। उनकी इस कारकर्दगी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इस सेंचुरी के साथ नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान के तौर पर अपनी 5वीं सेंचुरी कंप्लीट की और मुशफिकुर रहीम के 4 सेंचुरीज के जो रिकॉर्ड थे उसे पीछे छोड़ दिया और आईसीसी रैंकिंग में भी उनकी पोजीशन करियर बेस्ट 23 तक पहुंची, विच वॉज अ वंडरफुल यू नो अचीवमेंट बाय दिस वंडरफुल क्रिकेटर फ्रॉम बांग्लादेश। कप्तान के तौर पर शांतो की एक और खास बात यह है कि वो सिर्फ बल्लेबाजी पर डिपेंड नहीं करते बल्कि फील्ड पर बॉलिंग चेंजेस और मैच सिचुएशंस को भी क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं, मॉनिटर करते हैं। मई 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ फतेह के बाद वो बांग्लादेश के सबसे तेज 7 टेस्ट विक्ट्रीज हासिल करने वाले कप्तान बन गए, यानी फास्टेस्ट टू विन 7 टेस्ट मैचेस। उन्होंने सिर्फ 17 मैचेस में ये माइलस्टोन अचीव किया, बहुत ही बड़ी बात है। फिर आया ऑस्ट्रेलिया का दौर, बांग्लादेश के लिए एक तारीखी चैलेंज। डार्विन में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा कर ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पहली टेस्ट विक्ट्री हासिल की, यानी ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर, ऑस्ट्रेलिया के ही घर पर ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों क्रिकेट में अगर देखा जाए आज के दौर में ऑस्ट्रेलिया इज डेफिनेटली वन ऑफ द लीडिंग टेस्ट प्लेइंग नेशन, स्ट्रॉन्ग नेशंस माना जाता है। और इस मैच में तंजीद हसन ने सेंचुरी बनाई और मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट हासिल किए। नजमुल हुसैन शांतो की लीडरशिप में बांग्लादेश ने एक ऐसी जीत हासिल की जो टीम के टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। इट वॉज अ मेमोरेबल विक्ट्री, बिलीव मी, मेमोरेबल।

विक्ट्री। दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त कमबैक किया और बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया। इस नतीजे के बाद दो टेस्ट मैच सीरीज 1-1 से ड्रॉ रहा। मकई टेस्ट मैच में सिर्फ दो दिन में 18 विकेट्स गिर गए। मैच के बाद शांतो ने पिच कंडीशंस पर बात करते हुए कहा कि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर जब विकेट्स गिरती हैं तो बहुत डिस्कशन होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी कंडीशंस को इसी तरह एग्जामिन किया जाना चाहिए। दोस्तों, नजमुल हसन शांतो की कहानी एक यंग बल्लेबाज से बांग्लादेश के टेस्ट लीडर तक के सफर की कहानी है। उनके सामने चैलेंज ये है कि बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंसी के साथ आगे ले जाया जाए और साथ ही खुद भी बल्ले के साथ टीम के लिए रन्स भी बनाए। नजमुल हसन शांतो बांग्लादेश का टेस्ट कप्तान, लेफ्ट हैंडेड बैटर और एक ऐसा लीडर जिसके सामने बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट का अगला चैप्टर लिखने का मौका है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, फायरवर्क्स या फायर क्रैकर्स को लाइसेंस के बगैर यूज करना या अपनी कस्टडी में रखना कानूनन मना है, और ये एक जुर्म है जो आर्टिकल नंबर 18 ऑफ लॉ नंबर 7 ऑफ 2020 ऑन फायरवर्क्स के तहत पनिशेबल है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स फायरवर्क्स को बिना इजाजत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना हत्ता के जेल तक की सजा लग सकती है। आपकी अवेयरनेस और कानून की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी बेहद अहम है। फायरवर्क्स जाहिरी तौर पर फन लगते हैं, लेकिन बिना कंट्रोल के वो पब्लिक सेफ्टी रिस्क भी बन सकते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रॉपर लाइसेंस लेना लाजमी है। वजारत दाखिला का कहना है कि कानून का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बना सकें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राहे रास्त पर आ जाएं।
4: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

नए तरीके से होने वाले स्कैम के बारे में। और आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये बड़ा ही यूनिक स्कैम है। ये है पिक एंड ड्रॉप ट्रांजिट स्कैम। कैसे ये काम करता है स्कैम, सबसे पहले इस पर बात करेंगे, क्योंकि आजकल सभी पेरेंट्स का स्केड्यूल जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया है, और बच्चों को सेफली स्कूल भेजना और वापस लाना एक बड़ी फिक्र की बात हो गई है। स्कैमर्स आजकल इसी चीज का फायदा उठाने लगे हैं दोस्तों। वो फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, लोकल फ्लायर्स या फिर इंस्टाग्राम पर एड्स पोस्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। वो दावा करते हैं कि वो बहुत ही कम दाम में, एकदम चीप प्राइसेस में बच्चों के लिए डेली पिक और ड्रॉप का सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं, और उनसे कई लोग जो है, उनके साथ कई लोग जुड़े हैं और पेरेंट्स काफी खुश हैं। और जो पेरेंट्स टाइट बजट पर होते हैं या जल्दी में होते हैं, वो इस सस्ते ऑफर के चक्कर में फंस जाते हैं। अच्छा, माँ और बाप दोनों बहुत ज्यादा बिजी हैं, और कई बार अगर थोड़ा महंगा भी लगता है तो लोगों को लगता है ये फायदे का सौदा है। जब आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो आपसे बच्चों की बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे कि घर का एड्रेस क्या है, बच्चों का स्कूल का स्केड्यूल क्या है, और एडवांस में डिपॉजिट भी मांगते हैं। इसके बाद दो चीजें होती हैं, या तो वो पैसे लेकर गायब हो जाते हैं, सर्विस कभी मिलती ही नहीं है, या फिर सबसे खतरनाक, आपके बच्चे की पर्सनल डिटेल्स और टाइमिंग्स किसी अनजान या कहे किसी क्रिमिनल के पास जो है वो चली जाती है, जो बच्चों की सेफ्टी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन किस तरह से आप इस तरह अगर आपके साथ हो रहा है, या आपके सामने कोई फ्लायर आया है, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है, और आप डायरेक्ट उस शख्स से बात कर रहे हैं जो फ्लायर में नंबर लिखा है, तो कैसे बच सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस सॉल्यूशन पर भी बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, लेकिन हम तीन सॉल्यूशन के बारे में अभी फिलहाल बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है, स्कूल से वेरीफाई करें। सबसे पहला जो नियम, जो रूल है, वो ये है कि किसी भी रैंडम एड पर भरोसा ना करें। हमेशा वही ट्रांसपोर्ट सर्विस चूज करें जो आपके बच्चे के स्कूल से ऑफिशियली रिकमेंडेड या रजिस्टर्ड हो। कई बार सोशल मीडिया पे आपके बच्चे का स्कूल जिस जगह पे है वहां पर, और आपका घर जिस जगह पे है, या फिर आपके घर के आसपास की लोकेशन, वहां पे कोई भी शख्स जो है वो आता और जाता है, और वो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करता है कि मैं फला जगह से फला जगह तक आता जाता हूँ, ए से लेकर बी पॉइंट तक, और किसी को अगर सर्विस चाहिए तो बताएं, और आप भी ए और बी पॉइंट के नजदीक रहते हैं, आप ऐसे में उन पर भरोसा कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे होते हैं। ऐसा कभी भी बिल्कुल ना करें। उसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे, ड्राइवर या एजेंसी से उनका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस CDL या क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन रिपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस के पेपर्स जरूर मांगे। इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, आप उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर वो आनाकानी करें तो समझ जाइए ये कुछ गड़बड़ है, या फिर वो आपको जवाब ही ना दे तो बेहतर है कि ऐसे लोगों से पीछे हट जाएं, चीप यानी कि सस्ते ट्रांसपोर्ट के पीछे बिल्कुल ना भागें। उसके अलावा एडवांस देने से भी बचें। जब तक आप फिजिकली ड्राइवर से ना मिल लें और उनकी गाड़ी चेक ना कर लें, तब तक कोई भी बड़ा एडवांस डिपॉजिट या अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल शेयर ना करें। बच्चों की सेफ्टी के मामले में एक्स्ट्रा अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये नए जमाने के नए स्कैम्स कुछ इस तरह से भी होते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हमारे फायदे की बात हो रही, लेकिन कुछ देर में हमें रियलाइज होता है, जब हमारे साथ स्कैम हो जाता है तब जाके हमें एहसास होता है कि ये एक्चुअली स्कैम था। जब आपको रिप्लाई मिलना बंद हो जाता है, जब आपकी जो डिटेल्स हैं वो किसी और के पास चली जाती हैं, आप किसी रजिस्टर्ड से भी ट्रांजिट करने लगते हैं, या अपने बच्चों को उनके बसेस में आने जाने का मौका देते हैं, और फिर जब आप डिटेल्स किसी तीसरे से शेयर कर चुके होते हैं, तब जाके आपको एहसास होता है जब आपके साथ सच में कोई स्कैम बाद में लेटर ऑन होता है। तो ऐसे में इस तरह के स्कैम से बचने की बेहद जरूरत है, और इसीलिए आपके लिए खास शो है जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। उम्मीद है इस शो के जरिए आपको कुछ पता चला होगा, आप अवेयर हुए होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: जब नई सोच और नए जज्बात टकराते हैं तो बनता है एक नया नजरिया, द डिबेटेबल टेबल, एक ऐसा शो जहां यंग डिबेटर्स अपने पर्सपेक्टिव से इंस्पायर करते हैं और हर डिस्कशन बन जाता है एक थॉट प्रोवोकिंग जर्नी। द डिबेटेबल टेबल, आरजे फजील और आरजे कबीर के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज दो बहुत ही होनहार बच्चे मेरे साथ हैं। दोनों ही 9th क्लास से हैं और इनकी वजह से मैं अभी सीधा 9th क्लास में चला गया हूँ। मुझे लगता है कि मेंटली आई एम देयर। सो आज मैं जो इनसे बात करने वाला हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। डिबेटेबल टेबल का मकसद ये से वी डिस्कस एक बात के दो पहलू या दो कम्प्लीटली डिफरेंट पहलू, लेकिन उसका जो पॉइंट है रखने का वो ही एक मेन कला है जो ये दोनों आज दिखाने वाले। सो एज यू नो बोथ ऑफ यू, सबसे पहले तो अपने नाम बता दो। पब्लिक तुम्हें सुन पाए, ठीक है। सो हूज टेकिंग द साइड, वाईफाई की साइड कौन ले रहा है?
5: मैं।
4: यू एंड यू
5: फसल।
4: ओके, सो वी विल स्टार्ट विद यू।
5: Yeah, okay, sure.
4: क्या कहना चाहोगे तुम?
5: So, I would like to say that Wi-Fi is an essential part of today's generation. And without Wi-Fi, even the most simplest deeds or even most simple searches can't be done. Right now, every technology, nearly from our vacuum cleaner to even our own device needs Wi-Fi.
4: Okay, and don't you think so ke log dependable ho jate hain, people get dependable on internet to some extent, it makes them lazy. What do you have to say about that?
5: Yeah, exactly, but them being lazy is not like relevant to Wi-Fi's usage.
4: Yes,
5: that's their own characteristic that makes them lazy.
4: Okay. And what do you have to say about fast food? Can you live without fast food, weather?
6: To be honest,
4: yeah.
6: No.
4: No. Why do you think so? Why you can't?
6: Because as they say, you know, a hungry man is a very angry man.
4: Ah, yes, of course, that's so true.
6: And yeah, without, it's like fast food, you know. Yeah. They say, oh, you don't need it. But then when you have those cravings, you want those, you know, happy meals of fries. Are you going to say to yourself, oh, let's eat salad?
4: Oh, which is your favorite fast food anyway?
6: Probably fries.
4: Fries only?
6: Yeah.
4: Do you like pizzas as well?
6: Yeah, I like pizzas. But my personal preference is that I don't like cheese a lot. So yeah, fries.
4: What about pineapple on pizza?
6: Heaviest sin in there.
4: That is so true. And do you have anything to say about it again?
6: Yeah,
4: please.
6: Now people might argue that we don't need fast food because it's not healthy, etc. But I say fast food is still just food, right?
4: Yeah.
6: And it's not like we're gonna eat it every day.
4: Yeah.
6: Most people only eat it occasionally or

ट्रेडिशन को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज इसका ट्रेंड दौर तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, वो लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। एक वक्त था जब लोग एजुकेशन कंप्लीट करके पूरी जिंदगी एक ही स्किल पर काम कर लेते थे, लेकिन आज सिचुएशन डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नए स्किल सीखना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। फ्यूचर में सक्सेसफुल वो लोग होंगे जो लर्निंग को कभी नहीं छोड़ेंगे। एजुकेशनल फंड इसी लॉन्ग लाइफ लर्निंग माइंडसेट को सपोर्ट करता है। मैं कहूँगी घर, गाड़ी और दूसरे एसेट्स कीमती हैं, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी एसेट उसकी नॉलेज या उसके बच्चे की एजुकेशन या स्किल्स हो सकती हैं। तो एजुकेशनल फंड सिर्फ फीस जमा करने का भी नाम नहीं है, ये उम्मीद का फंड है, ये अपॉर्चुनिटी का फंड है, ये फ्यूचर ड्रीम्स को हकीकत में बदलने का फंड है। जब हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ एक कोर्स या डिग्री नहीं खरीदते, हम कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी और बेहतर मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करते हैं। पैसे खर्च करने से चीज़ें मिलती हैं, लेकिन तालीम में लगाया गया पैसा जिंदगी भर के मौके पैदा करता है। एजुकेशनल फंड सिर्फ सेविंग नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एक रोशन रास्ता है। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM1।

0: दोस्तों आजकल के डिजिटल दौर में वीडियो गेम्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं लेकिन इन गेम्स का मुनासिब इंतखाब और उनकी देखभाल बहुत जरूरी है अपने बच्चों के करीब रहिए उन्हें गेम्स के इंतखाब में शामिल कीजिए उन गेम्स का चुनाव कीजिए जो उनकी एज और ज़हनी तरक्की के मुताबिक हों गेम्स के जरिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम और स्किल्स भी हासिल की जा सकती हैं अगर सही इंतखाब किया जाए आपकी रहनुमाई और तवज्जो उनकी डिजिटल दुनिया को महफूज और फायदेमंद बना सकती हैं वजारत दाखला का कहना है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी गेमिंग दुनिया को सेफ और प्रोडक्टिव बनाइए FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
1: Anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हां जी वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। क्या कहना, वीकेंड स्पेशल में द रिक्वेस्ट शो में आज हम फिल्मी मैरिजेस के, या यूं कहें फिल्मी शादियों वाले गाने प्ले कर रहे हैं। एंड आई कुड सी द मैसेजेस, उफ क्या बड़ी बड़ी लिस्ट आई है भाई, कि अभी ये गाना वो गाना। आई नो ये थीम ही कुछ ऐसी है कि कोई चुप रह ही नहीं सकता है कि नहीं। चले तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहली रिक्वेस्ट की तरफ। तो उस्मान साहब की रिक्वेस्ट है, कहते हैं कि अमिता ये गाना तो जरूर से लाजमी प्ले करना, क्योंकि मैंने इस गाने में अपनी बहन की शादी में परफॉर्मेंस दी थी। क्या गाना है, क्या बात है भाई, लता मंगेशकर जी की आवाज एंड श्रीदेवी जी।

तो ये गाना पूरा पूरा हम आपको आगे सुनाने वाले हैं, और आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, कौन सी याद शादी वाली जो आपकी ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत याद है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी की हो, आपके अपनों की भी हो सकती है, या आप किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। सो फिल्मी दुनिया के शादी वाले गाने आज के वीकेंड वाइब को और स्पेशल बना रहे हैं, तो जल्दी जल्दी शेयर करो 666-22-107 पर अपने डेडिकेशन अपने नाम के साथ, और एफ एम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, आर जी अमिता को भी सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं। So stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबीइंग की.
4: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल.
3: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा. हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो दोस्तों, सुनना न भूलें शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
5: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है. क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर

0: जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट। पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। आज सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी। देसी। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम, FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और क्या कहना, आज की वीकेंड वाइब्स द रिक्वेस्ट शो की बड़ी कमाल की है। मतलब एक तरफ मेहंदी की खुशबू आ रही है, दूसरी तरफ संगीत की मस्ती छा रही है, बारात के ढोल कहीं ना कहीं सुनाई दे रहे हैं, सो विदाई की जज्बाती घड़ी आ रही है। भाई आज का थीम जो है ना, वो फिल्मी दुनिया के शादी वाले गानों का थीम है, यानी कि वेडिंग सॉन्ग्स का थीम है। तो बेशक आप जरूर हमसे शेयर करें ना वो गाने जिनमें आपने कभी परफॉर्मेंस दी हो, वो गाने जिनमें आप परफॉर्मेंस करने वाले हो, या वो गाने जो कि आपकी लाइफ की स्टोरी बयां करते हो। जरूर शेयर करें 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशंस, ठीक है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर गाने की रिक्वेस्ट दो लोगों ने की, हमारे दो लिसनर्स ने, हुसैन और असरफ ने। और ये पर्टिकुलर गाना है फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ होता है, और इस गाने का सजेशन पामिला चोपड़ा यानी कि यश चोपड़ा साहब की वाइफ ने दिया था कि अक्सर पंजाबी वेडिंग में ये गाना बजता ही ये धुन बजती ही बजती है, तो क्यों नहीं इसको फिल्म में भी इस्तेमाल किया जाए।
2: घर आया मैं, आया तुझको लेने दिल के।
1: सो दिस इज हाउ साजन जी घर आए गाने की एंट्री हुई कुछ कुछ होता है फिल्म में। सो डेफिनेटली ये गाना पूरा पूरा हम आपको आगे सुनाएंगे। और उसके बाद सैयद अथर की रिक्वेस्ट है, ओहो नुसरत फतेह अली खां की आवाज, मतलब जब भी वेडिंग सॉन्ग्स की बात हो ये गाना कैसे प्ले नहीं होगा। 100% ये गाना प्ले होने वाला है, तो हम इसे आप इंजॉय कीजिए, हम यहाँ प्ले करेंगे। और आपकी लिस्ट का वो कौन सा वेडिंग सॉन्ग है, वो कौन सा सेलिब्रेशन वाला गाना है जो आपको बहुत पसंद है, यू वांट टू डेडिकेट किसी को या खुद सुनना चाहते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं जरूर बताएं। सो 666-22-107 इज आर नंबर, 666-22-107। तो इंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर ये सेलिब्रेशन वाले गाने, कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
4: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ।
5: आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो A for अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
6: यस जनाब, वेलकम वेलकम वेलकम। FM 107 सुन रहे हैं आप। क्या कहना, आज की वीकेंड वाइब्स क्या हो गई हैं? शादी वाली वाइब्स बिल्कुल, क्योंकि आज का थीम है वेडिंग सॉन्ग्स, फिल्मी वेडिंग सॉन्ग्स। तो आप बताइए कि आपकी शादी में वो कौन सा फिल्मी गाना बजा था जो कि आपको लगता है कि हर शादी में बजना चाहिए या फिर कोई ऐसा गाना जिसके बिना मेहंदी संगीत अधूरा सा लगता है, या फिर कोई ऐसा गाना जो कि आपको अपने परफॉर्मेंस की याद दिलाता है, अपने दोस्तों की याद दिलाता है। डू शेयर विद अस 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशंस भेजें। और अभी हम एक डेडिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो इस गाने की रिक्वेस्ट दो शख्सियत ने की है। पहले है आफ्ताब और दूसरे हमारे वन ऑफ द रेगुलर लिसनर प्रिंसन। और प्रिंसन ने एक्चुअली ये गाना डेडिकेट किया है उनके वन ऑफ द फ्रेंड अमरप्रीत को। और लिखते हैं कि अमिता, उनकी शादी होने वाली है, उनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि शादी के बाद ये मुस्कुराहट कम हो सकती है। ओए प्रिंसन, ये इस तरह की बातें नहीं करते अपने दोस्तों के लिए। आई नो कि जब शादी होती है तो थोड़ा बहुत लोग छेड़ते हैं, बट आई रियली वॉन्ट टू से कि हम दुआ करते हैं कि अमरप्रीत की शादी जो है वो बहुत ही कामयाब हो और वो हमेशा खुश रहे। ठीक है, चलिए इसी बात पर। आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट की है, दैट्स द मोस्ट वायरल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मिमी। और इसके अगर हम वीडियो की बात करें तो कृति सैनन इसमें परफॉर्म कर रही थी स्टेज में, और उनके बैकग्राउंड में 600 बैकग्राउंड परफॉर्मर्स भी थे। यस, द सॉन्ग इज परम सुंदरी कमिंग अप ऑन योर वे। और उसके बाद अगली रिक्वेस्ट है मिस्टर डब्लू की। नाम बड़ा यूनिक है, पूरा नाम नहीं बताया, सो मिस्टर डब्लू इज द नेम। और ये सुनना चाहते हैं लहम्बर हुसैनपुरी, जो कि पंजाबी फोक सिंगर हैं और अपने पावरफुल भांगड़ा ट्रैक्स के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने इस गाने की डिमांड की है, एंड द सॉन्ग इज साडी गली फ्रॉम द मूवी तनु वेज मनु। कमिंग अप पूरा पूरा आपकी राहों में, तो कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, अपनी डेडिकेशंस भी हमसे शेयर करते रहे। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: क्या बात है जनाब, वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप। सच में मतलब इतनी शानदार रिक्वेस्ट आपने भेजी हुई है कि ऐसा लिटरली लग रहा है कि ये वीकेंड तो अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त मैं किसी शादी में जाने की तैयारियों में लग रही हूँ, मतलब लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है। वेल, अभी हमें अगली जो रिक्वेस्ट आई है वो आई है मोहम्मद शरीफ मलिक की, और ये रिक्वेस्ट भी बड़ी कमाल की है। थोड़ा सा जब ये गाना शुरू होता है तो बड़ा स्लो स्लो होता है, लेकिन गाना बड़ा कमाल का है। आज है सगाई, ओ हो, सुन लड़की के भाई। फुल टीज वाला गाना है डेफिनेटली, तो हम ये गाना पूरा पूरा सुनने वाले हैं। उसके बाद वो कहते हैं ना कि मेहंदी की जब हम बात करते हैं शादियों में, तो मेहंदी वो रस्म है जिसमें हाथों पर सिर्फ रंग नहीं चढ़ता बल्कि खुशियों की ना एक पूरी दास्तान लिखी जाती है। और जो अगली रिक्वेस्ट आई है वो उमर की आई है, और वो सुनना चाहते हैं अलका याग्निक की आवाज में। कौन सा गाना बताओ? मेहंदी है रचने वाली, जुबैदा फिल्म का। सो ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आएंगे, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट तो प्ले करूंगी, लेकिन साथ में आपके फिल्मी नॉलेज को भी टेस्ट करना जरूरी है। तो जरा ये जरा क्विज टाइम पर आ जाओ जल्दी से।
0: क्विज टाइम,
1: क्विज टाइम पर सुनो ये गाना और पहचानो कि ये गाना कौन सा है। चलो चलो जल्दी से पहचानो ये गाना कौन सा है। 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ इस गाने का नाम लिखकर भेजो, तो ये गाना आपके नाम बस कुछ ही देर में हो जाएगा। बट अभी के लिए आपकी रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो कमिंग अप आज है सगाई, स्टे ट्यून टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: Yes, now welcome once again FM 107 सुन रहे हैं आप By the request show, अब बिल्कुल एंड में आ गया है यानी कि आखिरी मुकाम पर और क्या कहना क्या कमाल कमाल की रिक्वेस्ट आपने की मतलब लिटरली सल्यूट है हाँ वेल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि पूरा ये एक घंटा आप हमारे साथ नॉन स्टॉप बने रहे और हमने पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पसंदीदा गानों को हम प्ले कर सकें। वैसे क्विज टाइम पर मैंने एक गाना आपको सुनाया और कहा कि गाना पहचानो हाँ तो मैंने कहा था गाना पहचानो और गाना कौन सा है द सॉन्ग इज बड़ा ही लेजेंडरी गाना है इट्स बोले चूड़ियाँ फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम आहा क्या फिल्म थी और इस गाने को सही सही पहचाना है किसने हमारे वन ऑफ द रेगुलर लिसनर मोहम्मद यूसुफ खान ने नूर ने पहचाना है और इनका नाम भी बड़ा यूनिक है इरफा नूर क्या बात है इरफा नूर ने भी पहचान लिया है जाहिद ने पहचाना है और रिजवान ने सो बहुत बहुत शुक्रिया ये गाना आपके नाम होने जा रहा है। वैसे एक चीज़ बड़ी खास होती है जब यहाँ तो हमने वेडिंग थीम रखी लेकिन जब हम वेडिंग सॉन्ग्स की बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो एंटायर फैमिली फ्रेंड्स आपके ब्रदर सिस्टर सब होते हैं और जब आप परफॉर्मेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना तो स्टेप्स याद रहे ना रहे आपको वो मोमेंट्स वो मस्ती ज़रूर याद रहती है कि नहीं। तो आई होप कि आज का जो द रिक्वेस्ट शो है ये थीम आपने ज़रूर इन्जॉय की होगी और इसी के साथ हैप्पी वाला वीकेंड है आप भी अपने घर जाके खूब इन्जॉय कीजिएगा और अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त तो मैं जाती हूँ जाते जाते ये कहते जा

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

0: नई रिक्वायरमेंट जो है वो लागू हो जाएगी 1 फरवरी 2027 से। अ लिटिल टाइम लेफ्ट और इसकी जो नई रिक्वायरमेंट है वो कहती है कि 8000 घंटे इन 365 डेज, मतलब बेसिकली एक साल के अंदर, या फिर 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज इन 90 डेज। और जो बेसलाइन रखी गई है सब्सक्राइबर्स की वो अभी भी 1000 ही रखी गई है। तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? देखिए, इफेक्ट पड़ेगा नए क्रिएटर्स पे जो पूरी तरह से चाहते हैं कि मोनेटाइज कर लें, प्रीमियम अकाउंट बना लें पहले या बाद में फरवरी से, क्योंकि 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज लाना उससे पहले बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट इजी, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट यू कैन डू इट। दूसरी चीज, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पे भी, जो क्रिएटर्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड हैं पार्टनर प्रोग्राम में इस डेट के आने से पहले, उनको भी अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो लो टीयर्स में जो फैन फंडिंग या शॉपिंग इन सब में आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ चीजें तोड़ मरोड़ के बताना चाहता हूँ, इफ यू स्टार्टिंग योर करियर इन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब, व्हाटएवर। तो जब आप YouTube पे करियर शुरू करने वाले हैं तो आपको लोग दो तरीके का एडवाइस देंगे। नंबर वन एडवाइस जो मैं भी आपको दूंगा, अगर आपका कॉन्टेंट आप ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने वाला है तब तो आप 20-25 मिनट का डालें, कि आपको इतना यकीन है, आपको भरोसा है अपने ऊपर कि 20 मिनट का अगर मैं कुछ अपलोड कर रहा हूं तो पीपल विल वॉच इट, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल गेट दोज 8000 आवर्स। वो जो 8000 घंटे पूरे करने का जो एक काम थमा दिया है यूट्यूब ने, जो 1 फरवरी से लागू हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं अपना चैनल मोनेटाइज करना, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट। तो अगर ऐसा नहीं है कि नहीं यार मुझे नहीं लगता कि मैं 20 मिनट का कंटेंट दूंगा, तो आपको YouTube के शॉर्ट्स पे फोकस करना चाहिए। वो जो एक मिनट का जो टाइमलाइन है, 30 सेकंड्स के अंदर, 40 सेकंड्स के अंदर अपने कंटेंट को अगर आप डिलीवर वालों में से हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, डू दैट बिकॉज इट्स द राइट टाइम। अभी से आप लग गए ना, जी जला दिया आपने, तो कुछ वक्त नहीं लगेगा आपको उस लेवल पे पहुंचने पे जो आपने सोच रखा है। बट देन अगेन, मैं पीछे फिर से जाना चाहूंगा उस बात पे जो मैंने पहले कही, YouTube पे अगर आप अपना करियर सोच रहे हैं, एंड इंक्लूड्स मी ऑल्सो, मैं ध्यान दे रहा हूँ, आपको नहीं दे रहा, मैं अपने आप को भी रिमाइंड करा रहा हूँ, इफ वी ऑल आर थिंकिंग यूट्यूब एज अ करियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड ये कोई टाइम पास नहीं हो सकता, ये कोई सिर्फ हॉबी की तरह नहीं है। अगर यूट्यूब से कमाना है, सिर्फ एंटरटेन नहीं करना है, देन यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ जॉब। वेरी वेरी सिंपल। एंड क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। नौकरी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? यूट्यूब को नौकरी मानने का मतलब है कि मैं भैया हफ्ते में 3 दिन आऊंगा, 3 दिनों आऊंगा, इतने बजे आऊंगा। यू हैव टू डिलीवर ऑन क्या कहते हैं उसको, एक्सपेक्टेशंस। आप एक टाइमिंग सेट करते हैं, एक दिन सेट करते हैं, जैसे हम लोग अपनी नौकरी पे जाते हैं वैसा। इसमें और बात करता रहूंगा, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा 666-22-107 पर या फिर सोशल मीडिया FM 107 कतर। ये थी आज की टेक अपडेट, मिलते हैं अगले में, स्टे ट्यून्ड।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
1: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आज की दुआ में हम एक ऐसी दुआ पर गुफ्तगू करने वाले हैं जो हर मुसलमान के दिल की गहराइयों से निकलती है। ये दुआ वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है जो कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में जिक्र की गई है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत और शफकत से पाला। रब्बी, ए मेरे रब, इरहमहुमा, मेरे वालिदैन पर अपनी खास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। सामिने किराम, ये दुआ हमें याद दिलाती है कि वालिदैन के एहसानात का बदला देना मुमकिन नहीं। इसलिए तमाम तर खिदमात के साथ साथ ये बड़ी खिदमत भी है कि उनके लिए रहमत और मगफरत की दुआ की जाए। इस दुआ में बचपन की याद दहानी है। कुरान ने इंसान को उसकी तफुलियत याद दिलाई कि जब वो बिल्कुल बेबस था और वालिदैन ने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। इसी तरह इस दुआ में इस बात की तरफ भी इशारा है कि जब वालिदैन ज़ईफ़ हो जाए और उनकी तबीयत में कमज़ोरी या चिड़चिड़ापन आ जाए तो भी उनके साथ शफ़क़त, एहतराम और सब्र का मामला करना ज़रूरी है। तो इस तरह सामिन, वालिदैन की खिदमत नेकी का काम है और उनकी नाफरमानी गुनाह कबीरा है। औलाद का फ़र्ज ये बनता है कि वालिदैन ने जैसे बचपन में कुर्बानियाँ दीं, वैसे ही बुढ़ापे में औलाद को उनकी खिदमत और दिलजोई करनी चाहिए। तो आज की दुआ हमें ये सबक देती है कि वालिदैन की खिदमत और उनके लिए दुआ करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो दुनिया में मौजूद हों या इस दुनिया से जा चुके हों। आइए हम सब मिलकर अपने वालिदैन के लिए ये दुआ पढ़ें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सामने ग्राम, चलें प्रोग्राम के इस मरहले में अब हम एक और दुआ सीखेंगे। सामने ग्राम, किसी मुश्किल मामले या फैसले के वक्त, किसी बीमारी, घबराहट या आजमाइश में, इम्तिहान, नए काम या प्रोजेक्ट के आगाज पर जब हमारा दिल बेचैन रहता है तब हम इस दुआ का ज्यादा एहतमाम करें। اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل

0: डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सिर्फ खाने पर नहीं अपनी पूरी लाइफस्टाइल पर तवज्जो दीजिए। मुनासिब फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और बैलेंस्ड डाइट सब मजमूई सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर मुसलसल या शदीद एब्डोमिनल पेन हो, बार बार वोमिटिंग हो, पाखाने में वजन बिलावजह कम हो रहा हो, निकलने में मुश्किल हो, या फिर ये कि बाउल हैबिट्स में मुसलसल और गैर मामूली तब्दीली हो, तो मेडिकल एडवाइस लेना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ये बहुत अहम है। डिस्टेंस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी रोज़मर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता खाइए, मुतवाजन ग़िज़ा लीजिए, फाइबर को अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए, मुनासिब फ्लूड लीजिए और अपने जिस्म के सिग्नल्स को इग्नोर ना कीजिए। याद रखिए, डाइजेशन और अच्छी सेहत ही हमारी अच्छी सेहत का हिस्सा है और यही है योर हेल्थ मैटर्स।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

देसी। सुबह के काम की सबसे अच्छी बात यही है कि आप सुबह जितना भी काम कर लें, आपका मूड खराब हो उठ जाए, लेकिन शाम होते होते वीकेंड पे वीकेंड मनाने का मजा ही कुछ और है। ऐसा लगता है कि 3 दिन की छुट्टी है भाई, 4 बजे 5 बजे आप फ्री हो जाए, ऐसा एहसास होता है, मन से लगता है कि भाई 3 दिन की छुट्टी है, अब थर्सडे आराम करेंगे, फ्राइडे सैटरडे। अब मुझे पता है कई लोग आएंगे, अरे सर मेरी फ्राइडे को ही होती छुट्टी। अरे ठीक है मेरा भाई, मैं 2 दिन मेरी खुद की होती ना 2 दिन, तो इसलिए कभी कभार 2 दिन वाला निकल जाता, लेकिन अगर आपकी फ्राइडे भी होती तो फ्राइडे और थर्सडे, ये 2 दिन है भाई। और फिर दिन तो पूरा ही होता है ना। खैर इस्तकबाल 6:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, अभी से लेकर 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला, और इस बीच सवाल भी होंगे, सवाल के साथ साथ होगा बेहतरीन सा मजा मस्ती, क्योंकि हमारा व्हाट्सअप जो है वो एक्टिव रहता है और आपके जवाब होते हैं लाजवाब। लेकिन आपके जवाब की तरफ बढ़े उससे पहले थोड़ा गाना वाना हो जाए, माहौल थोड़ा बना लेते हैं। साची टंडन और मनन की आवाज़ में बेहतरीन सा गाना आ रहा है, इसे इंजॉय करते हैं और फिर जब वापस आएंगे तो अपन सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्या हाल चाल भैया, वीकेंड का मजा ले रहा है।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: हाँ जी दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है। 6:07 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और वक्त आ गया कि सवाल किया जाए। और आज का सवाल क्या है?

0: जी हबीबी, सवाल बड़ा आसान सा है और क्योंकि थर्सडे है और थर्सडे में लोगों की स्किल जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है, क्योंकि यार स्किल के जरिए ही तो अपन कमा रहे हैं। आपके पास कोई स्किल है? अगर आपके पास ड्राइविंग की स्किल है तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके पास बात करने की स्किल है तो आप आरजे कर रहे हैं, अगर आपके पास सेल्स यानी कि बेच देने की स्किल है तो आप सेल्स मैनेजर हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्किल है, जब ही हर शख्स जो है वो कोई ना कोई काम कर रहा है। ऐसे ही आज का जो सवाल है वो स्किल पर है और सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं कि बढ़ते तेज़ी से ज़माने में, तेज़ टेक्नोलॉजी के ज़माने में, एआई के ज़माने में एक स्किल जो आने वाली जनरेशन में होना चाहिए, आपके बच्चों में होना चाहिए, एक ऐसी स्किल जिसको डेवलप कर लेने के बाद ये जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो बड़े ही काबिल होंगे, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, वो टेंशन फ्री रहेंगे, और एक स्किल जो शायद आपने सीखा नहीं, अगर वही कोई स्किल आपके बच्चे सीख ले, ये जनरेशन सीख ले, तो उसके लिए परफेक्ट है। कोई एक स्किल आपको तो समझ में आ रही होगी, अब वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो स्किल कुछ और है, आपके हिसाब से वो स्किल कुछ और है, जो बाकी आप लोग सुनने वाले हैं आपके हिसाब से स्किल कुछ और हो सकती है, लेकिन क्या है ये आपको बताना है। नंबर है 666-22-107। देखो भाई, एआई का ज़माना है, आप कितने बड़े भी यू नो इवन म्यूज़िक स्टार रहे हो, आपने म्यूज़िक बहुत अच्छा बनाया हो, तो धीरे धीरे एआई म्यूज़िक के इंडस्ट्री में आ रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ वक्त निकलेगा तो सोशल मीडिया, जो पहले एक वो होते थे ना शादी लगवाने वाले अंकल और आंटियां होती थी, तो वो बाकायदा चार्ज करती थी कि अरे भैया हमारे पास रिश्ता है, 15,000 में दिलवा देंगे। उसके बाद एक .com करके शादी करने वाले जो लोग होते हैं, तो वो .com करने वाले वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर रिश्ता ढूंढ लिया, तो उन लोगों का काम बहुत कम हो गया है ना, तो वो स्किल भी ख़राब हो गया कि अरे ये एक आंटी है बहुत अच्छा रिश्ता लगवाती है, पता है। वो आंटी आपने गौर किया होगा आजकल नहीं मिल रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इतने फेक लोग मिल रहे हैं भाई, इतने फेक लोग मिल रहे हैं कि वो आंटी धीरे धीरे उजागर हो रही हैं आजकल। किसी किसी शहर में वो आंटी वो अंकल मिल जाते हैं जिनका काम ही यही है कि दो परिवारों को मिलाना, एक लड़के को एक लड़की को मिला देना ये टेंशन फ्री हो जाती हैं और दोनों तरफ से पैसे कमा रही हैं भाई, आपसे भी 15,000 और लड़के वाले से भी 15,000। क्या बात है, ये भी स्किल थी यार कि आप सोचो कि मोहल्ले में, शहर में उस औरत को कितने, या उस फैमिली को जिनका ये बिजनेस ही है, उस फैमिली को कितने लोगों से मिलना होता होगा, उनके डेटा रखना होता होगा पूरा बनाकर कि कौन सा लड़का कौन सी लड़की के लिए, कौन सी लड़की कौन से फैमिली के लिए परफेक्ट है भाई साहब। और उसके बाद ये लोग जो है आपको बताया करते थे, तो उनका काम कम हो गया है। अब ऐसे ही आप देखें सोशल मीडिया के आने के बाद जो सेकेंड हैंड मार्केट थी वो हल्लू से, बहुत गहरी तरह से तो नहीं, कतर में तो अलग तरह से काम करती है, लेकिन इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत लंबे वक्त से बदला हुआ है और मुझे लगता है कि ये ऐसी रहेगा। पहले अगर आपको सेकेंड हैंड कार लेने जानी थी तो आप क्या करते थे, तो जो स्किलफुल आदमी होता है, जो स्किलफुल मैकेनिक होता है, तो आप उसके पास जाते थे, और जो कोई भी सेकंड हैंड कार बेच रहा है तो मैकेनिक के साथ मिलकर उसके पास जाते थे, उसको वो गाड़ी दिखाया करते थे और फिर काम हो जाता था। लेकिन अब एक वेबसाइट आ गई है जहां पर उसी वेबसाइट के मैकेनिक वो सेकेंड हैंड बेचने वाले बंदे के पास जाते हैं, कार वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया हाँ ये कार मेरे को चेक करनी है, वो चेक वेक करते हैं और फिर सोशल मीडिया पे या अपनी ही वेबसाइट पे उस कार के बारे में डाल देते हैं और जितना भी अमाउंट आता है वो अमाउंट डाल देते हैं। ऐसे ही मोबाइल भी सेकेंड हैंड वहाँ बिक रहे हैं। तो हल्लू से हल्के हल्के देखा जाए तो सबके जो स्किल हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, एआई के थ्रू वो ग्रैब किए जा रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से अगर कहा जाए तो ऐसी स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली जनरेशन के पास होनी चाहिए, वो स्किल क्या है, ये आपको बताना। नंबर है 666-22-107। आपकी जनरेशन, आपके किड्स में, आपके बच्चों में एक स्किल ऐसी जो होनी चाहिए, अब वो कोई भी हो सकती है, अब वो आप इस थॉट से भी सोच सकते हैं कि हाँ यार ये स्किल अगर हुआ तो मेरा बच्चा बेहतरीन कमाएगा, फला स्किल हुई तो मेरा बच्चा कभी भूखा नहीं रहेगा, ये आपको बताना है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर 666-22-107। और हल्के हाथ से जरा बढ़ते हैं मैसेज की तरफ।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
2: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: हाँ जी, सबसे पहले ये मैसेज है सलाम का, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आतिफ इंघाना में, आतिफ भाई क्या हाल चाल पूछ कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह,

भूखे नहीं मरेंगे. Now you see के कोई भी प्रोडक्ट बना लो भाई, उसको बेचना तो है ही है, लेकिन बेचने के लिए आपके पास होनी चाहिए सेल्स की स्किल. तभी तो कहते हैं कि एक गंजे को कंघी की बेच देना, ये सेल्स वाले की कला है भाई. और ये दुख की बात है कि गंजे को बेच तो दे रहे हैं, गंजे के लिए दुख की बात है, लेकिन कमाई वाले आदमी के लिए यानी कि सेल्स वाले आदमी के लिए परफेक्ट है. तो ऐसे में आपको बताना है ऐसे ही कि आतिफ भाई ने जैसे बताया है. बाकी एक और मैसेज है सऊदी अरेबिया से, कोई सुन रहा है. कम्युनिकेशन स्किल आमना, अच्छा आमना इनका नाम है, प्लीज से माई नेम विद इट है. अच्छा जो इन्होंने जवाब दिया, ओके तो मतलब बॉर्डर के आसपास ही है ये. क्योंकि एकदम अंदर तक तो सुनाई नहीं दे रहा होगा. कहाँ से आपने, आप कहाँ से सुन रही हैं सऊदी अरेबिया में, कहाँ लोकेशन? तो थोड़ा सुनकर अच्छा लगेगा कि अरे पास में है इधर कतर के बॉर्डर के करीब में या फिर और थोड़ा सा दूर. कहाँ तक पहुँच रहा पता तो चले. ओई हुई दमाम तक पहुँच रहा है अपना वाला यार. अब हम लोग कह सकते हैं यार कतर 107 की रीच बहुत दूर तक है बाबू. क्या बात है, बहुत बढ़िया. बाकी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कहा और ये बात सेल्स वालों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तब तो भाई आप बढ़िया सेल कर लोगे, तब तो सही है, गंजे को जो है आप कंघी बेच ही देंगे. बाकी एक और मैसेज है, सलाम खा, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई. क्या लिखा है भाई ये वाला, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लिखे तो मैं पढ़ पाऊं. सामने कोड़े वाला आदमी बैठा हुआ है, वो मुझे रसीद कर देगा. आपने मजे मजे में लिख दी ये बातें, ये वाली स्किल नहीं पढ़ूंगा भाई, आपका नाम भी नहीं पढ़ूंगा. नाम लिख कर दो. फिर मुनीर भाई का ऑडियो है, मैं ऑडियो कुछ देर में पढ़ूंगा, आई मीन सुनूंगा. लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि कोई ब्लैक टी शर्ट पे येलो कलर की टाई डाले हो, और ये मुनीर भाई ने किया है. मैंने प्रोफाइल चेक करी भाई. ब्लैक पे येलो टाई, इमेजिन करो, ये भी एक स्किल ही है ना भाई. मुनीर साहब हिम्मती हैं. बाकी एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. एजाज साहब ने सलाम करने के बाद लिखा है, भाई एक स्किल जो है कम्युनिकेशन के साथ वो है डटे रहने की. किस बात पे? अच्छा अपनी कम्युनिकेशन पे डटे रहने की. ये डटे तो मैं पहले डेटे पढ़ने वाला था, मैं सही पढ़ रहा हूँ, डटे ही लिखा है ना आपने. मेरे को ये बताओ, अच्छा कम्युनिकेशन के साथ डटे रहने की ये भी एक स्किल तो है, मैं इस बात को मानता हूँ. लेकिन अब एक वो भी है ना कि अरे डटे रहने को कुछ लोग जिद समझ लेते हैं. अब आप वो जिद करें क्या, मैं गंजा वाला भाई सुनो तो गंजा कह रहा नहीं भैया हमें नहीं लेनी है यार, हमारे पास बाल नहीं है. हमें ले लीजिए भाई, कंधे के बाल भी सेट करने होते कभी कभी. गंजा कहेगा मैं यार डटा हुआ है अपने आदमी. अपनी बात पे फिलहाल एक और ये मैसेज है सलाम का, और ये लिखा है अरमान मलिक ने, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई. बाकी कम्युनिकेशन स्किल पर अपन बात कर रहे हैं. एक मैसेज और आया है, दिस मैसेज टाइमर वाज अपडेटेड, न्यू मैसेजेस विल डिसअपीयर फ्रॉम दिस चैट 24 आवर. ये मैसेज नहीं, इसके ऊपर वाला मैसेज है. भाई सलाम करा है हुमा जाफरी ने, और सलाम करने के बाद ऐसी बात कह दी कि मैं पढ़ूंगा नहीं ये वाली बात. आपको मैसेज आया होगा हुमा जाफरी रमज़ान के क्विज से रिलेटेड, और बेहतर यह है कि आप इस मैसेज का रिप्लाई करें जो आपके पास आया होगा. उस पे आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बाकी लोगों का मैसेज पढ़ेंगे. सवाल बड़ा सिंपल सा है, सवाल ये कि एक स्किल जो लोगों के पास होनी चाहिए, जो बच्चों के पास, आने वाली जनरेशन के पास होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, वो स्किल क्या होनी चाहिए वो आपको बताना है. नंबर है 666-22-107. बाकी मैसेज कुछ देर में हम पढ़ेंगे. फिलहाल जुबिन नौटियाल की आवाज में ट्रैक सुनते हैं FM 107 दिल से देसी.

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी. इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
2: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
5: भाई अगर आप लोगों के हाथों आ जाए तो नई जनरेशन को ऐसे स्किल सिखा दो भाई बवाला ही हो जाए. मतलब मैं तो यही सोच रहा हूँ जिस तरह से मैसेज आए लोगों के. मुनीर भाई ने ऑडियो भेजी थी, उन्होंने कहा कि यार आजकल जो लोग हैं या जो बच्चे आने वाली जनरेशन हो उनको पॉलिटिक्स में आने की और पॉलिटिशियन बनने की स्किल जो है वो सीखनी चाहिए. यार देखो पॉलिटिक्स और ईमानदारी ये साथ तो चलता नहीं है, तो ईमानदारी की स्किल हटानी पड़ेगी अगर पॉलिटिशियन बनना नहीं तो. मतलब ऐसा मुनीर भाई, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, मुनीर भाई ने कहा है कि पॉलिटिशियन जो है अगली जनरेशन को बनना चाहिए. तो ये भी है, और उन्होंने कहा कभी भूखा नहीं रहेगा ऐसा आदमी है. भाई बहुत अंदर तक ऐसा भरे बैठे हुए हैं. बाकी अस्सलाम वालेकुम, मैं MD अख्तर हुसैन. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल खबर है सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं अख्तर सर कैसे हैं?

कि ये भी बताएं कि नई जनरेशन को क्या स्किल आनी चाहिए। फिर एक और मैसेज है अब्दुल समद का, कहते हैं बात करने की स्किल और टोनैलिटी, किससे किस लहजे में बात करनी चाहिए, ये स्किल सब में होना चाहिए। हाँ यार, ये तो अच्छा, ये स्किल में काफ़ी लंबे वक्त तक कई लोग जो है उन्होंने झेला है, स्ट्रगल किया है। अगर आप में ये स्किल नहीं है तो आप इतने बड़े नुकसान में रहे हैं। अगर आप दिल के बहुत अच्छे हैं बट आपकी टोन सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बात करते हुए, भले आपका दिल बड़ा साफ है, आप बात कर रहे हैं नॉर्मल हो के, सामने वाले को लगता है कि आप रूड हैं, और फिर समाज में, सोसाइटी में एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है आपके लिए कि आप रूड है यार, उसे बात करना ही नहीं आता। और मतलब आमतौर पर लोग सोच रहे होते हैं यार मैंने तो कभी किसी से बुराई करी नहीं, हमने तो किसी से कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा, तब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यार ये आदमी अच्छा नहीं है। तो बड़ा ज़रूरी है, और ये बहुत सही बात कही है, मुझे लगता है कि आपकी जो टोन है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब्दुल समद ने इस बात को वाजे कर दिया कि आने वाले वक्त में ये टोन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और कई घरों में ये खैर सीखा भी जा रहा है, या कई घरों में इस तरह से माँ बाप बात करते हैं कि टोन को अच्छे लहजे में इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उससे बच्चे भी सीखते हैं। मुझे याद है हमारे माँ बाप ने तो कभी ये नहीं करा, ए पानी ले क्या आपने हमारे माँ बाप को देखा भाई, उनने तो कभी टोन सीखी नहीं। वो तो हम जनरेशन है जिन्होंने टोन सीखी है, तो हम अपनी औलाद से सही बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान यही रहा है भाई, हमारे अब्बा ने ऐसी बात करी है, अब हमारे बच्चे भी यही कर रहे हैं कि यार अब्बा पानी कहा था नहीं लेकर आए, अभी तक आपसे कहा था सेम और केला लेकर आना, आप नहीं लेकर आए, नहीं सुनते हैं आप तो ऐसे कैसे बताएं। लेकिन हमारे अब्बा ने तो भाई एक ही बार इस्तेमाल किया है अपने अच्छे टोन को, उसके बाद उनकी टोन तुरंत खराब होती थी। जैसे वो कहते थे बेटा वो पानी ले आओ, और उनको 20 सेकंड तक पानी लाकर नहीं दिया बाबा, अरे कमबख्त पानी लेके आए, इससे एक काम कहते काम नहीं होता इससे। तो फिर भाई आपको, और इन सब के बीच में जो मैंने अभी बोला ना, इन सब के बीच में ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल होता था जो मैं यहां पर कर नहीं सकता, तो वो भी कुछ लफ्ज है मोहब्बत वाले, कोड़े जैसे ही पड़ते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने कभी अच्छे मोहब्बत से इस्तेमाल कर लिया। आजकल के माँ बाप, बेटा माहिरा एक ग्लास पानी लेकर आना, अब कितना क्यूट लगता है भाई, बाप एक मंगवाए अगला आदमी दो लेकर आए है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात रही है इस जनरेशन की कि आपने सीखा, बाप अपने बच्चे में भी ये अच्छी टोन वाली बातें जो है वो सिखा रहे हैं। अब्बा लोग हमसे बच्चों से सीखते हैं, गुड टू सी। हाँ अब्बा लोग अब सीख रहे हैं, अब उनको भी लग रहा है हाँ नहीं यार, हमने एक ज़माने में 1990 में 85 में बहुत तकलीफें झेली हैं, उनको ये लगता था कि हमारी तकलीफ है तो बच्चे को समझना है, नहीं समझना कोई बात नहीं, बच्चे को तो मैं रेलूंगा, बच्चे को तो मैं कूटूंगा। उनका स्ट्रेस, हमारे माँ बाप का स्ट्रेस आधा इसी तरह भाई उनकी कुटाई से, और उनकी कुटाई की वजह से हम सही भी हुए हैं, वरना हम लोग, हम मर्द बहुत ज़्यादा छित्ते आदमी थे भाई, हमने बहुत ही हरकतें करी है। बाकी एक और मैसेज है मुबीन साहब का, और सलाम करा है तमाम लिसनर को, सबको मिर्चे विर्चे की फोटो भेज दी है मेरे भाई ने, क्या बात है, टमाटर 1.5 किलो, हरी मिर्च की सब्जी ये सब क्या करते रहते हैं मुबीन भाई। एमडी हुसैन साहब ने कहा फजील भाई इंडिकेटर की आवाज़ नहीं गई, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है यार हुसैन भाई, तुम्हारे कार में लगा इंडिकेटर यार, आती होगी आवाज यार, ऐसा भी नहीं है, आती होगी आवाज। फिर एक और मैसेज है, क्या नाम है इनका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, एक स्किल झूठ की और फरेब की होनी चाहिए। अरे मेरा भाई क्या बात कर दी, नाम तो अब तो नाम देखना पड़ेगा, एक लौता आदमी है जिसका मैं नाम ढूंढूंगा भाई, कहीं से भी मिल जाए, ऊपर मैसेज भी आपने बहुत ज्यादा किए हुए हैं, लेकिन ढूंढूंगा मैं, ढूंढूंगा, नाम लिख दिया करो मेरा भाई, आसान हो जाएगा मेरे लिए। सलमान, नहीं नहीं सलमान तो नाम नहीं है, ये किसी मूवी, किसी सवाल का जवाब है क्या सलमान, भाई शेख नाम है, बहुत आम नाम हो गया भाई ये शेख या ये भी किसी का जवाब ही है शायद, सॉरी ऊपर जाते हैं, सलाम भाई मेरा मूवी, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ढूंढना पड़ेगा, प्रोफाइल में भी नहीं लिखा मेरे भाई ने, थोड़ा तो लिख देते यार, नहीं मिल रहा मेरा भाई, सॉरी शमशी, शमशीर नहीं नहीं शमशीर तो नाम नहीं हो सकता, ठीक है अगर शमशीर आपने कहीं लिखा है तो भाई आपका नाम मिल नहीं रहा है, आप ही हैं जो इतना खतरनाक लिख गया फरेब और झूठ की स्किल। अरे भाई साहब भरा बैठा ये आदमी फरेब, वैसे झूठ की स्किल तो ऐसी स्किल है जो आप चाहे ना

चाहें आपके अंदर आ ही जाती है, थोड़ी तो मक्कारी इंसानों के अंदर भरी रहती है। ये स्किल नहीं है भाई, ये ऑटोमेटिक इनबिल्ट है। ये पता नहीं 12 से 15 साल के बाद एक्टिव हो जाती है, और जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ना, उन बच्चों के अंदर ये तो 10-12 साल के अंदर ही आ जाती है। ये अलग तरह की स्किल है, जिसे चाहिए तो नहीं लेकिन आ जाती है भाई। लेकिन अब इसमें अपना तो कोई काम ही नहीं है। उसके अलावा एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा भाई इतना लंबा मैसेज लिख दिया इनने सलाम में। फिर ये मैसेज है नवीद साहब का। नवीद भाई कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते ना मेरे को डर लगता, कभी ऐसा उल्टा सीधा ना लिख दो यार तुम लोग कि मेरी हालत खराब, कोड़े वाले भैया बगल ही में बैठे। भाई एक स्किल मना लेने की होनी चाहिए। मना लेने की? किसको मना लेने की? बीवी को मना लेने की, वरना लोग अलग हो जाती है। अरे मेरा भाई बीवी को पूरी बात लिखा करो भाई, मना लेने की स्किल किसको? अब देखो इंसान जो है दो ही लोगों को मना सकता है, एक अपने घर वालों को, एक अपने घरवाली को। उसके बाद ये मर्द समाज तो नहीं मना रहा किसी को। आपने देखा कभी कोई मर्द ऐसा हो जो इन दोनों के अलावा, मतलब अपने घर वाले से और घरवाली के अलावा किसी को मना रहा हो? कभी किसी को नहीं मना था भाई। जिसको बुरा मानना मांगो मेरे ठेंगे से, उनका सीधा चलना होता है। अच्छा लगे बुरा लगे मेरे ठेंगे से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी हाँ ये कोशिश लोगों की रहती है कि किसी को बुरा ना लग जाए मेरी तरफ से, पहला तो यही ऑप्शन। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है कि अरे तुम बुरा मान जाओगे और हम मनाने आएंगे, अजी ठेंगा दोस्ती यारी अपनी जगह, अकड़ अपनी जगह, मर्द की अकड़ पूरी रहती है भाई साहब। मेरे अंदर भी है, मेरे को तो कभी कभार ऐसा भी लगता है कि घरवाली को मनाना भी बड़ा वो मेहनत का काम है यार, नहीं होता है। बाकी फिलहाल एक और मैसेज है, और क्या लिखा है, अरे मेरा भाई अरमान मलिक का मैसेज है। इंशाल्लाह भाई सब कुछ बेहतर होगा। अच्छा ये भाई देखो, मैं इंसान का आना जाना लगा रहता है, और जिस तरह से एक भाई का मैसेज है यानी कि अरमान भाई का, अब मैं इसमें डबल सोच में हूँ, डबल थिंकिंग। इन्हें लिखा है नाना भाई, नाना फौत हो गया मैं, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा इनके वाले या वो जो नाना पाटेकर है वो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, परेश रावल ने भी बहुत कर्रा लिखा है, उन्होंने कहा है कि यार एक ना एक दिन इंसान को जाना है। और ये बात अनुपम ने भी लिखी है कि अगर वो खुद भी होते और कोई उनका करीबी चला जाता तो वो ये लिखते, अरे यार एक ना एक दिन तो जाना ही है, इसमें फिक्र करने वाली, इसमें सोग मनाने वाली क्या चीज़ है, सेलिब्रेट करने वाली चीज़ है उनके लाइफ को, उनकी ज़िंदगी को, उनके मूवीज़ को, उनके कंटेंट को, उनके आर्ट को, उस चीज़ को सेलिब्रेट करो जिस चीज़ में उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना काम किया और लोगों को एंटरटेन करके रखा। तो वी नेवर थिंक लाइक दिस के यार वो चले गए हमें सोग मनाना चाहिए, नहीं, वी सेलिब्रेट एक्चुअली कि उन्होंने जो किया, जो कहा, उनका काम, उनका एंटरटेनमेंट, उनकी ज़िंदगी हमारे साथ रह गई। फिलहाल 6:36 हमारे स्टूडियो की घड़ी में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और एक भाई ने लिखा है मर्द बाहर वाले को भी मनाता है, मैं नहीं मानता उस्मान भाई, मैंने तो कभी नहीं देखा। दो दोस्तों में भी लड़ाई हो जाती है, कभी देखा है मनाना? दो दोस्तों में लड़ाई होने के बाद मनाते नहीं है, बस दो आपस में बात कर लेते हैं 10 दिन बाद, और अगर दोनों ने नॉर्मल बात करी तो वो दोस्ती बहुत लंबी चलती है, नहीं बात करी तो दोस्ती वहीं 10 दिन बाद ख़त्म। मनाते हुए मैंने नहीं देखा कि अरे यार सॉरी यार उस दिन मेरे से गलती हो गई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तुम मेरे दोस्त, अरे भी मेरे ठेंगे से। ये मैं मान सकता हूँ कि मर्द समाज तब मनाता है इन अ सेंस बात करता है। और मिसाल के तौर पे मैंने उस्मान भाई जो आपने मैसेज लिखा है, मैंने आपसे बात करी और आपको कोई बात बुरी लग गई, तो मैं अब जो उसी बात को लेकर कंटिन्यूसली बात करूंगा या कंटिन्यू करूंगा उस टॉपिक पे, थोड़ा और पोलाइट वे में करूंगा। ये ही मनाना है, डायरेक्ट आके कि अरे सॉरी भाई ये सब नहीं होगा, जी हाँ जी ये सब तो नहीं हो पाएगा हमसे। बाकी बाहर वाला, बाहर वाली नोट बाहर वाला। माई फॉल्ट। मैं ये वैसे मैंने फ्लो में पढ़ दिया, मैं पढ़ता नहीं भाई, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हारे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और पढ़ दूंगा तो कोड़े वाला भैया मुझे दो चपका जाएगा, मैं कसम से बहुत डर डर के पढ़ता हूँ तुम लोगों के मैसेज। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके मैसेज लेके, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि

खत लिखने का वक्त है, तो अब आपको अभी तक आपने स्किल लिखी कि एक स्किल जो आप चाहते हैं आपके बच्चों में या आने वाले जनरेशन में हो, अब एक स्किल के बारे में जो आपने लिखा उसके अलावा लिखना है, आपको एक खत लिखना है एक स्किल के बारे में जो आप में है और आप चाहते हैं दुनिया के लोगों में हो, जिससे बड़ा फायदा होता है। अब ये कुछ भी हो सकता है। एक भाई ने स्किल लिखा है कि उधारी लेने वाला स्किल होना चाहिए, उधार लेके वापस ना करने वाले ये स्किल, और वापस ना करते हुए रोते रहना कि अरे भाई मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरे पास पैसे नहीं, ये स्किल। भाई ये स्किल तो मैं भी चाहता हूं। ठीक है, मैं मानता हूं ये भी मक्कारी वाली है स्किल, लेकिन होनी तो चाहिए। फिलहाल साची टंडन की आवाज में गाना, नाम नहीं लिखा उस भाई ने, लेकिन एक स्किल ये भी है कि उधारी ले लो और वापस ना करो, और बताते रहो कि कितने गरीब हो, कितने परेशान हो, लेकिन घूमने में तुम्हारे मजे करने में कोई कमी नहीं है। क्या बात है। एक छोटा सा ब्रेक FM 107 पे, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: हाँ जी एफएम 107 दिल से देसी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 6:42 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और बात कर रहे थे अपन के एक स्किल जो आपके अंदर है और जिसका फ़ायदा लोगों को हो सकता है वो आपको बताना है। बड़े ही मुख्तसर से लफ्ज़ों में लोगों ने अपनी जो बात कही है मज़ा ही आ गया भाई। एक तो मैसेज जो है वो मुझे बड़ा बेहतरीन लगा और ये अक्सर ये मैसेज करते भी हैं, मोहसिन का नाम है और मोहसिन ने कहा है भाई हिस्की ये जिसकी दिख रहे होंगे भाई जिसकी महफिल में इज्जत ना हो उसकी महफिल से गायब होने की स्किल ये सब में होनी चाहिए। अरे यार आप देख रहे हैं कितने जज्बात, थर्सडे के दिन ऐसे जज्बात अच्छे नहीं लगते लेकिन है तो गहरी बात यार। जहां पर आप जा रहे हैं लोगों के बीच बैठ रहे हैं आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है चार लोगों के बीच, आपने अगर कोशिश भी की और वो अहमियत नहीं है आपकी बातों की तो मेरे ठेंगे से नहीं बात करो, ऐसे लोगों से फिर दूर रहो। लेकिन हाय हाय इस जो मैंने भी बात कही इस बात को अगर सही से पिरोया जाए तो क्या पिरोया है मोहसिन साहब कि भाई जिसकी महफिल में इज्जत ना हो उसकी महफिल से गायब होने की स्किल सब में होनी चाहिए। जीत लिया भाई तुमने, एक ही तो दिल है कितनी बार जीतोगे। आगे वसीम भाई का मैसेज है, सलाम लिखा वालेकुम अस्सलाम। फजील भाई एक स्किल ऑब्जर्व करने की होनी चाहिए, कान खुले और आंखें हर जगह वाली स्किल। आए हाय ये स्किल हम आरजेज में होती है, लोगों में होती है और ये मुझे लगता है हमारे उन अब्बाओं में भी थी जो वो वाले अब्बा होते थे ना, एक तो अलग अलग अब्बा रहे हैं जमाने में लेकिन ये 80s के जो अब्बा रहते थे इनको सब पता होता था, जो घर के बाहर भी निकलते थे काम भी करते थे। आजकल के अब्बा जो मोबाइल में लगे रहते हैं ठेंगा कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं भाई, ये इनको कोई भी बना के बेवकूफ़ चला जा रहा है, इनसे कोई उधारी ली भी लेकर चला जा रहा है लेकिन 80 के अब्बा से किसी ने कोई उधारी नहीं ली है। लेट मी करेक्ट, मुझे पता है आपके अब्बा से उधारी ली है लेकिन आपके चाचा के अलावा किसी ने ली होगी। अब देखो बड़े अब्बा ने ली होगी या चाचा ने ली होगी या बहन बहन बहन की उधारी उधारी नहीं होती, वो कुछ और होता है जिनको पता है उनको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और ये मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, नाम है गजीशान। जीशान साहब क्या कह रहे हैं, मेरे अंदर एक स्किल है जो सबके काम की है, वो है किसी भी टेंशन में हो जो होगा कल देखेंगे और सो जा। अच्छा ये भी एक ताबड़तोड़ स्किल है लोगों के अंदर और ये मुझे लगता है सबके अंदर है। काफ़ी लोग थोड़ा सा टेंशन वाले में हो जाते हैं ना कि कोई अगर उनकी ज़िंदगी में परेशानी आ गई प्रॉब्लम्स आ गई तो वो रात रात भर सो नहीं पाते भाई। मैंने कई लोगों को देखा, मेरे दोस्त कॉल कर देते अरे पजील भाई ऐसा चल रहा है और सारे लोगों की परेशानी सिर्फ पैसे को लेकर ही है और भाई आप जब गल्फ में काम करने लग जाए ना भाई, आप जब पैसे कमाने लग जाए तो पता नहीं कि आपके मुल्क वाले जितने भी लोग होते हैं वो आपको ही कॉल करते हैं, सारे दुख आपसे ही बताते हैं और फिर चूना लगा जाते हैं यार बाकी अब अपने पास वक्त नहीं है, इंशाल्लाह इसी के साथ मैं इजाजत देता हूँ। मुलाकात होगी संडे को शाम 6 FM 107 पे। फिलहाल अजान का वक्त है और अजान के बाद न्यूज बुलेटिन FM 107 पे सुनते रहे FM 107। इंशाल्लाह संडे शाम 6 यहीं से मुलाकात होगी। दिल से देसी
3: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो गया है। अल्लाह

अदा किया। और ये उस लीडर की कहानी है जिन्होंने प्रेशर के सबसे बड़े लम्हों में भी अपना दिमाग को ठंडा रखा, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो दोस्तों आज के गेम चेंजर में बात होगी महेंद्र सिंह धोनी यानी माही वे MS धोनी। गेम चेंजर सीजन 2। चलिए शुरुआत करते हैं रांची से। रांची शहर झारखंड का एक वेल नोन सिटी, लेकिन दिल्ली और मुंबई के मुकाबले में रांची इज नॉट अ हाई प्रोफाइल सिटी। और महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में ही होता है, और उस वक्त रांची इंडिया के क्रिकेट के सबसे बड़े सेंटर्स में शुमार नहीं होता था, बल्कि आज भी रांची इतना पॉपुलर नहीं है इन द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। लेकिन धोनी का टैलेंट आम नहीं था। बचपन में उनका रुझान क्रिकेट के साथ फुटबॉल और दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ भी था। स्कूल में धोनी फुटबॉल के गोलकीपर थे और यहीं से उनकी विकेट कीपिंग जर्नी का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू हुआ। फ्रॉम फुटबॉल गोलकीपर टू क्रिकेट विकेट कीपर। एक क्रिकेट कोच ने उनकी गोलकीपर वाली स्किल्स देखी और उन्हें विकेट कीपिंग ट्राई करने का मशवरा दिया। धोनी ने ग्लव्स पहने और फिर जो हुआ वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। उनकी रिफ्लेक्सेस नेचुरली बहुत तेज थे, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जबरदस्त था, और विकेट के पीछे उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन धोनी की बल्लेबाजी भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना नाम बनाना शुरू किया। बिहार और बाद में झारखंड के लिए खेलते हुए धोनी ने सेलेक्टर्स की नजरों में जगह बनाई। उनका बैटिंग स्टाइल ट्रेडिशनल टेक्स्टबुक क्रिकेट से थोड़ा मुख्तलिफ था। वो गेंद को एग्रेसिवली हिट करते थे, उनका बैकलिफ्ट बड़ा था और उनके शॉट्स में पावर नजर आती थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अहम बात यह है कि धोनी दबाव से नहीं डरते थे। दैट वॉज द हॉलमार्क ऑफ MS धोनी। 2004 में धोनी को इंडिया के ODI स्क्वाड में जगह मिली। बांग्लादेश के खिलाफ उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, लेकिन डेब्यू बिल्कुल ड्रीम स्टार्ट नहीं था, जैसे कि बाकी खिलाड़ियों के साथ हो चुका है। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी अपनी पहली ODI इनिंग्स में रन आउट हो गए। लेकिन क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी की कहानी एक मैच से डिसाइड नहीं होती है दोस्तों, धोनी भी उन्हीं में से थे। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी एक इनिंग्स ने दुनिया को बता दिया कि इंडिया को एक स्पेशल बल्लेबाज मिल गया है। There entered MS धोनी। विशाखापट्टनम में धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 123 गेंदों पर 148 रन स्कोर किए। इमेजिन द फास्टेस्ट रन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैटिंग एवरेज है, स्कोरिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज लीजिए, 123 गेंदों पर 148 रन। ये इनिंग सिर्फ रन्स नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी, एक बोल्ड स्टेटमेंट बाय अ बैट्समैन हु केम फ्रॉम रांची। एक ऐसा विकेटकीपर बल्लेबाज जो बॉलिंग अटैक्स को इंटिमिडेट कर सकता था, डरा सकता था। और फिर श्रीलंका के खिलाफ उनकी वो पारी आई जो ODI क्रिकेट के फैंस कभी नहीं भूलेंगे। धोनी ने 183 नॉट आउट स्कोर किए। विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ये इनिंग्स उस वक्त एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। उन्होंने श्रीलंकन बॉलिंग अटैक को एग्रेसिवली अटैक किया और इंडिया को चेज में विक्ट्री दिलाई। यहां से धोनी की रेपुटेशन सिर्फ एक विकेटकीपर के तौर पर नहीं रही, अब वो इंडिया के खतरनाक बैट्समैन में शुमार होने लगे थे। 2005 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू किया। टेस्ट क्रिकेट ODI क्रिकेट से बिल्कुल मुख्तलिफ चैलेंज है दोस्तों। यहाँ सिर्फ अटैकिंग शॉट्स काफी नहीं होते, पेशेंस चाहिए, टेक्निक चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और धोनी ने धीरे धीरे टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह पक्की कर ली। उन्होंने इंडिया के लिए 90 टेस्ट मैचेस खेले और उनके नाम 4876 रन हैं। उनका हाई स्कोर 224 रन है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में बनाया था। टेस्ट करियर में धोनी ने 6 सेंचुरीज और 33 50 स्कोर की। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ बैटिंग तक लिमिटेड नहीं थी, विकेट के पीछे वो बॉलर्स के साथ कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते थे, फील्ड प्लेसमेंट में इनपुट देते थे और नौजवान गेंदबाजों को कॉन्फिडेंस देते थे। 2008 के बाद जब धोनी इंडिया के ऑल फॉर्मेट कप्तान बने तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी इंडिया को एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश की। इंडिया उनकी कप्तानी में टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 तक पहुंचा।
और ये धोनी के करियर का एक ऐसा चैप्टर है जो कभी कभी उनकी वर्ल्ड कप सक्सेस के साए में रह जाता है। अब आते हैं धोनी के करियर के सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स में से एक पर। साल था 2007। इंडिया को पहले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका जाना था। इंडियन टीम की कप्तानी धोनी को दी गई। यह फैसला बहुत इंटरेस्टिंग था। धोनी उस वक्त इंडिया के सबसे सीनियर प्लेयर नहीं थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने उनकी लीडरशिप क्वालिटीज पर भरोसा किया। टीम काफी यंग थी, टी20 क्रिकेट नया फॉर्मेट था और किसी को भी पता नहीं था कि यह टूर्नामेंट किस डायरेक्शन में जाएगा। इंडिया ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ एक ड्रामेटिक ग्रुप मैच खेला। मैच टाई हुआ और बॉल आउट में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन असली टेस्ट फाइनल में था, जोहान्सबर्ग का स्टेडियम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल। पाकिस्तान को 158 रन का टारगेट मिला। मैच धीरे धीरे पाकिस्तान के हक में जा रहा था, लेकिन धोनी बिल्कुल बेसब्र नहीं थे, बहुत काम कंपोज रहे। उन्होंने अपने बॉलर्स पर भरोसा किया। आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को दिया गया। ये डिसीजन उस वक्त बहुत लोगों को सरप्राइज किया था, लेकिन धोनी अपने डिसीजन पर कायम रहे और जोगिंदर शर्मा ने मिसबाहुल हक की विकेट हासिल कर ली। और इसी के साथ इंडिया इनॉगरल टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बने और धोनी सिर्फ 26 साल की उम्र में वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बन गए। यहीं से एक नया नाम क्रिकेट दुनिया में मशहूर हुआ, कैप्टन कूल, यानी ठंडा ठंडा कूल एमएस धोनी। धोनी की कप्तानी का सबसे खास पहलू उनका टेम्परमेंट था। वो अक्सर प्रेशर में भी बिल्कुल कंपोज नजर आते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल होती थी, वो अननेसेसरी एग्रेशन नहीं दिखाते थे और जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती थी तो वो अक्सर डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी दिखाते थे। लेकिन कैप्टन कूल का मतलब ये नहीं था कि धोनी को प्रेशर महसूस नहीं होता है। प्रेशर हर इंटरनेशनल कप्तान को होता है। डिफरेंस ये था कि धोनी प्रेशर के वक्त अपनी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते थे और क्रिकेट में कप्तान के सबसे इंपॉर्टेंट काम अक्सर यही होता है। 2008 के बाद धोनी इंडिया के ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन गए। ओडीआई क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, टी20 क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट्स में लीडरशिप का प्रेशर उनके कंधों पर डाल दिया गया। इंडिया के पास टैलेंटेड प्लेयर्स की कमी नहीं। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, विराट कोहली, हरभजन सिंह, जाहिर खान और बहुत से दूसरे प्लेयर्स। धोनी का काम सिर्फ टीम सेलेक्ट करना नहीं था, उन्हें ड्रेसिंग रूम को मैनेज भी करना था। इमेजिन करिए, आपके जो मेरे सीनियर प्लेयर्स हैं राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये जितने भी सीनियर प्लेयर्स को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन धोनी ने किया। सीनियर प्लेयर्स और यंग प्लेयर्स के दरमियान बैलेंस बनाना भी था, उसमें भी धोनी सक्सेसफुल। और सबसे बढ़कर रिजल्ट्स डिलीवर करने थे और वहां पर भी धोनी कामयाब। और 2011 जब आता है तो वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए सब लोग तैयारी कर रहे थे, ऑल क्रिकेटिंग टीम्स। 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया के लिए एक बहुत स्पेशल टूर्नामेंट था। वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका और बांग्लादेश में होस्ट हो रहा था। इंडियन टीम को टूर्नामेंट में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में शुमार किया जा रहा था। टीम में एक्सपीरियंस भी था और यूथ भी। धोनी कप्तान थे, सचिन तेंदुलकर अपने छठे वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, वीरेंद्र सहवाग एक्सप्लोसिव ओपनर थे, युवराज सिंह ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे थे, जाहिर खान बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे थे और यंग विराट कोहली भी टीम का हिस्सा थे। इंडिया ने ग्रुप स्टेज में इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज हासिल की। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने मोहाली में विक्ट्री हासिल की और फिर आ गया वर्ल्ड कप फाइनल 2 अप्रैल 2011 मुंबई शहर वानखेड़े स्टेडियम, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 274 रन बनाए और इंडिया को टारगेट मिला 275 का, लेकिन चेज की शुरुआत आइडियल नहीं हुई। वीरेंद्र सहवाग जल्द ही आउट हो गए, सचिन तेंदुलकर भी पैवेलियन वापस चले गए, प्रेशर बढ़ता गया। गौतम गंभीर क्रीज पर थे, विराट कोहली आए, फिर कोहली आउट हो गए। अब इंडिया को स्टेबिलिटी चाहिए थी और धोनी ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। वो खुद को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर ले आए, यानी प्रमोट किया, सेल्फ प्रमोशन। कैप्टन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ली। गौतम गंभीर के साथ धोनी ने पार्टनरशिप बनाई और धोनी ने प्रेशर को बहुत ही बखूबी के साथ एब्जॉर्ब किया। सिंगल्स लिए, डबल्स लिए और जब अपॉर्चुनिटी मिली बाउंड्रीज भी लगाई।
मैच के आखिरी मोमेंट्स में इंडिया विक्ट्री के करीब था और फिर वो मोमेंट आया। श्रीलंकन बॉलर नुआन कुलासेखारा, धोनी क्रीज पर, गेंद आई, धोनी ने अपना मशहूर हेलीकॉप्टर शॉट खेला, बॉल हवा में गई और बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियंस बना आफ्टर 1983। धोनी ने क्या किया, धोनी ने 91 नॉट आउट इनिंग्स खेली और ये मैच विनिंग इनिंग्स थी और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया। लेकिन उस रात सबसे यादगार चीज सिर्फ उनके 91 रन्स नहीं थे, वो इमेज थी। धोनी के हाथ में वर्ल्ड कप ट्रॉफी, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जश्न, इंडियन खिलाड़ियों की आंखों में आंसू और 28 साल बाद इंडिया दोबारा ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियंस। गेम चेंजर में बात हो रही है एमएस धोनी के बारे में, कैप्टन कूल। और 2011 वर्ल्ड कप धोनी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था फॉर हिज करियर। He showed to the cricketing world what a brilliant player he was. Not just a player, but the man management करने में माहिर। अच्छा, अब धोनी ने जिस शॉट से इंडिया को you know, the winning stroke जिसको हम कहेंगे इस मैच में किया था in the final of the 2011 World Cup final में, वो हेलीकॉप्टर शॉट। अब क्रिकेट में कुछ शॉट्स अपने खिलाड़ी के नाम से मशहूर हो जाते हैं। धोनी का नाम आता है तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर शॉट याद आता है। ये कन्वेंशनल क्रिकेट बुक का शॉट नहीं था, डेफिनेटली नॉट। धोनी ने अपनी रिस्ट और बॉटम हैंड पावर का इस्तेमाल करके इस शॉट को अपनी सिग्नेचर आइडेंटिटी बना दिया था। यॉर्कर लेंथ गेंद को भी वो बाउंड्री के पार भेजने की एबिलिटी रखते थे। लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट सिर्फ एक स्टाइलिश शॉट नहीं था, ये धोनी के बैटिंग फिलोसॉफी का हिस्सा था। दोस्तों, रिस्क लेना, बॉलर को प्रेशर में लाना और मैच की सिचुएशन के मुताबिक शॉट को सेलेक्ट करना, इस शॉट ने दुनिया भर के यंग क्रिकेटर्स को इंस्पायर किया। और आज भी क्रिकेट ग्राउंड्स में जब कोई भी नौजवान खिलाड़ी हेलीकॉप्टर शॉट खेलता है तो लोग फौरन कहते हैं धोनी, धोनी स्टाइल। इसके बाद 2013 चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी की कप्तानी का अगला बड़ा चैप्टर था। इंग्लैंड में टूर्नामेंट हुआ, कंडीशंस बहुत ज्यादा ईजी नहीं था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग थी और इंडिया ने टूर्नामेंट में अनबीटन कैंपेन कंप्लीट किया। फाइनल में इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड से होता है। बारिश की वजह से मैच को 20 ओवर पर साइड तक रिड्यूस कर दिया गया। इंडिया ने लिमिटेड टोटल बनाया, इंग्लैंड चेज के करीब पहुंच गया, लेकिन धोनी ने प्रेशर में अपने बॉलर्स का स्मार्टली इस्तेमाल किया। इंडिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दी और चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली और इस फतेह के साथ धोनी एक हिस्टोरिक अचीवमेंट तक पहुंच गए। वो पहले और अब तक वाहिद कैप्टन बने जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों मेजर ICC व्हाइट बॉल ट्रॉफीज जीती हैं। यह रिकॉर्ड धोनी की कप्तानी लेगेसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और अब बात करते हैं विकेट कीपर धोनी कैसे, व्हाट मेड धोनी सच अ ब्रिलियंट विकेट कीपर। दोस्तों, अगर धोनी को सिर्फ बल्लेबाज या कप्तान समझा जाए तो उनकी कहानी अधूरी रह जाती है। धोनी की विकेट कीपिंग भी उनकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा थी। उनकी सबसे खास क्वालिटी थी स्पीड, उनकी स्टंपिंग्स बहुत तेज होती थी। वो विकेट के पीछे बॉल को कलेक्ट करके ऑलमोस्ट एक ही मूवमेंट में बेल्स गिरा देते थे। बैट्समैन को समझ भी नहीं आता था कि वो क्रीज से बाहर कैसे निकला। धोनी का ग्लव वर्क यूनिक था, वो कन्वेंशनल विकेट कीपिंग टेक्निक से कुछ चीजों में मुख्तलिफ थे, लेकिन उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्सेस उन्हें स्पेशल बनाता था। ओडीआई क्रिकेट में अगर नजर डालूं तो पता चलता है कि उनके नाम 123 स्टंपिंग्स हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट कीपर के तौर पर उनकी टोटल डिसमिसल्स की तादाद भी बहुत इंप्रेसिव रही। लेकिन नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनका इन्फ्लुएंस। उन्होंने इंडिया के विकेट कीपिंग स्टैंडर्ड्स को एक नए लेवल तक पहुंचाया। और अगर क्रिकेट में फिनिशर की डेफिनेशन लिखी जाए तो धोनी साहब का नाम जरूर आएगा, परफेक्ट फिनिशर, जो कि सचिन भी नहीं था। और मॉडर्न क्रिकेट में विराट कोहली को कहा जाता है कि धोनी के मोल्ड में बैटिंग करता है ये बंदा, फिनिश कर देगा, यानी मैच को वहां तक ले जाएगा, आखिरी ओवर तक खेल लेगा और इंडिया को जिता भी देगा। धोनी ऐसा ही था। धोनी को चेज के आखिरी ओवर्स में बैटिंग करना पसंद था, इसीलिए और वो अक्सर इनिंग्स के शुरू में अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते थे। बहुत ही वाज अ वेरी कैलकुलेटिव बैट्समैन। वो सिचुएशन को रीड करते, रिक्वायर्ड रन रेट को देखते, फील्ड को ऑब्जर्व करते और फिर इनिंग्स के आखिरी फेज में एक्सेलरेशन लाते, यानी तेजी से रन बनाना चालू कर देते।
उनकी बैटिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, कैलकुलेशन। कैलकुलेटर का तरह काम करता था उनका दिमाग।

कितनी गेंद बाकी है, कौन सा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, फील्ड कहाँ सेट है और किस ओवर में अटैक करना है। धोनी इन तमाम चीजों को कैलकुलेट करते नजर आते थे और इसीलिए उन्हें दुनिया के ग्रेटेस्ट फिनिशर्स में शुमार किया जाता है। जहां धोनी आखिरी ओवर में है, इंडिया को जीत हासिल है। दैट वॉज द क्वाइट यू नो स्पेकुलेशन उस जमाने में था कि धोनी आखिरी गेंद पर बैट कर रहे हो और इंडिया फैंस उम्मीद में है कि ये मैच तो हमारा ही है, और होता भी था। ओडीआई करियर अगर देखे तो एक्सट्रॉर्डिनरी नंबर से भरा हुआ है। 350 ODIs खेले, टेस्ट क्रिकेट के मुकाबले में ODIs उन्होंने ज्यादा खेले और उन्होंने 10,773 रन स्कोर किए और उनका बैटिंग एवरेज 50 से ज्यादा रहा। स्ट्राइक रेट तकरीबन 87.5 रहा और उनके नाम 10 ODI सेंचुरीज और 73 50s हैं। और विकेट कीपर के तौर पर उनकी परफॉर्मेंसेज ने उन्हें इंडिया के ग्रेटेस्ट लिमिटेड ओवर्स प्लेयर्स में शुमार कर दिया। लेकिन धोनी के ODI करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट सिर्फ इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक नहीं दोस्तों, वही है जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, 2011 का वर्ल्ड कप विक्ट्री। T20 में भी खेले उन्होंने। T20 क्रिकेट में धोनी का रोल थोड़ा डिफरेंट रहा। उन्होंने इंडिया के लिए 98 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले और 1,617 रन स्कोर किए। उनका हाईएस्ट T20 स्कोर रहा 56। लेकिन T20 में उनके कंट्रीब्यूशन को सिर्फ रन से मेजर करना मुश्किल है। वो विकेट कीपर थे, कप्तान थे, फिनिशर थे और ड्रेसिंग रूम में सीनियर एक इंडिविजुअल क्रिकेटर थे। 2007 के इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप में उनकी लीडरशिप ने इंडियन क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया और इंडिया की T20 क्रिकेट जर्नी में धोनी का जो अहम किरदार रहा वो हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए 2007 में आज से तकरीबन 20 साल पहले जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, नोबडी न्यू व्हाट इज T20 क्रिकेट। 20 ओवर का गेम होते हैं लेकिन 20 ओवर 50 ओवर से मुख्तलिफ हैं, 50 ओवर का गेम जो है टेस्ट क्रिकेट से मुख्तलिफ है। तो हर फॉर्मेट में यू नीड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी और इस डिफरेंट स्ट्रैटेजी को मुकम्मल करने के लिए एक बंदा था इंडिया के पास, उनका नाम है MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी माही वे। सो माही वे ने अपने ही वे में T20 क्रिकेट खेलना सिखाया इंडियन क्रिकेटर्स को कि ऐसे खेलो, ऐसे जीतो। और आज अगर इंडियन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है तो इसके पीछे MS धोनी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और अगर हम T20 की बात करें तो वाई नॉट टॉक अबाउट चेन्नई सुपर किंग्स इन IPL। इंटरनेशनल क्रिकेट से हटकर धोनी की सबसे बड़ी लेगेसी में से एक है इंडियन प्रीमियर लीग। 2008 में IPL शुरू हुआ, धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनाया गया और फिर शुरू हुई एक ऐसी पार्टनरशिप जो इंडियन डोमेस्टिक T20 क्रिकेट की सबसे आइकॉनिक स्टोरीज में शुमार होती है। धोनी और चेन्नई, येलो जर्सी नंबर 7 और स्टेडियम में धोनी धोनी की आवाज। और धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने मल्टीपल IPL टाइटल जीते। उन्होंने टीम को एक कंसिस्टेंटली कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद की। IPL में धोनी की इंपॉर्टेंस सिर्फ उनकी बल्लेबाजी तक लिमिटेड नहीं थी, उनका ड्रेसिंग रूम इन्फ्लुएंस, जैसे कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में बताया था, यहां पर भी डोमेस्टिक क्रिकेट, यंग खिलाड़ियों के साथ उनका इंटरेक्शन, मैच सिचुएशंस को रीड करना और प्रेशर में डिसीजंस लेना, ये सब CSK कल्चर यानी चेन्नई कल्चर का हिस्सा बन गया। चेन्नई यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लब ऑफ IPL। धोनी IPL के सबसे रिकॉग्निजेबल फेसेस में से एक बन गए। और नंबर 7 जर्सी, धोनी का जर्सी नंबर भी उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। इस नंबर के साथ धोनी का नाम इतना स्ट्रॉन्गली एसोसिएट हो गया कि क्रिकेट फैंस के लिए 7 का मतलब अक्सर धोनी ही होता है। उनके बर्थ डेट भी 7 जुलाई है, इसीलिए नंबर 7 उनके करियर का एक इंटरेस्टिंग सिंबल बन गया दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिकेट से IPL तक नंबर 7 ने धोनी की जर्नी का साथ दिया। अब धोनी की जो लीडरशिप क्वालिटी है उसके बारे में थोड़ा हम अगर बात करें तो ये पता चलता है कि उनके कप्तानी को समझने के लिए सिर्फ ट्रॉफीज देखना काफी नहीं है, यहाँ पर उनका लीडरशिप स्टाइल भी समझना जरूरी है। धोनी अक्सर अपने खिलाड़ियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे जो बहुत कम लीडर्स देते हैं, और अगर किसी यंग बॉलर को प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग देनी हो धोनी उस पर भरोसा करते कि जाओ भाई जाओ तुम गेंद डाल लो। और अगर कोई यंग बल्लेबाज नाकामयाब रहता है तो अक्सर उन्हें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती। उनकी फिलोसॉफी में ट्रस्ट इंपॉर्टेंट था, लेकिन ट्रस्ट के साथ अकाउंटेबिलिटी भी थी। या आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं लेकिन आप चले जा रहे हैं, जीरो पे आउट हो रहे हैं, विकेट्स भी नहीं ले पा रहे हैं, उस

0: के पीछे एक अकाउंटेबिलिटी भी जोड़ देते थे धोनी साहब। धोनी का एक और इम्पोर्टेंट ट्रेट था, वो अपने खिलाड़ियों को पब्लिक प्रेशर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। जब टीम जीतती क्रेडिट खिलाड़ी को, जब टीम हार जाती कप्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार। दैट वॉज एम एस धोनी। ये लीडरशिप स्टाइल ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकता है। एंड दैट अ पर्सन फ्रॉम अ यंग सिटी ऑफ रांची हैज शोन टू द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी, क्रिकेटिंग वर्ल्ड कि मैं छोटा शहर से हूं लेकिन मेरा दिल जो है बहुत बड़ा है। अक्सर हमने देखा नहीं है ऐसे, दिल्ली या बॉम्बे, मुंबई कह लीजिए या चेन्नई, बैंगलोर, इस सब बड़े शहरों से जितने भी क्रिकेटर्स आए और इंडिया के कप्तान बने, आई थिंक देयर आर एक्सेप्शनल, बट मोस्टली इस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज हमें देखने को नहीं मिला है। इंडियन क्रिकेट की नेक्स्ट जनरेशन में सबसे बड़ा नाम अगर आज कोई कहता है तो वो विराट कोहली है। और धोनी के साथ कोहली की जर्नी भी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोहली 2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और धोनी उस वक्त इंडिया के कप्तान थे। दोनों ने मिलकर बहुत से मैचेस खेले। धोनी ने कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट के अर्ली इयर्स में लीडरशिप एनवायरनमेंट दिया। बाद में कोहली इंडिया के टेस्ट और लिमिटेड ओवर्स कप्तान बने और धोनी ने सीनियर खिलाड़ियों के तौर पर टीम में अपना रोल कंटिन्यू रखा। ये ट्रांजिशन इंडियन क्रिकेट में लीडरशिप सक्सेशन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था। 2014 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का डिसीजन लिया। उनका टेस्ट क्रिकेट करियर 90 मैचेस पर खत्म हुआ। उन्होंने 4,876 रन बनाए और इंडिया को टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर वन तक पहुंचाने में कप्तान के तौर पर इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। लेकिन धोनी का इंटरनेशनल करियर अभी खत्म नहीं हुआ था। उनका फोकस लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट पर रहा और वो 2015 वर्ल्ड कप तक इंडिया की लीडरशिप करते रहे। धोनी का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 2019 वर्ल्ड कप के बाद अपने फाइनल फेज में पहुंचा। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल उनका आखिरी ओडीआई मैच बना। उस मैच में धोनी ने इंडिया को चेज में वापस लाने की कोशिश की लेकिन इंडिया फाइनल तक नहीं पहुंच सका। और उसके बाद धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट 2020 में कर दिया। एक सिंपल अनाउंसमेंट और क्रिकेट दुनिया में एक एरा ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन धोनी की कहानी यहां खत्म नहीं हुई क्योंकि क्रिकेट फैंस के लिए लेजेंड्स रिटायरमेंट के बाद भी लेजेंड्स ही रहते हैं। तो दोस्तों, धोनी के करियर में बहुत से रिकॉर्ड्स हैं, वर्ल्ड कप्स हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है, आईपीएल टाइटल्स हैं, रन्स हैं, स्टंपिंग्स हैं, फिनिशिंग है। लेकिन अगर मुझे धोनी के करियर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी चूज करनी हो तो वो है कंपोजर। तो इसी के साथ आज का गेम चेंजर यहीं पर खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम आप बता सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और कीप फॉलोइंग FM 107। गेम चेंजर के अगले एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। गेम चेंजर सीजन 2।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.
1: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल फंड के बारे में. आज का स्टूडेंट कल का अडल्ट और कल का एक प्रोफेशनल, उसके लिए आज ही से हमारी तैयारी. आज ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हर पेरेंट हर स्टूडेंट और हर फैमिली के मुस्तकबिल से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है. हम सब अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहते हैं. हम चाहते हैं कि उन्हें बेहतरीन स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले. लेकिन आज के दौर में एजुकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन चुकी है और इसीलिए एजुकेशनल फ़ंड की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है. अब एजुकेशनल फ़ंड होते क्या है? एजुकेशनल फ़ंड वो पैसा होता है जो ख़ास तौर पर एजुकेशन के फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए सेव किया जाता है. ये फ़ंड स्कूल फीस, यूनिवर्सिटी ट्यूशंस, बुक्स, ट्रेनिंग्स, कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस और हायर एजुकेशन के खर्चों को कवर करने में मदद करता है. इसीलिए आप फ्यूचर लर्निंग अकाउंट भी कह सकते हैं. जब पेरेंट्स एजुकेशनल फंड क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ पैसे सेव नहीं करते, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं. बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स सिर्फ फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से कुछ अच्छी एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं. एजुकेशनल प्लानिंग ऐसे चेंजेस को चैलेंजेस को कम कर सकती है. ये पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस देती है कि जब ज़रूरत होगी तो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे. एजुकेशनल फंड के लिए हमेशा बड़े अमाउंट की ज़रूरत भी नहीं है. असल अहमियत है कंसिस्टेंसी की. छोटी छोटी रेगुलर सेविंग्स वक्त के साथ एक मीनिंगफुल फंड में तब्दील हो सकती हैं, बिल्कुल एक बीज की तरह जो रोज़ पानी मिलने से धीरे धीरे एक मजबूत दरख्त बन जाता है. फाइनेंशियल प्लानिंग भी उसी उसूल पर काम करती है. आज की इकोनॉमिक नॉलेज और सोशल स्किल्स हम सब के लिए मैंडेटरी हैं. एजुकेशन का स्टाइल बदल चुका है. कंपनीज आज के टाइम में सिर्फ डिग्रीज नहीं देखती बल्कि नए स्किल्स, क्रिएटिविटी, अडैप्टेबिलिटी को भी इम्पोर्टेंस देती हैं. तो एजुकेशनल फंड फ्यूचर जनरेशन को लर्निंग के जरिए अपने पोटेंशियल तक पहुँचने का मौका देता है. ये सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट की प्लानिंग है. दोस्तों एक वक्त था जब लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज इसका ट्रेंड दौर तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, वो लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं. एक वक्त था जब लोग एजुकेशन कम्प्लीट करके पूरी ज़िंदगी एक ही स्किल पर काम कर लेते थे, लेकिन आज सिचुएशन डिफरेंट है. टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नए स्किल सीखना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है. फ्यूचर में सक्सेसफुल वो लोग होंगे जो लर्निंग को कभी नहीं छोड़ेंगे. एजुकेशनल फंड इसी लॉन्ग लाइफ लर्निंग माइंडसेट को सपोर्ट करता है. मैं कहूँगी घर, गाड़ी और दूसरे एसेट्स कीमती हैं, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी एसेट उसकी नॉलेज या उसके बच्चे की एजुकेशन या स्किल्स हो सकती हैं. तो एजुकेशनल फंड सिर्फ फीस जमा करने का भी नाम नहीं है, ये उम्मीद का फंड है, ये अपॉर्चुनिटी का फंड है, ये फ्यूचर ड्रीम्स को हकीकत में बदलने का फंड है. जब हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ एक कोर्स या डिग्री नहीं खरीदते, हम कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी और बेहतर मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करते हैं. पैसे खर्च करने से चीज़ें मिलती हैं, लेकिन तालीम में लगाया गया पैसा जिंदगी भर के मौके पैदा करता है. एजुकेशनल फंड सिर्फ सेविंग नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एक रोशन रास्ता है. वेल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM.

अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दूहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड आपको डायलॉग रेडी होगा आपको वेलकम टू ट्रक अपडेट। यही आगे बोलेगा कबीर, यही बोलेगा भाई, और क्या बोलूं मैं। बट देखो काम की बात बता के जाऊंगा, वेबसाइट जो आपको बताऊंगा ये आपके काम जरूर आएंगी, या फिर काम ना आए तो आपका टाइम पास बहुत बढ़िया कराएंगी। तो दोनों में से एक भी चीज अगर आपके मतलब की है तो बढ़िया है। तीसरा तो मुझे समझ नहीं आता मकसद क्या हो सकता है। यही तो दो मकसद होते हैं। अब जरा आगे बढ़ते और आप जानते हैं तीन वेबसाइट्स आपको बताई जाएंगी, तो आप तैयार हैं लिखने के लिए या कोई आपके साथ है जो याद कर सकता है, तो रेडी इन 3 2 1 लेट्स गो। पहली वेबसाइट का नाम है classcentral.com, classcentral.com। classcentral.com इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे, और ये बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटीज से हैं, हार्वर्ड की तरफ से भी इसमें भाई बहुत सारे कोर्सेज हैं। एंड आपको एक स्किल अगर सीखनी है तो इससे बढ़िया वेबसाइट तो नहीं होगी भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जगहों पे वीडियो सिखाया जाता तो वो वहीं जाओ ये तो कुछ नहीं सिखाएंगे, नहीं, यहाँ पे जो आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगी वो बड़ी कमाल की यार, मतलब वो ऐसा लगता है ना हाँ भाई ये कुछ भारी पढ़ा है मैंने। और स्किल को ब्रशअप करने के लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी है, सो इफ यू वांट टू लर्न सम स्किल ये आपके काम आ सकती है, classcentral.com। ठीक है जी, आगे बढ़ते भाई। देखिए आप गाड़ियों की नॉलेज हर किसी को नहीं होती, लोग ये अज्यूम कर लेते हैं गाड़ी चला रहे हो क्या 6 साल हो गए तुम्हें, ये नहीं पता गाड़ी के अंदर ही होता है। हाँ भाई नहीं पता, नहीं पता होता है किसी को। पर अगर आप गाड़ी के बारे में सीखना चाहते हैं या गाड़ी आप फिक्स करना चाहते हैं, कोई परेशानी हो गई है मैं ठीक करूंगा मुझे सीखना है, तो एक वेबसाइट है carcarekiosk.com, ये भी स्किल हो सकती है भाई गाड़ी सीखने की ठीक करने की। सो कार केयर CARE फिर कायोस्क जो भी कहना चाहे आप KIOSK.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा भाई आपकी कौन सी गाड़ी है, आप बताएंगे हाँ जी ये गाड़ी है, हाँ जी कब का मॉडल है, कौन सा मॉडल है, हाँ जी ये मॉडल है। उसके बाद बाकायदा वीडियो में आपको बताएगा कि अच्छा ये वाला पार्ट टिक करना है, अच्छा ये वाला टिक करना है, अच्छा ये वाला पार्ट दिखना है। आप वीडियो देखते देखते देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या मसला है या मसला जो है वो कैसे सॉल्व हो सकता है, ये सब कुछ आपको वेबसाइट बताएगी। कितना ईजी कर दिया है भाई मामला। तो आपके अंदर क्या करें, एक मैकेनिक है ना जो बहुत दिलों से तड़प रहा है, छटपटा रहा है कि मैं भी गाड़ी को जरा बोनट खोल के देखूं तो सही क्या है, तो ये आपके लिए सही समय है। बढ़ते हैं जरा आगे। ये जो लास्ट वेबसाइट है ये उनके लिए जो किताबें पढ़ते हैं, मैंने लास्ट में इसलिए बचा के रखी है बिकॉज ये बहुत ही बहुत लोगों के काम आएगी भाई, बहुत लोगों, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं किताबें पढ़ता भी नहीं हूँ यकीन जानिए, मगर इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं ना, ऐसी किताबें हैं लगता है अरे ये तो पढ़ लेते हैं यार। मैंने एक होमो सेपियंस एक स्पीशीज करके एक किताब है वो पढ़ी इसी पे, एंड पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट पढ़ी नहीं है पूरी, पढ़ रहा हूँ। शुरुआत किया था मैंने ऐसी चेक तो करूं, पर वो चेक करने के चक्कर में हाँ पढ़ सकते हैं। तो फ्री फंड में आपको सारी किताबें मिलेंगी, फ्री फंड में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है किताबों की, और प्लीज ये जाके किसी ना किसी को जरूर बताएगा। वेबसाइट का नाम है welib.org भर भर की किताबें भाई फिर प्लीज ये किसी तक तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा दीजिएगा। ऑलराइट अब जरा बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए क्या है कि अभी सैमसंग ने भी अपना रोल आउट किया है न्यू जो UI है उनका 9, आपने रिसेंटली नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। साथ ही गूगल की तरफ से बयान आ चुका है कि उन्होंने कहा हमारी जो क्रोमबुक अपडेट्स है वो अभी तक नहीं है, वो 2034 तक है भाई, आगे की सोची है हमने, 8 साल आगे के बाद अपडेट आएगी तो आएगी, अभी आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई नो कुछ लोग आईफोन पगलू हैं मगर थोड़ा सा मूव करने की जरूरत है, ट्राई एंड कंसिडर समथिंग गूगल, बिकॉज अभी गूगल ने अपने सारे जो मॉडल से मूव कर दिए गूगल बुक OS पे, और क्या क्लीन OS है यार, क्या क्लीन OS है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ना समथिंग न्यू, अगर आप एंड्रॉयड छोड़ के iOS छोड़ के कुछ करना चाहते हैं, एप्पल इज द वे आउट, मैं सच बता रहा हूँ। ट्राई दिस वन। ये थी अपडेट्स, मिलते हैं अगली वाली में।

0: number 1 hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: सामईन इकराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की

आज की स्पोर्ट्स कहानी बांग्लादेश क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी और लीडर की है जो बैट के साथ भी टीम की उम्मीद है और टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर भी बांग्लादेश को एक नए दौर की तरफ ले जा रहे हैं। नाम है नजमुल हुसैन शांतो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। लेफ्ट हैंड बैटर नजमुल हुसैन शांतो बांग्लादेश क्रिकेट के इंपॉर्टेंट मिडिल ऑर्डर खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक बल्लेबाज की नहीं बल्कि एक टेस्ट कप्तान की भी बन चुकी है। उन्होंने 2023 में पहली बार बांग्लादेश की टेस्ट कप्तानी संभाली थी। 2025 में यानी पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद उन्होंने कप्तानी से हटने का फैसला किया था। इट वॉज अ मेजर डिसीजन, लेकिन बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें दोबारा टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान उन्हें बना दिया। उनका करंट मैंडेट अगर देखा जाए तो 2025-2027 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के एंड तक है, विच मींस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन पर थोड़ा ट्रस्ट किया एंड ट्रस्ट करने के साथ साथ उनको ये एहसास भी था कि नजमुल हुसैन जो है ना कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन एक दिमाग रखते हैं, एक सोच रखते हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा लॉन्ग एक्सटेंशन दिया गया है और ये हुआ है अंडर द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तमीम इकबाल, जिनका मानना यह है कि लॉन्ग टर्म सोच इम्पॉर्टेंट है ना कि शॉर्ट टर्म। परफॉर्मेंस खराब हो जाए और उनको निकाल दो, ये सोच तमीम इकबाल का नहीं, और इसी सोच के साथ बांग्लादेश क्रिकेट को कई ऐसे कामयाबी हासिल हुई। मैं बताऊंगा इसी चर्चे पे आपको आगे बता रहा हूं मैं कि कैसे नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश क्रिकेट को वो इंटरनेशनल एक फेम दिलाने में अहम रोल अदा किया है। कप्तानी करियर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर 2026 में सामने आया जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। ढाका में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी और इस मैच में नजमुल हुसैन शांतो ने खुद भी शानदार बल्लेबाजी की और पहली इनिंग्स में 101 रन जबकि दूसरी इनिंग्स में 87 रन बनाए। उनकी इस कारकर्दगी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इस सेंचुरी के साथ नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान के तौर पर अपनी 5वीं सेंचुरी कंप्लीट की और मुशफिकुर रहीम के 4 सेंचुरीज के जो रिकॉर्ड थे उसे पीछे छोड़ दिया और आईसीसी रैंकिंग में भी उनकी पोजीशन करियर बेस्ट 23 तक पहुंची, विच वॉज अ वंडरफुल यू नो अचीवमेंट बाई दिस वंडरफुल क्रिकेटर फ्रॉम बांग्लादेश। कप्तान के तौर पर शांतो की एक और खास बात यह है कि वो सिर्फ बल्लेबाजी पर डिपेंड नहीं करते बल्कि फील्ड पर बॉलिंग चेंजेस और मैच सिचुएशंस को भी क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं, मॉनिटर करते हैं। मई 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ फतेह के बाद वो बांग्लादेश के सबसे तेज 7 टेस्ट विक्ट्रीज हासिल करने वाले कप्तान बन गए, यानी फास्टेस्ट टू विन 7 टेस्ट मैचेस। उन्होंने सिर्फ 17 मैचेस में ये माइलस्टोन अचीव किया, बहुत ही बड़ी बात है। फिर आया ऑस्ट्रेलिया का दौर, बांग्लादेश के लिए एक तारीखी चैलेंज। डार्विन में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा कर ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पहली टेस्ट विक्ट्री हासिल की, यानी ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर, ऑस्ट्रेलिया के ही घर पर ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। क्रिकेट में अगर देखा जाए आज के दौर में ऑस्ट्रेलिया इज डेफिनेटली वन ऑफ द लीडिंग टेस्ट प्लेइंग नेशन, स्ट्रॉन्ग नेशंस माना जाता है। और इस मैच में तंजीद हसन ने सेंचुरी बनाई और मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट हासिल किए। नजमुल हुसैन शांतो की लीडरशिप में बांग्लादेश ने एक ऐसी जीत हासिल की जो टीम के टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। इट वाज अ मेमोरेबल विक्ट्री, बिलीव मी, मेमोरेबल विक्ट्री। दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त कमबैक किया और बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया। इस नतीजे के बाद 2 टेस्ट मैच सीरीज 1-1 से ड्रॉ रहा। मकई टेस्ट मैच में सिर्फ 2 दिन में 18 विकेट गिर गए। मैच के बाद शांतो ने पिच कंडीशंस पर बात करते हुए कहा कि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर जब विकेट्स गिरती हैं तो बहुत डिस्कशन होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी कंडीशंस को इसी तरह एग्जामिन किया जाना चाहिए। दोस्तों
नजमुल हसन शांतो की कहानी एक यंग बल्लेबाज से बांग्लादेश के टेस्ट लीडर तक के सफर की कहानी है। उनके सामने चैलेंज ये है कि बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंसी के साथ आगे ले जाया जाए और साथ ही खुद भी बल्ले के साथ टीम के लिए रन्स भी बनाए। नजमुल हसन शांतो बांग्लादेश का टेस्ट कप्तान, लेफ्ट हैंडेड बैटर और एक ऐसा लीडर जिसके सामने बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट का अगला चैप्टर लिखने का मौका है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है, और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।

शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर अगले 5 मिनट में आपको पता चलने वाले हैं नए जमाने में नए तरीके से होने वाले स्कैम के बारे में। और आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये बड़ा ही यूनिक स्कैम है। ये है पिक एंड ड्रॉप ट्रांजिट स्कैम। कैसे ये काम करता है स्कैम, सबसे पहले इस पर बात करेंगे, क्योंकि आजकल सभी पेरेंट्स का स्केड्यूल जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया है, और बच्चों को सेफली स्कूल भेजना और वापस लाना एक बड़ी फिक्र की बात हो गई है। स्कैमर्स आजकल इसी चीज का फायदा उठाने लगे हैं दोस्तों। वो फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, लोकल फ्लायर्स या फिर इंस्टाग्राम पर एड्स पोस्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। वो दावा करते हैं कि वो बहुत ही कम दाम में, एकदम चीप प्राइसेस में बच्चों के लिए डेली पिक और ड्रॉप का सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं, और उनसे कई लोग जो है, उनके साथ कई लोग जुड़े हैं और पेरेंट्स काफी खुश हैं। और जो पेरेंट्स टाइट बजट पर होते हैं या जल्दी में होते हैं, वो इस सस्ते ऑफर के चक्कर में फंस जाते हैं। अच्छा, माँ और बाप दोनों बहुत ज्यादा बिजी हैं, और कई बार अगर थोड़ा महंगा भी लगता है तो लोगों को लगता है ये फायदे का सौदा है। जब आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो आपसे बच्चों की बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे कि घर का एड्रेस क्या है, बच्चों का स्कूल का स्केड्यूल क्या है, और एडवांस में डिपॉजिट भी मांगते हैं। इसके बाद दो चीजें होती हैं, या तो वो पैसे लेकर गायब हो जाते हैं, सर्विस कभी मिलती ही नहीं है, या फिर सबसे खतरनाक, आपके बच्चे की पर्सनल डिटेल्स और टाइमिंग्स किसी अनजान या कहें किसी क्रिमिनल के पास जो है वो चली जाती है, जो बच्चों की सेफ्टी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन किस तरह से आप इस तरह अगर आपके साथ हो रहा है, या आपके सामने कोई फ्लायर आया है, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है, और आप डायरेक्ट उस शख्स से बात कर रहे हैं जो फ्लायर में नंबर लिखा है, तो कैसे बच सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस सॉल्यूशन पर भी बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, लेकिन हम 3 सॉल्यूशन के बारे में अभी फिलहाल बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है, स्कूल से वेरीफाई करें। सबसे पहला जो नियम, जो रूल है, वो ये है कि किसी भी रैंडम एड पर भरोसा ना करें। हमेशा वही ट्रांसपोर्ट सर्विस चूज करें जो आपके बच्चे के स्कूल से ऑफिशियली रिकमेंडेड या रजिस्टर्ड हो। कई बार सोशल मीडिया पे आपके बच्चे का स्कूल जिस जगह पे है वहां पर, और आपका घर जिस जगह पे है, या फिर आपके घर के आसपास की लोकेशन, वहां पे कोई भी शख्स जो है वो आता और जाता है, और वो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करता है कि मैं फला जगह से फला जगह तक आता जाता हूँ, ए से लेकर बी पॉइंट तक, और किसी को अगर सर्विस चाहिए तो बताएं, और आप भी ए और बी पॉइंट के नजदीक रहते हैं, आप ऐसे में उन पर भरोसा कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे होते हैं। ऐसा कभी भी बिल्कुल ना करें। उसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे, ड्राइवर या एजेंसी से उनका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस CDL या क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन रिपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस के पेपर्स जरूर मांगे। इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, आप उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर वो आनाकानी करें तो समझ जाइए ये कुछ गड़बड़ है, या फिर वो आपको जवाब ही ना दे तो बेहतर है कि ऐसे लोगों से पीछे हट जाए, चीप यानी कि सस्ते ट्रांसपोर्ट के पीछे बिल्कुल ना भागे। उसके अलावा एडवांस देने से भी बचें। जब तक आप फिजिकली ड्राइवर से ना मिल लें और उनकी गाड़ी चेक ना कर लें, तब तक कोई भी बड़ा एडवांस डिपॉजिट या अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल शेयर ना करें। बच्चों की सेफ्टी के मामले में एक्स्ट्रा अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये नए जमाने के नए स्कैम्स कुछ इस तरह से भी होते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हमारे फायदे की बात हो रही, लेकिन कुछ देर में हमें रियलाइज होता है, जब हमारे साथ स्कैम हो जाता है तब जाके हमें एहसास होता है कि ये एक्चुअली स्कैम था। जब आपको रिप्लाई मिलना बंद हो जाता है, जब आपकी जो डिटेल्स हैं वो किसी और के पास चली जाती हैं, आप किसी रजिस्टर्ड से भी ट्रांजिट करने लगते हैं, या अपने बच्चों को उनके बसेस में आने जाने का मौका देते हैं, और फिर जब आप डिटेल्स किसी तीसरे से शेयर कर चुके होते हैं, तब जाके आपको एहसास होता है जब आपके साथ सच में कोई स्कैम बाद में लेटर ऑन होता है। तो ऐसे में इस तरह के स्कैम से बचने की बेहद जरूरत है, और इसीलिए आपके लिए खास शो है जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। उम्मीद है इस शो के जरिए आपको कुछ पता चला होगा, आप अवेयर हुए होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: एब्सोल्यूट सिनेमा.
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.

0: ऑस्कर्स क्रेज चल रहा है और कौन सी मूवी आपको एक्चुअली में देखनी चाहिए, या फिर कोई मूवी ऐसी है जो वन टाइम वॉच है, या फिर ये मूवी तो यार है ही नहीं किसी काम की, मत देखो पैसा बर्बाद चला जाएगा।
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: वेल, आज हम किसी बॉलीवुड मूवी के बारे में बात नहीं करने वाले दोस्तों। ये जो मूवी है आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है हॉलीवुड और डायरेक्टर है इसके जैक क्रेगर, जिनके बारे में कई लोग एक्चुअली में जानते हैं और इस मूवी को जो रेटिंग मिली आप सुन के दंग रह जाएंगे और आपको उम्मीदन ये मूवी बेहद पसंद आने वाली है। तो जब भी हम मूवी की शुरुआत करते हैं तो बात करते हैं मूड हाइप, यानी कि मूवी का मूड क्या है, हाइप कैसी थी, स्टार रेटिंग क्या मिला है, फिर फन फैक्ट्स, डायरेक्टर का विजन, फिल्मिंग की लोकेशन क्या रही है, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन और दिल और दिमाग यानी कि सिनेमाटोग्राफी एंड साउंड क्या था मूवी का, एक स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में भी बात करते हैं और फिर एक्टर की परफॉर्मेंसेस सी रही, क्रिटिक्स का क्या कहना है, देन वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट पर पहुंचे सबसे पहले इस मूवी के मूड और हाइप के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों।
2: Sir, can you hear me?
3: I'm gonna stay with Katie for a bit.
2: Michelle, please do not go.
0: दोस्तों, Resident Evil franchise ने इस बार सच में कमाल कर दिया है और जैक को तो कई लोग जानते होंगे, कुछ लोग अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, डायरेक्टर जैक ने इस फिल्म में एक वाइडली इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है और उनको यू नो इस तरह की फिल्मों के लिए जाना जाता है जो रेसिडेंट एविल में दिखाया गया है। हॉरर के लिए उसको बहुत ज्यादा जाना जाता है, साथ ही सस्पेंस मूवी बहुत अच्छी बनाते हैं। खैर, जो क्लासिक सर्वाइवल हॉरर के रॉ पैनिक को जो उन्होंने परफेक्टली स्क्रीन पर उतारा है ना, वो गजब का है। ऑडियंसेस को इसमें क्लॉस्ट्रोफोबिक ड्रेड और डार्क कॉमेडी का एक इंटेंस ब्लेंड देखने को मिला है इस बार। ये फिल्म पूरी फ्रेंचाइजी को कंप्लीटली रिवाइटलाइज करती है और एक नॉन स्टॉप हार्ट पाउंडिंग सिनेमेटिक थ्रिल राइड डिलीवर करती है जिसे देखकर फैंस जो है वो खुश हो जाएंगे यार। इस मूवी को देखने के बाद जो असल में कई बार होता है ना कि आप कॉमेडी देखने गए हैं तो हॉरर आ गई, हॉरर देखने गए हैं तो पता चला कुछ और ही कॉमेडी चल रही है, खासतौर पे बॉलीवुड मूवी में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मैंने आपको बता दिया, हॉरर और कॉमेडी का एकदम सही इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा स्टार रेटिंग की बात करें तो इस मास्टरपीस को 4.5 out of 5 स्टार्स मिले हैं, यानी कि 5 में से 4.5 और पुरानी मेसी फ्रेंचाइजी लोर को शुन करके, यानी कि उसे पीछे छोड़कर ये रीबूट वीडियो गेम एडेप्टेशन के लिए एक पिनकल अचीवमेंट बनाकर सामने खड़ा करता है। ये फिल्म इतना ज्यादा स्टार लेकर इसलिए जाता है क्योंकि ये जेन्युइनली टेरिफाइंग हॉरर को एक्सेप्शनली क्लेवर पेसिंग और एक एंगेजिंग ह्यूमन सेंटर के साथ परफेक्टली बैलेंस करती है।
4: Hello? There's an emergency here. I was wondering if I could use your phone.
3: Hi, Hippie Michelle. Leave a message.
2: Hey, baby. I'm really sorry that we got disconnected earlier. Some things have happened.
0: तो दोस्तों, अब हम दूसरे सीन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि बिहाइंड द सीन्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि फन फैक्ट, डायरेक्टर का विजन, फिल्मिंग लोकेशन, इस मूवी के बारे में क्या रही। दोस्तों, प्रोडक्शन के मजेदार फैक्ट्स के बारे में बात करें तो मेकर्स ने मॉन्स्टर बनाने के लिए सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स यानी कि VFX पर भरोसा नहीं किया है, उन्होंने बहुत ही बारीकी से बने डरावने और असली लगने वाले प्रैक्टिकल क्रिएचर डिजाइन का इस्तेमाल किया है। ये पूरी फिल्म जो है सिर्फ $75 मिलियन के टाइट बजट में कामयाबी से बनाई गई है। अब देखिए, 4.5 रेटिंग मिली है, $75 मिलियन का इस्तेमाल किया गया, टाइट बजट है अगर हम देखें यू नो हॉलीवुड मूवी के नजरिए से, लेकिन मूवी हिट होगी मतलब पैसे वाइज मनी बना पाएगी, पैसा बना पाएगी, ये एक अलग केस है। अगर हम बात करें पुराने और सच्चे गेमर्स को खुश करने के लिए तो डेवलपर्स ने पूरी मूवी में बहुत सारे छुपे हुए सरप्राइजेस जो है वो डाले हैं। इसमें जानबूझकर एक पूरी तरह काम करने वाला पुराना टाइपराइटर दिखाया गया जो 1996 के ओरिजिनल कैपकॉम गेम के गेम सेविंग तरीके को एक प्यारा सा सलाम भी है इस मूवी में, या कह लेंगे डेडिकेटेड है। खैर, अब बात कर लेते हैं डायरेक्टर की विजन के बारे में। तो डायरेक्टर की सोच लाजवाब थी। डायरेक्टर जैक क्रेगर इस बार एक गहरी और जमीन से जुड़ी हुई A to B सर्वाइवल की कहानी दिखाना चाहते थे। उनका सबसे बड़ा मकसद पुरानी फिल्मों के ओवर द टॉप सुपर हीरो जिसे एक्शन और लुक से बिल्कुल दूर जाना था। इसके बदले उन्होंने छोटे लेवल पर रिसोर्सेज को बचाकर चलने, बहुत ज्यादा अकेलेपन और इंसानी डर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। क्रेगर ने अचानक डराने वाले सीन्स और हल्की मजाकिया बातों को बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल किया इस मूवी में, जिससे वायरस के फैलने का डर हमेशा बहुत करीब और असली लगता था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्मिंग लोकेशन के बारे में। फिल्मिंग लोकेशन के बारे में अगर देखें तो मेकर्स एक बहुत ही डार्क इंडस्ट्रियल ऑप्रेसिव यानी बहुत ही कालिक माहौल को क्रिएट करना चाहते थे। इस वाइब को परफेक्टली कैप्चर करने के लिए प्रोडक्शन टीम ने अपनी शूटिंग खास तौर पर सिजक रिपब्लिक में शूट की। उनका मेन गोल एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करना था जो देखने में बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल लगे, जहां देखने वालों को डर और अकेलेपन का सही एहसास हो सके। और कैमरामैन ने, सिनेमेटोग्राफर के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उसने ये यार कन्वे भी किया। स्टोरी के हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज था आइकॉनिक और तबाह हो चुका रकून सिटी के बाहरी इलाकों को दिखाना। इस फिक्शनल जगह को रियल लाइफ में लाने के लिए फिल्म मेकर्स ने परगुए के हिस्टोरिक और शेडो यानी कि अंधेरे से घिरे हुए लोकेशन का खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। परगुए के जो पुराने और थोड़े डार्क एरियाज हैं ना, उन्होंने रकून सिटी के बचे कुचे तबाह हिस्सों के लिए एक परफेक्ट स्टैंड इन का काम किया है। पुरानी आर्किटेक्चर ने सीन में एक नेचुरल डर और सस को ऐड कर दिया, जो नकली सेट्स पर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके अलावा वहां के मौसम और कुदरत का जिक्र भी किया गया है। ये अब मूवी में देखिएगा, इस पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। शूटिंग के लिए हॉन्टिंग और स्नो बाउंड वाइल्डरनेस यानी बर्फ से ढके सुनसान इलाकों का सहारा लिया गया। ये बर्फीली जगह और साथ में वो टूटी फूटी अर्बन जो इमारतें हैं वो मिलकर एक ऐसा बैकड्रॉप तैयार करती है ना, जो आपके खून में उतर जाता है, आपके दिमाग में उतर जाता है। जब आप स्क्रीन पर ऐसी बिखरी हुई बिल्डिंग, चारों तरफ बर्फ देखते हैं तो डर अपने आप दुगना हो जाता है। और ये काम है सिर्फ और सिर्फ सिनेमाटोग्राफर का। ये पूरा सेटअप गजब का है, लाजवाब है, नाइट ऑफ टेरर के नाम से जाना चाहिए। बाकी फिल्म मेकर्स ने इन लोकेशन को इस तरह से यूटिलाइज किया है ताकि सीन को एक बड़ा फिजिकल स्केल दिया जा सके। इसका मतलब है कि जब व्यूवर स्क्रीन पर देखें तो उनको लगना चाहिए कि वो एक्चुअली में उसी दुनिया में मौजूद हैं, उस सुनसान इलाके में खड़े हुए हैं। इससे क्या है, कैरेक्टर का जो अकेलापन है ना, उसकी बेबसी और ज्यादा हाईलाइट जो है वो होने लगती है। ये आईसी आइसोलेशन जो है वो स्क्रीन पे हो रहे स्ट्रगल को आप तक पहुंचाती है बड़ी ही क्लेवरली और खूबसूरती से। फिलहाल फिल्मिंग लोकेशन के बारे में बात हो गई, अब जरूरी है एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी हम कुछ गुफ्तगु कर लें। बाकी दोस्तों इस फिल्म के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इसमें ऑस्टिन अब्राम्स ने एक फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा और जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इस मूवी में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी पुरानी सॉफ्ट स्पोकन की इमेज को ना छोड़ दिया है, और ब्रायन ने अपने रोल को प्ले करते हुए बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन में फंसा हुआ दिखाया है, और उनके बॉडी लैंग्वेज में बहुत ईजली ये चीज दिख भी जाती है। ऐसा लगता है एफर्टलेस वो काम कर रहे हैं। इस मुश्किल कैरेक्टर को रियलिस्टिक बनाने के लिए उन्होंने कड़ी स्टंट ट्रेनिंग की है, बहुत ही थकाने वाली कॉम्बैट फाइटिंग की है, उसकी शूटिंग की है। फिल्म की कहानी में उनका कैरेक्टर पहले एक डरपोक और एकदम ही डरावना आदमी जो है, अजीब सा डिलीवरी ड्राइवर होता है जिसे सही से गन तक पकड़ना नहीं आता, लेकिन एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये थोड़ा बॉलीवुड वाला है, पर धीरे धीरे वो एक हाइपर फोकस्ड सर्वाइवर बन जाता है। आखिर में वो पूरी तरह से पसीने, मिट्टी, क्रिएचर्स के खून से लथपथ दिखता है, और ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन उनके करियर का एक नया और बड़ा कदम ही है, जो कि बहुत से लोग, ऑडियंसेस तारीफ के पुल बांध बांध के थक गए, और इवन क्रिटिक्स ने भी बहुत ज्यादा तारीफ की है ब्रायन की। और अब दिल और दिमाग के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। रेसिडेंट एविल में सिनेमाटोग्राफर हैं वोल्स्की, और इनका पूरा नाम है डेरियोज वोल्स्की। इन्होंने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन कैमरा एंगल्स का यूज किया है, जो बिल्कुल किसी टैक्टिकल वीडियो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू जैसा लगता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूजिक कंपोजर हेज और रैन ने एक बेहतरीन और डरावना साउंडट्रैक तैयार किया। उन्होंने जॉन कारपेंटर के लिए ऐसा थीम म्यूजिक बनाया जिसमें बीच बीच में अचानक बिल्कुल खामोशी आ जाती है। ये शानदार ऑडियो और वीडियो का कॉम्बिनेशन हर एक छोटी आवाज जैसे कदमों की आहट फिर उसको बहुत बड़ा भी बनती है, और फिर इसी वजह से थिएटर में बैठकर जो फिल्म देखने का फील है, जो सुनने का एहसास है ना, उसको और भी ज्यादा एनहेंस कर देता है। डरावना और क्लॉस्ट्रोफोबिक जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा डबल ट्रिपल निकल के आता है। दोस्तों अब वक्त है मूवी के स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में बात करने का कि इस मूवी का प्लॉट एक्चुअली में है क्या। दोस्तों इस मूवी में अगर हम प्लॉट के बारे में बात करें तो कहानी ब्रायन नाम के एक आम मेडिकल कोरियर की है, ठीक है, वो डिलीवरी गाय है, जो एक स्ट्रेसफुल पर्सनल कॉन्वर्जेशन से बचने के लिए रकून सिटी जनरल हॉस्पिटल की एक डबल पे डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेता है। एक रात जब अचानक तेज बर्फ का तूफान आता है तो उसकी गाड़ी से गलती से एक इन्फेक्टेड पैदल चलने वाला जो पेडेस्ट्रियन है, जो रास्ते में चलने वाला शख्स है, उसके साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वो एक तेजी से बढ़ते हुए वायरल क्वारंटीन जोन में फंस जाता है। वहां रहते हुए उसे बचना भी है और फिर बचने के लिए उसे पजल फिल्ड रास्ते पार करने पड़ते हैं और अजीबोगरीब म्यूटेटेड बायोलॉजिकल क्रिएचर्स के झुंड से लड़कर जिंदा रहना होता है। ये सीन है। अब बातें हैं परफॉर्मेंस बारे में कि मूवी में ऑस्टिन अब्राहम्स की परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों ऑस्टिन ने इस फिल्म को अपने दम पर संभाला है। उन्होंने सच में डर लगने वाले, जो डर को कन्वे करने वाली बात है, वो बहुत ही क्लियरली किया और बैलेंस करते हुए किया है। उनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में जैक चेरी हैं और पॉल वॉल्टर जैसे बेहतरीन एक्टर्स भी हैं, जो अपनी मजेदार बातों से स्क्रीन पर एक अलग ही मजा क्रिएट करते हैं। तो ये पूरी मूवी सिर्फ डर पर बेस्ड नहीं है, डर के दरमियान थोड़ा थोड़ा हंसी लेकर आती है। तो वो जब डर आता है ना, तब एक्चुअली में फिल्म का जो कोर है वो काम कर रहा होता है, जब आपको डराना होता है। तो ये बहुत ही स्मार्टली किया है जैक ने, और मुझे तो इसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं लगी, और यही वजह है कि इसको, इस मूवी को, रेसिडेंट इविल को 5 में से 4.5 रेटिंग मिली है।

0: भी कह रहे हैं। कुछ रिव्यूअर्स का कहना है कि मूवी की कहानी थोड़ी सीधी और सिंपल है, पर इसकी तेजी बढ़ती हुई जो पेसिंग है ना, वो असली लगने वाली है दोस्तों। खून खराबा, जबरदस्त टेंशन ऑडियंस को बांधे रखती है, ये सब मिलाकर एक बहुत ही मजेदार और सेटिस्फाइंग सिनेमेटिक एक्सपीरियंस है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि इसमें कहीं कहीं कॉमेडी ज्यादा ही हो गई है। कहीं कहीं उनको लगा है कि कुछ सीन्स ऐसे हैं जैसे सेकंड हाफ में थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा खींच दिया है ताकि फिल्म को एक सही टाइमिंग दे जा सके। अगर फिल्म को थोड़ा और छोटा बना देते तो ये मूवी अच्छी होती। क्रिटिक्स, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर फिल्म को छोटा ही कर देते हम, रील ही ना देख लेते, अरे ठीक है, कभी कभार मूवी थोड़ी लंबी हो चलेगा, बस ऑडियंस को दिख रहना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, तो क्या आपको ये मूवी दोस्तों देखने चाहिए या नहीं? यार 4.5 रेटिंग मिली है यार, मूवी बहुत ही अच्छी है। फाइनल वर्डिक्ट तो यार डेफिनेटली आपको ये मूवी मस्ट वॉच, यानी कि देखनी ही चाहिए। मतलब अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपने एक बहुत बड़ा सिनेमा साउंड डायरेक्टर की क्वालिटी को इग्नोर कर दिया, और ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके एक दो रीजन है जिसके लिए भी आपको मूवी देखनी चाहिए। पहला रीजन है हॉरर, जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं हॉरर मूवीज उनको ये देखनी चाहिए, और गेमर्स रेसिडेंट इविल ठीक है। तो इस मूवी का जो कोर है वो बहुत ही क्लियरली इसमें डिफाइन किया गया, हंसी मजाक के साथ हॉरर है, और गेमर्स को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि गेमर गेमिंग का इस्तेमाल किया गया ना, एडेप्टेशन है गेमिंग का। रेजिडेंट एविल एक जमाने में क्या, आज भी बहुत चलता है, लेकिन एक जमाने में क्रेज जो था इसका अलग ही लेवल का था। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। ये शो था रिव्यू ऑफ द वीक, जहां पर आपने रेजिडेंट एविल के बारे में रिव्यू सुना। उम्मीद है कि आपको ये मूवी देखने के बाद पसंद आएगी, और इसी के साथ अगले हफ्ते आप फिर से ज्वाइन करिएगा, एक नई मूवी के बारे में हम बात करेंगे और बात करते हुए आपको बताएंगे मूवी का रिव्यू। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: Absolute Cinema, Qatar's most heard radio station, FM 107, दिल से देसी।

0: वो अपनी जिंदगी में मुसलसल सीखता रहेगा, सच्चाई की तलाश जारी रखेगा, तो यकीनन यही कुरान के पहले हुक्म इकरा का हकीकी तकाजा है। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए, कुरान को समझने की तौफीक दे, हमारे दिलों में अहले इल्म की मोहब्बत पैदा फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। इसी के साथ मेज़बान तलहा शफ़ुज़्ज़मान और तकनीकी मुआविन शकीब अहमद को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मअस्सलामा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दूहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड ऑफ कोर्स डायलॉग रेडी होगा आपको। वेलकम टू टेक अपडेट। यही आगे बोलेगा कबीर, यही बोलेगा भाई, और क्या बोलूं मैं। बट देखो, काम की बात बता के जाऊंगा, वेबसाइट जो आपको बताऊंगा ये आपके काम जरूर आएंगी, या फिर काम ना आए तो आपका टाइम पास बहुत बढ़िया कराएंगी। तो दोनों में से एक भी चीज अगर आपके मतलब की है तो बढ़िया है। तीसरा तो मुझे समझ नहीं आता मकसद क्या हो सकता है। यही तो दो मकसद होते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, और आप जानते हैं तीन वेबसाइट्स आपको बताई जाएंगी, तो आप तैयार हैं लिखने के लिए, या कोई आपके साथ है जो याद कर सकता है, तो रेडी इन 3 2 1 लेट्स गो। पहली वेबसाइट का नाम है classcentral.com, classcentral. classcentral.com। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे, और ये बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटीज से हैं, हार्वर्ड की तरफ से भी इसमें भाई बहुत सारे कोर्सेज हैं। एंड आपको एक स्किल अगर सीखनी है तो इससे बढ़िया वेबसाइट तो नहीं होगी भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जगहों पे वीडियो सिखाया जाता है तो वो वहीं जाओ, ये तो कुछ नहीं सिखाएंगे, नहीं। यहाँ पे जो आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगी वो बड़ी कमाल की यार, मतलब वो ऐसा लगता है ना, हाँ भाई ये कुछ भारी पढ़ा है मैंने। और स्किल को ब्रशअप करने के लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी, सो इफ यू वांट टू लर्न सम स्किल ये आपके काम आ सकती है, classcentral.com। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, आप गाड़ियों की नॉलेज हर किसी को नहीं होती, लोग ये अज्यूम कर लेते हैं गाड़ी चला रहे हो क्या, 6 साल हो गए तुम्हें, ये नहीं पता गाड़ी के अंदर ही होता है। हाँ भाई, नहीं बता होता है किसी को। पर अगर आप गाड़ी के बारे में सीखना चाहते हैं या गाड़ी आप फिक्स करना चाहते हैं, कोई परेशानी हो गई, मैं ठीक करूंगा, मुझे सीखना है, तो एक वेबसाइट है carcarekiosk.com। ये भी स्किल हो सकती है भाई गाड़ी सीखने की, ठीक करने की। सो कार केयर, CARE, फिर कायोस्क, जो भी कहना चाहें, KIOSK.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, भाई आपकी कौन सी गाड़ी है, आप बताएंगे हाँ जी ये गाड़ी है, हाँ जी कब का मॉडल है, कौन सा मॉडल है, हाँ जी ये मॉडल है। उसके बाद बाकायदा वीडियो में आपको बताएगा कि अच्छा ये वाला पार्ट टिक करना है, अच्छा ये वाला टिक करना है, अच्छा ये वाला पार्ट दिखना है। आप वीडियो देखते देखते देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या मसला है, या मसला जो है वो कैसे सॉल्व हो सकता है, ये सब कुछ आपको वेबसाइट बताएगी। कितना ईजी कर दिया है भाई मामला। तो आपके अंदर क्या, अगर एक मैकेनिक है ना जो बहुत दिलों से तड़प रहा है, छटपटा रहा है कि मैं भी गाड़ी को जरा बोनट खोल के देखूं तो सही क्या है, तो ये आपके लिए सही समय है। बढ़ते हैं जरा आगे। ये जो लास्ट वेबसाइट है ये उनके लिए जो किताबें पढ़ते हैं, मैंने लास्ट में इसलिए बचा के रखी है बिकॉज ये बहुत ही बहुत लोगों के काम आएगी भाई, बहुत लोगों, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं किताबें पढ़ता भी नहीं हूँ यकीन जानिए, मगर इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं ना, ऐसी किताबें हैं लगता है अरे ये तो पढ़ लेते हैं यार। मैंने एक होमो सेपियंस एक स्पीशीज करके एक किताब वो पढ़ी इसी पे, एंड पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट पढ़ी नहीं है पूरी, पढ़ रहा हूँ। शुरुआत किया था मैंने ऐसी चेक तो करूं, पर वो चेक करने के चक्कर में हाँ पढ़ सकते हैं। तो फ्री फंड में आपको सारी किताबें मिलेंगी, फ्री फंड में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है किताबों की, और प्लीज ये जाके किसी ना किसी को जरूर बताएगा। वेबसाइट का नाम है welib.org, भर भर की किताबें भाई फ्री। प्लीज ये किसी तक तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा दीजिएगा। ऑलराइट, अब जरा बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए क्या है कि अभी सैमसंग ने भी अपना रोल आउट किया है न्यू जो UI है उनका 9, आपने रिसेंटली नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। साथ ही गूगल की तरफ से बयान आ चुका है कि उन्होंने कहा हमारी जो क्रोमबुक अपडेट्स है वो अभी तक नहीं है, वो 2034 तक है भाई। आगे की सोची है हमने, 8 साल आगे के बाद अपडेट आएगी तो आएगी, अभी आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई नो कुछ लोग

0: टाइफून पगलू हैं मगर थोड़ा सा मूव करने की जरूरत है. ट्राई एंड कंसिडर समथिंग गूगल, बिकॉज अभी गूगल ने अपने सारे जो मॉडल्स हैं मूव कर दिए गूगल बुक ओएस पे. और क्या क्लीन ओएस है यार, क्या क्लीन ओएस है. अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ना समथिंग न्यू, अगर आप एंड्रॉयड छोड़ के iOS छोड़ के कुछ करना चाहते हैं, एप्पल इज द वे आउट. मैं सच बता रहा हूँ, ट्राई दिस. ये थी अपडेट्स, मिलते हैं अगली वाली में. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट. टेक अपडेट. योर हेल्थ मैटर्स.
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज जरा अपने इर्द गिर्द देखिए. मोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर, टैबलेट्स, हमारी जिंदगी स्क्रीन से ही भर गई है. इसलिए आज हम बात करेंगे आंखों की सेहत और डिजिटल आई स्ट्रेन पर. आंखें हमें क्या बताती हैं? ज्यादा देर स्क्रीन देखने के बाद बस अफराद को आंखों में थकन, हेडेक, बर्निंग, ड्राइनेस या फिर धुंधलापन महसूस हो सकता है. कुछ अफराद ये महसूस करते हैं कि ये सिर्फ मोबाइल की वजह से है, लेकिन स्क्रीन यूज के साथ हम अक्सर मुसलसल करीब या बहुत ही करीब देख रहे होते हैं और ब्लिंक भी बहुत कम करते हैं. ये आप जरूर नोट कीजिए, जिससे फिर जो डिस्कम्फर्ट है वो ज्यादा हो जाता है. एक आसान सी आदत है जिसके हमने पहले भी जिक्र किया, 20-20-20 रूल. तकरीबन हर 20 मिनट के बाद तकरीबन 20 फीट दूर किसी चीज को तकरीबन 20 सेकेंड्स के लिए जरूर देखिए. इस दौरान आंखों को स्क्रीन से ब्रेक दे दीजिए और ब्लिंक करना बिल्कुल ना भूलिए. ब्लिंक करते हुए हम बाज़ुकात कम जो कंसंट्रेट करते हैं स्क्रीन पर या जानबूझकर ज़्यादा ब्लिंक करने की याद दहानी आंखों की ड्राइनेस को कम करने में मदद कर सकती है. अगर मुसलसल जो ड्राइनेस रहती है तो फिर आप जो आई स्पेशलिस्ट है, आई प्रोफेशनल है, उससे ज़रूर मशवरा कीजिए. स्क्रीन की ब्राइटनेस हो इस पर भी खास तवज्जो देनी है. स्ट्रेन अगर ना हो तो आंखों को गैर ज़रूरी डिम या इतनी रोशन या इतनी ज़्यादा जो स्क्रीन है कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है वो हमारी आंखों को मुतासिर करती है. कमरे की रोशनी और स्क्रीन ब्राइटनेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इससे डिस्कम्फर्ट पैदा हो सकती है. ऐसा रखिए कि बार बार आँखें सुकेड़ कर पढ़ना ना पड़े. जो टेक्स्ट साइज है उस पर भी तवज्जो दीजिए और जो डिस्टेंस है उसको भी आप बहुत ही गौर से देखिए. और बच्चों के लिए तो बहुत ही अहम है, और बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के साथ साथ जो आउटडोर एक्टिविटी है और जो फिजिकल उनकी एक्टिविटी है बहुत अहम है. वालिदैन सिर्फ ये ना कहें कि मोबाइल छोड़ दो. तब हम कहते हैं अच्छा मोबाइल पर बहुत टाइम हो गया है, या टैबलेट्स पर, या आप गेम खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और अब छोड़ दें. बल्कि उन्हें अल्टरनेटिव को एक्टिविटी आप दीजिए. खेल, किताब है, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं और आउटडोर जो टाइम है वो बच्चों की रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाइए. अगर आंखों में ख़ारिश हो तो बार बार आँखें रगड़ने से इरीटेशन और ज़्यादा हो सकती है. अगर उसमें दर्द हो, रेडनेस या डिस्चार्ज हो तो फिर फौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए. और अब एक और बहुत अहम बात, वो ये कि आई चेकअप कब ज़रूरी है. अगर नज़र जो है धुंधली हो रही हो, बार बार आपको हेडेक हो, पढ़ने में मुश्किल हो, नज़र में तब्दीली महसूस हो, या फिर ग्लासेस का जो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पुराना हो गया हो, तो फिर आप आई एग्जामिनेशन ज़रूर करवाइए. और अगर अचानक नज़र कम हो जाए, शदीद आई पेन हो, फ्लैशेस या बहुत ज़्यादा नए फ्लोटर्स महसूस हों, या आपकी नज़र में अचानक कोई गैर मामूली तब्दीली आए, तो फौरी मेडिकल असेसमेंट ज़रूरी हो सकती है. बाहर बहुत ज़्यादा धूप में जो मुनासिब प्रोटेक्शन यूवी वाली सनग्लासेस हैं वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो मददगार साबित हो सकती हैं. किसी काम के दौरान आंखों को इंजरी का ख़तरा हो तो अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव आई वियर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए. और इसी तरह कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने वाले अफराद हाइजीन और लेंस केयर इंस्ट्रक्शंस पर ज़रूर अमल करें. लिसनर्स, हमारी आँखें हमारी दुनिया को देखने का ज़रिया हैं, इसलिए आज से चंद आसान जो हैबिट्स हैं वो हम अपना लेते हैं. जैसे कि आँखें हैं और जो ज़रूरत के मुताबिक आउटडोर टाइम है या ब्लिंकिंग है, लाइटनिंग जो है वो मुनासिब हो, स्क्रीन जो ब्रेक्स हैं वो हम गौर करें उन पर, और रेगुलर चेकअप्स जो हैं

0: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहां हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो कतर की जमीन, तारीख और मेहमान नवाजी से गहरा ताल्लुक रखती है। ये है खजूर। कतर में खजूर सिर्फ एक मीठा फल नहीं बल्कि तहजीब और रिवायत की अलामत है। इसे मुल्क का कौमी फल भी कहा जाता है। खजूर को मेहमान नवाजी, सखावत और कतर की पुरानी तारीख से जोड़ा जाता है। अरब दुनिया में खजूर सदियों से गजाइत और सहूलत का अहम जरिया रही है। सहरा के माहौल में ऐसा फल बहुत कीमती था जो संभाल कर रखा जा सके और सफर के दौरान भी इस्तेमाल हो सके। खजूर सफर करने वालों, समंदरी सयाहों और सहरा में रहने वाले लोगों के लिए कुवत का जरिया बनती थी। कतर के पुराने घरों में खजूर का ताल्लुक रोजमर्रा जिंदगी से था। इसे नाश्ते में चाय या कहवे के साथ और मेहमान के लिए पेश किया जाता था। जब कोई मेहमान घर आता तो खजूर और अरबी कहवे के साथ इसका इस्तकबाल करना एक मामूल और खूबसूरत रिवायत समझी जाती थी। खजूर की कई किस्में होती हैं और हर किस्म का रंग, साइज, नरमी और मिठास मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ खजूरें नरम और रस भरी होती हैं जबकि कुछ ज्यादा खुश्क और देर तक महफूज रह सकती हैं। इसी फर्क की वजह से लोग अपनी पसंद और मौसम के मुताबिक मुख्तलिफ किस्में खरीदते और पेश करते हैं। कतर में खजूर को कई मरतबा सीधा खाया जाता है लेकिन इसे पुराने और नए अंदाज में तैयार किया जाता है। कुछ लोग खजूर में बादाम या अखरोट भरकर पेश करते हैं जबकि कुछ इससे मिठाई, हलवा या दूसरी मीठी चीजें बनाते हैं। बाजार और कैफे में खजूर से तैयार मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। खजूर का सबसे जो खूबसूरत पहलू है वो इसकी मेहमान नवाजी से वाबस्तगी है। सोचिए एक मजलिस में मेहमान बैठे हुए हैं और कहवा डाला जा रहा है, साथ में खजूर का बर्तन रखा है। ये छोटा सा एहतमाम मेहमान को ये एहसास दिलाता है कि उसको दिल से वेलकम किया गया है। कहवे और खजूर का मेल अपनी एक खास पहचान रखता है। कहवे की हल्की कड़वाहट और इलायची की खुशबू खजूर की मिठास के साथ खूब जचती है। इसलिए ये जोड़ी कतर में मुलाकात, गुफ्तगु और मेहमान के इस्तकबाल का एक खूबसूरत हिस्सा बन गई है। रमजान में खजूर की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। रोजा खोलते वक्त खजूर खाना एक मशहूर इस्लामी रिवायत है। कतर में फैमिली और पड़ोसियों के दरमियान खजूर बांटना भी मोहब्बत और खैरख्वाही का इजहार होता है। ईद और दूसरी खुशियों में भी खजूर दस्तरखान की जीनत बन सकता है। खजूर का रिश्ता कतर की तिजारती तारीख से भी जुड़ा है। अरब गल्फ में खजूर और दूसरी अशिया के लेन देन कदीम तिजारती रवाबित का हिस्सा रही हैं। इसके साथ साथ खजूर की काश्त और उसकी देखभाल ने मकामी लोगों को जमीन, पानी और मौसम की समझ भी दी। आज कतर में जदीद जिंदगी के बावजूद खजूर की कीमत कम नहीं हुई। सुपरमार्केट्स, रिवायती बाजारों और तोहफे की दुकानों में खजूर की मुख्तलिफ किस्में मिलती हैं। खूबसूरत पैकिंग में पेश की जाने वाली खजूरें अब मेहमानों और दोस्तों के लिए एक सकाफती तोहफा भी बन चुकी हैं। खजूर हमें ये पैगाम देती है कि कोई भी रिवायत सिर्फ पुरानी चीज नहीं होती। अगर इसका ताल्लुक लोगों की जिंदगी और जज्बात से मजबूत हो तो वो नए दौर में भी जिंदा रहती है। तो अगली बार जब आप कतर में कहवे के साथ खजूर देखें तो उसे सिर्फ एक स्नैक न समझें। इस छोटी सी मिठास में सहरा की कहानी, बुजुर्गों की जिंदगी, रमजान की यादें और मेहमान के लिए दिल से निकली हुई इज्जत मौजूद है। आज की कल्चर मोमेंट का खुलासा ये है कि खजूर कतर में जायके के साथ साथ सखावत, वर्से और अपनाइयत की निशानी है। तो लिस्टर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

आज की स्पोर्ट्स कहानी बांग्लादेश क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी और लीडर की है जो बैट के साथ भी टीम की उम्मीद है और टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर भी बांग्लादेश को एक नए दौर की तरफ ले जा रहे हैं। नाम है नजमुल हुसैन शांतो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। लेफ्ट हैंड बैटर नजमुल हुसैन शांतो बांग्लादेश क्रिकेट के इम्पॉर्टेंट मिडिल ऑर्डर खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक बल्लेबाज की नहीं बल्कि एक टेस्ट कप्तान की भी बन चुकी है। उन्होंने 2023 में पहली बार बांग्लादेश की टेस्ट कप्तानी संभाली थी। 2025 में यानी पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद उन्होंने कप्तानी से हटने का फैसला किया था। इट वॉज अ मेजर डिसीजन, लेकिन बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें दोबारा टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान उन्हें बना दिया। उनका करंट मैंडेट अगर देखा जाए तो 2025-2027 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के एंड तक है, विच मींस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन पर थोड़ा ट्रस्ट किया एंड ट्रस्ट करने के साथ साथ उनको ये एहसास भी था कि नजमुल हुसैन जो है ना कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन एक दिमाग रखते हैं, एक सोच रखते हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा लॉन्ग एक्सटेंशन दिया गया है और ये हुआ है अंडर द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तमीम इकबाल, जिनका मानना यह है कि लॉन्ग टर्म सोच इम्पॉर्टेंट है ना कि शॉर्ट टर्म। परफॉर्मेंस खराब हो जाए और उनको निकाल दो, ये सोच तमीम इकबाल का नहीं, और इसी सोच के साथ बांग्लादेश क्रिकेट को कई ऐसे कामयाबी हासिल हुई। मैं बताऊंगा इसी चर्चे पे आपको आगे बता रहा हूं मैं कि कैसे नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश क्रिकेट को वो इंटरनेशनल एक फेम दिलाने में अहम रोल अदा किया है। कप्तानी करियर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर 2026 में सामने आया जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। ढाका में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी और इस मैच में नजमुल हुसैन शांतो ने खुद भी शानदार बल्लेबाजी की और पहली इनिंग्स में 101 रन जबकि दूसरी इनिंग्स में 87 रन बनाए। उनकी इस कारकर्दगी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इस सेंचुरी के साथ नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान के तौर पर अपनी 5वीं सेंचुरी कंप्लीट की और मुशफिकुर रहीम के 4 सेंचुरीज के जो रिकॉर्ड थे उसे पीछे छोड़ दिया और आईसीसी रैंकिंग में भी उनकी पोजीशन करियर बेस्ट 23 तक पहुंची, विच वॉज अ वंडरफुल यू नो अचीवमेंट बाय दिस वंडरफुल क्रिकेटर फ्रॉम बांग्लादेश। कप्तान के तौर पर शांतो की एक और खास बात यह है कि वो सिर्फ बल्लेबाजी पर डिपेंड नहीं करते बल्कि फील्ड पर बॉलिंग चेंजेस और मैच सिचुएशंस को भी क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं, मॉनिटर करते हैं। मई 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ फतेह के बाद वो बांग्लादेश के सबसे तेज 7 टेस्ट विक्ट्रीज हासिल करने वाले कप्तान बन गए, यानी फास्टेस्ट टू विन 7 टेस्ट मैचेस। उन्होंने सिर्फ 17 मैचेस में ये माइलस्टोन अचीव किया, बहुत ही बड़ी बात है। फिर आया ऑस्ट्रेलिया का दौर, बांग्लादेश के लिए एक तारीखी चैलेंज। डार्विन में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा कर ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पहली टेस्ट विक्ट्री हासिल की, यानी ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर, ऑस्ट्रेलिया के ही घर पर ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। क्रिकेट में अगर देखा जाए आज के दौर में ऑस्ट्रेलिया इज डेफिनेटली वन ऑफ द लीडिंग टेस्ट प्लेइंग नेशन, स्ट्रॉन्ग नेशंस माना जाता है। और इस मैच में तंजीद हसन ने सेंचुरी बनाई और मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट हासिल किए। नजमुल हुसैन शांतो की लीडरशिप में बांग्लादेश ने एक ऐसी जीत हासिल की जो टीम के टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। इट वॉज अ मेमोरेबल विक्ट्री, बिलीव मी, मेमोरेबल विक्ट्री। दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त कमबैक किया और बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया। इस नतीजे के बाद 2 टेस्ट मैच सीरीज 1-1 से ड्रॉ रहा। मकई टेस्ट मैच में सिर्फ 2 दिन में 18 विकेट गिर गए। मैच के बाद शांतो ने पिच कंडीशंस पर बात करते हुए कहा कि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर जब विकेट्स गिरती हैं तो बहुत डिस्कशन होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी कंडीशंस को इसी तरह एग्जामिन किया जाना चाहिए। दोस्तों
तगल हसन शांतो की कहानी एक यंग बल्लेबाज से बांग्लादेश के टेस्ट लीडर तक के सफर की कहानी है। उनके सामने चैलेंज ये है कि बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंसी के साथ आगे ले जाया जाए और साथ ही खुद भी बल्ले के साथ टीम के लिए रन्स भी बनाए। नाजमुल हुसैन शांतो बांग्लादेश का टेस्ट कप्तान, लेफ्ट हैंडेड बैटर और एक ऐसा लीडर जिसके सामने बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट का अगला चैप्टर लिखने का मौका है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल फंड के बारे में। आज का स्टूडेंट, कल का अडल्ट और कल का एक प्रोफेशनल, उसके लिए आज ही से हमारी तैयारी। आज ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हर पेरेंट, हर स्टूडेंट और हर फैमिली के मुस्तकबिल से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। हम सब अपने बच्चों के

0: भी बन चुकी है और इसीलिए एजुकेशनल फंड की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब एजुकेशनल फंड होते क्या है? एजुकेशनल फंड वो पैसा होता है जो खास तौर पर एजुकेशन के फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए सेव किया जाता है। ये फंड स्कूल फीस, यूनिवर्सिटी ट्यूशंस, बुक्स, ट्रेनिंग्स, कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस और हायर एजुकेशन के खर्चों को कवर करने में मदद करता है। इसीलिए आप फ्यूचर लर्निंग अकाउंट भी कह सकते हैं। जब पेरेंट्स एजुकेशनल फंड क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ पैसे सेव नहीं करते, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स सिर्फ फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से कुछ अच्छी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। एजुकेशनल प्लानिंग ऐसे चेंजेस को, चैलेंजेस को कम कर सकती है। ये पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस देती है कि जब जरूरत होगी तो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। एजुकेशनल फंड के लिए हमेशा बड़े अमाउंट की जरूरत भी नहीं है। असल अहमियत है कंसिस्टेंसी की। छोटी छोटी रेगुलर सेविंग्स वक्त के साथ एक मीनिंगफुल फंड में तब्दील हो सकती हैं। बिल्कुल एक बीज की तरह जो रोज पानी मिलने से धीरे धीरे एक मजबूत दरख्त बन जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग भी उसी उसूल पर काम करती है। आज की इकोनॉमिक नॉलेज और सोशल स्किल्स हम सब के लिए मैंडेटरी हैं। एजुकेशन का स्टाइल बदल चुका है। कंपनीज आज के टाइम में सिर्फ डिग्रीज नहीं देखती बल्कि नए स्किल्स, क्रिएटिविटी, अडैप्टेबिलिटी को भी इम्पोर्टेंस देती हैं। तो एजुकेशनल फंड फ्यूचर जनरेशन को लर्निंग के जरिए अपने पोटेंशियल तक पहुंचने का मौका देता है। ये सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट की प्लानिंग है। दोस्तों, एक वक्त था जब लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज इसका ट्रेंड दौर तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, वो लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। एक वक्त था जब लोग एजुकेशन कंप्लीट करके पूरी जिंदगी एक ही स्किल पर काम कर लेते थे, लेकिन आज सिचुएशन डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नए स्किल सीखना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। फ्यूचर में सक्सेसफुल वो लोग होंगे जो लर्निंग को कभी नहीं छोड़ेंगे। एजुकेशनल फंड इसी लॉन्ग लाइफ लर्निंग माइंडसेट को सपोर्ट करता है। मैं कहूंगी घर, गाड़ी और दूसरे एसेट्स कीमती हैं, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी एसेट उसकी नॉलेज या उसके बच्चे की एजुकेशन या स्किल्स हो सकती है। तो एजुकेशनल फंड सिर्फ फीस जमा करने का भी नाम नहीं है, ये उम्मीद का फंड है, ये अपॉर्चुनिटी का फंड है, ये फ्यूचर ड्रीम्स को हकीकत में बदलने का फंड है। जब हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ एक कोर्स या डिग्री नहीं खरीदते, हम कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी और बेहतर मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करते हैं। पैसे खर्च करने से चीजें मिलती हैं, लेकिन तालीम में लगाया गया पैसा जिंदगी भर के मौके पैदा करता है। एजुकेशनल फंड सिर्फ सेविंग नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एक रोशन रास्ता है। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से दीजिए।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: night melodies only on FM 107 Dil Se Desi.
1: आंखें खुली मेरी वो बैठी थी सामने कहती मुझसे बात कर कभी तो मेरा नाम ले मैं खुश हूं कि तू आंखों के सामने पर तू ज्यादा ना बोलता और हम दोनों ये जानते ऐसा लगता अभी बोल पड़ेगा अभी खोल देगा सारे राज जो दरवाजे जानते कितनी आई अंदर कितनी गई बाहर हम तो धोखे में रहे बस हम ये सच नहीं मानते और ऐसी भी अब क्या ही करना दुनिया का जहां पे जान ले ले जान प्यार के नाम पे मैं तो मुफ्त में ही तेरी हो चली थी पर आज पता चला कभी हुए हम भी नीलाम

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ. रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देश.